व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता उसकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती, चाहे भगवान के प्रति हो अथवा गुरु के प्रति। समर्पण यदि पूर्ण निष्ठा का होता है तो जिम्मेदारी परमात्मा की होती। हमेशा एक उदाहरण हम देते हैं, वो यहां पर याद आ गया तो हम आपको वो उदाहरण से बताएं। कोई भी फैक्ट्री या कंपनी होती है, वो जब ठीक नहीं चलती तो चिंता किसकी होती है, मालिक की कि नौकर की? अरे बोलो, मालिक की होती ना। अच्छा, उसका घाटा लग रहा हो, कर्जा ज्यादा बढ़ रहा हो, तो चिंता किसकी होती, मालिक की या नौकर की? अरे जोर से बोलो। कोई ड्राइवरी कर रहा हो, बस चला रहा हो, बहुत ज्यादा कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसकी चिंता होती है? मालिक की होती ना। गाड़ी कोई ठुक जाए, ड्राइवर का क्या, एक दो दिन के लिए जाएगा, जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। गाड़ी की जमानत बड़ी मुश्किल, और चिंता किसकी हो जाती? बोलो बोलो बोलो, मालिक की, हाँ या ना। ऐसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी में खुद के मालिक बने रहोगे तो तुम्हारी टेंशन रहेगी, और अपना मालिक तुम अपने राम जी को, बालाजी को बना दोगे तो तुम्हारी चिंता राम जी की हो जाएगी। हाँ, भगवान को बना दो, आप हमारे मालिक, हम आपके नौकर चाकर हो, जो आप चाहो जैसे चाहो वैसे रखो, चाहे मार दो हरी या तार दो हरी, अब आपको जैसे रखना है सुरख। ऐसा भाव आपके हृदय में आ जाएगा तो आपकी जीवन की गाड़ी भगवान के हाथ में आ जाएगी, और भगवान के हाथ में गाड़ी आई कि आपकी जय जय। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन जब तक खुद ही मालिक बने रहे। अच्छा, विचित्र बात देखना, आदमी अपनी जिंदगी का मालिक बनता है, वो कहता हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में वो है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, सब हमारे हाथ में। किसी को कोई काम बताओ, भाई ये हो जाएगा, अरे हमारे हाथ में है। उससे पूछा जाए तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारा खुद का जो हाथ है वही तुम्हारे हाथ में नहीं है, भला क्या तुम्हारे हाथ में होगा? हम लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है सब भगवान के हाथ में है। गोस्वामी जी ने रामायण

0: रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते, सबई नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे मदारी बंदर को नचाता, वैसे ही हम सब जीव भगवान के द्वारा नाच रहे हैं। ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी क्षमता है, ये मानना चाहिए क्षमता तो भगवान की है, दिखाई हम पड़ रहे हैं। हाँ, हम लोगों की कोई क्षमता नहीं, सब भगवान की क्षमता है। अच्छा, भगवान का मूड खराब हो जाए, अभी बढ़िया देखो क्या गर्मी बरसा रहे, अब भगवान का मूड खराब हो जाए कि जरा आइस कोल्ड हो जाए, इतने बड़े बड़े ओले फेंके 500-500 ग्राम के, फिर क्या है, दे पटाक पटाक, फिर कथा सुनोगे कि प्राण बचाओगे। और यदि किसी से कह दिया जाए, अरे रुको रुको ये तो सब सही हो जाएगा, अरे महाराज हमें मुक्ति चाहिए पर अभी थोड़ी चाहिए। आ आ, एक जगह भागवत हो रही थी तो हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता, हाथ उठाओ, देखो यहां भी बैठे हैं स्वर्ग वाले, सबने हाथ खड़े कर दिए, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। एक आदमी ने हाथ खड़ा नहीं किया तो हमने पूछा क्या बात है, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले गुरुजी नहीं नहीं, हमारी पत्नी कह रही थी कथा से सीधा घर आना वरना टांगे तोड़ देंगे। तो बाकी सबको जाना होगा, हमको नहीं जाना है, हमको तो घर जाना है। अब बताओ मैंने कौन समझाए, अरे भाई यही हम लोगों का हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है। क्या भाई, देखो भगवान नचा तो रहे हैं पर ये हम भी कर रहे हैं। कई लोग होते हैं अपनी अपनी महिमा गाने के लिए, अरे वो तो और तो सब ठीक है, वो तो बहुत हैरान थे, यदि हम ना वो तो हमें फिर मिल गए तो हमने कहा कि हैरान ना हो, हम हैं, मैं हूं। ये मैं ही बहुत खतरनाक, ये मैं जिसको जिसको मिला ना सीताराम है सब। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सबसे हाथ जोड़कर, आज की कथा में विशेषता, आप अपने आप को साध मत मानो, साधक मानो, करने वाले भगवान हैं, हम तो भैया कर रहे हैं, जैसे भगवान हमसे करवा रहा है सो कर रहे हैं, भगवान की माया है। भगवान ने कहा कथा सुनो सो कथा सुन रहे हैं। अच्छा लेकिन एक बात और, भगवान केवल अच्छा ही कराते हैं बुरा नहीं कराते। अब आप कहोगे वाह मलाई मलाई आप खा रहे हो और दूध पानी जैसा दूध हमको पिला रहे हो, ना ना भैया सच ये है। ये एक एक मुजरिम था, मुजरिम, उसने कोई कांड कर दिया 302, पकड़ा गया। जो जज साहब थे वो रामायण के बड़े प्रेमी थे, रामायण पढ़ते थे, इसको कैदी को पता लग गया कि रामायण के प्रेमी हैं, रामायण पढ़ते हैं, इसने सोचा थोड़ी सजा माफ हो जाए, तो इसने रामायण की 2-4 चौपाइयां सीख ली ताकि जज साहब को प्रभावित करेंगे कि हम भी रामायण पढ़ते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं। उसने 2-4 चौपाई सीखी, अब जज साहब के सामने कटघरा में खड़े हुए, जज साहब ने पूछा क्यों खून तुमने किया, सो हाथ जोड़ के बोला अरे साहब हमारी क्या ताकत कि हम खून करें, हुई यही सुई जो राम रचिरा खा को करी तर्क बड़ा बैसाखा, सब भगवान करवा रहे हैं, उन्होंने प्रेरणा दी कि खून कर दो सो हमने कर दिया, इसमें हमारी गलती नहीं थी भगवान की गलती है, भगवान ने हमें प्रेरणा दी सो हमने कर दिया। जज साहब बोले अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बड़ी रामायण जानते हो, हाँ बाबा आपको क्या बताएं, हम तो इसी पर ही जीवन जीते रहे। जज साहब बोले वाह, जज साहब ने कलम उठाई, इसको कल की बजाय आज ही फांसी दी जाए। अब बड़ा चौंक गया, उसे लगा कि हमने चौपाई बोली, रामायण की बात हुई, अच्छी बात हो गई, ये तो माफ कर देना चाहिए, और बड़ा उल्टा हो गया, जो माफी जो फांसी कल मिलनी थी वो आज मिल जाए, तो ये बड़ा चौंका, अरे साहब हमने कहा कि जब हमने नहीं किया भगवान ने करवाया है तो अब हमें क्यों फांसी पे चढ़ा रहे, भगवान ने करवाया है। जज साहब बोले बेटा, अच्छा वो जज साहब दरअसल हमारे गाँव के थे, बोले बेटा जिस भगवान ने तुमको प्रेरणा दी कि इसको मार डालो, उसी भगवान ने अभी अभी हमको प्रेरणा दी कि इसको भी ना छोड़ा जाए फांसी पे लटका। तो वो समझ आया, हाँ अब समझ गए, तो बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, बातें तो बातें होती हैं। तो भैया यही हम लोगों का हाल है, हम लोग दुनिया को प्रभावित करने के लिए लंबी लंबी फेंकते, ये सब हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, ऐसा भगवान नहीं नहीं नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ही हो रहा और भगवान ही करवा रहा है, ये मान करके यदि जियोगे तो ना अभिमान आएगा ना कुछ झंझट आएगा। परंतु यदि आप भगवान को मान करके जियोगे तो आपके जीवन में हमारा भगवान जरूर आ जाएगा। बोलो सीताराम,
1: सीताराम,
0: जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब ये कैसे निर्णय करें कि हम भक्त हैं, ये तो भक्ति की बात हो गई, पर निर्णय कैसे करें कि हम भक्त हैं? तो भक्त के भी तीन लक्षण हैं। कितने बोलो बोलो, अरे जम के तो बोलो। भक्त के भी तीन लक्षण हैं, भाव, भरोसा और भोलापन, ये भक्त के लक्षण है। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। आप भक्त हो या नहीं, ये तीन लक्षण यदि आपके अंदर हैं, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति भरोसा और सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का यदि भोलापन तुम्हारे अंदर है, तो समझ जाना भक्त हो गए। और भक्त हो गए तो स्वभाव के भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो भक्ति से सिद्धि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, ये पक्का है। तो पहला भाव कैसा हो? भाव भैया या तो कर्मा माई की तरह हो अथवा फिर विदुरानी की तरह। आहा, धन्य है विदुर जी और विदुरानी धन्य है। ठाकुर जी जब घर आए तो विदुरानी जी भूल ही गई कि भगवान को हम केला खिला रहे कि केला का छिलका खिला रहे। तो केला का जो गुदा गुदा होता है वो एक तरफ रखते गई, छिलका लो ठाकुर जी पाओ, और भगवान को पवा रहे। अच्छा पवा रही सो तो ठीक है भगवान, अच्छा कोई भाई कोई गलती सामने वाला करे तो कोई बात नहीं, भाव में कई बार ऐसा हो जाता है, भावावेश में आदमी आता, अरे महाराज महाराज महाराज, ठीक है ठीक है ठीक है, सावधानी रखो सावधानी रखो। लेकिन हमारे ठाकुर जी की अलग लीला है। बोले क्या? बोले विदुरानी जी तो केले का छिलका खिला ही रही, भगवान खाते खाते कह रहे आहा क्या केला है, बड़ा आनंद आ गया खाकर, बड़े मीठे हैं, वाह बताओ, ये ऊपर से हामे हामे ला रहे, धन्य है ठाकुर जी। तो किसी ने ठाकुर जी से कहा कि आप तो केले के छिलकों की बड़ाई कर रहे हो, महिमा गा रहे हो, केले अच्छे हो सकते, केले के छिलके थोड़ी अच्छे हो सकते, और आप बेफिजूली में झूठी मूठी महिमा गा रहे। भगवान बोले भैया हम केला वेला खाने से कोई प्रसन्न प्रसन्न नहीं होते हैं, वो जरूर खिला रही थी केले के छिलके, लेकिन खिला भाव से रही थी, और हमें कोई भाव से खिलाता है उसी की हम बड़ाई कर दे। तो केलों की बड़ाई नहीं कर रहे, भाव की बड़ाई भगवान करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान ऐसा कहते हैं, तो भगवान को तो भाव प्रिय। तो भक्त के तीन लक्षणों में पहला लक्षण भाव, दूसरा लक्षण भरोसा, और भरोसा कैसा हो? भरोसा ऐसा होना चाहिए जैसे हवाई जहाज के पायलट पर भरोसा होता है, तो चाहे तो वो मंजिल पे पहुंचा दे और चाहे तो बीच में ही क्रैश करवा दे, जय बजरंगबली। पर हम लोग भरोसा करके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं पहुंच ही जाएंगे, और यहां तक कि फोन लगा देते हैं कि हमारे लिए गाड़ी भेज देना हम आ रहे हैं, मान लो बीच में ही सियावर रामचंद्र की जय हो जाए तो, लेकिन भरोसा होता है ना ना ना, बल्कि पायलट से कोई पहचान नहीं, जान पहचान का भी नहीं, स्वभाव का पता भी नहीं, कोई उसके बारे में बुक भी नहीं लिखी, और बस बैठ जाते हैं। तो जब साधारण संसार की वस्तु चलाने वाले व्यक्ति की गाड़ी के चालक के ऊपर हम लोगों को भरोसा हो जाता कि ये मंजिल पर पहुंचा देगा, तो जिस ब्रह्म के बारे में हम सब जानते हैं यदि उस पर भरोसा कर लिया जाए तो पक्का है वो हमको भी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन हम लोग बड़े गजब हैं, सामान्यतया मनुष्य की बातों पे भरोसा हो जाता, भगवान है कि नहीं इस पे फिर भी बुद्धि बीच बीच में ऊपर नीचे होते रहती है। हाँ, कोई गांव का बूढ़ा आदमी कह दे इस जगह से मत निकलना, भूत रहता है, तुरंत भरोसा हो जाता। हाँ, रहता होगा भैया, कौन सा रहता है, भूत नहीं, भूत नहीं रहती, ओहो हो, चूड़ी पहने रहती। हाँ, इतने में रात को अंधेरे में वहीं से निकलना पड़े, अकेले हो। आहा, जो हनुमान चालीसा याद आता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच, ये वाली चौपाई आदमी जो बोलता भूत पिशाच निकट रही आवे। अच्छा, इसी चौपाई के बीच में जो कपड़ा डाल रखा वो किसी कील में फंस जाए, ओहो हो, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, कुर्ता उतार कर शर्ट उतार कर दे दौड़। क्या हुआ, बच गए, आज तो भूत ने पकड़ लिया था पकड़ लिया था, क्या करें, बागेश्वर धाम चलो, वहीं से ताबीज गड़ा बनवा के आओ तभी बच पाएंगे। बड़ा खतरनाक भूत है, बहुत खतरनाक, हनुमान चालीसा से भी नहीं डरता। तो अरे भाई, ठटरी के बरे मूरख चंदा नक कटा आगी के लगे हलुआ नाथ, गांव के झूठे आदमी ने झूठी बात बना के कह दिया वहां भूत रहता है, तुम्हें भरोसा हो गया। अरे हजारों सालों से हमारे महात्मा चिल्ला रहे कि कण कण में भगवान भी रहता है, तो जहां भूत होगा वहां बचाने वाला भगवान भी तो होगा, है? वो भी तो होगा। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति देखो, मानसिकता देखो, भूत पर भरोसा है भगवान पर भरोसा नहीं है, इसलिए घाटा खाते हैं। और जिनका भरोसा भगवान पर हो जाता तो भक्त का दूसरा लक्षण पूर्ण हो जाता। पहला जी, हाँ, ध्रुव जी महाराज नारद जी को यही तो कहते हैं। नारद जी बोले कहाँ जा रहे, बन जा रहे, बन जा रहे, क्यों जा रहे, भजन करेंगे जंगल में। नारद जी बोले जंगल मत जाओ, क्यों, बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, मार डालेंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, जिंदा नहीं बचोगे। नारद जी बोले वहां बच पाना बहुत कठिन है, हिंसक जानवर रहते। ध्रुव जी बोले गुरु जी, जंगल में यदि जानवर रहते मारने के लिए तो बचाने के लिए परमात्मा भी तो रहता है। तो जो जान मारने वाले हैं वो अपना काम करेंगे और बचाने वाले अपना काम करेंगे। प्रहलाद जी भी यही बोले। हिरण्यकश्यपु बोला कौन बचाएगा, तो है प्रहलाद जी बोले अपनी सोचो, हमारी छोड़ो अपनी सोचो, तुम्हें कौन बचाएगा। तो हिरण्यकश्यपु बोला क्या बोल रहे हो, प्रहलाद जी बोले पिताजी कुछ नहीं बोल रहे, बस ये कह रहे कि आप अपनी सोचो, कुछ देर में आपकी टिकट कटने वाली, क्यों, तेरा ब्रह्म कहां है, कहां है तुम्हारा भगवान। प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहां नहीं है, सब जगह है। अच्छा, इस खंभे में है, हाँ है। पर हिरण्यकश्यपु ने कान लगाया, इसमें तो कुछ नहीं है, आवाज भी नहीं आ रही। प्रहलाद जी बोले भगो तुम्हारे कान खराब। अब प्रहलाद जी ने कान लगाया तो कोई आवाज नहीं, उनके में भी कोई आवाज भी नहीं, उनके में। प्रहलाद जी कान लगा के बोले प्रभु और तो सब ठीक है, यदि आज आप नहीं आए, हमने कह तो दिया कि खंभे में हो, और यदि आज आप प्रकट नहीं हुए तो हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो मरना है, लेकिन आपकी सो ये जो ब्रांडिंग है ना ये खराब हो जाएगी, आपका ये जो नाम है ना खराब हो जाएगा, खराब। हाँ, जो एडवर्टाइजमेंट हो रखा तो भगवान दया करते हैं बचाते हैं, आज उस पर दाग लग जाएगा दाग, तो भीतर से ही भगवान बोले पहला जी बोले वाह बहुत बढ़िया आ गए। भगवान बोले क्या कह रहे हो, पहला जी बोले हम कुछ नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि यदि आज आप बाहर नहीं निकले तो बस कहानी खत्म है। किसकी, पहला जी बोले पहली तो हमारी खत्म, और दूसरी आपके चक्कर में हमने पिताजी को इतनी लंबी लंबी लंबी लंबी लंबी बातें फेंक दी और आप नहीं आए, तो पक्का है कि आपकी इज्जत भी गई, हम तो गई सो गए, आपकी भी इज्जत गई, जिंदगी भर हमारे पिताजी कहेंगे भगवान के चक्कर में देखो निपट गया, कोई भगवान भगवान नहीं है। तो भगवान बोले भैया क्या करें, पहला जी बोले एक काम करो, हमें बचाने भले ही मत आओ, अपनी इज्जत तो बचा जाओ, हमें भले ही मत बचाओ, बचाओ अपनी इज्जत तो बचा लो। भगवान बोले हमारी इज्जत, बोले हाँ हमने कह दिया कि आप हो, ये इज्जत तो बचा लो।
2: हाँ बात तो सही कह रहे हो, अब तो आना पड़ेगा, चलो तैयार हो जाओ। पहला जी बोले तैयार। अब पहला जी ने सीधा खड़े हो गए। हाँ पिताजी बोलो क्या कह रहे थे। कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान। भगवान कहते हैं जहां भक्त की, हाँ भगवान वहां, यही है भगवान। अच्छा खंभे में है, हाँ हाँ है, आपको चेक करना है। हिरण कश्यप बोला हमने तो चेक किया कुछ नहीं दिखाई पड़ा, आपके कान खराब हैं इसलिए नहीं सुनाई पड़ा, हमारी बात हो गई है, टेलीफोन लग गया था, बात हो गई। अच्छा भगवान है, हाँ हाँ है है। हिरण कश्यप बोला ये हाथ में देख रहे हो क्या है। पहला जी बोले हाँ हाँ देख लिया देख लिया। क्या है, कृपाण है। कृपाण का मतलब जानते हो। हाँ जानते हैं, दोनों तरफ जिसमें धार होती है, तलवार में एक तरफ होती कृपाण में दोनों तरफ होती, इसमें दोनों तरफ धार है। हिरण कश्यप बोला इस तरफ से दें चाहे इस तरफ से गर्दन कट जाएगी। पहला जी बोले हो ही नहीं सकता, खुद की बचा लो। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा। हाँ और जैसे ही हाथ उठाया हिरण कश्यप ने, पहला जी बोले प्रभु हमें ना बचाओ, इज्जत बचा लो अपनी।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन

0: LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: दिल्ली NCR में मॉनसून दिखा रहा अपनी रंग, लगातार हो रही झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। बारिश के बीच पवित्र कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का जोश है, सहारनपुर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, कांवड़ रूट पर ड्रोन और CCTV से प्रशासन की नजर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेश उत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई 14 फीट ऊंची लाल बागचा राजा की प्रतिमा। 15 अगस्त की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली में NSG की मेगा मॉक ड्रिल, शहर भर में आतंकी हमले के खिलाफ क्विक एक्शन की परखी तैयारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में युवक ने किया कमाल, खुद की मेहनत से रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, आसमान में भरी पहली सफल उड़ान।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: सहारनपुर में कांवड़ियों पर बरसे फूल, पुलिस ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया, हर हर महादेव से गूंजा घंटा घर चौराहा। फूलों की बारिश के बीच दिखा भक्तिमय माहौल, पुलिस ने पेश की सेवा की मिसाल, कांवड़ियों का सम्मान कर बढ़ाया उत्साह। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बन रही है SDRF, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा जा रहा है ध्यान। कांवड़ मेले में SDRF की 8 टीमें तैनात, सुरक्षा के संवेदनशील घाटों पर निगरानी, तो वहीं SDRF ने कांवड़ियों से सतर्क रहने की अपील की। ड्रोन से कांवड़ मेला क्षेत्र की निगरानी, आपदा में भी मददगार साबित होगा ड्रोन, श्रद्धालुओं को पानी और फल बांट रही है SDRF। गाजियाबाद में कांवड़ सुरक्षा का नया कंट्रोल रूम तैयार, DM और पुलिस कमिश्नर ने किया शुभारंभ, 2000 CCTV और ड्रोन से होगी निगरानी। मेरठ रोड तिराहे पर शुरू हुआ इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, कांवड़ मार्गों पर 24 घंटे रहेगी पुलिस की नजर, लाइव CCTV मॉनिटरिंग से बढ़ी सुरक्षा। ड्रोन कैमरा से होगी कांवड़ यात्रा की निगरानी, गाजियाबाद में तैनात होंगे 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, दूधेश्वर नाथ मंदिर में सुरक्षा के विशेष इंतजाम। मुजफ्फरनगर में दिख रहे पवित्र कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग, आंखों पर पट्टी बांधकर हरिद्वार से बागपत जा रहा एक शिव भक्त। 180 किलोमीटर का सफर तय कर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अर्पित करेंगे गंगा जल, शिव भक्त सुनील दे रहे हैं गौरक्षा का संदेश। यूपी के बांदा में भी नजर आ रहा कांवड़ यात्रा का उत्साह, भगवान श्री राम की तपोस्थली से जल लेकर भगवान शिव को करेंगे अर्पित। कांवड़ यात्रा में मनमोहन झांकियों के साथ चित्रकूट के लिए रवाना हुए कांवड़िए, शहर में जगह जगह बुलडोज यहां बरसाए गए फूल। सावन महीने में शिव भक्ति से सभी सराबोर, कांवड़ यात्रा में हर उम्र के श्रद्धालु शामिल। चित्रकूट में भी दिख रहे कांवड़ यात्रा के अनूठे रंग, भगवान शिव की सुंदर पालकी के साथ बम भोले का उद्घोष। बांदा के बम्बेश्वर शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ 500 कांवड़ियों का जत्था, बाबा भोले के अभिषेक के लिए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का ले जा रहे हैं जल। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के बिजनौर में सभी स्कूल आज बंद, जिलाधिकारी के निर्देश पर BSA ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई लाल बागचा राजा की प्रतिमा। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ 14 फीट ऊंची

0: श्री गणेश प्रतिमा का स्वागत किया गया। कोल्हापुर का राजा के दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग। गुरु हरकृष्ण साहिब जी की जन्मोत्सव पर दीयों की भव्य रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेंपल। श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा। हरमंदिर साहिब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रोशनी और मिट्टी के दीयों ने बढ़ाई स्वर्ण मंदिर की रौनक। मुजफ्फरनगर शिव चौक पर दिखा भोले का रौद्र रूप। अघोरी तांडव और शिव बारात में श्रद्धालुओं को किया मंत्रमुग्ध। हापुड़ की अनोखी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। हरिओम चिंगारी की थीम। कांवड़ देखने के लिए उमड़ी भीड़। कांवड़ में दिखा शिव का घोरी स्वरूप। भूत प्रेत शिवगण और भोले की बारात का चित्रण। आग उगलते हुए कलाकारों ने बढ़ाया रोमांच। डमरू की गूंज से गूंज उठा शिव चौक। हर हर महादेव के जयकारों से माहौल हुआ भक्तिमय। भव्य लाइटिंग और शानदार झांकी ने खींचा सभी का ध्यान। अघोरी वेश में शिव भक्तों का अनोखा प्रदर्शन। नरमुंड माला और तांडव ने बनाया खास नजारा। रंग बिरंगी कांवड़ों से मनमोहा। समस्तीपुर में सजा सावन महोत्सव। महिलाओं ने गीत संगीत पर जमकर किया नृत्य। हरे रंग से सजी महिलाओं ने मनाया सावन। मेहंदी झूले और गीतों से छाया उत्साह। सावन के गीतों पर झूमी सुहागनें। भोलेनाथ से खुशहाली की मांगी कामना। महिलाओं के डांस ने बांधा समा। लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। छाता लेकर महिलाओं ने किया फैशन शो। सावन के थीम पर दिखी अनोखी प्रस्तुति। झूलों और कजरी गीतों से गूंजा महोत्सव। सावन बना उमंग और उत्सव का पर्व। सावन महोत्सव में बांटी गई सुहाग सामग्री। मेहंदी और हरियाली ने बढ़ाई सावन की रौनक। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई महिलाएं। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। यूपी बिहार समेत 20 राज्यों में बरसेंगे बादल। तेज हवाओं का दौर रहेगा जारी। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के कारण शीतला माता मंदिर तक पहुंचा पानी। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित। भारी बारिश से गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक रहा स्लो। बारिश ने सफर को बनाया मुश्किल। गुरुग्राम में जाम से लोगों को हुई भारी परेशानी। बारिश के चलते सफर हुआ धीमा। लगातार बारिश से गुरुग्राम में नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जाम हुआ। धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। दिल्ली एनसीआर में रुक रुक कर हो रही है बारिश। नोएडा में कई इलाकों में जलभराव। नोएडा में लगातार बारिश का सड़कों पर असर। जलभराव ने बढ़ाया सफर का समय। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। बारिश का ट्रैफिक पर असर पड़ा। बारिश ने रोका दिल्ली का ट्रैफिक। सराय काले खां में आउटर रिंग रोड पर लग रही वाहनों की लंबी कतारें। असम के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आई ओलंपियन लवलीना बोरगोहेन। शिवसागर में प्रभावित परिवारों को बांटी राहत सामग्री। बॉक्सर लवलीना ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की सुनी परेशानियां। मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी बाढ़ प्रभावित शिवसागर में बांटी राहत सामग्री। राहत कर्मियों का बढ़ाया हौसला। असम के बाढ़ प्रभावित जिलों में मोबाइल ऐप आधारित डिजिटल सर्वे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। जोरहाट में सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के हुगली में रूपनारायण नदी का बढ़ा जलस्तर। खानाकुल के बंदर इलाके में बांस और लकड़ी का बना अस्थायी पुल बहा। गुजरात के जामनगर में समरस विद्या सेतु अभियान का शुभारंभ। 500 से ज्यादा बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश। स्कूल ड्रॉपआउट बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। एक महीने तक चलेगा समरस विद्या सेतु अभियान। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर आराम फरमाते हुए दिखे चार शेर। बस में बैठे यात्रियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। 15 अगस्त की तैयारियों के बीच एनएसजी और दिल्ली पुलिस की आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल, शहर भर में आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन की परखी तैयारी। दिल्ली के नेहरू प्लेस, कालकाजी मंदिर सहित प्रमुख सरकारी परिसरों में मॉक ड्रिल, संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में खतरे से निपटने की तैयारी। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पहनी असमिया मेखोला शॉल, तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। 12वीं राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदेश के बेहतरीन हथकरघा बुनकरों को सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध हथकरघा विरासत को मिल रहा है बढ़ावा, उत्पादों को मुहैया कराया जा रहा है मंच। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली। पारंपरिक कपड़ों के साथ एथनिक परिधान, शॉल, स्टोल, बैग और हाथ से बने उत्पाद शामिल। बुनकरों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं पेमा खांडू सरकार। योजनाओं के साथ डिजाइन, इनोवेशन, ब्रांडिंग और बाजार के अवसरों के बारे में दी जा रही है जानकारी। प्रधानमंत्री के नेशनल हैंडलूम डे मनाने की अपील से काजीकुंड के हैंडलूम व्यापारियों में खुशी का माहौल, स्थानीय कारीगरों को समर्थन के साथ कारोबार बढ़ाने की उम्मीद। अनंतनाग के काजीकुंड में अपर बाजार की दुकानों में सजाए गए हैंडलूम उत्पाद, स्थानीय कारीगरों के हुनर के दीवाने हुए खरीदार। भारत की हैंडलूम विरासत को मिलेगा नया बूस्ट, व्यापारियों को उम्मीद, देश ही नहीं दुनिया भर में जगेगी धाक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर लद्दाख में सुनाई दी स्वदेशी की गूंज, जिले के हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग ने पैंगोंग झील के किनारे निकाली तिरंगा यात्रा। समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर लोगों ने स्वदेशी को बढ़ावा देने का संदेश दिया, स्थानीय कारीगर और बुनकरों में जगी अच्छे भविष्य की उम्मीद। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शिवसेना सांसद ज्योति वाघमारे की पीएम मोदी को भेंट, सोलापुर का पारंपरिक हथकरघा धवल प्रधानमंत्री को दिया। गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, आज तमिलनाडु और कल पुडुचेरी में रहेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता दिवस से पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में निकाली तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में युवक ने किया कमाल, खुद की मेहनत से रवि टमटा ने बनाई 1 सीट वाली फ्लाइंग कार, आसमान में भरी पहली सफल उड़ान। फरीदकोट में सावन के मेले में निकाली गई महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, हजारों लोगों ने किए दर्शन। करीब 53 वर्षों पुरानी परंपरा के साथ निकाली गई भव्य झंडा शोभा यात्रा, देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने पेश की मनमोहक झांकियां। माता रानी की अति सुंदर और अलौकिक पालकी रही यात्रा का मुख्य आकर्षण, शोभा यात्रा में कई तरह की सुंदर झांकियां, बैंड बाजे और पारंपरिक मलवई गिद्दा ने खींचा सभी का ध्यान। फरीदकोट के ऐतिहासिक किला मुबारक चौक से हुआ महामाई की विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ, शहर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए वापस किला मुबारक पहुंची यात्रा। माता चिंतपूर्णी के दरबार में खुद झंडा ले जाने में असमर्थ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई थी इस यात्रा की शुरुआत, धार्मिक मंडलियों को सौंपे जाते हैं पवित्र झंडे। द्वितीय केदार महामहेश्वर धाम की यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई, सुरक्षा कारणों से रोकी गई है यात्रा। खराब मौसम के कारण लगाई गई है यात्रा पर रोक, कुछ दिन पहले ओफंती नदी में बह गया था, मोरखंडा नदी में बनाया गया लकड़ी का पुल। करनाल में सेना जवानों ने बुलेट बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा, यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी सड़कें। डीएसपी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी देकर किया रवाना, हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुआ यात्रा का आयोजन। इस यात्रा में 150 के करीब जवान शामिल हुए, साथ ही प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती है।
1: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है। सबसे पहली बात तो मन में यही आती है कि क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं और घर की शुभता अशुभता का प्रभाव क्या होता है। देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, उसके अंदर तरंगे पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभ तरंगे बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। और अगर मकान में अशुभता ज्यादा हो गई है तो ऐसे अशुभ मकान में रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। और आपका मकान शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और मकान में थोड़ा ध्यान देने पर आपको मकान की अशुभता महसूस हो सकती है। देखिए, कोई मकान शुभ है या अशुभ है, उसमें बहुत सारी चीजों को आपको देखना होगा। दिशाओं से, डायरेक्शन से, कोई मकान शुभ या अशुभ किस तरीके से होता है। आम तौर पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान आम तौर पर शुभ नहीं माने जाते, लेकिन हर दिशा के मकान, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उनकी अलग अलग शुभता होती है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि अलग अलग दिशाओं के मकान में क्या सावधानियां आपको रखनी हैं। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूरी तरीके से सात्विक रहिए। अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरण पर ध्यान दीजिए। और अगर दक्षिण दिशा का मकान है तो सीलन और गंदगी का विशेष ध्यान दें। यानी अलग अलग दिशा के मकान भी शुभ होते हैं, आपको उस दिशा के अनुसार काम करना होगा और उस दिशा के अनुसार आपको रहना होगा, तो चीजें आपकी बेहतर बनी रहेंगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है घर में सूर्य का प्रकाश, जो घर में बहुत सारी शुभता पैदा करता है। सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह अशुभता पैदा होती है? देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में नहीं आता तो अकारण, बिना वजह के,
बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य बिगड़ने की और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का, अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो शीशे की सहायता से या खिड़की निकलवा के, रोशनदान निकलवा के सुधार करिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। और रोज सुबह पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और दीपक जला करके गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा। देखिए, आपके घर की तरंगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है रंगों का। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है? घर में अगर आप गलत रंग का प्रयोग करते हैं, गड़बड़ रंगों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। गाढ़े रंग जैसे लाल रंग, भूरा रंग, काला रंग अगर आप अपने घर में प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा, लाल, गाढ़ा हरा रंग या काला रंग आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में समस्या देगा। और इसमें भी भूरा रंग अगर आप अपने घर में ज्यादा प्रयोग करें तो जीवन दरिद्रता की तरफ जाएगा। घर में लाइट शेड के हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और घर में जो छत है उसका रंग अगर हमेशा सफेद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग या क्रीम कलर का प्रयोग करना सबसे बेहतर होगा। देखिए, घर के जो लोग हैं और घर में घटने वाली जो घटनाएं हैं, इनसे भी जीवन में अशुभता पैदा होती है। घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हों या बुरी आदत के लोग हैं, घर में क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, नशा ये सब होता है तो घर अशुभ होगा। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग किया जाता हो, घर में गलत तरीके से अर्जित पैसा आता हो तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। गलत और बुरे काम बिल्कुल मत करिए, वरना उसका प्रभाव आपके घर पर आएगा।
घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति करने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत तरीके से धन ना कमाएं और एक महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करें तो घर की अशुभता कम होगी और घर में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र या भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आप अपनी संतान को लेकर के परेशान हैं, संतान के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं और संतान के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। अगर आपका छोटा बच्चा है या घर में कोई छोटा बच्चा है और वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो क्या करेंगे? बच्चा जब भी नहाए उसके नहाने के पानी में गुलाब जल एक ढक्कन दो ढक्कन डालिएगा। बच्चे के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को सवेरे पहनाइएगा और बच्चे की माता बच्चे के नाम से रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें, छोटा बच्चा बार बार बीमार होता हो तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: दिल्ली NCR में मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, लगातार हो रही है झमाझम बारिश, लुढ़का पारा, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। बारिश के बीच पवित्र कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का जोश आए, सहारनपुर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, कांवड़ रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी से प्रशासन की नजर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई 14 फीट ऊंची लाल बागचा राजा की प्रतिमा। 15 अगस्त की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली में NSG की मेगा मॉक ड्रिल, शहर भर में आतंकी हमले के खिलाफ क्विक एक्शन की परखी तैयारी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में युवक ने किया कमाल, खुद की मेहनत से रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, आसमान में भरी पहली सफल उड़ान।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मौत।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे पर। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
4: जी नमस्कार।
3: तो आज के शो में हम बात करने वाले हैं आपके घर की। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि उनके घर में शुभता है, तो कई लोग ऐसे मानते हैं कि उनके घर में अशुभता है। अब पंडित जी से जानेंगे कि असल में क्या सच है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
4: अगर आप अपनी संतान को लेकर के परेशान हैं, संतान के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं और संतान के लिए प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से कल्याण होगा।
3: तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जान लेंगे कि 8 अगस्त 2026 यानी शनिवार का पंचांग क्या है।
4: दिनांक 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:59 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 4:51 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: तो चलिए आते हैं अपने सबसे पहले प्रश्न पर, पंडित जी से जान लेते हैं कि क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं और क्या इनके ऊपर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है लोगों के।
4: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है। सबसे पहली बात तो मन में यही आती है कि क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं, और घर की शुभता अशुभता का प्रभाव क्या होता है। देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, उसके अंदर तरंगे पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभ तरंगे बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। और अगर मकान में अशुभता ज्यादा हो गई है तो ऐसे अशुभ मकान में रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। और आपका मकान शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और मकान में थोड़ा ध्यान देने पर आपको मकान की अशुभता महसूस हो सकती है।
3: और चलिए आगे बढ़ने से पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
4: मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, करियर की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
3: चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं कि दिशाओं से कैसे मकान शुभ है या अशुभ ये जाना जा सकता है।
4: देखिए, कोई मकान शुभ है या अशुभ है उसमें बहुत सारी चीजों को आपको देखना होगा। दिशाओं से, डायरेक्शन से कोई मकान शुभ या अशुभ किस तरीके से होता है। आम तौर पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान आम तौर पर शुभ नहीं माने जाते, लेकिन हर दिशा के मकान पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उनकी अलग अलग शुभता होती है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि अलग अलग दिशाओं के मकान में क्या सावधानियां आपको रखनी हैं। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूरी तरीके से सात्विक रहिए। अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरण पर ध्यान दीजिए। और अगर दक्षिण दिशा का मकान है तो सीलन और गंदगी का विशेष ध्यान दें। यानी अलग अलग दिशा के मकान भी शुभ होते हैं, आपको उस दिशा के अनुसार काम करना होगा और उस दिशा के अनुसार आपको रहना होगा तो चीजें आपकी बेहतर बनी रहेंगी।
3: और चलिए अब पंडित जी से जान लेंगे कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
4: कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए वक्त हो चला है आज की आपके पहले सवाल का। पंडित जी, आज का पहला सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
4: जी, आज का पहला प्रश्न राजेंद्र प्रसाद जायसवाल जी ने हमें लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं। 29 जनवरी 1976 का जन्म है, 10:50 सवेरे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं पहले व्यापार करता था और मेरा व्यापार 2024 में बंद हो गया। तब से मैं आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं और मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, तो मेरे जीवन में सुधार कब तक होगा? राजेंद्र जी आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और धनु राशि की। आपकी कुंडली में जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से फरवरी 2027 तक आपको इंतजार करना होगा। फरवरी 2027 के बाद आपकी स्थितियां बेहतर होंगी। अगर आप दवाई का, खाने पीने की चीजों का या पानी का, ड्राई क्लीनिंग वगैरह का व्यापार करें तो इसमें आप सफल होंगे, उस दिशा में आपको विचार करना चाहिए। भविष्य में कर्जा भी उतार पाएंगे और जीवन को भी रास्ते पर ला पाएंगे। फरवरी 2027 के बाद ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। एक माणिक्य बनवा के पहन लें, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
3: और चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। पंडित जी, दूसरा सवाल आज का किसका रहने वाला है?
4: जी, अगला प्रश्न ध्रुव सैनी ने हमें लिखा है, हरिद्वार से लिखते हैं। 29 अगस्त 2005 का जन्म है। 11:35 प्रातः रुड़की, हरिद्वार, उत्तराखंड। ये कह रहे हैं कि मैं अभी बीकॉम फाइनल कर रहा हूं, आगे मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन सा करियर मेरे लिए बेहतर होगा। ध्रुव, आपको मैं सलाह दूंगा कि आप बीकॉम के बाद कंप्यूटर की कोई पढ़ाई करिए और साथ में ग्रेजुएशन के आधार पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2029 और 30 में आपको सफलता मिलने की संभावना बन रही है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
3: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि अगर सूर्य का प्रकाश की कमी आपके घर में होती है तो किस तरह से अशुभता पैदा होती है।
4: सबसे महत्वपूर्ण होता है घर में सूर्य का प्रकाश, जो घर में बहुत सारी शुभता पैदा करता है। सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह अशुभता पैदा होती है? देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में नहीं आता तो अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य बिगड़ने की और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का, अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो शीशे की सहायता से या खिड़की निकलवा के, रोशनदान निकलवा के सुधार करिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए और रोज सुबह पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और दीपक जला करके गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा।
3: इसी के साथ पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि घरों के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है।
4: देखिए, आपके घर की तरंगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है रंगों का। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है? घर में अगर आप गलत रंग का प्रयोग करते हैं, गड़बड़ रंगों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। गाढ़े रंग जैसे लाल रंग, भूरा रंग, काला रंग अगर आप अपने घर में प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा, लाल, गाढ़ा हरा रंग या काला रंग आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में समस्या देगा। और इसमें भी भूरा रंग अगर आप अपने घर में ज्यादा प्रयोग करें तो जीवन दरिद्रता की तरफ जाएगा। घर में लाइट शेड के हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए और घर में जो छत है उसका रंग अगर हमेशा सफेद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग या क्रीम कलर का प्रयोग करना सबसे बेहतर होगा।
3: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल क्या है।
4: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पंडित जी से जान लेंगे कि घर के लोगों और घटनाओं से किस तरह से अशुभता पैदा हो सकती है।
4: देखिए, घर के जो लोग हैं और घर में घटने वाली जो घटनाएं हैं, इनसे भी जीवन में अशुभता पैदा होती है। घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हों या बुरी आदत के लोग हैं, घर में क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, नशा, ये सब होता है, तो घर अशुभ होगा। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों, तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग किया जाता हो, घर में गलत तरीके से अर्जित पैसा आता हो, तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है, तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। गलत और बुरे काम बिल्कुल मत करिए, वरना उसका प्रभाव आपके घर पर आएगा। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति करने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत

0: चित्र या भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें, शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका तीसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है। अगर आप भी पंडित जी तक अपना कोई प्रश्न पहुंचाना चाहते हैं तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, अपनी दुविधा पंडित जी के सामने रख सकते हैं, आपके जवाब जरूर मिलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंडित जी, आज का तीसरा सवाल किसका रहने वाला है
0: जी?

0: जय श्रीवास्तव जी ने लिखा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लिखते हैं, 28 दिसंबर 1959 का जन्म है, 10 बजे रात को जन्म स्थान है हरदोई उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है और मन में हमेशा डर या भय लगा रहता है। संजय जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की, महादशा राहु की और अंतर दशा शुक्र की चल रही है। देखिए, आपको डायबिटीज, किडनी, हड्डियों और नसों की समस्या का ध्यान देना होगा और आपकी ज्यादातर समस्याएं मानसिक दिखाई दे रही हैं। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके साथ ज्यादा बन रही है। रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः एक माणिक्य धारण करें। रोज सुबह और शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हर शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें। अगर आप ये उपाय करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: और चलिए, वक्त हो चला है आज का चौथा और अंतिम सवाल लेने का। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेना चाहेंगे?
0: जी,

0: चंकी शर्मा ने हमें लिखा है, कोलकाता पश्चिम बंगाल से लिखते हैं, 27 जून 1989 का जन्म है, 10:44 रात को कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। चंकी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी साल 2027 के शुरुआती समय में दिख रही है, जनवरी 2027 से जून 2027 के बीच में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। विवाह जब भी करें, अगर एक बार कुंडली मिला लें, कुंडली मिला करके अगर विवाह करें तो परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। फिलहाल एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने, रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन 8 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे, बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी से आपके बारे में जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 8 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी, करियर वैसे तो ठीक चलेगा, लेकिन किसी तरह का रिस्क या जोखिम मत लीजिएगा। अगर अविवाहित हैं तो साल के अंत में आपके विवाह होने के योग बनेंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: और चलिए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अब वक्त हो चला है पंडित जी से जान लेने का कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि शंख बजाने का सबसे उचित समय कौन सा है। देखिए, शंख सुबह और शाम पूजा के बाद बजाना चाहिए। संध्या तक शंख बजा सकते हैं, रात के समय में शंख बजाना उचित नहीं होता।
1: तो जिज्ञासा के बारे में तो आपने जान लिया, अब जान लेते हैं कि 8 अगस्त 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर क्या होगा।
0: दिनांक 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में जितना संभव हो शनि मंत्र का जप करिएगा। आपकी रोजगार से संबंधित समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट कर लें, 8 अगस्त शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है पंडित जी से जानने का कि आज की गुडलक राशि क्या है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह का मंत्र जप करें जिससे उन्हें लाभ हो। आज की गुडलक राशि है कुंभ। आपके लिए चंद्रमा का मंत्र जपना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, रोज शाम को या रोज रात में अगर आप चंद्र ग्रह का मंत्र जपें तो उत्तम रहेगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपका संघर्ष कम होगा।
1: और चलिए अब कार्यक्रम के अंत में आपके लिए पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी अगर आपका छोटा बच्चा है या घर में कोई छोटा बच्चा है और वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो क्या करेंगे? बच्चा जब भी नहाए उसके नहाने के पानी में गुलाब जल एक ढक्कन दो ढक्कन डालिएगा। बच्चे के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को सवेरे पहनाइएगा। और बच्चे की माता बच्चे के नाम से रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें, छोटा बच्चा बार बार बीमार होता हो तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा।
1: और इसी के साथ गुड लक टुडे में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जिनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे और कुछ भावुक कर जाएंगे।
2: मोबाइल से दूर खेल के मैदान में बच्चों का अनोखा बैलेंस टेस्ट। सिर के बीच गेंद रखकर फिनिश लाइन पार करनी है, जहां संतुलन, धैर्य और टीम वर्क तीनों की परीक्षा हो रही है। किसी की गेंद गिर गई तो किसी ने आसानी से लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन खास बात ये रही कि हार मानने के बजाय हर बच्चे ने दोबारा कोशिश की। खेल खेल में ये बच्चे एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं कि जीत से ज्यादा जरूरी है लगातार प्रयास करते रहना।

हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है।

0: एक लाइन, लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल। एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है, वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छुपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि नन्हे बच्चों का कमाल का हुनर है। तीनों बच्चे जिस शानदार संतुलन के साथ खड़े हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी छोटी उम्र में इतना बेहतरीन बैलेंस, मानो लंबे अभ्यास का नतीजा हो। वीडियो देखने वाले भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे। बच्चों ने साबित कर दिया कि लगन, अभ्यास और आत्मविश्वास हो तो छोटी उम्र भी बड़े हुनर की पहचान बन सकती है। खेल के साथ साथ योग भी, और वो भी पूरे उत्साह के साथ। स्कूल में बच्चे बिना किसी दबाव के गोले में बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। खेल खेल में किया गया योग उनके शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलन सुधारता है और मन को एकाग्र रखने में मदद करता है। यही वजह है कि छोटी उम्र से ही योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुस्कुराते चेहरों के साथ योग करते ये बच्चे स्वस्थ और अनुशासित भविष्य की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हैं।
1: अगले महीने शुरू होने वाले गणेशोत्सव को लेकर भी जगह जगह पर तैयारियां देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के पाली में एक दंपत्ति बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटा है। पति पत्नी मिलकर यहां गोबर से इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाते हैं, जिनकी मांग विदेशों तक है।

0: गणेश उत्सव को लेकर मूर्तियों को आकार देने वाले कलाकार अपने काम में जुटे हुए हैं। राजस्थान के पाली में एक दंपति भी गणपति प्रतिमाओं को आकार देने में जुटा है। खास बात यह है कि पति पत्नी मिलकर इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार करते हैं। ये गाय के गोबर से इन्हें बनाते हैं। इसके लिए 7 महीने पहले से ये गौशाले से गोबर लाकर उसे सुखाने लगते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं और उसके बाद पेस्ट बनाकर अलग अलग आकार के डाई में उस पेस्ट को डालकर प्रतिमा तैयार करते हैं।
1: हम लोग गोबर लाते हैं, जो गीला गोबर होता है, ताजा गोबर मतलब, फिर हम लोग उनको सुखाते हैं गोबर को। फिर सुखाने के बाद में जैसे ही वो प्रॉपर ढंग से पूरा सूख जाता है, उसके बाद में हम उसको मतलब पाउडर फॉर्म में करते हैं, पीसते हैं, मतलब कम से कम 100 GM मतलब ऐसा बारीक करते हैं ताकि मूर्ति में वो रेसे नजर नहीं आए। फिर सुखाने के बाद में, पाउडर बनने के बाद में, हम लोग उसमें प्राकृतिक कुछ चीजें हैं जो बाउंडिंग का काम करती है, वो हम डालते हैं, जैसे प्रीमिक्स हो गया, मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म वो डालते हैं। फिर उसके बाद में हम उसका मिश्रण करते हैं।
0: गोबर को गूंथकर डाई से प्रतिमा को आकार देने के बाद उसे बाहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है। फिर मनोहर लाल और उनकी पत्नी दीपिका उसे इको फ्रेंडली रंग से सजाते हैं। बहुत ही बारीकी से मुकुट, सिंहासन से लेकर आंख, दांत और जनेऊ सब उकेरते हैं। गोबर से प्रतिमाओं को बनाने के पीछे इस दंपत्ति का अहम मकसद पर्यावरण की रक्षा है। इन इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाओं की डिमांड भी खूब है, यहाँ तक कि ये प्रतिमाएं विदेश तक जाती हैं।
1: पर इस मूर्ति में पर्यावरण में जीव जंतु को किसी को कोई नुकसान नहीं है, और एक आप मूर्ति लेके जाओ घर पे, बिठाओ 9 दिन इनकी पूजा करो, और उसके बाद में आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। उसको आप हाथ से मेल कर दो थोड़ा सा, और उसको आप अपने गमलों में, पौधों में डाल दो, तो वो फर्टिलाइजर का भी काम करेगी।
2: तो मैंने इको फ्रेंडली गणपति जी बनाए, तो ये गणपति जी अपने प्रदूषण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये मूर्तियां बाहर भी जाती है, और पिछले साल भी मैंने पाली में बहुत अच्छी की तरह से, मैंने एक दो तरह दुकानें लगाई थी तो मेरे बहुत अच्छी तरह से सेल हुई है।
0: मनोहर लाल और उनकी पत्नी पूरे भक्तिभाव से गणेश की प्रतिमा बनाते हैं। भजन बजाते हुए अपने मन में गणपति की स्थापना कर ये प्रतिमा तैयार करते हैं, यानी भक्ति के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: अगली खबर गुजरात के मोरबी से है, जहां से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। खबर यह है कि मोरबी के विरपाड़ा गांव के एक खेत में मौजूद कुआं पूरे इलाके में बीते कुछ दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। कुएं का पानी हिलने से लोगों में भूकंप का डर फैल गया है। उन्हें ये लगा है कि अभी हलचल मची हुई है, भूकंपीय गतिविधि से ये हलचल जुड़ी हो सकती है, लेकिन जिला अधिकारियों ने भूकंप से जुड़ी आशंका को खारिज किया है और शुरुआती जांच के आधार पर दावा किया है कि ये एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

0: पानी से लबालब भरा कुआं और कुएं में मौजूद पानी का जोर जोर से हिलना इन दिनों मोरबी के वीर पाड़रा गांव के लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से ये खबर इलाके में आग की तरह फैली है, लोग दूर दूर से कुएं के पानी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। कुएं के आसपास लोगों की ये भीड़ इसी वजह से लगी है। बताया गया कि पहली बार रविवार और सोमवार को कुएं का पानी हिलता हुआ देखा गया था, फिर मंगलवार को पानी पूरी तरह से हिलना बंद हो गया, लेकिन बुधवार और गुरुवार को फिर से कुएं का पानी हिलने लगा, जिससे स्थानीय लोगों में भूकंप का डर फैल गया। उन्हें लगा कि यह हलचल भूकंपीय गतिविधि से जुड़ी हो सकती है।
1: मैं वहाँ का तालुका सदस्य हूँ और ये गांव हमारे में आता है, तो हमने गांव वालों ने दो दिन पहले वहाँ पर बताया कि सदस्य जी ऐसे देखो तो इधर क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग गांव वाले सब लोगों देखने के लिए कि इकट्ठा हुए इधर होते हैं। और हमने गांव वालों ने बताया कि दो दिन पहले यहाँ से ज़्यादा पानी हिल रहा था और बीच में रुक गया और अभी आज के दिन वो ज़्यादा फिर हिलने लगा है।
2: ये कुएं का पानी जो हिल रहा है वो हमारे गांव में ये जाहिद भाई ने देखा था, तो उसने वीडियो बना के फिर गांव में सबको भेजा और फ़ोन किया और मुझे भी बुलाया और गांव में मैंने सब लोगों को बोला, फिर इधर आए तो देखा तो देखते ही चकित हो गए, क्योंकि दो दिन पहले भी ऐसा ही हो रहा था और आज फिर से भी ऐसा ही होने लगा है और तब से लेके आज अभी तक रुका ही नहीं। मेरे पीछे ही हुआ है, आप देख सकते हो।
3: ऐसा आपने कभी पहले देखा हुआ?
2: नहीं, आज से पहले कभी नहीं देखा है।
0: कुएं को लेकर इलाके में अटकलों का बाजार गर्म हुआ तो प्रशासन फौरन हरकत में आया और जांच के लिए एक्सपर्ट की टीम मौके पर भेजी गई, जिसमें शामिल भू वैज्ञानिक जेएस बढ़ेर ने साफ किया कि यह घटना किसी भी प्रकार की भूकंपीय गतिविधि से जुड़ी हुई नहीं है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारी बारिश के कारण ग्राउंड वाटर तेजी से रिचार्ज हुआ है, इस दौरान जमीन के नीचे मौजूद चट्टानों की दरारों में फंसी हवा बाहर निकल रही है, जिससे कुएं के पानी में लगातार हलचल और लहरें पैदा हो रही हैं। जेएस वढ़ेर ने यह भी बताया कि इस मामले में गांधीनगर में मौजूद इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च से भी बात की गई है, जिसमें ISR ने भूकंप से जुड़ी अटकलों को खारिज किया है।
4: इस बारे में हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ सिस्मोलॉजिकल रिसर्च से परामर्श किया था, तो यहाँ पे कोई सिस्मिक एक्टिविटी या फिर एक्टिव फॉल्ट वगैरह कुछ नहीं है। प्राइमरी ये लग रहा है कि यहाँ पे हैवी रेनफॉल की वजह से जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है उसकी वजह से जो रॉक में से पोर स्पेसिस आते हैं इसमें से एयर रिलीज होने की वजह से एक्टिविटी दिखने को मिल रही है। ये हैवी रेनफॉल में नॉर्मल है।
5: अभी लोगों में काफ़ी सारी वो भय का माहौल है कि अभी कुछ भूकंप आने वाला है या कुछ और है, तो ये इसके बारे में लोगों को क्या कहेंगे?
4: नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों ने सिस्मोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से परामर्श किया है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से या कोई एक्टिव फॉल्ट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है।
0: मोरबी के कलेक्टर स्वप्निल खरे ने इस घटना के बारे में सरकार को जानकारी दे दी है और बताया है कि सरकार के निर्देश पर गांधीनगर से विशेषज्ञों की एक टीम मौके पर पहुंचकर वैज्ञानिक तरीके से पूरे मामले की जांच करेगी ताकि वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके।
6: इस बारे में ज़्यादा तपास के लिए हमने गुजरात जो ग्राउंड वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्हें भी हम जान कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में वो भी विजिट करेंगे और उसके बाद हमें एक डिटेल रिपोर्ट इस बारे में सबमिट करेंगे।
0: इस अनोखी घटना ने ग्रामीणों के साथ साथ राहगीरों और आसपास से गुजरने वाले लोगों को भी हैरान कर दिया है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है।
6: प्राथमिक अभी यही हमारे ध्यान पे आया है, जो लोगों के मन में शंका थी कि इसमें कुछ सीज़मिक एक्टिविटी है या रिलेटेड ये घटना है, उसके लिए हमने गुजरात में जहाँ सीज़मिक एक्टिविटी मेजर होती है वहाँ भी पाया था। पिछले 5-10 दिन में कोई भी अनयूजुअल घटना अभी तक उनके ध्यान पे आई नहीं है, इसलिए लोगों को किसी भी तरह की अफवाह से या किसी भी तरह की ऐसी जो डर फैलाने वाली न्यूज़ है उसे दूर रहना चाहिए।
0: ये पहली बार नहीं है जब किसी कुएं या जल स्रोत में ऐसी रहस्यमय हलचल देखने को मिली हो। इससे पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में भी इसी तरह कुओं और तालाबों में लहरें उठने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। शुरुआती दौर में इन्हें चमत्कार बताया गया, लेकिन बाद में वैज्ञानिक जांच में इनके पीछे प्राकृतिक कारण पाए गए, जैसा कि मोरबी की घटना में भी दावा किया जा रहा है। मोरबी से राजेश अंबालिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: और अब आप दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे डेनिम शो के आयोजन की करेंगे, जहां पर डेनिम ट्रेंड्स के साथ साथ AI और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के जरिए कपड़ा उद्योग को नई दिशा देने वाली मशीनें भी मौजूद हैं। इस डेनिम प्रदर्शनी में देश विदेश की 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से ज्यादा ब्रांड एक ही छत के नीचे जुटे हुए हैं।
0: दिल्ली के भारत मंडपम में डेनिम शो चल रहा है, जहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। गार्टेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया के इस प्रदर्शनी में देश विदेश की 190 से ज्यादा कंपनियां और 700 से ज्यादा ब्रांड एक ही छत के नीचे अपने उत्पादों को लेकर जुटे हैं। इस खास प्रदर्शनी में गारमेंट मशीनरी, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, नीटिंग और डेनिम सेक्टर की अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस एक्सपो में करीब 1200 प्रोडक्ट्स और 100 से ज्यादा नए प्रोडक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ध्यान जेन जी और जेन अल्फा पर दिया जा रहा है।
8: काफी ब्रांड्स जेन जी और जेन अल्फा को लेके काफी फिट्स और बेसिकली फिट्स में खेल रहे हैं। अभी एक WGSA ने प्रेजेंटेशन भी दिया था, जिसमें जेन जी और जेन अल्फा को लेके उन्होंने किस तरह ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, किस तरह जेन जी जेन अल्फा की रिक्वायरमेंट है, पैच वर्क, बैगी फिट्स, लूज जीन्स, उन सबको लेके कम्फर्ट वेयर जो एक कैजुअल है, आजकल स्ट्रीट वेयर का बहुत ट्रेंड है जेन जी जेन अल्फा में, उनको ध्यान रखते हुए उन्होंने सारी अपनी लाइन्स रेडी करी है।
0: देश की युवा पीढ़ी और फैशन को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं। कंपनियों के मुताबिक अब युवाओं की पहली पसंद बैगी फिट, रिलैक्स्ड फिट, कार्गो स्टाइल, वाइड लेग और सस्टेनेबल डेनिम बन रही है। रिसाइकल्ड फैब्रिक और कम पानी में तैयार होने वाली डेनिम की मांग भी लगातार बढ़ रही है।
9: ये जो जीन्स है इसका स्टाइलिंग देख लीजिए, ये पूरा लूज फिट है, ये कम्फर्ट है, ये रिजिड है, तो इस तरीके के पैटर्न में इस तरह के जीन्स आजकल के जेंजीज को बहुत पसंद है, और इस वजह से हमने एक सेल का साइकिल वापस रिवाइव होते देखा हुआ है। एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जिस तरह से पूरा घूमता है, अब हम देख रहे हैं कि एक लूज फिट, उसमें अलग अलग फाइबर्स जैसे पॉलिस्टर हो गया, ऑल क्लाइमा हो गया, यू नो, ये सब चीज़ें काफ़ी मार्केट में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं।
0: इस प्रदर्शनी का एक बड़ा आकर्षण AI वस्त्र है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसा समाधान है जिसमें कपड़े ट्राई करने के लिए आपको ट्रायल रूम जाने की जरूरत नहीं है। इसमें मशीन आपकी सिर्फ एक फोटो क्लिक करती है और उसी तस्वीर पर कुछ ही सेकंड में सैकड़ों अलग अलग ड्रेस, रंग और डिजाइन वर्चुअली दिखा देती है। इससे ग्राहकों के लिए खरीदारी आसान हो जाती है और फैशन ब्रांड्स को भी अपने उत्पाद बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने का विकल्प मिलता है।
10: डेनिम शो में एक बहुत ही शानदार चीज़ हमें मिली है। कहीं भी हम जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं कपड़ों में, तो उसे बार बार हम लेकर ट्रायल रूम की तरफ भागते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं हम पे अच्छा लग रहा है फिर नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पर एक शानदार AI सॉल्यूशन लेकर आए हैं, AI वस्त्रा इनका नाम है, और इसमें कुछ नहीं करना, ये बड़ी सी स्क्रीन है, यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, इसके सामने आपको खड़े होना है, ये आपकी एक फ़ोटो क्लिक करेगा, उसके बाद आप डिज़ाइन चूज़ करते जाइए, आप पर वो डिज़ाइन कैसा लग रहा है, वो कपड़ा कैसा लग रहा है, सब कुछ ये बताता चला है।
0: टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अब सस्टेनेबिलिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। प्रदर्शनी में ऐसी आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन किया गया है जो कम पानी, कम बिजली और कम संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए अधिक और बेहतर गुणवत्ता के साथ उत्पादन करने में सक्षम है। इन तकनीकों का उद्देश्य उत्पादन लागत कम करने के साथ साथ पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को भी घटाना है।
11: आज की तारीख के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैप्टर गारमेंट एक्सपोर्ट हाउसेस और जितने भी वॉशिंग एरियाज हैं उसके अंदर उभर के आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जिसके लिए सबको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम लोगों ने पिछले 5 साल में काफ़ी तरक्की करी है इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी।
0: डेनिम के बदलते ट्रेंड, AI आधारित वर्चुअल ट्रायल और पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी, ये संकेत दे रही है कि भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब सिर्फ उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये इंडस्ट्री इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी के दम पर वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत पहचान बनाएगी।
10: पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे और जो चीजें हम उससे ले रहे हैं उसको सही से इस्तेमाल करें, चाहे वो ग्राउंड वाटर हो या फिर दूसरी चीजें हो। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीनें आज देखने को मिल रही हैं वो काफ़ी हद तक ऐसी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।
12: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
13: जाए। LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
12: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
15: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
16: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
15: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।

0: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे अच्छी,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
4: दिल्ली NCR में मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, लगातार हो रही है झमाझम बारिश, लुढ़का पारा पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। बारिश के बीच पवित्र कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का जोश हाई, सहारनपुर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, कांवड़ रूट पर ड्रोन और CCTV से प्रशासन की नजर। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई 14 फीट ऊंची लाल बागचा राजा की प्रतिमा। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलाया जा रहा है जांच अभियान, 16 अगस्त को पुंछ से शुरू होगी यात्रा। 15 अगस्त की तैयारियों के बीच राजधानी दिल्ली में NSG की मेगा मॉक ड्रिल, शहर भर में आतंकी हमले के खिलाफ क्विक एक्शन की परखी तैयारी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें,
4: सावन के महीने में शिव भक्ति से सभी सराबोर, कांवड़ यात्रा में हर उम्र के श्रद्धालु शामिल। चित्रकूट में भी दिख रहे कांवड़ यात्रा के अनूठे रंग, भगवान शिव की सुंदर पालकी के साथ बम भोले का उद्घोष। यूपी के बांदा में भी नजर आ रहा कांवड़ यात्रा का उत्साह, भगवान श्री राम की तपोस्थली से जल लाकर भगवान शिव को करेंगे अर्पित। बुलडोजर से की गई कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, फलहार बांटते और यहां पर कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए लोग। बांदा के बम्बेश्वर शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ 500 कांवड़ियों का जत्था, बाबा भोले के अभिषेक के लिए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी ले जा रहे हैं जल। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के बिजनौर में सभी स्कूल आज बंद, जिला अधिकारी के निर्देश पर BSA ने जारी किया आदेश। सहारनपुर में अनोखी हाईटेक DJ नाइट बनी कांवड़ियों का सबसे बड़ा आकर्षण, भोले के भजनों पर झूमते हुए नजर आए शिव भक्त। यात्रा की थकान को भुलाने के लिए आयोजित की जा रही है ये अनोखी पूर्ण नाइट, तो वहीं DJ पर बजाए जाते हैं केवल शिव भजन, जिन पर पूरे उत्साह के साथ झूमते हुए नजर आते हैं कांवड़िए। मुजफ्फरनगर में अलग अलग शिव भक्तों की टोलियों के बीच नजर आया आंखों पर पट्टी बांधकर कांवड़ यात्रा करता हुआ भक्त, गौ माता की रक्षा का संदेश लिए यात्रा कर रहे हैं सुनील। सुनील ने 4 अगस्त की रात को गंगा जल उठाने के साथ ही अपनी आंखों पर बांध ली थी पट्टी, जिसे वो 11 अगस्त को शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करने तक नहीं खोलेंगे। मुजफ्फरनगर शिव चौक पर दिखा भोले का रौद्र रूप, अघोरी तांडव और शिव बारात ने श्रद्धालुओं का किया मंत्रमुग्ध। हापुड़ की अनोखी कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, हरिओम चिंगारी की थीम, कांवड़ देखने के लिए उमड़ी भीड़। कांवड़ में दिखा शिव का अघोर स्वरूप, भूत प्रेत शिवगण और भोले की बारात का चित्रण, आग उगलते कलाकारों ने बढ़ाया रोमांच। डमरू की गूंज से गूंज उठा शिव चौक, हर हर महादेव के जयकारों से माहौल भक्तिमय हुआ, भव्य लाइटिंग और शानदार झांकी ने खींचा सभी का ध्यान। अघोरी विश्व भक्तों का अनोखा प्रदर्शन, नरमुंड माला और तांडव ने बनाया खास नजारा, रंग बिरंगी कांवड़ों ने मोहा मन। सहारनपुर में कांवड़ियों पर बरसे फूल, पुलिस ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया। फूलों की बारिश के बीच दिखा भक्तिमय माहौल, पुलिस ने पेश की सेवा की मिसाल। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बन रही है एसडीआरएफ, कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा जा रहा है खास ध्यान। कांवड़ मेले में एसडीआरएफ की 8 टीमें तैनात, सुरक्षा के लिए संवेदनशील घाटों पर निगरानी। ड्रोन से कांवड़ मेला क्षेत्र की निगरानी, आपदा में भी मददगार साबित होगा ड्रोन, श्रद्धालुओं को पानी और फल बांट रही है एसडीआरएफ। समस्तीपुर में आज सावन महोत्सव, महिलाओं ने गीत संगीत पर जमकर नृत्य किया, हरे रंग में सजी महिलाओं ने मनाया सावन। मेहंदी झूले और गीतों से छाया उत्साह, सावन के गीतों पर झूमी सुहागनी, भोलेनाथ से खुशहाली की कामना। महिलाओं के डांस ने बांधा समा, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र, छाता लेकर महिलाओं ने किया फैशन शो। सावन की थीम पर दिखी अनोखी प्रस्तुति, झूलों और कजरी गीतों से गूंजा महोत्सव, सावन मनाओ उमंग और उत्सव का पर्व। सावन महोत्सव में बांटी गई सुहाग की सामग्री, मेहंदी और हरियाली ने बढ़ाई सावन की रौनक, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई महिलाएं। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन पूजन किए। पारंपरिक रूप से बाबा महाकाल का पूजन कर सीएम यादव ने लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों के कल्याण सुख और समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई लाल बाग चौराजा की प्रतिमा। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ 14 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का स्वागत, कोल्हापुर का राजा के दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग। मंडल की ओर से भव्य तरीके से की गई बापा के आगमन समारोह की तैयारी, पारंपरिक ढोल ताशों की गूंज, आकर्षक रोशनी और भक्तिमय माहौल में किया गया गणराय का स्वागत। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के जन्मोत्सव पर दियों की भव्य रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेंपल, श्रद्धा और भक्ति का दिखा अद्भुत नजारा। हरमंदिर साहिब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रोशनी और मिट्टी के दियों ने बढ़ाई स्वर्ण मंदिर की रौनक। गुजरात के जामनगर में समरस विद्या सेतु अभियान का शुभारंभ, 500 से ज्यादा बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश दिया गया। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास, एक महीने तक चलेगा समरस विद्या सेतु अभियान। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर आराम फरमाते हुए दिखाई दिए 4 शेर, बस में बैठे हुए यात्रियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि, समारोह में 3036 छात्रों को डिग्री दी जाएगी जिन्हें 587 पीएचडी स्कॉलर्स शामिल होंगे। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में पीएम एआई सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का करेंगे शुभारंभ, पीएम मोदी आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस में स्थापित परम प्रज्ञा सुविधा का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी मेधावी छात्रों को प्रदान करेंगे आईआईटी दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान, दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति गोल्ड मेडल, डायरेक्टर गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे पीएम। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भी सुरक्षा बल सतर्क, आने जाने वाले लोगों और वाहनों की जांच तेज। 15 अगस्त की तैयारियों के बीच एनएसजी और दिल्ली पुलिस की आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल, शहर भर में आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन की परखी तैयारी। वनडे क्रिकेट में हुआ ऐतिहासिक मुकाम, स्कॉटलैंड बनाम कनाडा का मैच बना 5000वां ओडीआई। कनाडा को 9 रन से हराकर स्कॉटलैंड ने जीता ऐतिहासिक 5000वां वनडे मैच, तो वहीं फेनली मैकार्थी ने लगाया शतक। भारत श्रीलंका टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का फैसला आया, सामने मैच में दर्शकों को फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गोल में खेला जाएगा पहला मैच। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे को जल्द मिलेगा बड़ा सम्मान, यूपी पुलिस उन्हें प्रमोट कर डीएसपी बनाने की कर रही है तैयारी। कश्मीर के पुलवामा जिले के ओवेस याकूब ने किया देश का नाम रोशन, बुल्गेरिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ब्रेव सीएफ 107 प्रतियोगिता में शानदार जीत दर्ज की। दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर फिलहाल रहेगा जारी, मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। यूपी बिहार समेत 20 राज्यों में बरसेंगे बादल, तेज हवाओं का दौर रहेगा जारी। गुरुग्राम में मूसलाधार बारिश के कारण शीतला माता मंदिर तक पहुंचा पानी, आवागमन पूरी तरह से प्रभावित। भारी बारिश से गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैफिक रहा स्लो, बारिश ने सफर को बनाया मुश्किल। गुरुग्राम में जाम से लोगों को हुई भारी परेशानी, बारिश के चलते सफर हुआ धीमा। राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहनी असमिया मेखोला शॉल, तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो। 12वीं राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के मौके पर अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने 3 दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, प्रदेश के बेहतरीन हथकरघा बुनकरों को सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध हथकरघा विरासत को मिल रहा है बढ़ावा, उत्पादों को मुहैया कराया जा रहा है मंच। 3 दिवसीय प्रदर्शनी में अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिली, पारंपरिक कपड़ों के साथ एथनिक परिधान, शॉल, स्टोल, बैग और हाथ से बने उत्पाद शामिल। बुनकरों के कौशल विकास पर भी ध्यान दे रहे हैं पेमा खांडू सरकार, योजनाओं के साथ डिजाइन, इनोवेशन, ब्रांडिंग और बाजार के अवसरों के बारे में दी जा रही है जानकारी। प्रधानमंत्री के नेशनल हैंडलूम डे मनाने की अपील से काजीकुंड के हैंडलूम व्यापारियों में खुशी का माहौल, स्थानीय कारीगरों को समर्थन के साथ कारोबार बढ़ाने की उम्मीद। अनंतनाग के काजीकुंड में अपर बाजार की दुकानों में सजाए गए हैंडलूम उत्पाद, स्थानीय कारीगरों के हुनर के दीवाने हुए खरीदार। भारत की हैंडलूम विरासत को मिलेगा नया बूस्ट, व्यापारियों को उम्मीद, देश ही नहीं दुनिया भर में जगेगी धाक। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर लद्दाख में सुनाई दी स्वदेशी की गूंज, लेह के हथकरघा और हस्तशिल्प विभाग ने पैंगोंग झील के किनारे निकाली तिरंगा यात्रा। समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर लोगों ने स्वदेशी को बढ़ावा देने का संदेश दिया, स्थानीय कारीगर और बुनकरों में जगी अच्छे भविष्य की उम्मीद। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शिवसेना सांसद ज्योति वाघमारे की पीएम मोदी को भेंट, सोलापुर का पारंपरिक हथकरघा धवल प्रधानमंत्री को दिया। गृहमंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, आज तमिलनाडु और कल पुडुचेरी में रहेंगे। यूपी के अंबेडकर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता दिवस से पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में निकाली तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में युवक ने किया कमाल, खुद की मेहनत से रवि टमटा ने बनाई एक सीट वाली फ्लाइंग कार, आसमान में भरी पहली सफल उड़ान। फरीदकोट में सावन के मेले में निकाली गई महामाई की भव्य झंडा शोभा यात्रा, हजारों लोगों ने किए दर्शन। करीब 53 वर्षों पुरानी परंपरा के साथ निकाली गई भव्य झंडा शोभा यात्रा, देश के अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने पेश की मनमोहक झांकियां। माता रानी की अति सुंदर और अलौकिक पालकी रही यात्रा का मुख्य आकर्षण। शोभा यात्रा में कई तरह की सुंदर झांकियां, बैंड बाजे और पारंपरिक मलवई गिद्दा ने खींचा सभी का ध्यान। फरीदकोट के ऐतिहासिक किला मुबारक चौक से हुआ महामाई की विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ। शहर के मुख्य बाजारों से गुजरते हुए वापस किला मुबारक पहुंची यात्रा। माता चिंतपूर्णी के दरबार में खुद झंडा ले जाने में असमर्थ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए की गई थी इस यात्रा की शुरुआत। धार्मिक मंडलियों को सौंपे जाते हैं पवित्र झंडे। द्वितीय केदार महामहेश्वर धाम की यात्रा पर अस्थायी रोक लगाई गई, सुरक्षा कारणों से रोकी गई है यात्रा। खराब मौसम के कारण लगाई गई है यात्रा पर रोक। कुछ दिन पहले ओफंती नदी में बह गया था, मोरखंडा नदी में बनाया गया लकड़ी का पुल। करनाल में सेना जवानों ने बुलेट बाइक पर निकाली तिरंगा यात्रा। यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठी सड़कें। डीएसपी ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी देकर किया रवाना। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हुआ यात्रा का आयोजन। इस यात्रा में 150 के करीब जवान शामिल हुए, साथ ही प्राइमरी स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने भी इस यात्रा में हिस्सा लिया। चाइना के डालियान बीच पर उमड़ी भीड़, भीषण गर्मी से राहत के लिए हजारों लोग समुद्र तट पर पहुंचे। गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों ने बीच का रुख किया। नॉर्थ ईस्ट चाइना में 37 डिग्री तापमान के बीच बना राहत का ठिकाना। डालियान आए पर्यटक भीषण गर्मी से हैरान, समुद्र किनारे गर्मी से राहत की तलाश। लोगों ने पानी में उतरकर गर्मी को मात दी। डालियान बीच बना लोगों का सहारा, धूप से बचने के लिए खास इंतजाम किए गए। लोग जैकेट, मास्क और टोपी पहनकर निकले। डालियान में गर्मी ने बदला मौसम का मिजाज, पर्यटकों की भीड़ ने समुद्र तटों पर बढ़ाई रौनक। चाइना के गुयान में टॉर्च फेस्टिवल की धूम देखने को मिली, पारंपरिक नृत्य और लोक संस्कृति का दिखा अद्भुत रंग। अलाव के चारों ओर थिरके लोग, ताइवानी सैलानी भी हुए शामिल। समुदाय के लोगों ने मनाया टॉर्च फेस्टिवल। आग की पूजा और टॉर्च फेस्टिवल बना आकर्षण का केंद्र। अच्छी फसल और खुशहाली की कामना। चाइना के सिचुआन में धूमधाम से मना टॉर्च फेस्टिवल। हजारों लोगों ने एक साथ मशाले जलाकर मनाया पारंपरिक उत्सव। गीत संगीत और लोक नृत्य के रंग में रंगा दिखा टॉर्च फेस्टिवल। पारंपरिक मशाल जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। 12 अगस्त को दुनिया देखेगी 2026 का पूर्ण सूर्य ग्रहण। स्पेन, ग्रीनलैंड और आइसलैंड समेत कई देशों में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कुछ मिनटों के लिए दिन में ही छा जाएगा अंधेरा, दिखेगा सूर्य का कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का रोमांच, कई देशों में खास तैयारियां। सूर्य की बाहरी परत कोरोना होगी साफ नजर आएगी। पाथ ऑफ टोटैलिटी में दिखेगा सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य। चंद्रमा पूरी तरह ढकेगा सूर्य को, बनेगा दुर्लभ नजारा। आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ लाइट जैसा अद्भुत नजारा। दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिकों में खासा उत्साह। पेरिस में सी नदी पर ई फॉयल सर्फिंग का क्रेज, इलेक्ट्रिक बोट पर हवा में उड़ने जैसा रोमांच। सी नदी बना नए वाटर स्पोर्ट्स का हॉटस्पॉट, स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी उठा रहे हैं लुत्फ। ई फॉयल सर्फिंग ने युवाओं को किया आकर्षित, पानी के ऊपर तैरता बोट बना सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र। 2025 में शुरू हुआ फॉयल इन पेरिस अब सुपरहिट। हीट वेव के बीच सीन नदी में बढ़ी लोगों की भीड़। पेरिस में एडवेंचर स्पोर्ट्स का नया ट्रेंड बना ई फॉयल, सीन नदी में रोमांच और पर्यटन का नया संगम। अमित राय की फिल्म ओ माय डॉग सिनेमा घरों में हुई रिलीज। इस फिल्म में लीड रोल में हैं पंकज त्रिपाठी। हिंदी ड्रामा फिल्म आर्यभट्ट का जीरो भी सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। इसमें हिमांश कोहली, रवि किशन, सोनाली सहगल, शिल्पा शिंदे जैसे स्टार्स शामिल हैं। आर माधवन की फिल्म जीडीएन रिलीज। जीडी नायडू की भूमिका में दिखेंगे माधवन। फिल्म में प्रियामणि, जयराम और सत्यराज जैसे स्टार्स। सिनेमा घरों में धूम मचाने के बाद ओटीटी पर रिलीज मैं वापस आऊंगा, नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम दिलजीत, वेदांग रैना, शर्वरी वाघ और नसीरुद्दीन शाह स्टारर फिल्म। जेबी शेरगिल और सिद्धार्थ जैसे कलाकारों से सजी वॉर ड्रामा वेब सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर भी रिलीज, देशभक्ति और मिलिट्री ऑपरेशन पर बेस्ड है ये सीरीज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: रिमझिम बारिश ने धरती को हरियाली की चादर ओढ़ा दी है, लेकिन अब जरा सावन का वो रंग देखिए जो दिल को भक्ति से सराबोर कर देता है, क्योंकि सावन सिर्फ मौसम नहीं महादेव की आराधना का महापर्व है, और मान्यता है कि इस पूरे महीने भगवान शिव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं।
12: तो यहाँ पर अलग अलग पवित्र स्थानों से जो है लोग जल लेकर आए हैं, आपको यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में जो है पुरुष दिख जाएंगे, भोले दिख जाएंगे जो जल लेकर आए। लेकिन ये 70 साल की आशा जी भी हमारे साथ है, जो बिना किसी साथी के साथ जो है वो अकेले यहाँ पर जो है वो चलकर दिल्ली पहुँची है। आशा जी, इतनी हिम्मत आई कैसे आप में कि अकेले, मतलब लोग अपने परिवार के साथ जो है यहाँ पर सफर तय कर कर आते हैं, आप अकेले आ गए?
13: अकेले आती हूँ, भोले ना भोले लेके आता है, बस ऐसे चली आती हूँ।
12: कितने सालों से आप जल लेकर जो है आ रहे हो?
13: पति मरे थे, 30 साल हो गए। अच्छा। पति मरने के बाद ही मैं कांवड़ उठा ली मैंने। मेरे 7 बच्चे थे, मेरे पालने वाला कोई नहीं था। मैंने कहा भोले बाबा इन्हें सबको आप पालोगे, सब पढ़ लिख के अच्छे हो गए। लड़का मेरा एक फौजी है, एक लड़का सीए है, और एक है ना फर्नीचर करता है, एक है ना वो दर्जी का सूट बनाता है।
12: तो 30 साल हो चुका है आपको?
13: हाँ, 30 साल हो गए। बोले मैं है ना चल रही हूँ और अब भी जीऊंगी जब तक लाऊंगी।
12: तो किसी तरीके की कठिनाई का आपको सामना करना पड़ा हो?
13: कुछ नहीं। हाँ। चली आती हूँ मैं,
12: चले आती हूँ।
13: मुझे कोई तुम्हारी जैसी बेटी भोली मुझे है ना जरूरत पड़ती है तो नहीं उठ पाऊंगी तो कहूंगी भोली पानी ला दो जरा।
12: अच्छा बस थोड़ी बहुत मदद है। अच्छा कितना जल आप जो है वहां से लेकर आए?
13: मैं कम से कम भी 5 किलो जल।
12: 5 किलो का वजन, 70 साल की उम्र में 5 किलो का वजन जो है आशा जी खुद वहां से अकेले उठाकर यहां पर लेकर आई है, और ये अपने आप में बहुत ही हिम्मत की बात है। हर कोई जो है यहां पर परिवार के साथ साथी के साथ दिख जाएगा, लेकिन बात जब हिम्मत की हो, बात जब भक्ति की हो, बात जब बोले की प्यार की हो, तो वो ताकत अपने आप ही आ जाती है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आशा जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, जो लंबा सफर तय कर हरिद्वार से दिल्ली यहां पहुंची है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों

0: क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: क्या घर की दिशा से कोई मकान शुभ या अशुभ होता है? क्या घर का रंग मकान में शुभता या अशुभता पैदा कर सकता है? कब किसी घर में आती है शुभता और कब कोई घर हो जाता है अशुभ, जानिए मेरे साथ।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: दिल्ली NCR में मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, लगातार हो रही झमाझम बारिश से लुढ़का पारा, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। बारिश के बीच पवित्र कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का जोश हाई, सहारनपुर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, कांवड़ रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी से प्रशासन की नजर। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलाया जा रहा है जांच अभियान, 16 अगस्त को पुंछ से शुरू होगी यात्रा। IIT दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह आज, पीएम मोदी छात्रों को करेंगे संबोधित, 587 PhD शोधार्थी होंगे शामिल। क्रिकेट फैंस को श्रीलंका बोर्ड का बड़ा तोहफा, भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गोल में होगा टेस्ट मैच। ऋषभ पंत की गुहार पर CM धामी ने दिया मदद का आश्वासन, उत्तराखंड में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने में आ रही है दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं क्रिकेटर ने इसका जिक्र किया था।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जीएनटीए स्पेशल। सावन का महीना चल रहा है, आसमान से आस्था के बादल बरस रहे हैं और धरती पर शिव भक्ति की लहरें हिलोरें भर रही हैं। इस माहौल में आज गुड न्यूज टुडे स्पेशल में आज आपको लिए चलेंगे देश भर में मौजूद महादेव के उन अद्भुत और अनोखे मंदिरों में जहां महादेव निराले रूपों में विराजमान है। ऐसे अनोखे शिवधाम जिनकी स्थापना की कहानी आपको हैरान कर देगी, इसी कड़ी में सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन, जहां एक ऐसा शिव मंदिर मौजूद है जिसके लिए कहा जाता है कि इसकी स्थापना और निर्माण जामवंत ने खुद अपने हाथों से करी थी। इस धाम में इतिहास महादेव के साथ साथ श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि रायसेन में मौजूद यही वो स्थान है जहां पर शिव भक्त जामवंत की बेटी जामवंती से श्री कृष्ण ने विवाह किया था।

0: शिव मंदिर जहां मौजूद है तीन युगों का संगम।
1: भगवान जामवंत जी ने इस मंदिर का निर्माण किया।
0: वो धाम जहां आज भी है युगों पुरानी शिव गुफा।
2: वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है।
0: जहां स्वयं सूर्य देव करते हैं महादेव का अभिषेक।
3: भगवान सूर्य अपने आदिदेव भगवान शिव का पहली किरण के साथ श्रृंगार करते हैं और अभिषेक करते हैं।
0: जहां आज भी मौजूद हैं जामवंत के पैरों के निशान।
4: यहां से जामवंत जी ने निकले थे और आगे तक पैरों के निशान देखे जा रहे हैं।

0: द्वापर युग में हुआ था जामवंत और श्री कृष्ण का महायुद्ध।
1: जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ, ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है।
0: वो नगर जो आज भी श्री कृष्ण को मानता है दामाद।
1: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते।
0: मध्य प्रदेश का रायसेन, जहाँ विंध्याचल की पहाड़ियों के मस्तक पर स्थापित है महादेव का युगों पुराना धाम। महादेव का ये धाम शिव गुफा मंदिर कहलाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना त्रेता युग में जामवंत ने की थी, उन्हीं के नाम पर इस इलाके को जामगढ़ कहा जाता है।
2: प्रत्यक्ष रूप से भगवान जामवंत की गुफा जामगढ़ में मौजूद है। भगवान जामवंत द्वारा भोलेनाथ की स्थापना यहाँ की गई और यहाँ दिव्य रूप में अभी संत लोग निवास कर रहे हैं। स्वरूपानंद सरस्वती जामगढ़ पधारे, विद्यासागर जी संत जामगढ़ पधारे जी, वो हीरापुर वाले गुरु जी जामगढ़ पधारे, उनने अनुभव किया कि भैया इन गुफाओं में अभी संत दिव्य रूप में रह के वायुपान कर गए और यहाँ तपस्यारत हैं। ये प्रमाण उन तीनों संतों ने इस जगह का दिया। ये किंवदंती नहीं, संतों का वचन।
0: ये गुफा विंध्याचल पर्वत माला पर लगभग 200 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है। गुफा के पास एक कुंड है जिसमें साल भर जल रहता है। इस कुंड से टपकता जल हर समय शिवलिंग का अभिषेक करता है।
3: यहाँ पर एक स्थान और है जिसे हम ये शिव मंदिर जो है ये गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं ये जल है, ये 500 मीटर ऊंच फिट के ऊंचाई के बावजूद वर्ष पर्यंत ये जल भरा रहता है और इसी जल का अभिषेक भोलेनाथ को किया जाता है। ऐसा माना जाता है जैसे इसके अंदर जाएंगे और जाने के बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां इसके अंदर है। आज भी जो संत योगी महात्मा है इसके अंदर निवास करते, ऐसे लोगों की मानता है, लोग ऐसा मानते हैं। लोगों ने यहाँ ऐसे चमत्कार देखे हैं कि प्रातः काल यहाँ आरती होती है, ढोलक झनकारे और ज्वाला को भी देखा। दूसरा यहाँ एक स्थान है जहाँ एक बूंद करके पानी टपकता है और ये जो पानी टपकता है इसकी एक विशेषता है कि इस जल को जो व्यक्ति धारण करता है या पी लेता है उसे किसी भी प्रकार की असाध्य जो बीमारी होती है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। ये 12 महीने ये जल यहाँ से टपकता रहता है।
0: इस इलाके में मान्यता है कि इस गुफा के अंदर आज भी कई साधु संत जब तप में लीन है। स्थानीय लोग कई बार गुफा से भजन कीर्तन की आवाजें आने का दावा भी करते हैं।
1: भगवान शिव का जो प्राचीन शिव गुफा के नाम से ही विख्यात है, वो भगवान आदि काल से यहाँ है, ऐसी किंवदंती है कि जामवंत जी ने भगवान शिव की यहाँ स्थापना की थी। तो यो युगों प्राचीन शिव गुफा है और इस स्थान की एक विशेषता है कि जो विंध्याचल पर्वत हैं वो स्वयं यहाँ भगवान का अभिषेक करते हैं और बुजुर्गों ने ऐसा बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में गांव से यहाँ से जामगढ़ लगा हुआ है तो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान शिव की जो पूजा है वो सिद्ध महापुरुषों द्वारा सिद्धों द्वारा की जाती रही है।
0: खास बात ये है कि महादेव की आस्था से सींची गई ये पावन भूमि श्री कृष्ण की ससुराल भी मानी जाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इसी जगह श्री कृष्ण ने जामवंत की बेटी जामवंती से विवाह किया था।
1: जामगढ़ अपने आप में प्रमाण है, कभी इसका नाम जामगढ़ रहा है, इस गांव का नाम अपभ्रंश होते होते जामगढ़ हो गया है। तो भगवान श्री कृष्ण की ससुराल के रूप में भी यह जामवंत जी की गुफा है पास में ही, तो ये विख्यात है। तो अपने आप में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और इस समय जो कलयुग चल रहा है तो तीन युगों का यह स्थान है और जामवंत जी चिरजीवी रहे हैं। आज भी जामवंत जी माना जाता है कि हैं, वो अमृत तो उन्हें प्राप्त रहा है।
0: जामवंती और श्री कृष्ण से जुड़े इसी संदर्भ के चलते जामगढ़ के लोग श्री कृष्ण को अपना दामाद मानते हैं।
1: यहाँ जो जामगढ़ के लोग हैं और क्षेत्र के लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपना रिश्तेदार मानते। कोई उन्हें लल्ला कहता है, कोई जीजा कहता है, तो वो जामाता है जामगढ़ के भगवान श्री कृष्ण। तो कितना भव्य और अद्भुत रिश्ता है जामगढ़ का और भगवान श्री कृष्ण का।
0: बताया जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने जामवंत को ये वरदान दिया था कि द्वापर युग में कृष्ण अवतार के समय घटनाओं का चक्र उन्हें इस स्थान पर लेकर आएगा, तब कृष्ण रूप में वे जामवंत से युद्ध कर उन्हें परास्त करेंगे।
1: श्रीमद् भागवत महापुराण में इस तरह उल्लेख मिलता है कि स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप भगवान श्री कृष्ण पर लगा था, तो उस कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ जामवंत पधारे विंध्याचल पर्वत पर, और जामवंत जी से उनका 27-28 दिनों तक महायुद्ध हुआ। उस युद्ध में जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण से पराजित हुए तो उन्हें भान हुआ कि ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, जिन्होंने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि प्रभु आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया, मेरी इच्छा है कि मैं कभी परास्त हूँ। तो भगवान श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होऊंगा तो तुम्हारा ये वरदान पूरा होगा। तो एक तरह से अपने भगवान द्वारा भक्त को जो वरदान दिया था उसकी पूर्ति का भी यह स्थान है।
0: जामगढ़ के पास भगदेई गांव में जामवंत ने द्वापर युग में एक और शिवलिंग की स्थापना की थी। मान्यता है कि भक्त जामवंत ने एक रात में महादेव के इस मंदिर का निर्माण किया था। मंदिर जिस पहाड़ी पर मौजूद है वहाँ आज भी पुरानी चट्टानों पर पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। दावा किया जाता है कि ये जामवंत जी के पैरों के निशान हैं।
3: रायसेन जिले के विंध्याचल की पर्वत की एक तलहटी है जहाँ पे बसा हुआ है रायसेन जिले के बरेली तहसील का जामगढ़ गांव। जामगढ़ भगदे ये दोनों गांव विंध्याचल की पर्वत श्रेणी में, और अभी हमने आपको बताया था कि द्वापर युग के समय जामवंत जी ने जो मंदिर का निर्माण कराया था वो निर्माण के बाद जो किंवदंती आई थी वो किंवदंती के बाद ये स्थिति थी कि जामवंत जी जिस जगह कूदे थे वहां पर पैरों के निशान है, तो आप देख सकते हैं ये पैरों के निशान बने हुए हैं। यहाँ पर एक बीजक भी लिखा हुआ है, दाया पैर का निशान है, बाएं पैर का निशान है, फिर दाएं पैर का निशान है, फिर बाएं पैर का निशान। ये निशान हमें कहाँ तक मिलेंगे? लगभग 1 किलोमीटर तक मिलेंगे, जहाँ गुफा है जामवंत जी की वहां तक मिलेंगे।
0: भगवान श्री कृष्ण और जामवंती की विवाह गांठ से लेकर भक्त जामवंत की अगाध आस्था तक महादेव का ये धाम युगों युगों से सनातन धर्म की कई कहानियों को खुद में समेटे आज भी शान से खड़ा है। रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: अब मध्य प्रदेश से सीधे आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत में आपको दर्शन करवाते हैं उस पावन शिवधाम के जहां पर पहुंचकर संसार की पहली कांवड़ यात्रा संपन्न हुई थी। महादेव का वो धाम जिसकी स्थापना की कहानी भगवान परशुराम से जुड़ी हुई है और उन्हीं के नाम पर भोलेनाथ यहाँ परशुरामेश्वर कहलाते हैं।
0: बोलबम का नारा है और भोले का सहारा है। कांधों पर कावड़ में भरा गंगा जल और महादेव की ओर बढ़ते कदम। कोई मनोरथ पूरा करने के लिए करता है तो कोई महादेव के भक्ति भाव में विभोर होकर इस यात्रा पर निकलता है, लेकिन युगों युगों से आस्था की ये यात्रा यूं ही चली आ रही है। यात्रा के इतिहास की जड़ें पौराणिक काल की गहराई तक जाती हैं। माना जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, और कांवड़ यात्रा की इस कहानी की डोर जुड़ी है बागपत के इस पावन शिव धाम से, जहां भगवान शिव को परशुरामेश्वर रूप में पूजा जाता है। पश्चिमी यूपी के बागपत में स्थित परशुरामेश्वर महादेव मंदिर अपने आप में रहस्यमयी, ऐतिहासिक और चमत्कारी गाथा समेटे हुए है। कहते हैं कि एक भयानक अपराध के पश्चाताप स्वरूप इस शिवधाम की स्थापना खुद भगवान परशुराम ने की थी। बताया जाता है कि परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा पर अपनी ही माँ का वध कर दिया था, लेकिन इस पाप बोध ने उन्हें विचलित कर दिया। तपश्चाताप की अग्नि में तपते हुए परशुराम ने अपने हाथों से स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की, फिर हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। माना जाता है कि यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा का बीज पड़ा। परशुराम के नाम पर कभी परशुरामेश्वर धाम कहलाने वाला ये मंदिर कालांतर में पूरा महादेव धाम कहलाने लगा। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग जागृत और चमत्कारी है। ये शिवलिंग समय समय पर अपना रंग बदलता है, जो आस्था रखने वालों के लिए अद्भुत और अलौकिक अनुभव होता है। बता दें कि पूरा महादेव मंदिर का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। बताया जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने इस शिवधाम को नष्ट करने की कोशिश की थी। औरंगजेब ने हाथी से शिवलिंग को खिंचवाया था, लेकिन औरंगजेब न तो शिवलिंग और न ही उसमें लोगों की आस्था को इंच भर भी डगा सका। तब से इस मंदिर को अजर अमर शिव शक्ति का प्रतीक माना जाता है।
5: ये जो हमारा शिवलिंग स्थापित है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं है स्थापित, ये भगवान परशुराम जी द्वारा, जब इनकी माता जी का उन्होंने वध किया, उसके पश्चाताप के पश्चात वो हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग का स्थापना की, भगवान भोले शंकर की आराधना की, उसके बाद उन्होंने जल चढ़ाया। तो जब से ही ये परंपरा चली हुई है। औरंगजेब ने भी प्रयास किया, उसने हाथी से इनको शिवलिंग को खींचने का प्रयास किया चरणों से बंधवा के, पर लेकिन आज भी आप देखोगे बिल्कुल जब पश्चिम गेट की तरफ से घुसोगे तो सामने एक उस पर स्पॉट आया हुआ है, तो वो उसका उसी जबी का स्पॉट है।
6: एक और कहा जा रहा है कि मंदिर जो शिवलिंग है वो रंग भी बदलता है।
5: हाँ, समय समय पर जैसे अब सावन शुरू हो गया है, तो जब कोई भी श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव से देखेगा तो उसको थोड़ा दिखाई देगा।
0: मान्यता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी हर कामना पूरी होती है। यही वजह है कि यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब तक से श्रद्धालु सावन में इस मंदिर में जलाभिषेक करने आते हैं। हर साल सावन में पूरा महादेव धाम में बड़ी संख्या में कांवड़िये पहुँचते हैं। योगी सरकार ने इस ऐतिहासिक धाम को पर्यटन स्थल का दर्जा दिया है। भविष्य में मंदिर प्रांगण को काशी उज्जैन की तर्ज पर विकसित करने की भी योजना है, यानी भविष्य में पूरा महादेव का पावन धाम सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, पौराणिक परंपराओं और इतिहास का संगम बन जाएगा। बागपत से मनुदेव उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: जितने अद्भुत हैं महादेव उतने ही अनोखे हैं उनके ये धाम। ऐसा ही एक धाम मौजूद है बुंदेलखंड में, एक ऐसा अद्भुत मंदिर जहां महादेव एक नहीं बल्कि हजार रूपों में एक साथ दर्शन देते हैं, वो भी एक ही स्थान पर, एक ही गर्भगृह में। इस मंदिर से जुड़ी एक और खास बात कही जाती है, बताया जाता है कि ये वही मंदिर है जहां पर किसी दौर में झांसी की महारानी यानी लक्ष्मीबाई शिव आराधना करने के लिए जाती थी।

0: महादेव एक है, रूप अनेक है, लेकिन झांसी के इस अनोखे शिव धाम में महादेव के अनेक रूप उनके एक ही स्वरूप में समाये हैं। ये अद्भुत धाम है झांसी के हजारिया महादेव। महादेव का वो अनुपम धाम जहां एक शिवलिंग में 1000 शिवलिंग समाये हैं। चूंकि मंदिर के मुख्य शिवलिंग में 1000 छोटे छोटे शिवलिंग बने हुए हैं, इसी कारण इसे हजारी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मुख्य शिवलिंग के नजदीक जाने पर अनेक छोटे छोटे शिवलिंग नजर आते हैं। मान्यता है कि इस एक शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से 1000 शिवलिंगों पर जल चढ़ाने के बराबर फल मिलता है।
1: ये 1108 छोटे छोटे शिवलिंग है, इसलिए इनका नाम हजारिया महादेव है। छोटे छोटे पूरे राउंड है उनके, वो 1108 शिवलिंग है छोटे छोटे।
2: 1000 शिवलिंग का मतलब यह है कि 1101 अगर इधर दर्शन करते हैं तो एक बार में पूर्ण होते हैं भोलेनाथ के दर्शन साक्षात एक ही शिवलिंग में।
0: बुंदेलखंड के झांसी में मौजूद इस प्राचीन शिव धाम में भक्तों की अपार आस्था है। यहाँ सावन और महाशिवरात्रि जैसे मौकों पर लोग दूर दूर से दर्शन पूजन के लिए दौड़े चले आते हैं। मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने वालों की मन्नत जरूर पूरी होती है। इसके बाद श्रद्धालु मंदिर में हवन पूजन और भंडारा करवाते हैं।
3: यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती वो पूरी होती है और उसके सब लोग जो प्रार्थना करते हैं उसको वो पूरा करने पे आदमी इधर पे जो भी इच्छा पूरी होती है उसके उस उपलक्ष में भंडारा प्रार्थना वगैरह जो सब करते हैं।
0: हजारिया महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। माना जाता है कि इस मंदिर को मराठा शासन से पहले गोसाइयों ने बनवाया था। बताया जाता है कि कभी झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई यहां रोज महादेव के दर्शन पूजन करने आती थी। झांसी के शिव मंदिर में आने वाला हर श्रद्धालु इस बात को आज भी बड़े गर्व के साथ बताता है।
2: जे माँ वीरांगना लक्ष्मीबाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने आती थी पानीवरी धर्मशाला पे, और जे गोसाइयों के समय का मंदिर है क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ से जो भी मनोकामना मांगी जाए एक बार में पूर्ण होती है।
4: ये गोसाइयों के शासन काल में हमारे पूर्वजों ने बनवाया था और झांसी की रानी भी यहाँ पूजा करने आती थी।
5: ये बहुत पुराना रानी लक्ष्मीबाई के जमाने का मंदिर है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। और क्या है, यहाँ पे हर आदमी की मनोकामना पूरी होती है, भोलेनाथ जी सबकी सुनते हैं।
0: इस मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ये भी है कि जब जब बुंदेलखंड क्षेत्र में सूखा पड़ता है तो यहाँ जल चढ़ाने से महादेव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।
4: बुंदेलखंड में करीब 25 साल पहले सूखा पड़ा था तो इनको शंकर जी को बाल्टियों, यहाँ पे बावड़ी है, कुआ है, तो बाल्टियों से भर रहा था। उस टाइम मोटर वोटर नहीं चलती थी ज्यादा, तो बाल्टियों से भरा था, तब जाके ये पूरा जब शिवलिंग डूब गई थी तब जाके बरसात हुई थी। ये ऐसा दो बार हो चुका है, जब जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता है तब ये इसी प्रकार का इनको वो करते हैं।
0: एक शिवलिंग पर जल चढ़ाकर हजार शिवलिंग पर जल चढ़ाने जितना पुण्य अर्जित करने की कामना के साथ सावन के महीने में दूर दूर से भक्त महादेव के इस अनोखे धाम में दर्शन करने आते हैं। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: बात करेंगे उस शिव धाम की जहां पर महादेव एक पवित्र गुफा में विराजते नहीं। ये अमरनाथ गुफा नहीं है और ना ही ये कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों में मौजूद है, बल्कि ये गुफा मौजूद है राजस्थान की धरती पर, जहां अरावली के पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक प्राचीन गुफा में विराजे हैं महादेव। ये गुफा आपको अमरनाथ गुफा की याद दिला देगी। शायद यही वजह है कि स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटे अमरनाथ भी कहते हैं।

0: आस्था की एक वो यात्रा और आस्था की एक यात्रा ये भी कश्मीर की भूमि पर एक वो अमरनाथ धाम, राजस्थान की धरा पर ये छोटा अमरनाथ धाम। पवित्र अमरनाथ गुफा की तरह दिखने वाली ये गुफा राजस्थान के अलवर में मौजूद नर्देश्वर महादेव का पावन धाम है। कश्मीर में अमरनाथ की तरह ही राजस्थान के अलवर में मौजूद इस धाम में भोलेनाथ एक गुफा में विराजमान है। कश्मीर में अमरनाथ गुफा के लिए मान्यता है कि ये वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। लेकिन अमरनाथ गुफा जैसी दिखने वाली इस गुफा तक पहुंचना भी आसान नहीं है। नर्देश्वर धाम तक पहुंचने के लिए पहाड़ियों में लगभग 3 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता पैदल पार करना पड़ता है। घने जंगल के बीच कई जगहों पर झरने और फिसलन भरा रास्ता पड़ता है। इन तमाम चुनौतियों को पार करने के बाद लगभग 350 सीढ़ियों की चढ़ाई कर इस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं, जहां देवादिदेव महादेव अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं।
1: लगभग 360 डिग्री सीढ़ियां ऊपर चढ़कर गुफा में दर्शन के लिए जाना पड़ता है। शिव जी अपने परिवार के साथ एक गुफा में विराजमान है। यहाँ सब लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं।
0: बताया जाता है कि एक दौर में इस क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ गया था। तब यहाँ के राजा नल ने इस प्राचीन गुफा के अंदर बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। उसके बाद से इस स्थान को नलदेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इस शिव धाम को छोटा अमरनाथ कहते हैं। हर साल सावन के महीने में यहाँ मेला लगता है। कई राज्यों से लोग यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ यहाँ सावन के सोमवार को रहती है। शिव के प्रिय महीने सावन के अंतिम सोमवार को नलदेश्वर महादेव धाम में विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। सावन के भंडारे में महादेव को खीर और मालपुआ का प्रसाद चढ़ता है। इस समय नलदेश्वर धाम में सावन के महीने की छटा बिखरी है। दूर दूर से भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चलिए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, जहां पर महादेव अपने महारूप में विराजे हैं। सहारनपुर के इस मंदिर में 5.25 फीट के नर्मदेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। तो वहीं पर मध्य प्रदेश के रायसेन में एक ऐसा शिवधाम भी आपको दिखाएंगे, जहां पर एक बिल्वपत्र चढ़ाने पर 1108 बिल्वपत्र चढ़ाने जितना पुण्य प्राप्त होता है।

0: महादेव का मनभावन सावन आया तो शिवधामों में भक्ति की भागीरथी बहने लगी। ये तस्वीर सहारनपुर के नर्मदेश्वर महादेव धाम की है, जहां देवादिदेव महादेव का 5.25 फीट का अद्भुत शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं, बल्कि 5.25 फीट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग है। बता दें कि नर्मदा नदी से निकलने वाले शिवलिंग ही नर्मदेश्वर कहलाते हैं। इस मंदिर में लगभग 25 साल पहले नर्मदेश्वर महादेव का ये शिवलिंग नर्मदा नदी से लाकर स्थापित किया गया था। सावन के सभी सोमवारों को नर्मदेश्वर शिव का अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है। इस सावन के पहले सोमवार को यहाँ भगवान शिव का प्रिय भभूत श्रृंगार किया गया। बता दें कि भभूत न केवल भगवान शिव के वैराग्य और त्याग का प्रतीक है, बल्कि ये मानव जीवन की क्षण भंगुरता की भी याद दिलाता है। ये श्रृंगार भक्तों को आत्मबोध की ओर प्रेरित करता है। नर्मदेश्वर महादेव का ये स्वरूप उनके भक्तों को बेहद भा रहा है। यूपी के सहारनपुर में मां नर्मदा से लाए गए नर्मदेश्वर महादेव की पूजा हो रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में मां नर्मदा के उद्गम स्थल से कुछ दूर रायसेन में महादेव एक और चमत्कारी स्वरूप में पूजे जाते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद इस प्राचीन शिवधाम में महादेव अपने नीलकंठेश्वर स्वरूप में विराजे हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाने पर 1108 बेलपत्र चढ़ाने का पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की स्थापना 400 साल पहले राजा मगरसेन ने अपनी दोनों पत्नियों के लिए की थी, जिसकी कहानी यहाँ होने वाले महालक्ष्मी पूजन में भी सुनाई जाती है। सहारनपुर से अनिल कुमार भारद्वाज और रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: दिल्ली NCR में मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, लगातार हो रही है झमाझम बारिश जिससे लुढ़का पारा, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। बारिश के बीच पवित्र कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों का जोश हाई, सहारनपुर में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, कांवड़ रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी से प्रशासन की नजर। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलाया जा रहा है जांच अभियान, 16 अगस्त को पुंछ से शुरू होगी यात्रा। IIT दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह, आज पीएम मोदी छात्रों को संबोधित करेंगे, 587 PhD शोधार्थी होंगे शामिल। क्रिकेट फैंस को श्रीलंका बोर्ड का बड़ा तोहफा, भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गोल में होगा टेस्ट मैच। ऋषभ पंत की गुहार पर सीएम धामी ने दिया मदद का आश्वासन, उत्तराखंड में घर बनाने के लिए जमीन खरीदने में आ रही है दिक्कतें, क्रिकेटर ने किया था जिक्र।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, दोपहर 1:59 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, शाम के 4:51 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9:10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या आपका घर शुभ है या अशुभ है। सबसे पहली बात तो मन में यही आती है कि क्या घर भी शुभ या अशुभ होते हैं और घर की शुभता अशुभता का प्रभाव क्या होता है। देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर, चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो, उसके अंदर तरंगे पाई जाती हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगे होती हैं। ये तरंगे शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभ तरंगे बहुत ज्यादा हो जाती हैं, अशुभता ज्यादा हो जाती है, तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है। और अगर मकान में अशुभता ज्यादा हो गई है तो ऐसे अशुभ मकान में रहने पर कुंडली के शुभ योग काम करना बंद कर देते हैं। और आपका मकान शुभ है या अशुभ है, इस बात को कुंडली के माध्यम से जाना जा सकता है। और मकान में थोड़ा ध्यान देने पर आपको मकान की अशुभता महसूस हो सकती है। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है, करियर की समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऑफिस में शांति बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव कम होगा, करियर में नए अवसर मिलेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, कोई मकान शुभ है या अशुभ है, उसमें बहुत सारी चीजों को आपको देखना होगा। दिशाओं से, डायरेक्शन से कोई मकान शुभ या अशुभ किस तरीके से होता है, आम तौर पर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान आम तौर पर शुभ नहीं माने जाते, लेकिन हर दिशा के मकान पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उनकी अलग अलग शुभता होती है और हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि अलग अलग दिशाओं के मकान में क्या सावधानियां आपको रखनी हैं। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो पूरी तरीके से सात्विक रहिए। अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करिए। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग और बिजली के उपकरण पर ध्यान दीजिए। और अगर दक्षिण दिशा का मकान है तो सीलन और गंदगी का विशेष ध्यान दें। यानी अलग अलग दिशा के मकान भी शुभ होते हैं, आपको उस दिशा के अनुसार काम करना होगा और उस दिशा के अनुसार आपको रहना होगा, तो चीजें आपकी बेहतर बनी रहेंगी। सिंह राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, आर्थिक समस्याएं हल होंगी, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, काम में लापरवाही ना करें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, परिवार में मंगल कार्य होंगे। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है घर में सूर्य का प्रकाश, जो घर में बहुत सारी शुभता पैदा करता है। सूर्य के प्रकाश की कमी से किस तरह अशुभता पैदा होती है? देखिए, सूर्य का प्रकाश
अगर आपके घर में नहीं आता तो अकारण बिना वजह के बीमारियां पैदा होती हैं। ऐसे घरों में बच्चों के भविष्य बिगड़ने की और स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। और जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का, अवसाद का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो शीशे की सहायता से या खिड़की निकलवा के, रोशनदान निकलवा के सुधार करिए, सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था करिए। और रोज सुबह पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और दीपक जला करके गायत्री मंत्र का 108 बार उच्चारण करिएगा। देखिए, आपके घर की तरंगों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है रंगों का। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है? घर में अगर आप गलत रंग का प्रयोग करते हैं, गड़बड़ रंगों का प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी किस्मत को खराब कर सकता है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। गाढ़े रंग जैसे लाल रंग, भूरा रंग, काला रंग अगर आप अपने घर में प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। भूरा, लाल, गाढ़ा हरा रंग या काला रंग आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में समस्या देगा। और इसमें भी भूरा रंग अगर आप अपने घर में ज्यादा प्रयोग करें तो जीवन दरिद्रता की तरफ जाएगा। घर में लाइट शेड के हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और घर में जो छत है उसका रंग अगर हमेशा सफेद रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। घर में ज्यादातर सफेद और हल्के पीले रंग का प्रयोग या क्रीम कलर का प्रयोग करना सबसे बेहतर होगा। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन की प्राप्ति होगी, किसी अतिथि का आगमन होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, खान पान में सावधानी बनाए रखें। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, करियर में लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
मीन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, घर के जो लोग हैं और घर में घटने वाली जो घटनाएं हैं, इनसे भी जीवन में अशुभता पैदा होती है। घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हों या बुरी आदत के लोग हैं, घर में क्रोध, झगड़ा, लड़ाई, नशा ये सब होता है तो घर अशुभ होगा। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से अर्जित धन का प्रयोग किया जाता हो, घर में गलत तरीके से अर्जित पैसा आता हो तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में किसी व्यक्ति की लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हुई है तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। गलत और बुरे काम बिल्कुल मत करिए, वरना उसका प्रभाव आपके घर पर आएगा। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति करने से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत तरीके से धन ना कमाएं और एक महीने तक दोनों समय घर में भगवत गीता का पाठ करें तो घर की अशुभता कम होगी। और घर में भगवान शिव की मूर्ति या चित्र या भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अगर आप अपनी संतान को लेकर के परेशान हैं, संतान के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, तो नियमित रूप से भगवान कृष्ण को पीले फूल चढ़ाएं और संतान के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। अगर आपका छोटा बच्चा है या घर में कोई छोटा बच्चा है और वो बार बार बीमार पड़ रहा है तो क्या करेंगे? बच्चा जब भी नहाए उसके नहाने के पानी में गुलाब जल एक ढक्कन दो ढक्कन डालिएगा। बच्चे के गले में एक छेद वाला तांबे का सिक्का लाल धागे में डालकर मंगलवार को सवेरे पहनाइएगा। और बच्चे की माता बच्चे के नाम से रोज सवेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगी। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करें, छोटा बच्चा बार बार बीमार होता हो तो उसका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित हो जाता उसकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती, चाहे भगवान के प्रति हो अथवा गुरु के प्रति। समर्पण यदि पूर्ण निष्ठा का होता है तो जिम्मेदारी परमात्मा की होती। हमेशा एक उदाहरण हम देते हैं, वो यहां पर याद आ गया तो हम आपको वो उदाहरण से बताएं। कोई भी फैक्ट्री या कंपनी होती है, वो जब ठीक नहीं चलती तो चिंता किसकी होती है, मालिक की कि नौकर की? हैं? अरे बोलो, मालिक की होती ना। अच्छा, उसका घाटा लग रहा हो, कर्जा ज्यादा बढ़ रहा हो तो चिंता किसकी होती, मालिक की या नौकर की? अरे जोर से बोलो। कोई ड्राइवरी कर रहा हो, बस चला रहा हो, बहुत ज्यादा कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसकी चिंता होती है? मालिक की होती ना। गाड़ी कोई ठुक जाए, ड्राइवर का क्या, एक दो दिन के लिए को जाएगा, जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, गाड़ी की जमानत बड़ी मुश्किल, और चिंता किसकी हो जाती? बोलो बोलो बोलो, मालिक की, हाँ या ना। ऐसे ही जब तक तुम अपनी जिंदगी में खुद के मालिक बने रहोगे तो तुम्हारी टेंशन रहेगी, और अपना मालिक तुम अपने राम जी को बालाजी को बना दोगे तो तुम्हारी चिंता राम जी की हो जाएगी। हाँ, भगवान को बना दो, आप हमारे मालिक, हम आपके नौकर चाकर हैं, जो आप चाहो जैसे चाहो वैसे रखो, चाहे मार दो हरी या तार दो हरी, अब आपको जैसे रखना है सो रखो। ऐसा भाव आपके हृदय में आ जाएगा तो आपकी जीवन की गाड़ी भगवान के हाथ में आ जाएगी, और भगवान के हाथ में गाड़ी आई कि आपकी जय जय। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन जब तक खुद ही मालिक बने रहे। अच्छा, विचित्र बात देखना, आदमी अपनी जिंदगी का मालिक बनता है, वो कहता हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में वो है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, सब हमारे हाथ में, किसी को कोई काम बताओ भाई ये हो जाएगा, अरे हमारे हाथ में है। उससे पूछा जाए तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा हाथ तुम्हारे हाथ में है? तुम्हारा खुद का जो हाथ है वही तुम्हारे हाथ में नहीं है।

रामचरित मानस में गोस्वामी जी कहते, सबई नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। जैसे मदारी बंदर को नचाता, वैसे ही हम सब जीव भगवान के द्वारा नाच रहे हैं। ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी क्षमता है, ये मानना चाहिए क्षमता तो भगवान की है, दिखाई हम पड़ रहे हैं। हम लोगों की कोई क्षमता नहीं, सब भगवान की क्षमता है। अच्छा, भगवान का मूड खराब हो जाए, अभी बढ़िया देखो क्या गर्मी बरसा रहे, अब भगवान का मूड खराब हो जाए कि जरा आइस कोल्ड हो जाए, इतने बड़े बड़े ओले फेंके 500-500 ग्राम के, फिर क्या है? दे पटाक पटाक, फिर कथा सुनोगे कि प्राण बचाओगे? यदि किसी से कह दिया जाए अरे रुको रुको ये तो सब सही हो जाएगा, अरे महाराज हमें मुक्ति चाहिए पर अभी थोड़ी चाहिए। एक जगह भागवत हो रही थी तो हमने कहा स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता, हाथ उठाओ, देखो यहां भी बैठे हैं स्वर्ग वाले, सबने हाथ खड़े कर दिए, स्वर्ग जाएंगे स्वर्ग जाएंगे। एक आदमी ने हाथ खड़ा नहीं किया तो हमने पूछा क्या बात है, तुम्हें स्वर्ग नहीं जाना है? बोले गुरुजी नहीं नहीं, हमारी पत्नी कह रही थी कथा से सीधा घर आना वरना टांगे तोड़ देंगे। तो बाकी सबको जाना होगा, हमको नहीं जाना है, हमको तो घर जाना है। अब बताओ मैंने कौन समझाए? अरे भाई यही हम लोगों का हाल है, हम लोगों का भी यही हाल है। क्या भाई, देखो भगवान नचा तो रहे हैं पर ये हम भी कर रहे हैं। कई लोग होते हैं अपनी अपनी महिमा गाने के लिए, अरे वो तो और तो सब ठीक है, वो तो बहुत हैरान थे, यदि हम ना वो तो हमें फिर मिल गए तो हमने कहा कि हैरान ना हो, हम हैं, मैं हूं। ये मैं ही बहुत खतरनाक, ये मैं जिसको जिसको मिला ना सीताराम है सब। इसलिए हमारी प्रार्थना है आप सबसे हाथ जोड़कर, आज की कथा में विशेषता, आप अपने आप को साध मत मानो, साधक मानो, करने वाले भगवान हैं, हम तो भैया कर रहे हैं, जैसे भगवान हमसे करवा रहा है सो कर रहे हैं, भगवान की माया है। भगवान ने कहा कथा सुनो सो कथा सुन रहे हैं। अच्छा लेकिन एक बात और, भगवान केवल अच्छा ही कराते हैं बुरा नहीं कराते? अब आप कहोगे वाह मलाई मलाई आप खा रहे हो और दूध पानी जैसा दूध हमको पिला रहे हो। ना ना भैया सच ये है, एक मुजरिम था, मुजरिम, उसने कोई कांड कर दिया 302, पकड़ा गया। जो जज साहब थे वो रामायण के बड़े प्रेमी थे, रामायण पढ़ते थे, इसको कैदी को पता लग गया कि रामायण के प्रेमी हैं, रामायण पढ़ते हैं, इसने सोचा थोड़ी सजा माफ हो जाए, तो इसने रामायण की 2-4 चौपाइयां सीख ली ताकि जज साहब को प्रभावित करेंगे कि हम भी रामायण पढ़ते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं। उसने 2-4 चौपाई सीखी, अब जज साहब के सामने कटघरा में खड़े हुए, जज साहब ने पूछा क्यों खून तुमने किया? सो हाथ जोड़ के बोला अरे साहब हमारी क्या ताकत कि हम खून करें, हुई यही सुई जो राम रचिरा खा को करी तर्क बड़ा बैसाखा, सब भगवान करवा रहे हैं, उन्होंने प्रेरणा दी कि खून कर दो सो हमने कर दिया, इसमें हमारी गलती।

0: गलती नहीं थी, भगवान की गलती है, भगवान ने हमें प्रेरणा दी सो हमने कर दिया। जज साहब बोले अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, बड़ी रामायण जानते हो। हाँ बाबा आपको क्या बताएं, हम तो इसी पर ही जीवन जीते रहे। जज साहब बोले वाह। जज साहब ने कलम उठाई, इसको कल की बजाय आज ही फांसी दी जाए। अब बड़ा चौंक गया, उसे लगा कि हमने चौपाई बोली, रामायण की बात हुई, अच्छी बात हो गई, ये तो माफ कर देना चाहिए। और बड़ा उल्टा हो गया, जो माफी जो फांसी कल मिलनी थी वो आज मिल जाए, तो ये बड़ा चौंका। अरे साहब हमने कहा कि जब हमने नहीं किया, भगवान ने करवाया है, तो अब हमें क्यों फांसी पे चढ़ा रहे, भगवान ने करवाया है। जज साहब बोले बेटा, अच्छा वो जज साहब दरअसल हमारे गाँव के थे, बोले बेटा जिस भगवान ने तुमको प्रेरणा दी कि इसको मार डालो, उसी भगवान ने अभी अभी हमको प्रेरणा दी कि इसको भी ना छोड़ा जाए फांसी पे लटका। तो वो समझ आया, हाँ अब समझ गए, तो बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, बातें तो बातें होती हैं। तो भैया यही हम लोगों का हाल है, हम लोग दुनिया को प्रभावित करने के लिए लंबी लंबी फेंकते, ये सब हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, ऐसा भगवान नहीं, सब भगवान कर रहे हैं, भगवान के द्वारा ही हो रहा और भगवान ही करवा रहा है, ये मान करके यदि जियोगे तो ना अभिमान आएगा ना कुछ झंझट आएगा। परंतु यदि आप भगवान को मान करके जियोगे तो आपके जीवन में हमारा भगवान जरूर आ जाएगा। बोलो सीताराम,
1: सीताराम,
0: जोर से बोलो और जोर से बोलो। अब ये कैसे निर्णय करें कि हम भक्त हैं, ये तो भक्ति की बात हो गई, पर निर्णय कैसे करें कि हम भक्त हैं, तो भक्त के भी तीन लक्षण हैं। कितने बोलो बोलो, अरे जम के तो बोलो। भक्त के भी तीन लक्षण हैं, भाव, भरोसा और भोलापन, ये भक्त के लक्षण हैं। पहला भाव, दूसरा भरोसा और तीसरा भोलापन। आप भक्त हो या नहीं, ये तीन लक्षण यदि आपके अंदर हैं, भगवान के प्रति भाव, भगवान के प्रति भरोसा और सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का यदि भोलापन तुम्हारे अंदर है, तो समझ जाना भक्त हो गए। और भक्त हो गए तो स्वाभाविक भक्ति मिलेगी, और भक्ति मिलेगी तो भक्ति से सिद्धि मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, ये पक्का है। तो पहला भाव कैसा हो, भाव भैया या तो कर्माबाई की तरह हो अथवा फिर विदुरानी की तरह। आहा, धन्य है विदुर जी और विदुरानी धन्य है। ठाकुर जी जब घर आए तो विदुरानी जी भूल ही गई कि भगवान को हम केला खिला रहे कि केला का छिलका खिला रहे। तो केला का जो गुदा गुदा होता है वो एक तरफ रखते गई, छिलका लो ठाकुर जी पाओ, और भगवान को पवा रहे। अच्छा पवा रही सो तो ठीक है भगवान, अच्छा कोई भाई कोई गलती सामने वाला करे तो कोई बात नहीं, भाव में कई बार ऐसा हो जाता है, भावावेश में आदमी आता, अरे महाराज महाराज महाराज, ठीक है ठीक है ठीक है, सावधानी रखो सावधानी रखो। लेकिन हमारे ठाकुर जी की अलग लीला है। बोले क्या, बोले विदुरानी जी तो केले का छिलका खिला ही रही, भगवान खाते खाते कह रहे आहा क्या केला है, बड़ा आनंद आ गया खाकर, बड़े मीठे हैं, वाह बताओ, ये ऊपर से हामे हामे ला रहे, धन्य है ठाकुर जी। तो किसी ने ठाकुर जी से कहा कि आप तो केले के छिलकों की बड़ाई कर रहे हो, महिमा गा रहे हो, केले अच्छे हो सकते, केले के छिलके थोड़ी अच्छे हो सकते, और आप बेफिजूली में झूठी मूठी महिमा गा रहे। भगवान बोले भैया हम केला वेला खाने से कोई प्रसन्न प्रसन्न नहीं होते हैं, वो जरूर खिला रही थी केले के छिलके, लेकिन खिला भाव से रही थी, और हमें कोई भाव से खिलाता है उसी की हम बड़ाई कर दे। तो केलों की बड़ाई नहीं कर रहे, भाव की बड़ाई भगवान करते। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है, भगवान ऐसा कहते हैं। तो भगवान को तो भाव प्रिय, तो भक्त के तीन लक्षणों में पहला लक्षण भाव, दूसरा लक्षण भरोसा। और भरोसा कैसा हो? भरोसा ऐसा होना चाहिए जैसे हवाई जहाज के पायलट पर भरोसा होता है, तो चाहे तो वो मंजिल पे पहुंचा दे और चाहे तो बीच में ही क्रैश करवा दे, जय बजरंगबली। और हम लोग भरोसा करके बैठ जाते हैं कि नहीं नहीं पहुंच ही जाएंगे, और यहां तक कि फोन लगा देते हैं कि हमारे लिए गाड़ी भेज देना, हम आ रहे हैं। मान लो बीच में ही सियावर रामचंद्र की जय हो जाए तो? लेकिन भरोसा होता है ना ना ना, बल्कि पायलट से कोई पहचान नहीं, जान पहचान का भी नहीं, स्वभाव का पता भी नहीं, कोई उसके बारे में बुक भी नहीं लिखी, और बस बैठ जाते हैं। तो जब साधारण संसार की वस्तु चलाने वाले व्यक्ति की गाड़ी के चालक के ऊपर हम लोगों को भरोसा हो जाता कि ये मंजिल पर पहुंचा देगा, तो जिस ब्रह्म के बारे में हम सब जानते हैं, यदि उस पर भरोसा कर लिया जाए तो पक्का है वो हमको भी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन हम लोग बड़े गजब हैं, सामान्यतया मनुष्य की बातों पे भरोसा हो जाता, भगवान है कि नहीं इस पे फिर भी बुद्धि बीच बीच में ऊपर नीचे होते रहती है। हाँ, कोई गांव का बूढ़ा आदमी कह दे इस जगह से मत निकलना, भूत रहता है, तुरंत भरोसा हो जाता। हाँ रहता होगा भैया, कौन सा रहता है? भूत नहीं, भूत नहीं रहती, ओहो चूड़ी पहने रहती। हाँ इतने में रात को अंधेरे में वहीं से निकलना पड़े, अकेले हो, आहा, जो हनुमान चालीसा याद आता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत पिशाच, ये वाली चौपाई आदमी जो बोलता भूत पिशाच निकट नहीं आवे। अच्छा इसी चौपाई के बीच में जो कपड़ा डाल रखा वो किसी कील में फंस जाए, ओहो पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, कुर्ता उतार कर शर्ट उतार कर दे दौड़, क्या हुआ? बच गए, आज तो भूत ने पकड़ लिया था, क्या करें? बागेश्वर धाम चलो, वहीं से ताबीज गड़ा बनवा के आओ, तभी बच पाएंगे। बड़ा खतरनाक भूत है, बहुत खतरनाक, हनुमान चालीसा से भी नहीं डरता। तो अरे भाई ठटरी के बरे मूरख चंदा नक कटा आगी के लगे हलुआ नाथ, गांव के झूठे आदमी ने झूठी बात बना के कह दिया वहां भूत रहता है, तुम्हें भरोसा हो गया? अरे हजारों सालों से हमारे महात्मा चिल्ला रहे कि कण कण में भगवान भी रहता है, तो जहां भूत होगा वहां बचाने वाला भगवान भी तो होगा, है? वो भी तो होगा। लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति देखो, मानसिकता देखो, भूत पर भरोसा है भगवान पर भरोसा नहीं है, इसीलिए घाटा खाते हैं। और जिनका भरोसा भगवान पर हो जाता तो भक्त का दूसरा लक्षण पूर्ण हो जाता। पहला जी हाँ ध्रुव जी महाराज नारद जी को यही तो कहते हैं, नारद जी बोले कहाँ जा रहे? बन जा रहे क्यों जा रहे? भजन करेंगे जंगल में। नारद जी बोले जंगल मत जाओ, क्यों? बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते हैं, खा जाएंगे, मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जिंदा नहीं बचोगे। नारद जी बोले वहां बच पाना बहुत कठिन है, हिंसक जानवर रहते। ध्रुव जी बोले गुरु जी जंगल में यदि जानवर रहते मारने के लिए तो बचाने के लिए परमात्मा भी तो रहता है, है? तो जो जान मारने वाले हैं वो अपना काम करेंगे और बचाने वाले अपना काम करेंगे। प्रहलाद जी भी यही बोले, हिरण्यकश्यपु बोला कौन बचाएगा? तो है प्रहलाद जी बोले अपनी सोचो, हमारी छोड़ो अपनी सोचो, तुम्हें कौन बचाएगा? तो हिरण्यकश्यपु बोला क्या बोल रहे हो? प्रहलाद जी बोले पिताजी कुछ नहीं बोल रहे, बस ये कह रहे कि आप अपनी सोचो, कुछ देर में आपकी टिकट कटने वाली। क्यों? तेरा ब्रह्म कहां है? कहां है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहां नहीं है, सब जगह। अच्छा इस खंभे में है? हिरण्यकश्यपु ने कान लगाया, इसमें तो कुछ नहीं है, आवाज भी नहीं आ रही। प्रहलाद जी बोले भगो तुम्हारे कान खराब,

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
3: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
5: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
6: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
7: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
2: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
2: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
9: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
2: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
10: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
10: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी। अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा। अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
12: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अगना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ। अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
6: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
2: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
13: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
14: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
15: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
16: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
2: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
17: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
2: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
18: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट डायरेक्ट फोन होगा। आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है फौजी 360, आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
2: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
9: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
19: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
4: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
20: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
21: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ, आराम से इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
22: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
23: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
2: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
4: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
14: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
8: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
2: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 ने घर मंगा सकते।
22: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
22: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
22: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
11: बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह, बड़ी संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के दर्शन, अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। सावन में बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, कांवड़ियों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा परिसर, हजारों की संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के दर्शन। पवित्र अमरनाथ की यात्रा फिलहाल स्थगित की गई, खराब मौसम के चलते प्रशासन ने फैसला लिया, श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रहने की एडवाइजरी। दिल्ली NCR में मॉनसून दिखा रहा है अपने रंग, लगातार हो रही है झमाझम बारिश जिससे लुढ़का पारा, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों का बादलों का डेरे की तस्वीरें। क्रिकेट फैंस को श्रीलंका बोर्ड का बड़ा तोहफा, भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गोल में होगा टेस्ट मैच।
12: नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में जहाँ हम बात कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की और यात्रा के अद्भुत रंग की। सावन के दूसरे सोमवार पर जलाभिषेक के लिए लाखों की तादाद में कांवड़िए गंगा जल उठाने के लिए निकल पड़े हैं। जितनी भीड़ हरिद्वार के रास्ते पर है उतना ही जमघट देवघर के मार्ग पर, अलग अलग अंदाज में कांवड़िए बोल बम का जय घोष करते जा रहे हैं। किसी ने शहीद आजम यानी कि भगत सिंह का रूप धरा है, तो कोई यात्रा में शिव की सवारी नंदी को लेकर जा रहा है। आज आपको कांवड़ यात्रा के ऐसे ही कई रंग और कई तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही बात होगी बिहार के देवघर कहे जाने वाले गरीबनाथ मंदिर की भी। क्यों चमत्कारी माना जाता है ये मंदिर और क्या है इसकी कहानी, बताएंगे विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी कांवड़ से जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है। चार शिव भक्तों की ये टोली शिव भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की मिसाल पेश कर रही है। चार शिव भक्तों में तीन ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का रूप धरा है, जबकि एक ब्रिटिश काल के सिपाही की भूमिका में है जो हाथ में रस्सी बांधकर शहीद आजम और उनके साथियों को ले जा रहा है। इस कांवड़ को देखकर लोग हैरान हैं और इन शिव भक्तों की खूब तारीफ हो रही है। इस टोली के सदस्य हरिद्वार से गंगा जल भरकर दिल्ली की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं और इसी तरह रोज करीब 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इस नए अंदाज की कांवड़ के पीछे इनका मकसद लोगों को देशभक्ति का संदेश देना है। और चलिए अब आपको गंगा धाम से बाबा धाम तक की भव्य तस्वीर दिखाते हैं। सावन का महीना, आस्था का सबसे बड़ा पर्व और करोड़ों शिव भक्तों की मंजिल बाबा बैद्यनाथ धाम। झारखंड के देवघर में इन दिनों देश भर से कांवड़ियों का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से उत्तर वाहिनी गंगा का जल लेकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस यात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहा है तो कोई मां तारा की प्रतिमा को कावड़ बनाकर बाबा के दरबार पहुंच रहा है। देखिए ये रिपोर्ट।
24: नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रास्ते अलग अलग, बोली अलग अलग, पहनावा अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन विश्वास एक, आस्था एक और मंजिल भी एक, बाबा बैद्यनाथ का धाम। आस्था जब कदमों में उतरती है तो साधारण रास्ते भी पवित्र पथ बन जाते हैं। सावन का महीना आते ही देश भर से शिव भक्त कांवड़ लेकर निकल पड़ते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा, विश्वास और तपस्या का सबसे बड़ा उत्सव है। कंधों पर कांवड़, उसमें गंगा जल, जुबान पर भोलेनाथ का नाम और मन में बाबा के दर्शन की इच्छा, यही विश्वास भक्तों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने की शक्ति देता है। धूप हो या बारिश, रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन शिव भक्तों के कदम नहीं रुकते। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, फिर भी हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा सुनाई देता है, हर हर महादेव, बोल बम। झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में इन दिनों आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज स्थित उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरकर करीब 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी करते हैं और बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पित करते हैं।
6: तो भगवान शिव में आस्था रखने वाले सभी व्यक्ति यही सोचते हैं कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इसीलिए अपने कांवर के दोनों साइड में एक एक लोटा जल भरकर सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ धाम से जल भरकर 105 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वह बाबा धाम आकर बाबा का जलार्पण करते हैं। क्योंकि भगवान शिव को सिर्फ एक लोटा जल और तीन दल का बिलपत्र सबसे ज़्यादा अति प्रिय है, तो जो भी लाके चढ़ाते हैं ये मनोकामना लिंग बैद्यनाथ है, सबों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं उसी का नतीजा है कि आज दिन प्रतिदिन बाबा बैद्यनाथ धाम में भीड़ बढ़ती जा रही है।
24: मान्यता है कि सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेल पत्र चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। धार्मिक कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया था, जिसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। इसी आस्था के साथ भक्त सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं।
13: सावन मास में ही समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र से विष निकला था, उस विष को भगवान शंकर ने पी लिए थे, उसी से उनका कंठ नीला हो गया था जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा और उस विष के कारण भगवान शंकर के कंठ में जो जलन होने लगी। तो श्रावण मास में गंगाजल चढ़ाने से, गंगाजल भगवान शंकर पीने से उनके जो कंठ में जलन है वो जलन शांत होता है, इसलिए भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। ताकि कोई भी चीज अगर जलन हो रही है उसमें जल पानी डालेंगे वो जलन को शांत करता है। इस कारण से भगवान शंकर के ऊपर में श्रावण महीने में कांवड़ चढ़ाने से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न होते हैं, वो भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
24: इस आस्था के सफर में कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनके भक्त हर किसी को प्रेरणा दे रही है। मधुबनी के रमेश डाक बम लेकर पिछले दो वर्षों से आंखों पर पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ ही श्रद्धालु उन्हें रास्ता दिखाते हैं और रमेश बाबा की कृपा पर भरोसा रखते हुए लगातार आगे बढ़ते हैं। रमेश ने बाबा बैद्यनाथ से संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है। उनका मानना है कि जब तक मनोकामना पूरी नहीं होती तब तक हर सावन आंखों पर पट्टी बांधकर बाबा के दरबार पहुंचेंगे। जलाभिषेक के करीब 17 घंटे बाद ही वो आंखों से पट्टी हटाते हैं। भक्ति यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि मुंगेर के कच्ची कांवरिया पथ पर भी आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोलकाता से आए 15 शिव भक्त करीब 80 किलो वजनी माँ तारा की प्रतिमा को कावड़ के रूप में लेकर बाबा धाम की ओर बढ़ रहे हैं। चार श्रद्धालु मिलकर इस विशाल प्रतिमा को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं।
15: इधर हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं।
16: इसमें स्वागत है,
15: ये हम लोग इस साल लेकर 6 साल हो गया, 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाद आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को। दो बार तो अपने बाप को लेकर गए, इस बार अपने मम्मी को लेकर जा रहे हैं।
9: क्या बाबा से मन्नत?
15: कोई मन्नत नहीं है, बस हम लोग जाते हैं, बाबा बुलाते हैं तभी जाते हैं।
24: ये लोग कई सालों से हर सावन सुल्तानगंज से जल लेकर पैदल देवघर पहुंचते हैं। इससे पहले वो हनुमान जी और आदि योगी शिव की प्रतिमाओं के साथ भी कांवड़ यात्रा कर चुके हैं। इस बार माँ तारा की प्रतिमा को विशेष रूप से कांवड़ का स्वरूप दिया गया है।
15: लास्ट ईयर हम लोग जैसे बजरंगबली लेकर गए थे, उसके लास्ट ईयर हम लोग आदि योगी लेकर गए थे, और दिस ईयर हम लोग माँ तारा लेकर जा रहे हैं।
9: वो आप कितने सालों से जा रहे हैं?
15: हम लोग इस ईयर से लेकर 5 ईयर्स हुआ।
9: क्या क्या इसमें सामग्री लगा बनाने में आए?
15: इसमें आपका जैसे कि बांस है, थर्मोकोल है, पेपर है, कलर है, कपड़ा है, यही सब।
24: वहीं दूसरी ओर मुंगेर के हेमजापुर निवासी सत्यपाल भगवान शिव का स्वरूप धारण कर बाबा धाम की यात्रा पर निकले हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ जलाभिषेक करना नहीं बल्कि समाज को संदेश देना भी है। वो विश्व शांति, सभी जीवों के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने का संदेश लेकर इस यात्रा पर चल रहे हैं।
16: 9 बजे निकला था पैदल यात्रा पे, और अभी सुल्तानगंज से जल बोझ के बाबा नगरिया में यहाँ तक आया हूँ।
17: बाबा का भीड़ भाड़ करके ही बाबा के दरबार?
16: जी जी जी बिल्कुल, क्योंकि सवाल इस बार कुछ हटके है। सभी से समस्त संसार वासियों को समाज कल्याण है, तो इस बार प्रश्न किए जाएंगे बाबा से।
17: बाबा के पेश में ही जाने का उद्देश्य क्या?
16: शिवरात्रि के समय हमेशा शिव का गेटअप करता हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस था, तो मेरा मन थोड़ा सा डोल गया इधर, और मैं शिव जी का गेटअप लेके चल दिया।
17: ऐसा लग रहा है?
16: बहुत अच्छा लग रहा है जी।
17: उससे काम उठा करते?
16: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
17: क्या कामना करते हैं बाबा?
16: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
17: तक
16: ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बाबा की जब मर्जी होगी तब पहुंचा लेंगे वो।
24: बाबा बैद्यनाथ को कामना लिंग भी कहते हैं। यही वजह है कि सावन में लाखों भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर बाबा के दरबार पहुंचते हैं। कोई संतान की इच्छा लेकर आता है, कोई रोजगार की कामना करता है, तो कोई अच्छे स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करता है।
18: दानी लेक हम सब भिखारी है। हमारे बाबा बैद्यनाथ जो है ज्योतिर्लिंग में, पूरे भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है, उस 12 ज्योतिर्लिंग में हमारे बाबा बैद्यनाथ जी प्रमुख है, जो कि यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है। और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सती का यहाँ पे हृदय गया है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं, वो बाबा पूजा पूरा करते हैं। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कंवरिया के रूप में, कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ सभी की मनोकामना पूरी करते हैं।
24: यह हर कदम एक प्रार्थना है, हर जयकारा एक विश्वास है, और हर यात्रा महादेव को समर्पित है। क्योंकि जब बुलावा भोलेनाथ का हो तो रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, भक्त अपने आराध्य के धाम तक पहुंच ही जाते हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार, देवघर से शैलेंद्र कुमार मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
12: सावन में शिव भक्ति की एक और अद्भुत तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ धाम से सामने आई। यहां लाखों श्रद्धालु पहलेजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से बाबा गरीबनाथ के दरबार में मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसी आस्था के कारण हर साल यहां श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मंदिर के विस्तार और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए भी बड़े स्तर पर विकास कार्य किए जा रहे हैं। देखिए गरीबनाथ धाम से हमारी ये खास रिपोर्ट।
24: उसका कोई नहीं उसे महादेव का सहारा है। दुखों से हार कर हर बार मन ने गरीब नाथ को पुकारा है। शिव के इस धाम का नाम इसके महत्व की पहचान है। वैसे तो अवघड़दानी सभी की सुनते हैं, पर सिर्फ यहीं इसी धाम पर उन्हें गरीबों का नाथ कहा जाता है। सौ साल से ये मंदिर बिहार में आस्था का ऐसा केंद्र है जहां सिर झुकाने रोज हजारों शिव भक्त आते हैं।
4: भुजंग

0: శివ జటాకటాహ సంభ్రమం భ్రమం నిలింప నిర్జల।
1: वैसे तो आम दिनों में भी यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है, पर सावन की रौनक ही कुछ और है। जिस तरह शिव भक्त सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर यानी बाबा बैद्यनाथ के धाम जल चढ़ाने जाते हैं, उसी तरह लाखों कांवड़िए पहलजा घाट और हाजीपुर से गंगा जल लेकर करीब 82 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार और देवघर की तरह ये यात्रा देश की बड़ी कांवड़ यात्राओं में शुमार है।

0: बाबा गरीबनाथ धाम के प्रति भक्तों की आस्था कैसी है, इसे आंकड़ों से समझिए। पिछले साल सावन में करीब 20 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक किया था। अंदाजा है कि इस साल ये संख्या 25 लाख के पार जाएगी।
1: मंदिर में प्रतिदिन कई बार महाश्रृंगार भी होती है, महाश्रृंगार करने वाले पुरोहित हमारे साथ है। कितनी बार प्रतिदिन महाश्रृंगार होती है?
2: तीन बार महाश्रृंगार होता है
1: सालों भर। अच्छा, कितने प्रकार के फूल? काफी फूल और
2: फूल भांग फल जिससे बाबा की जिसकी इच्छा हो उसी से करवा लेते हैं। बाबा अपना श्रृंगार अपने खुद करवाते हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, कर लेते हैं।
0: मान्यता है कि जिसने भी मुजफ्फरपुर में मौजूद बाबा गरीबनाथ के आगे हाथ जोड़े, सिर झुकाया, उसे दुख दर्द और तकलीफ से मुक्ति मिल गई।
3: मेरी शरीर अस्वस्थ होने लगी, गर्भ दशा में यह हुआ कि अब मेरा बिस्तर पकड़ लेंगे तो भगवान की नगरी में आ गए, और तब से बेल्ट लगा हुआ है, सर सफाई से लेकर के भगवान का पूजा उसमें सहयोग करना। हम
1: प्रतिदिन आते हैं
3: यहाँ रहे, तब यदि तीर्थाटन में रहे तो नहीं आते हैं।
1: तीर्थाटन स्वास्थ्य खराब हुई, इसके बाद आने लगे तो फिर स्वास्थ्य ठीक हो गए।
3: स्वास्थ्य ठीक है, चल अभी चल रहे हैं।
0: जैसा अद्भुत ये धाम है, उतनी ही अद्भुत है इससे जुड़ी कथा। कहते हैं कपड़ा मंडी में मुंशीगिरी करने वाले एक गरीब शिव भक्त की बेटी का गौना होना था। घर की आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि आभूषण तक बिक चुके थे। कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने अपना मकान बेचने का फैसला किया, लेकिन संजोग कुछ ऐसा हुआ कि मकान की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। ऐसे में जब हताश निराश वो घर लौटे तो वहाँ जरूरत का पूरा सामान पहले से घर में रखा मिला। गरीब मुंशी समझ गए कि ये भोले नाथ की ही कृपा है। भाव विभोर होकर वो गरीबों के नाथ गरीब नाथ कहते हुए मंदिर की ओर दौड़ पड़े।
4: अपने घर से चिल्लाते हुए, जैसे भाव विभोर लोग चिल्लाते हुए गरीबों के नाथ गरीब नाथ, तब सनम के बाबा गरीब नाथ नाम पड़ गया।
0: एक गरीब मुंशी ने भावना में शिव को पुकारा और भोलेनाथ गरीब नाथ हो गए। पर उससे पहले भी यहाँ एक चमत्कार हुआ था। कहते हैं यहाँ शहर नहीं, घना जंगल था जिसमें बरगद और पीपल के 7 पेड़ थे। सफाई के दौरान जब उनको काटने की कोशिश हुई तो बट वृक्ष से लाल रंग का द्रव निकला और कुल्हाड़ी रोक दी गई। अगले दिन जब खुदाई हुई तो यहाँ शिवलिंग प्रकट हुआ। मंदिर का ये बरगद उस चमत्कार का प्रमाण बनकर आज भी मौजूद है।
4: आसपास के जितने भी जिले हैं तो वही हैं, आसपास के जितने राज्य भी हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। और अभी जैसे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ रही है तो विदेशी भी जो आते हैं पर्यटन में, वैशाली वगैरह भी यहाँ पर आते हैं।
0: बाबा ने अपने गरीब शिव भक्त की मनोकामना पूरी की थी और ये भरोसा, यही विश्वास इस मंदिर की ख्याति का आधार है। लोग सच्चे मन से सिर झुकाते हैं और खाली झोली भर के जाते हैं।
5: तकरीबन 25 सालों से कंटिन्यू आ रही हूँ यहाँ पर।
1: 25 वर्षों से आप आ रही
5: हैं? 25 वर्षों से कंटिन्यू आ रही हूँ, टाइम टू टाइम आती रहती हूँ, महीने में एक दो बार जरूर आती हूँ।
1: क्या ऐसा मन्नत मांगी थी बाबा से? क्या सरदार
5: बाबा से मन्नत तो मन ही मन माना जाता है, ये तो पब्लिकली कहने का चीज।
1: पूरा हो गया?
5: पूरा नहीं हुआ तो आती कैसे हूँ, मन में शांति मिलती है।
1: अच्छा, मंदिर में आने से शांति मिलती
5: है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: सावन में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए मंदिर न्यास समिति ने 3300 स्वयं सेवकों की तैनाती की है, जबकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। आस्था, विश्वास और चमत्कार की वजह से बाबा गरीबनाथ धाम उत्तर बिहार की पहचान है, जिसे अब भव्य और दिव्य रूप दिए जाने की योजना है। राज्य सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ मंदिर के कायाकल्प को मंजूरी दे दी है। निर्माण और सौंदर्यकरण में 6 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होगी। मंदिर के शिखर और प्रवेश द्वार के नवनिर्माण के साथ 2 भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे और श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। यानी जल्द ही देवघर और बिहार कहे जाने वाले इस मंदिर की शोभा और बढ़ने वाली है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
16: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
17: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
18: बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह, बड़ी संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के

0: रहे हैं भगवान के दर्शन। पवित्र अमरनाथ की यात्रा फिलहाल स्थगित की गई। खराब मौसम के चलते प्रशासन ने लिया फैसला, श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रहने की एडवाइजरी। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून दिखा रहा है अपने रंग, लगातार हो रही है झमाझम बारिश जिससे लुढ़का पारा पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। क्रिकेट फैंस को श्रीलंका बोर्ड का बड़ा तोहफा, भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री। 15 अगस्त से गोल में होगा टेस्ट मैच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका फैक्ट चेक में। मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग इसे बिना जांचे बिना परखे सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नई बताकर परोसी जाती है तो कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये होता है कि लोग इसे बिना सोचे बिना समझे बिना परखे सच मानकर शेयर कर देते हैं और यही से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक। फैक्ट चेक में आज सबसे पहले बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए हुए उस वायरल वीडियो की जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा ये तैराक हाल ही में मोरक्को से तैरकर गैर कानूनी तरीके से स्पेन में दाखिल हुआ था। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आपको आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसको शेयर कर दावा किया जा रहा है कि बाढ़ के पानी में बहते हुए शख्स का ये वीडियो केरलम का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, ये भी आपके आगे रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। कुछ यूजर्स इस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो में दिख रहा ये तैराक हाल ही में मोरक्को से तैरकर गैरकानूनी तरीके से स्पेन में दाखिल हुआ था। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
2: स्पेन के स्क्यूटा शहर में मोरक्को से आए तकरीबन 60,000 घुसपैठिए दाखिल हो गए थे। इनमें से ज्यादातर लोग तैर कर आए थे। इस दौरान भीड़ में दबने, दम घुटने और समुद्र में डूबने से 67 लोगों की मौत हो गई थी। इन सब के बीच तैरते हुए सेल्फी वीडियो बनाते एक शख्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ये कहकर शेयर किया जा रहा है कि ये व्यक्ति हाल ही में मोरक्को से समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचा था। एक एक्स यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि एक टीनेज लड़का सेल्फी स्टिक के साथ समंदर में तैर कर वीडियो बनाते हुए मोरक्को से स्क्यूटा पहुंचा और स्पेन में दाखिल हो गया। पिछले दो दिनों में मोरक्को से 60,000 से ज्यादा प्रवासी स्पेन के इलाके स्क्यूटा में दाखिल हुए, इससे स्पेन के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर एक शख्स का समंदर में तैरते हुए सेल्फी वीडियो तेजी से शेयर हो रहा है। आपको बता दें ये दावा किया जा रहा है कि ये व्यक्ति मोरक्को से समुद्र के रास्ते तैरकर अवैध रूप से स्पेन में दाखिल हो गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक की टीम वीडियो की जांच में जुट गई और दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम वीडियो की तहकीकात करने लगी। सर्च के दौरान ये जानकारी जरूर सामने आई कि जुलाई के अंत में हजारों मोरक्को वासी स्पेन में अवैध रूप से दाखिल हो गए थे। इस भारी घुसपैठ और संकट के बाद स्पेन और मोरक्को ने प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कदम

0: दिखाई और सुरक्षा को बढ़ाया गया। इस दौरान की आधिकारिक वीडियो और तस्वीरें भी सामने आई थी, लेकिन इस दौरान वायरल हो रहा जैसा वीडियो सामने नहीं आया था, लिहाजा ऐसे में हमें वायरल हो रहे दावे पर शक हुआ। हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर दावा सच है तो वायरल हो रहे वीडियो के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो के जरिए अफवाह तो नहीं फैलाई जा रही है? जब हमने जांच पड़ताल की तो क्या कुछ पाया, इस रिपोर्ट में देखिए।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम पड़ताल में जुटी। सर्च करने पे हमें एक एक्स पोस्ट मिला, जिसमें बताया गया है कि ये शख्स मोरक्को का एक तैराक है जो अपने ही शहर अल जदीदा में तैर रहा था। इस यूजर ने यासीन लगोची नाम से इस तैराक के इंस्टाग्राम अकाउंट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। यासीन ने यह वीडियो 29 जुलाई को पोस्ट किया था। उन्होंने 4 जुलाई को फेसबुक पर एक वीडियो कंपाइलेशन शेयर किया था। इसमें भी वायरल वीडियो वाला हिस्सा देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने इस बारे में एक स्पष्टीकरण भी दिया है। इसमें वो कहते हैं कि उनके तैराकी के एक वीडियो के बारे में गलत दावे किए जा रहे हैं। ये वीडियो अल जदीदा शहर का है, न कि स्पेन के स्क्यूटा शहर का। वो ये भी कहते हैं कि वो इस वक्त ठीक उसी जगह हैं जहां उन्होंने वायरल वीडियो शूट किया था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मोरक्को के इसी शहर में बिताई है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वीडियो में नजर आ रहे शख्स के तैर कर स्पेन में घुसपैठ करने की बात एकदम गलत है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: केरला में हालिया आए बाढ़ से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। इस वीडियो में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में एक शख्स को बहता हुआ देखा जा रहा है। यूजर्स इसे केरलम बाढ़ का वीडियो बताकर सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वायरल कर रहे हैं। वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए।
1: केरला में बाढ़ के कारण लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर अलापुझा जिले के कुट्टुनार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। मुथार इलाके के करीब 90% निवासियों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। लगातार जलभराव और बढ़ते जलस्तर के कारण जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति को बाढ़ के पानी में बहते हुए देखा जा रहा है। केरलम बाढ़ का बताते हुए कुछ लोग इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं। एक इंस्टाग्राम यूजर ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि केरलम में बाढ़ का नया संकट, कई इलाके फिर से जलमग्न। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक शख्स को बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बहते हुए देखा जा रहा है। केरला के बाढ़ का वीडियो बताते हुए कुछ लोग इसे लगातार शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। फैक्ट चेक की टीम वायरल वीडियो की जांच में जुट गई। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना, और इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड में आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे सुना तो ये उर्दू जैसा लगा, मतलब वायरल वीडियो केरला का नहीं, कहीं और का हो सकता है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसा कोई प्रमाणिक रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल दावे को सवालों की कसौटी पर कसा है। पहला सवाल, वायरल हो रहा वीडियो कब और कहां का है? दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो को केरलम का बताकर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? जब हमने तहकीकात की तो क्या कुछ मिला है, देखिए इस रिपोर्ट में।
1: दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के कुछ की फ्रेम को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये जानकारी मिली कि 20 अगस्त 2025 को कई पाकिस्तानी इंस्टाग्राम अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया था। इन अकाउंट्स के अनुसार ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में शाहराह ए फैसल का था। इसी सर्च के दौरान हमें कराची में बाढ़ का एक ड्रोन फुटेज भी मिला, जिसे एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल ने 19 अगस्त 2025 को अपलोड किया था। इसमें सड़कों पर पानी भरा हुआ और भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा था। इस वीडियो में एक बिल्डिंग पर KFC के विज्ञापन वाला बिलबोर्ड दिख रहा था। वायरल वीडियो में भी वही बिलबोर्ड और विज्ञापन दिखाई दे रहा है। कराची में नर्सरी फ्लाईओवर के पास शाहरा ए फैसल का गूगल मैप्स स्ट्रीट व्यू भी वायरल वीडियो के दृश्यों से मेल खाता है। 20 अगस्त 2025 को प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। बारिश से जुड़ी इन घटनाओं में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल हो रहा दावा झूठा साबित हुआ। वायरल हो रहे वीडियो का केरलम से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो पुराना है और ये पाकिस्तान के कराची में आए बाढ़ का है। मोहम्मद महफूज आलम के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: असम में आई भीषण बाढ़ के कारण लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इसी से जोड़कर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक शख्स को बाढ़ में डूबी और टूटी हुई मस्जिद पर खड़ा हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि ये असम का है, जहां पर एक व्यक्ति ने बाढ़ में डूबी हुई मस्जिद पर चढ़कर आजान दिया। वायरल हो रहे वीडियो की सच्चाई क्या है, पड़ताल करती हमारी इस रिपोर्ट में देखिए।
2: असम में मानसून की भारी बारिश के बाद बाढ़ की वजह से हालात बेकाबू हैं। राज्य के 5 प्रमुख जिले शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव और चराईदेव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और सुरक्षा बल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। सबके बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बाढ़ के पानी में लगभग पूरी तरह डूब चुकी एक मस्जिद नजर आती है। मस्जिद का सिर्फ ऊपरी हिस्सा, एक मीनार और गुंबद बचा हुआ है। इसी मीनार के पास खड़े होकर एक शख्स अजान देता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो को असम का बताकर कुछ लोग लिख रहे हैं कि भीषण बाढ़ में एक मस्जिद बह जाने की कगार पर है, लेकिन बावजूद इसके वहाँ अजान जारी है। एक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि असम में बाढ़ से मुतासर एक मस्जिद से अजान की आवाजें बुलंद की जा रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
0: दरअसल सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो असम का है, जहां बाढ़ में लगभग पूरी तरह से डूब चुकी मस्जिद से एक शख्स आजान देता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच झूठ जानना बेहद जरूरी हो गया था। ये बात सच है कि असम में मानसून सीजन में कई दिनों तक हुई लगातार बारिश की वजह से कई जिलों में भयानक बाढ़ आ गई। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, जोरहाट और नगांव जिले बाढ़ के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई लोगों की जान चली गई है तो वहीं हजारों लोग बेघर हो गए हैं। इन सब के बीच ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावे की सच्चाई को जानने के लिए फैक्ट चेक की टीम ने सबसे पहले वीडियो के हर फ्रेम को बेहद गौर से देखा। इस दौरान हमें वीडियो में कई ऐसी गलतियां देखने को मिली जिससे हमें वीडियो के असली होने पर संदेह हुआ। उदाहरण के लिए बाढ़ के पानी में कोई हरकत नजर नहीं आ रही है, वीडियो का हर फ्रेम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, ये हमें कुछ अटपटा सा लगा। और इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा ऐसे में हमने वायरल वीडियो को सवालों की कसौटी पर कसा है। तो पहला सवाल, अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी क्यों नहीं मिली? दूसरा सवाल, कहीं एडिटेड वीडियो को वायरल करके भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा है? जब हमने फैक्ट चेक की टीम के साथ जांच पड़ताल की है तो क्या कुछ मिला है इस रिपोर्ट में देखिए।
2: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल हो रहे वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उसे सर्च किया। इस दौरान हमें ये 20 जुलाई के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में मिला। इस पोस्ट में AI का लेबल लगा हुआ है। इसके साथ ही वीडियो के ऊपर गूगल जेमिनी का एक वाटर मार्क भी नजर आ रहा है। ये वाटरमार्क उन वीडियो या तस्वीरों पर लगा होता है जिन्हें गूगल एआई के जरिए बनाया या एडिट किया जाता है। इसके बाद हमने गूगल एआई से बनी तस्वीरों और वीडियो को डिटेक्ट करने वाले टूल सिंथाइडी से इस वीडियो को टेस्ट किया। इस टूल ने भी बताया कि ये वीडियो गूगल एआई की मदद से बनाया गया है। साथ ही हमने इसे हाई मॉडरेशन टूल से भी टेस्ट किया। इस टूल ने भी इस वीडियो के एआई से बने होने की 99% संभावना बताई। साफ है वायरल वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो हमारी पड़ताल में झूठा साबित हुआ। ये किसी असली घटना का वीडियो नहीं है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के जरिए बनाया गया है। रिद्धीश दत्ता के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: और फैक्ट चेक में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
0: और चलिए अब वक्त हो चला है फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। अब देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी।
6: किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमेशा बड़ी मदद या महंगे तोहफों की जरूरत नहीं होती, कई बार एक छोटी सी कोशिश भी किसी के लिए बेहद खास बन जाती है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक लड़की ऑटो रिक्शा में सफर करती नजर आ रही है। रास्ते में उसकी नजर एक आइसक्रीम की दुकान पर पड़ती है। लड़की ऑटो ड्राइवर से कुछ देर रुकने की इजाजत मांगती है। वो उसे कहती है कि क्या वो करीब 5 मिनट के लिए ऑटो रोक सकता है, क्योंकि उसे आइसक्रीम खानी है। ड्राइवर भी बिना किसी परेशानी को उसकी बात मान लेता है और मुस्कुराते हुए ऑटो रोक देता है। लड़की आइसक्रीम लेने के लिए दुकान की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटती है तो उसके हाथ में सिर्फ अपने लिए आइसक्रीम नहीं होती, वो ऑटो चालक के लिए भी एक आइसक्रीम लेकर आती है। इसके बाद वो बेहद सहज अंदाज में ड्राइवर को आइसक्रीम देते हुए कहती है कि ये उसके लिए है और वो इसे जरूर खाए। लड़की की इस छोटी सी पहल को देखकर ड्राइवर के चेहरे पर खुशी साफ नजर आती है। वो पहले थोड़ी झिझक के साथ आइसक्रीम लेने से मना करता है और कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में लड़की उसे सहजता से धन्यवाद कहती है। दोनों के बीच कुछ सेकंड की ये बातचीत पूरे वीडियो को बेहद प्यारा बना देती है।
7: पनीर से बनता है और उसके साथ जो चीनी और वो मिक्स करा हुआ है। अच्छा अच्छा।
6: माँ को लगता है कि बेटा दुबला होता जा रहा है, इस चक्कर में वो उसे खूब खिलाते हैं। लेकिन बेटा फिटनेस फ्रीक हो तो मामला थोड़ा कठिन हो जाता है। एक माँ के सामने ये स्थिति आई तो उन्होंने इसको हैंडल करने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। वीडियो के शुरू में माँ अपने बेटे से कहती है कुछ नहीं होता है, पनीर से बनता है। वीडियो रिकॉर्डिंग करता बेटा कहता है कि अच्छा पनीर से बनता है, मीठा नहीं होता इसमें। माँ कहती है नहीं। इस दौरान बेड के कोने में छड़ी रखी दिखती है, फिर माँ हाथ में रसगुल्ला लिए हुए ही डंडा उठा लेती है। मारने को भी होती है लेकिन वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। यूजर्स माँ बेटे के इस क्यूट कलेश पर जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं।
8: संस्कृत में गए, संस्कृत में ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट।

0: ये मासूम आवाज और गाने का अलग अंदाज लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची पूरे मन से गाना गा रही है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि शब्द सही निकल रहे हैं या नहीं। वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई पूरे आत्मविश्वास के साथ गुनगुनाती रहती है। यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर इस छोटे बच्चे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने अस्पताल के माहौल को अपनी मुस्कान और डांस से खुशियों में बदल दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटा बच्चा अस्पताल के बेड पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी हैं और सिर पर टांके भी नजर आते हैं। इसके बावजूद उसके चेहरे पर जरा भी डर या उदासी नहीं दिखती। जैसे ही शेकी गाना बजता है, वो बेड पर मस्ती से डांस करना शुरू कर देता है। इस खूबसूरत पल को बच्चे की बड़ी बहन ने और भी खास बना दिया। वो भी अपने छोटे भाई के साथ डांस करने लगी। दोनों की मस्ती देखकर अस्पताल का कमरा कुछ देर के लिए किसी डांस स्टेज जैसा लगने लगा। जहां आमतौर पर इलाज और चिंता का माहौल रहता है, वहीं इस भाई बहन की जोड़ी ने वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। वहां मौजूद एक नर्स भी इस प्यारे पल को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करती नजर आई। घर में बच्चे का जन्म हमेशा खुशियां लेकर आता है, लेकिन जब किसी परिवार का वर्षों पुराना इंतजार खत्म हो जाए तो वो पल और भी खास बन जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही भावुक वीडियो लोगों का दिल जीत रहा है। बताया जा रहा है कि एक परिवार में पूरे 52 साल बाद पहली बार बेटी ने जन्म लिया। जैसे ही नन्हे परी के आने की खबर मिली, पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया। वीडियो में परिवार के सदस्यों की भावनाएं साफ दिखाई देती हैं। कोई खुशी के आंसू बहाता नजर आता है, तो कोई बच्ची को गोद में लेकर प्यार से निहार रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग हों या छोटे सदस्य, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी दिखाई दे रही है। देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों ने इस बार इंसानियत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला पानी से भरे खेत में अकेले धान की रोपाई कर रही थी। खेत पूरी तरह कीचड़ और पानी से भरा हुआ था, जिससे काम करना काफी मुश्किल लग रहा था। महिला लगातार मेहनत कर रही थी और अपने काम में जुटी हुई थी। उसी दौरान भारतीय सेना के कुछ जवान अपने वाहन से वहां से गुजर रहे थे। जैसे ही जवानों की नजर खेत में काम कर रही महिला पर पड़ी, उन्होंने अपना सफर कुछ देर के लिए रोक दिया। बिना किसी औपचारिकता या दिखावे के कुछ जवान तुरंत खेत में उतर गए। उन्होंने महिला से बातचीत की और फिर उसके साथ मिलकर धान की रोपाई करने लगे। कुछ मिनटों तक सभी जवान महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। जवानों की छोटी सी मदद ने महिला के चेहरे पर मुस्कान ला दी।
1: जी, इसके पहले कभी भी जीवन में समुद्र नहीं देखे हैं और मैं समुद्र तट पे लेकर आया हूँ उनको। बाबूजी का पहला रिएक्शन देखते हैं। आएगा पानी, आएगा पैर तक आपके।
0: एक बुजुर्ग के पहली बार समंदर के किनारे पर घूमने की वीडियो ने इंटरनेट की जनता को एक ही पल में भावुक और खुशी देने वाला दोनों इमोशन महसूस करा दिए हैं। बेटा अपने पिता को ओडिशा के कोणार्क के चंद्रभागा बीच लेकर पहुंचता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बुजुर्ग सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर समंदर को नमन करते नजर आते हैं। जब पानी बुजुर्ग शख्स के पैर को पहली बार छूता है, तब उनका भूलापन देखने को मिलता है। वो झुककर पानी को अपने हाथ से अपने माथे पर लगा लेते हैं। इस बीच जब पानी लगातार उनके पांव को छू रहा होता है, तो उनके खुलकर हंसने की आवाज सुनने को मिलती है।
1: चंद्रभागा बीच कोणार्क में और बाबूजी अनुभव ले रहे हैं पहली बार समुद्र के पास। पानी आ गया। पानी।
0: उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं कि जुनून भी खत्म हो जाए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस छोटे से वीडियो में एक बुजुर्ग शख्स ने बास्केटबॉल कोर्ट पर ऐसा कमाल दिखाया कि वहाँ मौजूद लोग भी हैरान रह गए। उनका शानदार अंदाज और गजब का कॉन्फिडेंस अब इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बास्केटबॉल दादाजी के हाथों में पहुंचती है, उसके बाद उनका जो खेल देखने को मिलता है वो सचमुच देखने लायक होता है। उन्होंने प्रोफेशनल अंदाज में बास्केटबॉल को शानदार तरीके से ड्रिबल करते हुए आगे बढ़ते हैं। उनका बॉडी पोस्चर और ड्रिबलिंग स्टाइल देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बरसों के अनुभवी बास्केटबॉल प्लेयर हों। जैसे ही वे बास्केट नेट के पास पहुंचते हैं, वे बिना एक पल गंवाए गेंद को बास्केट की ओर उछाल देते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने देखने वालों के होश उड़ा दिए। पहले तो गेंद बास्केट नेट के रिम पर जाकर टकराती है और फिर वो वहां से बाउंस बैक होकर ठीक दूसरी तरफ लगे बास्केट नेट में जाकर सीधे गोल हो जाते हैं। इस असंभव से दिखने वाले और बेहद यूनिक शॉट को देख कोर्ट पर मौजूद लोग और वीडियो देखने वाले दर्शक हैरान रह गए।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
3: आ रहा है सूर्य का पूर्ण ग्रहण, सूर्य के पूर्ण ग्रहण का दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, राशियों का क्या होगा हाल, और सूर्य का ये ग्रहण करने वाला है किसको बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
4: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: आ रहा है सूर्य का पूर्ण ग्रहण। सूर्य के पूर्ण ग्रहण का दुनिया पर कैसा पड़ेगा प्रभाव, राशियों का क्या होगा हाल, और सूर्य का ये ग्रहण करने वाला है किसको बेहाल, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक स्पेशल में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
5: बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह, बड़ी संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के दर्शन। अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। सावन में बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, कांवड़ियों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा है परिसर, हजारों की संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के दर्शन। पवित्र अमरनाथ की यात्रा फिलहाल स्थगित की गई, खराब मौसम के चलते प्रशासन ने फैसला लिया, श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर रहने की एडवाइजरी। IIT दिल्ली में 57वां दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित किया, 3,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री। दिल्ली NCR में मॉनसून दिखा रहा अपने रंग, लगातार हो रही है झमाझम बारिश जिससे लुढ़का पारा पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। क्रिकेट फैंस को श्रीलंका बोर्ड का बड़ा तोहफा, भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गोल में होगा टेस्ट मैच।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की। ग्रहण दुनिया भर में परिवर्तन की सूचना देते हैं, लोगों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं और प्रकृति पर, देश पर इसका गहरा असर पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे पूर्ण सूर्य ग्रहण की और जानेंगे कि इसका प्रभाव आपके जीवन पर आपके राशियों के हिसाब से कैसा पड़ने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का मंत्र। सप्ताह का मंत्र है ग्रहणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः। ग्रहणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, 6, 8 या 12वें स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव है, तो ऐसी स्थिति में आप रोज सवेरे इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। सूर्य कितना भी गड़बड़ हो, कितना भी नकारात्मक हो, अगर आप नित्य प्रातः 108 बार इस मंत्र का जप करें तो सूर्य से संबंधित समस्या आपकी दूर होगी। मंत्र एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, ग्रहणामादिरात्यो लोक रक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हरतु मे रवि। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की। इस बार सूर्य ग्रहण की पूरी स्थिति क्या है, कब लग रहा है, किस राशि और नक्षत्र पर इसका प्रभाव है, ये जानते हैं। इस बार सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है। 12 और 13 अगस्त की जो मध्य रात्रि है, दरमियानी रात है, 12 और 13 अगस्त के बीच वाली, इसमें सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसका आरंभ भारतीय समय से रात के 9:04 पर होगा। इस सूर्य ग्रहण का मध्य समय 12 अगस्त की रात को 11:16 पर होगा और इस ग्रहण का समापन होगा जब मध्य रात्रि के बाद 13 अगस्त का आरंभ हो जाएगा तो प्रातः 1:27 पर इसका समापन होगा। ये ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में लग रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्क राशि जो है ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है प्रकृति को कंट्रोल करने के लिए, और अश्लेषा नक्षत्र बुध का नकारात्मक नक्षत्र है, तो प्रकृति के सेंटर पॉइंट पर और बुध के नक्षत्र में ये ग्रहण लगेगा 12 अगस्त को, और ये आंशिक खग्रास खंडग्रास नहीं है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, लेकिन ये भारत में दर्शनीय नहीं होगा। मध्य रात्रि के समय में होने की वजह से सूर्य उस समय भारत में उदित नहीं होंगे, इसलिए भारत में दर्शनीय नहीं होगा। अब चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं,
इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की जरूरत नहीं होगी। जो सूतक के नियम होते हैं या जो खान पान का परहेज होता है, विश्राम का परहेज होता है, वो इस ग्रहण में लागू नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से जैसे अपना जीवन जीती हैं, उस तरह से अपना जीवन जी सकती हैं, खा सकती हैं, पी सकती हैं और सो सकती हैं। किसी तरह का नियम या किसी तरह की वर्जना भारत में किसी के ऊपर लागू नहीं होगा। देखिए, ग्रहण जो होता है, खास तौर से सूर्य ग्रहण, अगले 3 महीने तक देश दुनिया पर असर डालता है अपने राशि और अपने नक्षत्र के अनुसार, और लोगों पर असर डालता है अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक। तो अब ये जानते हैं कि जो सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लग रहा है, उसका देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस समय ये सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है, उस समय मीन लग्न उदित हो रहा है। मीन लग्न भी जल का लग्न है। मंगल और शनि एक दूसरे से केंद्र में हैं ग्रहण लगने के समय में, और शुक्र भी मंगल शनि के साथ केंद्र में संबंध बना रहा है। पंचम भाव में ग्रहण लगा हुआ है जल की राशि कर्क राशि में, और राहु और मंगल इस ग्रहण के समय निकट के अंशों में हैं, नजदीक के अंशों में हैं। चूंकि जल से संबंधित राशियां प्रभावित हो रही हैं, इसलिए इस ग्रहण से दुनिया भर में जल की और प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। भूकंप की संभावना और जल की आपदाएं दुनिया भर में दिख सकती हैं। सूर्य राजनीति और सत्ता के स्वामी हैं, इसीलिए जो लोग सत्ता में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, उनके लिए दिक्कतें आएंगी। स्वतंत्र भारत की अपनी राशि भी कर्क राशि है, और कर्क राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है, इसलिए भारत में आंतरिक कलह की स्थितियां बनेंगी। इंटरनल बेवजह के विवाद जनता और सरकार के बीच में पैदा होंगे। शनि मंगल परस्पर केंद्र में हैं, तो न्यायालय द्वारा कोई बहुत बड़ा फैसला इस समय आ सकता है, और शनि मंगल का परस्पर केंद्र में होना, मंगल राहु का निकट अंशों में होना, आतंकवादी घटनाओं की, विस्फोट की या बड़ी दुर्घटनाओं की सूचना दे रहा है। जो तटीय स्थान हैं, जो कोस्टल एरियाज हैं, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बंगाल, इन जगहों पर ज्यादा प्राकृतिक समस्याएं हो सकती हैं, और इन जगहों पर राजनीति में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, ये दुनिया भर में बड़ी दुर्घटनाओं
और विस्फोट की सूचना दे रहा है, साथ ही राजनीति में बहुत सारे लोगों का आप देखेंगे अगले 3 महीनों में पद परिवर्तन होगा। और सबसे बड़ी बात, विस्फोट से, आतंकवादी घटनाओं से और दुर्घटनाओं से सावधान रहना होगा। तो सूर्य ग्रहण का देश दुनिया पर प्रभाव बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अब हम समझते हैं कि अलग अलग राशियों पर इस सूर्य ग्रहण का अगले 15 दिन से लेकर 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा और ग्रहण के दौरान अलग अलग राशि के लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों की स्थितियां इस समय वैसे भी अधर में हैं, कुछ चीजें बेहतर हैं, ज्यादातर चीजें परेशान कर रही हैं। ग्रहण की वजह से आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। पैसे रुपए को लेकर, परिवार में संबंधों को लेकर आपको दिक्कत हो सकती है। इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा, चोट चपेट लग सकती है, छोटी मोटी दुर्घटना घट सकती है और सर्जरी की नौबत आ सकती है। अगले 1 महीने तक सतर्क रहें। अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए। आप क्या करने जा रहे हैं,

मत बताइए, वरना बना बनाया काम आपका बिगड़ जाएगा। इस एक महीने तक शांति और सावधानी रखिए, अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो सुबह हो जाने के बाद यानी 13 अगस्त को प्रातः काल किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिएगा या गाय को गुड़ खिला दीजिएगा। ऐसा करने से ग्रहण का बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ राशि। वृषभ वालों के जीवन में परिवर्तन का बड़ा समय चल रहा है और कुल मिलाकर बेहतर स्थिति भी दिखाई दे रही है। ये जो सूर्य ग्रहण है ये वृषभ वालों के लिए अच्छी सूचना लेकर आ रहा है। अगर वृषभ वाले इस समय प्रयास करें, वृषभ राशि वाले इस समय कोशिश करें तो इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, खास तौर से प्रॉपर्टी के और करियर के रुके हुए काम बन जाएंगे। वृषभ वालों को करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, या तो प्रमोशन होगा या मनचाहा परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन अच्छा रहेगा। वृषभ वालों के लिए स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है और ये स्थान परिवर्तन कुल मिला जुला के आपके लिए बेहतर सूचना और बेहतर संकेत दे रहा है। यानी ये ग्रहण के बाद का जो एक महीने का समय है वो कुल मिला जुला के वृषभ वालों की जिंदगी को बेहतर बनाएगा। परिवर्तन होंगे लेकिन परिवर्तन फायदेमंद रहेंगे। ग्रहण का फायदा कैसे उठाएं? जितने समय ग्रहण चल रहा है लगभग रात में 9:30 बजे से 1:30 बजे तक, उस समय में थोड़ा समय निकाल कर एक बार या 3 बार अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि। कुछ चीजें मिथुन वालों के लिए बेहतर हुई हैं, जीवन में अच्छा परिवर्तन हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिथुन वालों के लिए बेहतर नहीं हैं। परिवार और करियर को लेकर जूझ रहे हैं। मिथुन वालों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव है? सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। मिथुन वाले अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत अलर्ट रहें, कोलेस्ट्रॉल को लेकर, पेट को लेकर इस समय दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं और इस समय आपके बहुत प्रयास करने के बावजूद आपके महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, महत्वपूर्ण काम इस समय आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं, लंबी यात्रा है तो बहुत जरूरी ना हो तो ना जाएं, और अगर जाने की जरूरत ज्यादा है तो गाड़ी चलाने में या यात्रा करने में आपको बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा। अब ग्रहण की मुश्किल से बचेंगे कैसे? ग्रहण के दौरान लगभग 9:30 बजे से
डेढ़ बजे के बीच में थोड़ा समय निकाल करके एक बार नारायण कवच पढ़ लीजिएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और आटे का दान करिएगा या रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ग्रहण के दुष्प्रभाव से बहुत हद तक बच पाएंगे। कर्क राशि, मानसिक दिक्कतें, भावनात्मक समस्याएं आपको काफी परेशान कर रही हैं और काफी समय से जो प्रयास आप कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। सूर्य ग्रहण की वजह से कर्क राशि वाले सावधान रहें क्योंकि उनके करियर में अगले एक महीने में समस्या दिख रही है। चूंकि ग्रहण कर्क राशि में ही लग रहा है इसलिए कर्क राशि पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। करियर में आपके दिक्कतें आ सकती हैं और इस समय आपको स्थान बदलना पड़ सकता है, इस समय आपका चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है। अपनी मैरिटल लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन का और अपने रिश्तों का बहुत ध्यान रखें। जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं ऐसे कर्क राशि के लोग इस समय सतर्क रहें क्योंकि विवाह टूटने की नौबत आपकी आ सकती है। और नौकरी में अगर दिक्कत आती है थोड़ा सब्र करिएगा, कुछ समय बाद आपको बेहतर मौके मिल जाएंगे। जितने समय ग्रहण चल रहा है उसमें कम से कम 3 माला या 11 माला सूर्य मंत्र का जप करिएगा। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और आटे का दान करिए या गेहूं की रोटी में गुड़ रखकर गाय को खिलाइएगा, ग्रहण का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। सिंह राशि, पारिवारिक तनाव इस समय बहुत है, करियर में मुश्किलें आ रही हैं, स्वास्थ्य भी कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। तो अगर हम सिंह राशि के लिए ग्रहण की बात करें तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है। अपनी मैरिटल लाइफ को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर सतर्क रहिए क्योंकि बेवजह के विवाद हो सकते हैं, घर की अशांति बढ़ सकती है। इस समय ऐसा कोई काम मत करिए जिससे दुर्घटना हो। वाहन सावधानी से चलाएं, परिवार में, ऑफिस में, पड़ोसियों के साथ बेवजह के वाद विवाद से सावधान रहें। आपकी नौकरी या कारोबार यानी आपका करियर जिस भी तरह चल रहा है उसको चलने दीजिए। इस समय अपने करियर में किसी प्रकार का कोई जोखिम मत लीजिएगा। इस समय अगर करियर बदलने का रिस्क लेंगे तो आप किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं।
ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप करिएगा, लगभग 9:30 बजे रात से 1:30 बजे तक ग्रहण का समय है। इस समय में 3 माला या 11 माला ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो ग्रहण की मुश्किलों से बच जाएंगे। कन्या राशि, पहले की तुलना में कन्या वालों का समय बेहतर हो गया है और ग्रहण के परिणाम भी कन्या वालों के लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। ग्रहण के प्रभाव से अगले 1 महीने में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर कोई करियर का मामला है, अगर रुके हुए पैसे का मामला है, अगर पैसा आने का मामला है, तो ये तमाम काम इस 1 महीने में पूरे होंगे। करियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी, करियर में आपकी ताकत बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। आप बहुत दिनों से अगर जाना चाहते थे या ट्रांसफर चाहते थे तो वो इस समय कन्या वालों का हो सकता है। कन्या वाले अपने महत्वपूर्ण काम अगले 1 महीने में निपटाने का प्रयास करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको ग्रहण का पूरा लाभ मिल जाए आने वाले समय में, इसीलिए ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा कम से कम 3 बार या 7 बार पढ़िएगा। अगर आप ग्रहण के दौरान ऐसा करें तो आपको लाभ होगा। तो मेष राशि से लेकर और कन्या राशि तक आपने देखा कि वृषभ राशि के लिए और कन्या राशि के लिए ग्रहण के परिणाम अच्छे हैं। अब तुला राशि से मीन राशि तक जानते हैं कि इनके लिए ग्रहण के परिणाम क्या हैं। देखिए, तुला वालों का वक्त अच्छा चल रहा है और तुला वाले अपने जीवन में धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहे हैं। इस समय जो ग्रहण आया है, इस ग्रहण से भी आपको लाभ होगा। आपके काम में अगर किसी तरह की रुकावट चली आ रही है, किसी तरह की दिक्कत चली आ रही है, तो आपके काम की रुकावट दूर होगी। खास तौर से करियर के मामले में कोई काम रुका हुआ है, विदेश से संबंधित कोई काम रुका हुआ है, तो वो काम इस समय पूरा होगा। आपकी सेहत के मामले में और आपके जीवन के मामले में इस समय सुधार होगा, स्वास्थ्य और जीवन आपका बेहतर होगा। तुला वाले अगर थोड़ा सा प्रयास करें, मेहनत करें इस समय, इस 1 महीने में, तो उनको आकस्मिक धन का लाभ हो सकता है। फंसा हुआ रुका हुआ पैसा भी इस समय तुला वालों को बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो तुला वाले ग्रहण का पूरा फायदा कैसे उठाएंगे? जितने देर ग्रहण का समय है, रात में 9:30 बजे से लगभग 1:30 बजे तक, 12 और 13 अगस्त की मध्य रात्रि में, इस ग्रहण के दौरान 3 बार या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। अगर आप ग्रहण के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपका कल्याण होगा, ग्रहण का ज्यादा से ज्यादा फायदा आपको प्राप्त होगा।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक वालों के जीवन में परिवर्तन का समय है। प्रेशर जरूर है इनके ऊपर, लेकिन ये धीरे धीरे इस समय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव हम देखें तो वृश्चिक वाले अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। स्वास्थ्य की समस्या, खास तौर से पेट की, किडनी की, यूरिन की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। सेहत को लेकर सावधानी बनाए रखें। पारिवारिक समस्याएं भी इस समय हो सकती हैं, खास तौर से संतान पक्ष के साथ या माता पिता के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। संतान पक्ष और माता पिता के पक्ष को देखना जरूरी है।

आप प्रयास कर रहे हैं, जो आप कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश में रुकावटें हो सकती हैं, इस बात की सावधानी बनाए रखिएगा। ग्रहण के बाद यानी 13 अगस्त को प्रातः काल किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दें, या मंदिर में दे आएं, या गाय को खिला दें। ग्रहण के बाद गुड़ का दान करने से आप सूर्य ग्रहण की मुश्किलों से बचे रहेंगे। धनु राशि, शनि की ढैया भी है आपके ऊपर और जीवन से जो सपोर्ट है, जीवन का जो मजबूत हिस्सा है, वो कमजोर हो रहा है। धनु वालों की मानसिक परेशानियां बहुत हैं इस समय, अपने परिवार और अपने लोगों को लेकर के। और ग्रहण भी आपके 8वें स्थान में लग रहा है, तो आपके लिए ग्रहण ज्यादा निगेटिव है। धनु राशि वाले अगले 1 महीने तक सेहत का बहुत ध्यान रखें, अपने हृदय का, अपनी हड्डियों का, चोट चपेट का और डाइजेशन का बहुत ध्यान रखें। अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप चोट चपेट के दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, इसलिए अगले 1 महीने तक वाहन चलाने में सतर्क रहें, दुर्घटनाओं से बचाव करें, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देंगे। देखिए, धनु वालों के जीवन में इस समय ऐसे मौके आएंगे जब वो गलती करें और मुश्किल में पड़ें, इसीलिए धनु वालों को कहना ये है कि जल्दबाजी में आकर के, भावनाओं में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ग्रहण के दौरान 9:30 बजे रात से 1:30 बजे तक मोटे तौर पे ग्रहण है, 12 और 13 की मध्य रात्रि वाले स्थिति में। तो ग्रहण के दौरान 1 बार या 3 बार नारायण कवच पढ़िएगा, ताकि अगले 1 महीने तक आप सुरक्षित बने रहें। और ग्रहण के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ और गेहूं का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं ग्रहण के साथ, तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बच पाएंगे। जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है वो आपके ऊपर कम हो जाएगा। मकर राशि, मकर वालों के जीवन में कुछ चीजें बेहतर हैं और कुछ चीजें खराब हैं। जैसे करियर में उठापटक चल रही है, परिवार का मामला ठीक है, तो ग्रहण की वजह से करियर में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, ग्रहण की वजह से करियर में समस्या आ सकती है। और करियर में मुश्किल की वजह से आपका ट्रांसफर हो सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, इसलिए ऑफिस में शांति रखिए, कोई ऐसा काम मत करिए कि नौकरी में आपको दंड मिले। वैवाहिक जीवन में शांति रखें और जो आपके मित्रों के साथ आपके संबंध हैं, जो मित्रों के साथ आपका रिश्ता है, उसका विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। ग्रहण का प्रभाव मकर वालों के करियर में उठा पटक दिखा सकता है, सावधान रहना चाहिए। ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप करिएगा, 3 माला या 11 माला ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का और आटे

का दान करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक परेशानी बहुत है और बहुत सारे काम आगे बढ़ बढ़ के रुक रहे हैं आपके। ऐसे इस कठिन समय में ग्रहण आपको सपोर्ट करने आ रहा है। अगले एक महीने तक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य में और मानसिक स्थिति में सुधार होगा, मन मजबूत होगा, सेहत अच्छी होगी, बीमारियां कम होंगी, नए काम की और करियर की शुरुआत इस समय हो सकती है, करियर में आपको सफलता मिलेगी और आपके काम के लिए, आपकी मेहनत और आपके प्रयास के लिए आपको सम्मान मिलेगा। जीवन में बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। तो कुंभ वालों की मुश्किलें कम होंगी, मानसिक शारीरिक स्थिति बेहतर होगी और करियर में लाभ होगा। ग्रहण के दौरान अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ लें 3 बार या 7 बार तो ग्रहण का पूरा लाभ आप उठा पाएंगे। मीन राशि, मीन वालों के जीवन में थोड़ा बदलाव चल रहा है और परिवार को लेके, भावनाओं को लेके थोड़ी परेशानी हो रही है। तो मीन वालों के ऊपर सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है, इनकी सेहत बड़ी तेजी से बिगड़ सकती है। इसलिए मीन राशि के लोग अगले एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर आप बिजनेस के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कोई कोशिश कर रहे थे तो वो महत्वपूर्ण काम कुछ दिनों के लिए रुक सकता है। परेशान मत होइए, कुछ दिनों बाद आपका काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। यात्राओं में विशेष सावधानी इस समय मीन वालों को रखनी है, क्योंकि दुर्घटना के योग आपके साथ बने हुए हैं। किसी भी छोटी या बड़ी यात्रा पर जाने में सतर्कता बनाए रखिएगा। ग्रहण के दौरान यानी 12 अगस्त की रात के लगभग 9:30 बजे से और 13 अगस्त के मिडनाइट में लगभग 1:30 बजे तक ग्रहण है, तो इस दौरान सूर्य मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और ग्रहण समाप्त होने के बाद 13 अगस्त को प्रातः काल गुड़ का और गेहूं के आटे का दान करिएगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: झारखंड के देवघर में स्थित बैद्यनाथ धाम में शिव भक्तों का मेला लगा हुआ है। यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान भोले का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं कांवड़ मार्ग पर भव्य छटा देखने को मिल रही है। मुंगेर के रास्ते कांवड़ लेकर देवघर की ओर बढ़ते हुए शिव भक्त लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। देखिए

0: श्रावणी मेले की शुरुआत के साथ ही झारखंड के देवघर स्थित बैद्यनाथ धाम में आस्था का हुजूम उमड़ रहा है। सुल्तानगंज से जल भरकर यहां बड़ी संख्या में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देवघर जाने के रास्ते में कांवड़ यात्रियों की आस्था और भक्ति के कई तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बिहार के मुंगेर में असरगंज स्थित कच्ची कांवड़िया पथ से हर दिन बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री गुजर रहे हैं। कोलकाता से 15 शिव भक्तों के एक जत्थे ने लोगों का विशेष रूप से अपनी ओर ध्यान खींचा। ये जत्था लगभग 80 किलो वजनी माँ तारा की भव्य प्रतिमा को कांवड़ के रूप में अपने कंधों पर लेकर बैद्यनाथ जा रहे हैं। 4 शिव भक्त मिलकर इस प्रतिमा को उठाए हुए हैं और पूरा मार्ग बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है।
1: इस बार हम लोग माँ तारा को लेकर जा रहे हैं। ये हम लोग इस साल लेकर 6 साल हो गया। 3 साल लेकर आए थे, हम लोग का बाघ आया था जो 70-80 किलो वेट में आता था, और 3 साल से हम लोग झांकी कर रहे हैं। पहला साल आदि योगी किए, दूसरा साल किए हनुमान जी, और तीसरा साल ये लेकर जा रहे हैं अपने माँ तारा को।
0: देवघर जाने के रास्ते में बोलबम के जयकारे के बीच भगवान शिव के वेश में जा रहा ये शिव भक्त भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। मुंगेर के ही रहने वाले सत्यपाल हर वर्ष महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने इसी रूप से सुल्तानगंज से पवित्र जल लेकर बाबा धाम पैदल जाने का संकल्प लिया है।
2: समस्त जीवों का कल्याण हो, धरती हरी फूली रहे, सभी लोग जिए खुश रहे।
0: वहीं मधुबनी के रहने वाले रमेश डाक बम को देखिए, जो कांवड़ यात्रा में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। रमेश पिछले 2 वर्षों से आंखों पर इसी तरह पट्टी बांधकर सुल्तानगंज से गंगाजल लेकर बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं। साथ चल रहे साथी रमेश को रास्ता दिखाते हुए बोल बम का जय घोष करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रमेश ने संतान प्राप्ति की मन्नत मांगी है और जब तक वो पूरी नहीं होती, ये इसी तरह सावन मास में आंखों पर पट्टी बांधकर बैद्यनाथ धाम जाने की बात कहते हैं। बैद्यनाथ धाम पहुंचकर ये शिव भक्त वहां भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं। सावन मास के 8वें दिन भी यहां बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों की भीड़ उमड़ी।
3: हमारे बाबा बैद्यनाथ जी प्रमुख हैं, क्योंकि यहां पे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति होती है, और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ कामना लिंग भी है और शक्तिपीठ भी है। माता सती का यहाँ पे हृदय गिरा है, उस काम से भगवान की यहाँ पे जो भी आराधना लेके, जो भी अर्चना लेके, जो अपनी मनोकामना लेके आते हैं, वो बाबा पूजा पूरा करते हो। खासकर सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कंवरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कंवरिया बन के आते हैं और बाबा बैद्यनाथ सब की मनोकामना पूरी करते हैं।
0: बैद्यनाथ धाम की विशेष मान्यताओं को लेकर यहां श्रद्धालुओं का हुजूम लगा रहता है। विशेषकर सावन मास में यहां लाखों की संख्या में शिव भक्त पहुंचते हैं। इस हफ्ते 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां भगवान भोले का जलाभिषेक कर चुके हैं। मुंगेर से गोविंद कुमार और देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर। राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
9: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में मचेगी रिश्तों में खलबली। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
11: बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ की पवित्र यात्रा जारी, मेरठ में सीएम योगी ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल, कांवड़ रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी से प्रशासन की नजर।

0: बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह। बड़ी संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के दर्शन। अब तक करीब 14,44,000 श्रद्धालु पहुंचे धाम। सावन में बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। कांवड़ियों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा परिसर। हजारों की संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के दर्शन। आईआईटी दिल्ली में 57वां दीक्षांत समारोह। पीएम मोदी ने छात्रों को किया संबोधित। 3,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून दिखा रहा है अपने रंग। लगातार हो रही है झमाझम बारिश जिससे लुढ़का पारा। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। क्रिकेट फैंस को श्रीलंका बोर्ड का बड़ा तोहफा। भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री। 15 अगस्त से गोल में होगा टेस्ट मैच।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
0: केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। कांवड़ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा। चौदह लाख 44,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में कर चुके हैं दर्शन पूजन। मानसून सीजन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए धाम पहुंच रहे हैं। सोनप्रयाग में वाहनों से फुल हुई पार्किंग। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क। बद्रीनाथ धाम में भी लगा भक्तों का तांता। सावन के महीने में बढ़ी भक्तों की संख्या। दिख रहा है सावन के महीने का उत्साह। भक्तों से भरा नजर आ रहा है धाम का मंदिर परिसर। बाजार और यात्रा मार्ग मॉनसून के बावजूद यात्रा में मुख्य सीजन जैसी भीड़। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा अनोखा शिव भक्त। कमर पर बांधी है 3 किलो की घंटी। खुद को कह रहा है दो पांव वाला भोले का नंदी। ब्रजलाल पिछले 10 साल से अपनी कमर पर करीब 2.5 से 3 किलो की पीतल की घंटी बांध कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। महज 10 साल की उम्र से अपने पिता के साथ शुरू की थी प्रथा। दरअसल बचपन में पिता के साथ कांवड़ यात्रा करते समय खो जाने के डर से पिता ने बांधी थी ब्रजलाल की कमर में घंटी। तभी से इस तरह यात्रा कर रहे हैं ब्रजलाल। एटा में दिखी कलयुग के श्रवण कुमार जैसी अनोखी कांवड़। पिता की इच्छा पूरी करने को लिए 4 बेटों ने कंधे पर उठाई अनोखी कांवड़। कांवड़ में एक तरफ अपने पिता को बैठाकर दूसरी ओर करीब 155 किलो गंगाजल रखकर यात्रा शुरू की अनोखी कांवड़। तो वहीं यात्रा मार्ग पर सभी भक्त से नजारा देखकर भावुक। सावन के महीने में शिव भक्ति से सभी सराबोर हुए। कांवड़ यात्रा में हर उम्र के श्रद्धालु हुए शामिल। चित्रकूट में भी दिख रहे कांवड़ यात्रा के अनूठे रंग। भगवान शिव की सुंदर पालकी के साथ बम भोले का उद्घोष। यूपी के बांदा में भी नजर आ रहा है कांवड़ यात्रा का उत्साह। भगवान श्री राम की तपोस्थली से जल लाकर भगवान शिव को करेंगे अर्पित। बुलडोजर से की गई कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा। फलाहार बांटते और कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आए लोग। बांदा के बम्बेश्वर शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ 500 कांवड़ियों का जत्था। बाबा भोले के अभिषेक के लिए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का ले जा रहे हैं जल। कांवड़ यात्रा के चलते यूपी के बिजनौर में सभी स्कूल आज बंद। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने जारी किया आदेश। सहारनपुर में अनोखी हाईटेक डीजे नाइट बनी कांवड़ियों का सबसे बड़ा आकर्षण। भोले के भजनों पर झूमते हुए नजर आए शिव भक्त। यात्रा की थकान को भुलाने के लिए आयोजित की जा रही है अनोखी भक्तिपूर्ण नाइट, जहां डीजे पर बजाए जाते हैं केवल शिव भजन, जिन पर पूरे उत्साह के साथ झूमते हुए नजर आते हैं कांवड़िए। मुजफ्फरनगर में अलग अलग शिव भक्तों की टोलियों के बीच नजर आया आंखों पर पट्टी बांधकर कांवड़ यात्रा करता हुआ भक्त। गौ माता की रक्षा का संदेश देते हुए यात्रा कर रहे हैं, सुनिए। सुनील ने 4 अगस्त की रात गंगाजल उठाने के साथ ही अपनी आंखों पर बांध ली थी पट्टी, जिसे वो 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करने तक नहीं खोलेंगे। सहारनपुर में कांवड़ियों पर बरसे फूल। पुलिस ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया। हर हर महादेव से गूंजा घंटाघर चौराहा। फूलों की बारिश के बीच दिखा भक्तिमय माहौल। पुलिस ने पेश की सेवा की मिसाल। कांवड़ियों का सम्मान कर बढ़ाया उत्साह। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बन रही है एसडीआरएफ की टीम। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा का रखा जा रहा है खास ख्याल। कांवड़ मेले में एसडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। सुरक्षा के लिए संवेदनशील घाटों पर निगरानी। एसडीआरएफ ने कांवड़ियों से सतर्क रहने की अपील की। ड्रोन से कांवड़ मेला क्षेत्र की निगरानी। आपदा में भी मददगार साबित होगा ड्रोन। श्रद्धालुओं को पानी और फल बांट रही है एसडीआरएफ। समस्तीपुर में सजा सावन महोत्सव। महिलाओं ने गीत संगीत पर जमकर किया नृत्य। हरे रंग में सजी महिलाओं ने मनाया सावन। मेहंदी झूले और गीतों से छाया उत्साह। सावन के गीतों पर झूमी सुहागनें। भोलेनाथ से खुशहाली की मांगी काम। महिलाओं के डांस ने बांधा समा। लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। छाता लेकर महिलाओं ने किया फैशन शो। सावन की थीम पर नजर आई अनोखी प्रस्तुति। झूलों और कजरी गीत से गूंजा महोत्सव। सावन बना उमंग और उत्सव का पर्व। सावन महोत्सव में बांटी गई सुहाग की सामग्री। मेहंदी और हरियाली ने बढ़ाई सावन की रौनक। पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई महिलाएं। श्रावण मास के दौरान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भारी संख्या में उमड़ रही भक्तों की भीड़। सरयू में लगा रहे पवित्र डुबकी। बारिश और खराब मौसम के बावजूद देश के अलग अलग कोनों में आ रहे हैं श्रद्धालु। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लगातार हो रही है देवघर जाने वाले कांवड़ियों की भीड़। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद कांवड़िया बैद्यनाथ धाम की तरफ हो रहे हैं रवाना।
2: आशीर्वाद।
0: पूर्व रेलवे स्टेशन पर दिख रही है कांवड़ियों की भीड़। सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन सतर्क। स्टेशन पर कांवड़ियों की हर सुविधा का रखा जा रहा है खास ख्याल। रेलवे पुलिस के अतिरिक्त जवान भी तैनात। सहारनपुर में कांवड़ियों की थकान होगी छूमंतर। तमाम मेडिकल सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया डॉक्टर्स की टीम तैनात। तो वहीं मेडिकल कैंप भी। इस शिविर में कांवड़ियों के लिए इलाज और प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। साथ ही थकान और पैरों के दर्द से राहत के लिए फुट मसाज और थाई मसाज मशीनें भी लगाई गई। शिविर में दो मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए। एक समय में करीब 600 मोबाइल किए जा सकते हैं चार्ज। पिछले 20 सालों से लगाया जा रहा है कांवड़ियों के लिए मेडिकल कैंप। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भी सुरक्षा बल सतर्क। आने जाने वाले लोगों और वाहनों की जांच हुई तेज। जम्मू से रोकी गई अमरनाथ यात्रा खराब मौसम के साथ अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के अनुमान और तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी के कारण लिया गया फैसला। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के किए दर्शन और शयन आरती में भी हुए शामिल। पारंपरिक रूप से बाबा महाकाल का पूजन कर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आशीर्वाद दिया। प्रदेशवासियों के कल्याण, सुख और समृद्धि की कामना।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
3: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है। मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है। और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयाँ खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर। एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो। नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस। इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर। और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो 2-3 बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद। यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में ये है इंद्रायन। ये है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
8: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में मचेगी रिश्तों में खलबली। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
1: चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: सेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ की पवित्र यात्रा जारी, मेरठ में सीएम योगी ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल, कांवड़ रूट पर ड्रोन और सीसीटीवी से प्रशासन की नजर। बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में खासा उत्साह, बड़ी संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के दर्शन, अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम। सावन में बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, कांवड़ियों की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा है परिसर, हजारों की संख्या में भक्त रोजाना कर रहे हैं भगवान के दर्शन। आईआईटी दिल्ली में 57वां दीक्षांत समारोह, पीएम मोदी ने छात्रों को किया संबोधित, 3,000 से ज्यादा छात्रों को डिग्री। दिल्ली एनसीआर में मॉनसून दिखा रहा है अपने रंग, लगातार हो रही है झमाझम बारिश जिससे लुढ़का पारा, पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों में बादलों का डेरा। क्रिकेट फैंस को श्रीलंका बोर्ड का बड़ा तोहफा, भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए स्टेडियम में मिलेगी फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गोल में होगा टेस्ट मैच।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: टैटू एक ऐसा माध्यम जिससे लोग अपने शरीर पर कलाकृतियां बनाते हैं, ये तो एक बहुत पुरानी कला है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। टैटू बनाने की प्रक्रिया में रंगीन स्याही को सुई के माध्यम से त्वचा के अंदर डाला जाता है जो स्थायी रूप से दिखती है। तो आज तो टैटू के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें, और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का ये सफर हेडलाइंस के साथ।
9: जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना।
10: रिटायरमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटियां के वीकेंड स्पेशल एपिसोड में आज देखिए संजय और स्वाति के फेरों में दुल्हन बनेगी वृंदा। रूहानी की हल्दी में तेजू लगाएगी जबरन हल्दी। विक्रांत का होगा घर में ग्रह प्रवेश, धैर्य के चलते छिपाएंगे इमोशंस। ईशा के लिए दादा भाई बनेंगे फिर से सूरज। दादी होगी राध्या से नाराज, राध्या पर आएगी नई मुसीबत।
9: अब कहां जाओगे?
10: ईशान संग होगा हादसा, नयनिका होगी परेशान। और साथ ही करेंगे मुलाकात नियति फतनानी से, जो जल्द ही नजर आएंगे।

0: छाने वाले टैटूज, क्योंकि कुछ ऐसा ही चलता है इनके दिमाग में। अब देखिए, ये तो सौतन है तो इनका तो यही काम है। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको इस जुनूनी के सेट पर और देखते हैं क्या है यहाँ पर, किसी नए इश्क का जुनून या फिर किसी नए ट्विस्ट का।
1: तेजस्वी की जोर जबरदस्ती,
2: तेरे माथे झूमर दमके, तेरे कान
1: शुरू हुई रूहानी की हल्दी
2: है

0: दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में जल्द होने वाली है गौतम और रूहानी की शादी और आज हो रही है उनकी हल्दी की रस्म, जहां पर सभी घरवाले पीले रंग में रंग गए हैं और रूहानी भी सज धज कर पहुंच गई है हल्दी लगवाने के लिए, लेकिन सभी को गौतम का इंतजार है और वहां कमरे में गौतम नशा कर रहा है क्योंकि वो खुश हो रहा है रूहानी को पाने के लिए, लेकिन उसे ये नहीं पता कि गुरु ने उसमें मिलावट कर दी है जिसके चलते गौतम को चक्कर से आने लगे हैं और वो अपने ही चेयर पर गिर जाता है। इतना ही नहीं, उसकी तो आंख भी लग जाती है और तभी वहां पर आती है तेजस्वी और ललिता मामी गौतम को ले जाने के लिए।
1: गौतम बाबू, अरे आप खोलिए, इससे पहले कि टीटी के बेटी मतलब वो रूहानी चिड़िया उड़ ना जाए। भैया प्लीज उठिए,

0: 喂，喂，
1: 阿姑，哈，你，阿姑，今天你咩人喊咩？我个他咩的？
2: मैं हूँ तेजस्वी और आपको कहा था ना इतना मत पीजिए, ये लीजिए। और हल्दी की रस्म कैसे करेंगे आप ऐसे नशे में?
1: कोई बात नहीं, अभी उठ गए हैं, आँख खोलिए, शाबाश, आँख खोलिए।
2: भैया,
1: अरे राम, अरे तेजू
3: भाई, गुरु को तो बस मौका चाहिए था गौतम की जगह लेने का। ऐसे में देखिए कैसे उसने भी अपना भेष बदल लिया और गौतम को बेड के बगल में छिपा दिया ताकि कोई उसे देख ना सके। इतना ही नहीं, उसकी नजर पड़ जाती है तेजस्वी पर जो हल्दी का कटोरा लेकर आ रही है। बस फिर क्या, ऐसे में आनन फानन में गुरु ने टावल अपने मुंह पर डाली और उसी चेयर पर सो गया।
1: तो मैं सिर्फ

0: लो, हो गई झूठी अंधी। ये अंधी जाके रुखानी को लगा।
1: अनजाने में ही सही, तेजू ने गुरु के हाथों में हल्दी लगा दी और पहुंच गई सीधा रूहानी के पास हल्दी लगाने के लिए। लेकिन रूहानी ने हल्दी लगाने से मना कर दिया क्योंकि वो चाहती है कि गौतम उसके सामने आए और वो गौतम की ही झूठी हल्दी लगाना चाहती है। लेकिन ऐसे में तेजू को आ गया गुस्सा और देखे कैसे वो जोर जबरदस्ती करने के लिए आगे बढ़ गई। असल में मौका पाते ही रूहानी को उसकी बहन ने बता दिया कि कैसे गुरु ने हल्दी लगाने का खेल खेला है और गौतम को बुद्धू बना दिया उसके हाथों में भी हल्दी लगाकर। ऐसे में रूहानी खुश हो गई कि ये हल्दी गुरु की झूठी है। बस फिर क्या, वो बैठ गई हल्दी लगवाने के लिए और तो और गुरु का परिवार खुद आगे बढ़ गया रूहानी को अपने हाथों से वो हल्दी लगाने के लिए।
2: रब दे महल, अखियां चो डिग दे हंजू खुशियां दे।
1: खैर हल्दी की रस्म तो अच्छे से हो गई, लेकिन रूहानी और गुरु फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और उनकी चाल से अनजान गौतम हल्दी की रस्म में शामिल हो जाता है और सभी से रस्म शुरू करने के लिए कहता है।

0: और फिर उसे लगता है जोरदार झटका।
1: जल्दी की रस्म नहीं करनी, रोहानी का है।
0: खैर, गौतम को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि नागेश्वर को कितना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सभी उसका इंतजार जो कर रहे थे। फिलहाल तो गौतम ने सभी को फटाफट रेडी होने के लिए कह दिया, और इस बात से नागेश्वर अपने आप को रोक नहीं पाए और वो गौतम के ऊपर बरसने लगे, लेकिन गौतम ने उन्हें करारा जवाब दे दिया। और ये सारा नजारा छुप छुप कर गुरु और रूहानी दोनों ही देख रहे हैं।
2: मुझे लगता है कि आपको इससे दास दिया। पहले मेरे गुलाम हैं, और अगर इतनी परेशानी और दिक्कत हो रही है ना मेरे तौर तरीकों से, तो अपना सामान उठाइए और मेरी कोटी से दबाव जाइए।
0: अब गौतम तो ये अकड़ इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि रूहानी ने उसे शादी करने के लिए हामी जो भर दी है, लेकिन गौतम को नहीं पता कि उसके साथ गुरु और रूहानी मिलकर खेला खेल रहे हैं। देखना होगा क्या गौतम को सच पता चल पाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: राधिया तो हमसे कह रही हैं कि ये जो टेम्पररी टैटूज होते हैं ये कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक चलते हैं, लेकिन जो परमानेंट टैटूज होते हैं वो तो सालों तक टस से मस नहीं होते। वैसे देखिए यहाँ पर राधिया, हम तो चाहते हैं कि इसी तरह परमानेंट हो आपकी और प्रथम की ये जोड़ी, ना आए कहानी में कोई भी ऐसा ट्विस्ट जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग करे, और ना आए आप दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकर चलते हैं आप सबको मन अति सुंदर के सेट पर और दिखाते हैं इस कहानी का क्विक अपडेट।
0: बदला राध्या का अंदाज।
4: अब कहाँ जाओगे?
5: चलो नीचे और गुरुजी से माफी मांगो। चलो मैं, चलो।
0: दादी फिर हुई राध्या पर नाराज। सीरियल में नए ट्विस्ट का आगाज।
6: हमारे प्यार को किसी की नजर न लगे।
0: टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में राध्या और प्रथम के रिश्ते को फिर से लगने वाली है नजर, क्योंकि होने वाली है एंट्री विश कन्या की, जिसके वश में आ गई है राध्या। तभी तो देखिए कैसे राध्या जब घर में पूजा की तैयारी के लिए आंगन से फूल तोड़ती है, तो पहले तो वो नॉर्मल राध्या रहती है, लेकिन अचानक न जाने उसे क्या हो जाता है कि वो एक एक कर सारे फूल चुनने लगती है। इसी बीच प्रथम आता है जो राध्या का नाम पुकारता है, जिसके चलते राध्या फिर से होश में आती है। और तो और प्रथम, जो कि सच से अनजान है कि इनके घर में विष कन्या आ चुकी है, वो फूल तोड़कर राध्या के बालों में पहनाता है। ऐसे में राध्या प्रथम को मना भी करती है, लेकिन प्रथम तो ठहरा राध्या का प्रेमी। खैर, प्रथम वो फूल वापस अपनी जेब में रख लेता है और वादा करता है कि वो उसे फूल फिर से पहनाएगा।

0: दरअसल अभी फाइनली एक बला टली है हमारे सर से, हमें हमारा घर वापस मिला है, पर राधावृत हम बाहर गए हुए हैं और बहुत मौसम ख़राब हो जाता है, तो शेल्टर ढूंढने के लिए गुफा में पहुंच जाते हैं और राधा वहीं पे एक पडल में से पानी पी लेती है, तब से विषकन्या उनके पीछे लग गई है। तो अभी राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें पूजा से प्रॉब्लम हो रही है, मंत्रों से प्रॉब्लम हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। प्रथम भी एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो अब देखते हैं कि विषकन्या आगे आगे क्या क्या करेंगी और कितने तूफान लाएंगी, राध्या उनको चेंज करेंगी या वो राध्या को चेंज करेंगी, वो आप देखिए शाम 7:30 बजे।
1: डरावना सा दिखाने वाले हैं दर्शकों को कि कैसे ये लोग एक केव में ट्रैप हो जाते हैं और गुफा में से एक शय बला जो पुरानी कोई वहाँ बस रही होगी वो छमछम करती हुई राध्या के साथ साया बनकर उसके साथ साथ गाड़ी में आ जाती है और वो गाड़ी के साथ हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। तो ये जो शय बला है इसने घर में आतंक मचाना है, डर, हर इंसान यहाँ पे डरेगा, ये नया ट्रैक है।
2: प्रथम और राध्या दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन घर में पूजा होने वाली है और पूजा होने से पहले ही बिगड़ गई है राध्या की तबीयत और वो पूजा आसन से उठकर कमरे में आ जाती है। ऐसे में उसकी ये हालत देखकर प्रथम हैरान हो रहा है, उसकी केयर कर रहा है कि तभी गुस्साई दादी आकर राध्या पर भड़कने लगती है और तो और राध्या पर इल्जाम भी लगाती है कि राध्या ये सब जान बूझ कर कर रही है।
3: घर की बहू होकर बीच पूजा में से उठकर चलिए, शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? चलो नीचे और गुरुजी से माफी मांगो, चलो मैं चलो।
4: दादी की तबीयत ठीक नहीं है, देखिए तो।
3: तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो गुरुजी चल रही थी, ऐसा क्या हो गया अचानक? हाँ, हमें याद आ गया, जरा सा डांट क्या दिया उस सड़े फूलों के ऊपर, तो महारानी मुंह फुलाकर पड़ गई है बिस्तर पर, है ना?
4: देखिए अपना अपनी साथी को तंग ना कीजिए, अच्छे
3: क्या कर रही हैं?
4: देखिए तो राधे की तबीयत ठीक नहीं है।
3: अच्छा,
1: अरे घर में पूजा पाठ चल रही है, ग्रह शांति की पूजा चल रही है और घर की बहू उठकर गायब, अपशगुन है कि नहीं? तो और वैसे भी मुझे तो उसकी हर बात में अपशगुनी लगती है, मैं क्यों छोड़ूंगी उसको, मौका मिला और चलो दे धनाधन।
2: बिल्कुल सही कहा, दादी को तो बस मौका चाहिए, लेकिन आज जैसे ही प्रथम राध्या की देखरेख में लगता है तो दादी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो तो प्रथम को चोरू का गुलाम तक कह देती है।
3: इस औरत ने तो तुम्हें अपनी मुट्ठी में कर लिए, हालत तो देखो अपनी, अरे तोते की तरह टर टर उसी की भाषा बोले चले जा रहे हो।
4: तो प्यारे दादी सब कुछ नहीं, देखो आपने तो दादी समझ राधा की तबीयत सच में ठीक नहीं है दादी, अभी आप जाइए, देखिए नीचे गुरुजी आए हैं ना, आप उनके पास आइए प्लीज, राधा को रेस्ट करने दो, अब जाओ।
1: अरे वही तो मुझे हैरानगी हो रही है, क्या है इस बच्चे को, मेरा बेचारा भोला सा प्रथम, और देखो ना इस लड़की ने उसको कैसे जादू टोने से उसको अपनी मुट्ठी में काबू में कर लिया है, रिमोट कंट्रोल करती है उसको हर जगह, ऐसे थोड़ी होता है।
2: खैर दादी को तो अब यही लगता है कि प्रथम उनकी बात नहीं मानेगा, ऐसे में वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है और प्रथम जिसे राध्या की परवाह है वो राध्या को बिस्तर पर जाकर सुला देता है ताकि राध्या आराम कर सके। और जैसे ही प्रथम वहाँ से जाता है तो राध्या की अचानक आँख खुलती है और वो विषकन्या के वश में आकर बुद्ध की तरह बैठ जाती है। अब देखना होगा कि घर वालों को ये बात पता चल पाएगी कि राध्या मुश्किल में है। है ये तो सीरियल की कहानी है, लेकिन आज सेट पर राध्या यानी कि तनिष्क सेठ की मम्मी आई हुई हैं, जिसके चलते राध्या का चेहरा ग्लो कर रहा है। तो आइए करते हैं बात तनिष्क और उनकी माँ से और जानते हैं राध्या के बारे में।
0: बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मा आई है तो मम्मा के आने से सब कुछ अच्छा ही लगता है। साइड पे भी काफ़ी सारे लोगों से मम्मी की बहुत जमती है, एक तो पीछे ही खड़ा है हमारे तो अच्छा अच्छा माहौल रहता है मम्मा के आने से, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ नहीं होता है मेरे ऊपर।
5: हाँ अच्छा लगता है, बेटी हमारी यहाँ तक पहुँची, मेहनत किया है, मेहनत सफल हो गया तो बहुत अच्छा लगता है।
0: मेरी मम्मी हमेशा से यही बोलती आई हैं कि कुछ भी हो जाए हमेशा हर किसी से बहुत अच्छे से रहना। दो मैं नहीं रहती, मैं तो बहुत चिल्लाती हूँ लोगों पे, बट एक है मम्मा का ऐसा कि कभी भी अंदर एटीट्यूड नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने चाहिए, तो वो ऐसा रहा है। मम्मा स्टार्टिंग में तो बहुत आती थी सेट पे, तो हमेशा बोलती रहती थी, अभी भी उनका वही कहना है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए आपको।
5: बहुत मेहनत करती। घर में तो क्या, घर में मैं कुछ करने नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ यहाँ से मेरी बेटी खुद इतना मेहनत करके जाती है, तो घर में ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे भी उतना कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी बेटी ने सारी सुख सुविधा मुझे दी है, है ना। काम भी उतना नहीं करना पड़ता, सिर्फ खाना किराता बनाने को। और अच्छा लगता है, मेरी बेटियाँ बहुत प्यारी है, भगवान करे ऐसी बेटी सबको मिले। कुछ अच्छे कर्म थे जो पाई हूँ।
1: वाह, अच्छा दिन है आज मेरा, इतनी तारीफ है। मुझे बचपन से लेके अब तक कुछ भी अच्छा करो तो अप्रिशिएशन मिलता ही आया है। मम्मी कभी नहीं करती कि बाजू वाले को देखो, इधर देखो उधर देखो, जो है खुद है, जितना है भरपूर है।
5: कुछ भी हो, हार नहीं मानती हूँ, कितना भी संघर्ष करना हो, मेहनत करना हो, कभी नहीं कहती हाँ मम्मा मैं थक गई। और अच्छा भी लगता है कि इतनी रात में शूट करने के बाद भी जाती हूँ, टाइम पे सुबह उठ जाना आना, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनती बेटी है मेरी।
4: हमारे घर की सब खुशी नहीं, दाल भी।
2: भाई ये तारीफ सुनकर तो तनिष्क बेहद खुश है। फिलहाल तो वो शूटिंग में बिजी है और तैयारी कर रही है ट्विस्ट की। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: जब कपल्स प्यार में एक दूसरे के नाम का टैटू बनवाते हैं और फिर हो जाता है ब्रेकअप, फिर तो आता है जिंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब यहाँ तो आपको टैटू रिमूव करवाना पड़ेगा या उसके डिजाइन को ऑल्टर करवाना पड़ेगा। OMG! Well, आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे जब देखेंगे ट्विस्ट का ये सिलसिला, जिसे लेकर हाजिर हैं हम राइट हियर राइट नाउ।
2: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आ गया है नया ट्विस्ट। भाई कुकिंग शो में लीला और वसुंधरा को मिल गया है नया टास्क, और उस टास्क में बंधे हैं दोनों के एक एक हाथ, वो भी एक ही रस्सी से। बस फिर क्या, ऐसे में दोनों को एक ही हाथ से खाना बनाना है, क्योंकि दोनों के एक एक हाथ तो बंधे हुए हैं। जैसे ही दोनों अपने अपने टेबल पर खाना बनाते हैं, दोनों के बीच की खींचतानी शुरू हो जाती है। कभी बा वसुंधरा को खींचती है तो कभी वसुंधरा बा को, और इसी खींचतानी में बन रहा है जज के पसंद का खाना भी।

0: ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ।
1: थैंक यू
2: भाई। इस खींचाताने में टशन भी चल रहा है और चल रही है मजाकबाजी भी, लेकिन दोनों एक दूसरे को ताने मारने में पीछे नहीं हटती। ऐसे में इसी टास्क में एक और टास्क जुड़ जाता है, जहां पर दोनों को एक दूसरे की रसोई से कुछ तो चुराने के लिए जाना है। बस फिर क्या, शुरू हो जाती है बा और मोटी बा के बीच जद्दोजहद। दोनों एक दूसरे की रसोई की तरफ दौड़ती है उनका इम्पोर्टेंट सामान चुराने के लिए, लेकिन उस चोरी में दोनों ऐसी उलझती है कि गोल गोल एक ही रस्सी में एक दूसरे के साथ लिपट जाती है, और वो लिपटना भी इनके बीच बवाल शुरू कर देता है।
3: आलू में समोसा, समोसे में आलू, यहाँ हो गया गरबा चालू। अरे फंस जाओगे ऐसे आप,
4: फंसते ही जा रहे हैं। एक-एक
3: उल्टा घूमिए मोटी बाप, उल्टा घूमिए।
5: देखो वापस आप नहीं घूमे, आप अपने उल्टे से घूमिए। अरे मैं तो घूम ही रही थी। अच्छा आप खड़े रहिए, हम घूमेंगे। आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले?
6: अरे तो खुलेंगे कैसे आप?
5: क्या देखो मैं घूमी
6: कहाँ? घूमी
5: है घूमी।
6: अरे लीला अरे क्या कर रहे हैं?
5: अच्छा रुकिए।
2: अब दोनों एक दूसरे की रसोई से चोरी तो नहीं कर पाए, लेकिन बा ने जज को भी सुना दिया। खैर देखना होगा कि कौन से सामान की चोरी होगी और कौन सा ट्विस्ट आएगा।
3: तो याद दिला दूं, भले बंदी है रिश्तों की डोरी, लेकिन अभी बाकी है द ट्विस्ट ऑफ चोरी चोरी।
5: अरे रोको ये नमक लेके चली गई।
3: दोनों ऑपोजिट टीम ने एक दूसरे के एक एक इंग्रेडिएंट्स चुरा लिए।
7: टिंकू बाकी सब ठीक है, लेकिन हमें नमक चाहिए। मैंने कॉम्पिटिशन की शुरुआत में ही कहा था कि ना तो गलत करूंगी और ना ही किसी को गलत करने दूंगी।
8: हम नमक के बिना भी अपनी डिश बना सकते हैं। आपकी और आपके एहसान की यहाँ किसी को कोई जरूरत नहीं है। उठाइए इसे और ले जाइए।
9: तुम देना साथ मेरा।
2: स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में आज अपराजिता की नज़र पड़ गई है उस ट्रेटर पर, जिसे वो ढूंढ रही थी, और वो ईरा के कैबिन में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ऐसे में अपराजिता उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है।
10: मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कौन? अपनी शक्ल दिखाइए। आप यहाँ ईरा मैम के ऑफिस में क्या कर रहे? आप इधर मुड़िए वरना मैं सिक्योरिटी को बुला रही हूँ। सिक्योरिटी, ईरा मैम, ईरा मैम, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी।

0: भाई वो ट्रेटर तो भाग निकलता है, लेकिन अपराजिता ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर वो ईरा के कैबिन से क्या लेकर गया है। इसलिए अपराजिता छानबीन कर ही रही थी कि तभी अपने कैबिन में ईरा आ जाती है और अपराजिता को इस तरह देखकर उसे गुस्सा आता है। इतना ही नहीं, उसे तो उसका लैपटॉप भी ओपन दिखाई देता है। बस फिर क्या, उसे लगता है कि अपराजिता उसकी जासूसी कर रही है। ऐसे में अपराजिता उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईरा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उसका हाथ पकड़े खींच कर बाहर ले जाती है, वो भी सबके सामने, और अपराजिता पर लगाती है इल्जाम।
1: अपराजिता मेरे कैबिन में घुसकर मेरा लैपटॉप चेक कर रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
2: झूठ मत बोलो।
3: ईरा, अगर अपराजिता जी कह रही है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो मतलब नहीं किया।
1: रक्षित, तुम अभी भी इसकी बात का यकीन कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे ऑफिस में क्या चल रहा है, और मेरे लैपटॉप में इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कोई भी हमारे अगेंस्ट यूज कर सकता है। वी कांट टेक दिस लाइटली।
3: आई एम नॉट टेकिंग इट लाइटली।
0: भाई रक्षित को पता है कि अपराजिता कोई गलत काम नहीं करेगी, बस उसने एक ही काम गलत किया है। वो बिना पूछे ईरा के कैबिन में गई है। ऐसे में वो अपराजिता को उसे माफी मांगने को कहता है। अब उसे क्या पता कि अपराजिता के हाथों वो ट्रेटर लगने वाला था जिसने उनके सारे क्लाइंट्स छीन लिए हैं। फिलहाल तो वो ट्रेटर कोई और नहीं बल्कि मोहित है। अब देखना होगा कि अपराजिता को ये बात पता चल पाएगी।
3: ताना बाना में आपने ऑफिस के लिए जो किया उसके बाद मुझे पूरा यकीन है हाउस ऑफ भारद्वाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पर आपकी बदतमीजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अपने सीनियर के कैबिन में बिना परमिशन के जाना बहुत गलत है, और उस गलती के लिए मैं आपको काम से निकाल सकता हूं।
4: जैसे आपने उस टैटू को विजुअलाइज किया है, अगर टैटू आर्टिस्ट उस टैटू को वैसा ही या उससे भी अच्छा बना कर दे तो ये होते हैं आपके हैप्पी आवर्स। इसी तरह हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए मुस्कुराने के अनेक कारण इन फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट के हैप्पी आवर्स, क्योंकि ये तो है एंटरटेनमेंट की दुनिया से सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़।

0: गुड. मैंने ये स्पा डे इसलिए प्लान किया, ये जो मी टाइम है अभी, जो स्पा एंड ऑल ये सब जो करना है, इसमें मजा आता चुगली करने में.
1: मीन्स स्पा बहाना है,
0: चुगली करना है.
1: चुगली करना है.
0: आम्रपाली जी, आपका जो गाना है कटीली कमर, कटीली कमर, ओह माय गॉड, मेरे इंस्टा फीड में
1: वो येलो
0: वही आता है, वही आता है, वही आता है. बट वेरी नाइस.
1: तुम्हारा भी तो एक नया गाना आया है, जिम में वर्कआउट करते वक्त. ओह हो, लुकिंग सेक्सी.
0: थैंक यू.
2: पवन जी वाज लुकिंग वेरी पम्प्ड. ऑल थैंक्स टू नीलम.
1: नहीं, नीलम बहुत फिट लग रही है उसमें, और पवन जी की भी बॉडी
2: लग रही है. पवन जी बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं जिम करने के लिए ना, उसके लिए.
0: हाँ. तो मेरा तो छोड़ो, मुझे ये जानना कि आपने कौन सा बोटॉक्स किया है.
1: भोजपुरी एक्ट्रेस बोटॉक्स
0: क्यों नहीं होता है क्या?
1: एवरीथिंग इज नेचुरल,
2: नॉट इवन.
1: नहीं,
2: ये सब माल असली है.
1: तो मैं तुमसे पूछती हूँ, सब माल असली है ना?
2: हाँ.
1: क्या पूछ रही हो? क्या कर रहे हो तुम? बट आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी बोटॉक्स या फिलर कराया होगा. सब नहीं, तुम्हारा भी नेचुरल फेस है, आम्रपाली का है, काजल का भी है.
2: बहुत अच्छी बात है, आई अडोर ऑफ दैट. बस मुंह ना खोले.
1: मुझे लगता है कि अगर बॉलीवुड में होती है तो वहां करवाना पड़ता है यार. हम फिल्मों में एब्स लाके क्या करेंगे, हमें पहनी तो साड़ी ही है.
0: हाँ बिल्कुल.
2: पर मैं सोच रही हूँ करा लूं, ऐसे करा के थोड़ा ऐसा चेहरा
3: बतक लग.
0: फिर पवन जी बोलेंगे ये क्या करवा ली.
1: पवन जी को करके वीडियो कॉल करो, बोलेंगे
0: ये बता कौन आ गया बेकार खाटो साले को. पवन जी से याद आया, आपका और पवन जी का इतना सारा गाना पहले आता था, फिल्में आती थी. अभी कब आ रही है? हम लोग एक्साइटेड है यार देखने के लिए. कब आएंगी?
2: पवन जी डिसाइड करेंगे अभी तो.
1: पवन जी, ऐसा मैंने कहीं सुना था, आई डोंट नो ये रियल है कि नहीं, एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था, मुझे ऑर्गेनाइजर ने कहा कि यार वो पवन जी बोलते हैं कि भी मुझे भोजपुरी की किसी हीरोइन के साथ ना स्टेज करना है और ना मुझे गाना करना है, भले ही चाहिए तो नई लड़की लेकर आओ. अच्छा. अनोन फेस लेकर आओ.
2: शौकीन होंगे नई लड़की. और बोलूंगी और नवाब साहब कैसे हैं? बट हो सकता है नई नई लड़कियां. ठीक है यार,
0: मुझे एक चीज का बहुत प्राउड फील होता है, जैसे आप है, आम्रपाली जी है, आप लोग बहुत स्टैब्लिश्ड है, आप लोग ने बहुत मेहनत किया, और आज के डेट में अगर देखा जाए ना, भोजपुरी का जो चलन चलते आ रहा है, वहां पे फीमेल एक्ट्रेसेस लीड कर रही है.
2: तो एक सेकेंड, आई वॉन्ट टू से समथिंग हियर. ये अभी की बात कर रही हो ना, कि अब एक्ट्रेसेस कर रही हैं, उस टाइम पे दौर कैसा था? आपको फिल्म बनानी है तो लिखने के टाइम पे डिसाइड होता था, इस फिल्म में मनोज तिवारी, इस फिल्म में रवि किशन, इसमें पवन सिंह, इसमें निरहुआ, इसमें रानी चटर्जी.
0: सोचो,
2: ये वाला दौर सिर्फ रानी जी ने देखा, आई डोंट थिंक किसी और एक्ट्रेस ने.
0: हैट्स ऑफ.
1: एक फिल्म थी मेरी दुर्गा, दुर्गा के सामने रिलीज थी फिल्म राम लक्ष्मण, एंड मेरी एक फिल्म रवि किशन के साथ कैसन पेवा के चरित्र बा. तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी. एक जगह रवि किशन के साथ मैं हूं, एक जगह मैं सोलो हूं, और एक जगह एक और सुपरस्टार है जिसकी फिल्म रिलीज है. तो मैं तो रात को बैठ के रोई, क्योंकि देखो मेरा करियर ना सिर्फ मेरे फिल्मों पर ही था.
2: रानी जी, सबका करियर फिल्मों पे ही होता है, आप काजल की बातों में मत आओ.
1: नहीं नहीं नहीं, विदाउट एनी सपोर्ट. अगर देखो काजल की फिल्म अगर 4 फ्लॉप होंगी तो खेसारी जी के बोलने से 1 फिल्म जरूर मिल जाती. ये बात हर किसी के साथ होती है. देखो अगर तुम्हारी भी दो फिल्में फ्लॉप हो जाती तो तुम्हारे पास कोई भी फिल्म ना हो, ऐसा नहीं हो सकता था। दिनेश जी बोलते तो एक फिल्म तो होती। एक्सेप्ट करो इस चीज को।
2: आप लोग बहुत क्रेडिट देते हो हीरोज को, इतना वो लोग किसी को नहीं देते फिल्म।
1: ये
2: बिल्कुल नहीं होता,
1: रियलिटी है।
2: उस रियलिटी चेक पे तो आप भी एक बार रवि जी को बोलते, मनोज जी को बोलते।
1: नहीं,
2: मैं वही बोल रही हूँ, सेम चीज, वही असलियत यहाँ भी है। जस्ट पीपल डोंट अग्री विथ इट।
1: वो लोग फिल्म से निकाल देते थे मुझे,
2: सेम असलियत यहाँ भी है।
1: निकाल देते थे।
0: अब एंशियंट सिविलाइजेशंस ना टैटू वेरियस रीजंस के लिए बनवाती थी, चाहे तो सामाजिक स्थिति दर्शाने के लिए या फिर एक इंसान की पर्सनल पहचान बताने के लिए या फिर कोई धार्मिक चिन्ह जिन्हें अपनी स्किन पर टैटू के थ्रू दर्शाना होता था। देखा कितने सारे रीजंस थे एक टैटू के पीछे। और यहाँ हम भी लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट के अनेक रीजंस। हमारी ये स्पेशल स्टोरी जैसे संभाल कर रखा था हमने खास आपके लिए, फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको इसकी ओर।
3: लव ईच अदर, वी हेट ईच अदर एंड देन अगेन वी कम बैक टुगेदर।
4: जब मोहब्बत हर लम्हे को खूबसूरत बना दे तब लगता है बस यही खुशी हमेशा रहे।
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। और आज मेरी खास मेहमान है एक ऐसी अभिनेत्री जिनका डांस आपने जरूर देखा होगा, इनका अभिनय भी आपने देखा होगा। मैं कहूंगा इस खूबसूरत चेहरे के पीछे बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी, एक स्टोरी एक छोटे से गुजरात के शहर से मुंबई तक आने की और अपने सपनों को पूरा करने की। तो मेरे साथ है नियति पतनानी और ज्यादातर लोग नियति को उनकी शो नजर से जानते होंगे। She's more to that, and we're going to talk about her extensive career journey over the years. So, स्वागत है आपका हमारे शो में।
3: Thank you so much. Thank you.
5: सबसे पहले तो नियति के बारे में बताऊं, ये है गुजरात के एक बहुत ही छोटे से तो नहीं लेकिन काफी समृद्ध शहर है जिसका नाम है भावनगर। और भावनगर से मुंबई तक की जर्नी has been quite interesting. तो नियति कहाँ से सफर शुरू हुआ था और भावनगर से मुंबई आप कैसे पहुंची?
3: तो भावनगर में मतलब I've always been a dance lover और मैं अपनी स्कूल में हमेशा डांस में पार्टिसिपेट करती थी।
6: सब विहंग आज दंग देख रंग ये हरा।
3: स्कूल में आई वाज सो पैम्पर्ड, में प्रिंसिपल यूज्ड टू लव मी, जहाँ डांस है नियति तो है ही, यू नो। एंड that was possible because my parents were very supportive, especially my mom, and she had like immense faith in me. That's why she would I'm a Kathak Visharad just because of her, क्योंकि वो मुझे pick up and drop करती थी डांस क्लास से। एंड सो आई डिड माई Kathak Visharad एंड आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अहमदाबाद एंड दैट वॉज इन BBA। And तो मेरा नॉर्मल ही था, that you know, because my dad wanted
5: पूरे पढ़ लिख के आप मतलब
3: डिग्री तो चाहिए। एंड माई डैड वॉज वेरी श्योर की भाई करना है तो कुछ MBA ही करना है या जॉब करनी है, डांस वांस में कुछ फ्यूचर होता है नहीं। सो बट माई मॉम वॉज लाइक, नहीं थी एक बार तेरी जॉब शुरू हो गई ना, then you won't be able to learn anything. So she was the one who pushed me to come to Bombay. And उस टाइम में ना टेरेंस लुईस के यहाँ पे एक 3 महीने का डांस कोर्स चल रहा था, डांस पे लो चांस। So she said, why don't you do this? And honestly, my thoughts like, you know, wow. मतलब I was crying कि हाँ मतलब of course why not, and my dad was like इसका तो तूने करियर ही खराब कर दिया ये वो। मेरी मॉम ने मुझे भेजा यहाँ पे हमें, you know, I started learning and I really enjoyed। उसके बाद टेरेंस का एक और ही कोर्स था विच वॉज अ डिप्लोमा कोर्स ऑफ 1.5 ईयर। So I said, since I'm liking this, why should I not continue?
5: The dance की भी पढ़ाई
3: थी। तो मैंने हाँ फिनली यहाँ पे आ गई, डांस DIDFC डिप्लोमा इन डांसिंग किया। That was 1.5 years. So it was final that whatever I do in life is going to be around dancing. And And that's how I came to Bombay, especially to pursue dancing. And if you say that, you know, how did I get into acting? That was also because of dancing.
5: Yes, yes.
3: That was also because of dancing.
5: I think a trigger number mein inka pehla show tha, dance se bharpoor. I think hamare cinema ke, hamare, I think hamare TV ke itihas mein dancing mein kuch bahut behtareen shows bane, usme se ek tha, that was D4. That is D4, get up and dance.
3: Yes, yes.
5: So, Nirti, you told us that you had written dance in Nirti.
3: Absolutely.
5: So, how did you study diploma and study dance? How did you get this show? But
7: for Aneri, Mikhail ke dimaag mein hai baby ka naam.
3: Ji, uske baad maine ek, you know, ek, main ek live performance ke liye ek choreographer ke saath main collaborate kar rahi thi. I was a performer. And there were a lot of other dancers also alongside. So the choreographer, she was also the choreographer of D4 Get Up and Dance.
5: Okay.
8: Tujhse dur hu, par tujhse hi hu, tujh mein hi hu.
3: And she told all the dancers ke there's a new show coming up and the producers are looking for actors who can dance. Matlab they were still casting mein log hui nahi thi. So she said ki aap log jaake audition de aao. और मैंने कहा कि ठीक है मैं जाती हूँ. I went for the audition and एक तो मेरा first audition था और छोटे से room में मतलब room पूरा खींचो खींच भरा हुआ था. इतने ज़्यादा लोग थे और मैंने कहा यार मुझसे तो होगा नहीं. और साथ में मेरा एक दोस्त भी चला था और मैंने कहा यार मैं भी चलती हूँ. उसका कुछ काम शुरू हो गया था तो he was like I'm leaving. I said no, I'm coming. And he was on, he said no, you give the audition because this the role fits you.
8: कैसे पहुँचे तुझ तक मेरी लहर.
3: तो मैं बैठी रही. फिर मैंने डांस का ऑडिशन दिया और फिर जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बुलाया सुमन ठाकुर. He was like बेटा तुम मुझे अपना भाई समझो. He literally said that I'm not kidding. तुम मुझे अपना भाई समझो. And बेटा, I feel that you know this character fits you. You fit the bill. So why don't you just give one more audition? And I think आप बोलते हैं ना कि आपको सही वक्त पे सही टाइम पे आपको होना होता है और आपके लिए चीजें बन जाती हैं. So that was the moment for me.
7: लाखों में एक हीरो, लाखों सी एक उसकी दीवानी.
3: The director liked my dance audition. Acting mein thodi kachi thi definitely. But I somehow fit the bill. Kyunki jo innocence us character ke liye chahiye thi, wo us time pe mere paas thi. So that's how I got my
5: first. Jo Rangila ka aur Dil to Pagal ke scene se yaad aa rahe
3: hain. Absolutely, hamara wo inspiration bhi bahut tha. You know, Madhuri Dixit kaise unko Shah Rukh Khan dekh lete hain dance karte waqt. तो हमारी स्टोरी भी वैसी थी. जो मिखेल हमारा कैरेक्टर जो मेन हीरो जो है वो इस लड़की को जिसको बिल्कुल डांस करना नहीं आता वो उसे देख लेता है डांस करते वक्त. देन हाउ ही फॉल्स लाइक यू नो दिस इज माय अनिल माय लीड डांसर.
7: मिखेल को अब तक थी बेबी से नफरत.
3: सो या
5: बट टाइम के साथ वक्त तो बदला है लेकिन जो शोज ही बना करते थे वो तो ओरिजिनल ओजी यूनिक शोज चैनल या टीवी. तो मैं मिलेनियम जनरेशन जो 2000 के बाद जब ये शोज आए. आजकल का जेन ज़ी क्या इस तरह के शोज देखना चाहेगा? आई मीन व्हाट डू फील अबाउट सच टच कंटेंट? डज इट विल इट वर्क?
7: इसलिए बन गई है वो उसकी एक जिद.
3: ऑफ कोर्स लाइक यू नो लाइक वी हैव वन मोर शो ऑन Amazon व्हिच इज कैंपस बीट्स. That is so popular amongst Gen Zs. You know, they love this content where dancing is there, where young, fresh love story is there, where, you know, not a lot of drama is there. Of course, they want drama because otherwise there's no entertainment. But very today, like, you know, our dialogues are very today relatable. There's more drama, you know, soapy na ho jo. तो डेफिनेटली ऐसा कंटेंट वर्क तो करता है.
5: योर अल्टीमेट फेवरेट डांस मूवी बॉलीवुड पिक्चर फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड?
3: सेम दिल तो पागल है.
9: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल.
3: मतलब व्हाट अ वाइब दैट मूवी हैड ना. टिंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंगड़िंग you know, I can just listen to the song and I can start dancing. The epic Madhuri dancing when Shah Rukh Khan is playing tabla. Oh God.
5: उससे पहले भी एक जमाना था कि एक हीरोइन के लिए जरूरी होता कि डांस आए और डांसर्स ही हीरोइंस बनती थी. मलाइका वैजयंती माला द मोस्ट ऊंची एक्ट्रेस ऑफ आवर सिनेमा, जो वहीदा रहमान और श्रीदेवी, जो हेमा मालिनी अभी भी आज भी है वो डांस करती है. तो विच यू थिंक इज द ओजी बॉलीवुड एक्ट्रेस हु डांस सो वेल?
3: डेफिनेटली ऑनेस्टली माय इंस्पिरेशन टू बिकम एन एक्टर इज माधुरी दीक्षित, क्योंकि आई रिमेंबर आई वाज इन सीनियर केजी में भी जब उनका मैंने धक धक करने लगा टीवी पे देखा. एंड द फर्स्ट थिंग आई डिड एज अ सीनियर केजी गर्ल वाज आई वेंट टू माय बेडरूम, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड आई सेड मुझे एक्ट्रेस बनना है. एंड देन टू डेकेड्स लेटर यू नो आई गेव माय फर्स्ट ऑडिशन एंड आई बिकेम एन एक्टर. सो my OG inspiration and the perfect actress though would always be Madhuri Dixit.
5: तो जी फोर के बाद फिर आपने फिर टीवी में फुल फ्लेज एंट्री की, आपने काफी मोमो के धागे बहुत सारे शोज किए, बट द रियल चेंज द मोस्ट पॉपुलर वाज नजर. एक सुपरनैचुरल शो बहुत अलग था जो आज के मुझे लगता बाइबल है, जो आजकल शोज इतने सारे बनने लगे. सो हाउ डिड नजर हैपन? उसके बीच में जिन शोज आपने किए थे मे बी दे वर्क बट डिड नॉट वर्क, बट गिव अ न्यू स्टैंडिंग टू नियति फतानी जो एज अ डांसर से चेंज हो गया.
3: एब्सोल्युटली. सो डी4 वाज अ कंप्लीटली यूथ बेस्ड शो. And then was ये मोमो के धागे जो मेरा फर्स्ट GEC प्रॉपर GEC था.
10: आपकी सांसों से जुड़ चुकी है मुखीजी, ये मोहक के धागे हैं, एक दूसरे के साथ हमेशा जोड़ के रखेंगे.
3: But again the story was very relatable.
5: It was very relatable.
3: हाँ, correct.
5: So किन्हों के समझ नहीं आया.
3: Correct. But the taking was very good and honestly the audience loved me. Because it was very natural. Again, no too much of a drama and everything. And besides that, we had amazing cast. और उसके बाद, you know, मैंने नजर का ऑडिशन दे दिया था. Actually, they called a couple of us. पांच छह एक्टर्स को बुलाया था उन्होंने. And मैंने ऑडिशन दे दिया था. उसके बाद देयर वाज नो कॉल. एक महीने तक देयर वाज नो कॉल. और उस टाइम पे ना ये डिस्कवरी जीत करके एक चैनल आया था. तो ऐसा हुआ था कि मैं उस एक शो के लिए ऑलमोस्ट लॉक हो चुकी थी. हम लोग मतलब ना दो दिन बाद हम लोग कश्मीर के लिए शूट के लिए निकलने वाले हैं. और फिर मुझे अचानक से कॉल आया क्रिएटिव का दैट नियति सॉरी वी आर नॉट डूइंग द शो. एंड आई वाज लाइक ये क्या हो गया? बिकॉज यू नो मतलब मैं तो बहुत डर गई थी कि यार मतलब ऐसा क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? बिकॉज इट वाज थर्ड शो. तो शी सेड नो नियति द चैनल इज ओनली शटिंग. एंड आई वाज लाइक ओ डूड यार क्या हो रहा है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? एंड देन कट टू आफ्टर 7 days नजर पीपल कॉल मी एंड दे आर लाइक नियति हमें आपके साथ एक मॉक शूट करना है, आखिरी मॉक शूट, एंड यू नो दिस विल डिसाइड
10: क्यों बार बार हमसे उलझते हो? देखो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है.
3: And that's how I, you know, so Nazar was in my destiny because Discovery GP already जा रही थी and the channel shut and then this happened. And earlier this was supposed to be, Nazar was supposed to be only 100 episode show. It was a limited show because we also had a dead slot, 11 o'clock ka slot hame mila tha.
10: Samajh hi nahi aata, jab main baat karne jaati hu to baat nahi karta aur jab aaj baat karne aaya hai to
3: But in 1 week only the show picked up so well.
5: Yeah.
3: And in a month we got to know that no, the show is extending till the time it works, and you know the show was doing wonders, and that's how matlab Pia, Ansh, Mona, everybody became a household name, you know. So yeah, the Nazar definitely was a blessing, and of course hame mehnat to hum bahut hi karte the.
10: Love.
5: भाई भाई डायलॉग्स
3: एंड देन इतना ज्यादा वो चेंजेस होते थे. सो एज एन एक्टर ऑल्सो इट वॉज चैलेंजिंग टू अडॉप्ट यू नो लाइक फिट इन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द बॉडी लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. इट वॉज फन. देयर आर नो कंप्लेंट्स एट ऑल.
11: लेकिन इस बार जाने की बारी तुम्हारी है.
12: देखते हैं, खेल तो अभी शुरू हुआ है.
5: अभी सेम टीम अभी वापस लव टू हेट यू में हो गई है. यहाँ पे कोई डायल चुड़ैल नहीं है. यहाँ पर आप हर्ष और मोनालिसा एक साथ हैं. तो ये जो सीरीज है ये क्या है लव टू हेट यू?
13: एनिवर्सरी के दिन लेट आए हो, सजा तो जरूर मिलेगी.
14: आ गया तू तो मेरी कैदी.
3: Love to Hate You is a proper show, very relatable show I'd say, जिसमें you know हम life की normal situations ले रहे हैं जहाँ पे दो प्यार करने वाले हैं and there's this antagonist who doesn't want them together for some weird reason that even we don't know, that only she knows, which we'll get to know in the climax. But she's the person who constantly tries to separate them and you know create misunderstanding. जो हमें होती भी है as a couple, जो आप में अगर होती है you know. So those are natural fires that we have. And by the end of it, why every time we choose each other? That's the entire journey. That you know we love each other, we hate each other, and then again we come back together. But I'd say that, you know, इसमें हमने इतना ड्रामा के साथ साथ there's a lot of you know action. Like I have a lot of action in the show.
5: मैं साड़ी में
3: हाँ मैं साड़ी में गन उठा के कर रही हूँ, मार रही हूँ. एंड यू नो मैं अभी परसों मैंने शूट किया था, मैं छत से लटक गई थी हार्नेस के साथ. सो अ लॉट ऑफ मेरा डांसिंग भी था दो दिन पहले शूट पे. तो ऐसे हम काफी सारी चीजें कर रहे हैं. बिसाइड्स दैट द ग्राइंडर ऑफ द शो इज वेरी गुड. द स्केल लुक्स बिगर देन द फर्स्ट सीजन एंड डेफिनेटली आपके कास्ट तो है ही अच्छी. वी हैव एक्सटेंडेड द फैमिली नाउ. सो देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रामा व्हिच विल हुक द ऑडियंस टू द शो.
15: बस किसी की नजर ना लगे.
5: यदि आप एक डांसर है, डांस कहते हैं कि जो नॉन रसू का जो मिश्रण है उसका होता है. हमारे सीरियल पे हमेशा या सीरियल के जो होते हैं कंटेंट पे आरोप करते हैं कि बहुत ओवर द टॉप है, बहुत ड्रामेटिक है. रसोड़े में क्या था?
16: तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था?
5: और चुटकी सिंदूर टाइप. बट व्हाट यू फील समय के साथ साथ बदला है? अभी जो शोज जो है बहुत ही इवन फिल्में बदली.
3: बहुत
5: हाउ डू यू सी द चेंज इन परफॉर्मेंस फॉर एन एक्टर?
3: बहुत बन गई है. लाइक आई डोंट सी नाउ देयर आर एनी शोज जिसमें हीरोइंस है वो भर भर के सिर्फ रो रही हैं. देयर वाज अ टाइम अर्लियर जब हीरोइंस सिर्फ रोती रहती थी और अगर कोई नेगेटिव होता था वो उसको हाथ पकड़ के ले जा रहा है तो बिना बोले चली जाती थी और रोती रहती थी.
16: तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था, कौन था, कौन था?
3: बट नाउ द टाइम्स वेयर पीपल वांट टू वॉच हीरोइंस टेकिंग अप you know, stand for themselves. And that's how the shows are made. I will take names of shows like R&B or Mannat Ho Gaya, ya Anupama in that sense, you know, jab Anupama start hua tha. They became that because they took stand for themselves, you know, not because they were just crying. So, abhi definitely take change ho raha hai. Bahut organic ki side ja raha hai. और बहुत रियल इश्यूज को हम टच कर रहे हैं. एंड विच इज व्हाई द शोज आर वर्किंग. और जो कंटेंट नहीं चलता वो तो एनीवेज एक दो महीने में बंद ही हो रहा है.
5: रियलिटी शोज आपने बहुत ज्यादा नहीं किए, लेकिन एक सबसे खतरनाक रियलिटी शो आपने करना है जो आपने बहुत खतरनाक
3: खतरों के खिलाड़ी.
5: बट कंट्रोल क्लैरिटी वाज लाइक अ वेरी ओजी शो. बट लेकिन आपने कभी स्प्रिट्स विला ये सब टाइप के शोज, बिग बॉस, एनीथिंग यू कैन डू दैट? आर यू कंफर्टेबल बेयरिंग योर पर्सनल लाइफ पब्लिक एंड यू नो?
3: आई थिंक आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन माय स्किन सो एंड ऑफ द पर्सन हु आई एम. So I wouldn't shy away if it's Big Boss. The only thing with Big Boss is that you have to be in that house for however long and not see your family. And then you have absolutely no touch with the outside world. Jabki khatron mein kya, you are definitely doing your stunt at 12 hours and shoot kar le, then you come back to your hotel and you have your me time. So that's why I went for khatron and never thought about Big Boss.
5: तो बहुत ज्यादा ही हो गया है.
3: बस ऐसा कोई सीक्रेट है नहीं ऑनेस्टली. मतलब प्रॉब्ली दैट्स व्हाई दे डिडंट इवन आस्क मी फॉर लॉकअप, क्योंकि मतलब ना ही मैं झूठ बोल सकती हूँ.
5: नो बट यू हैव अपने कभी बहुत ही क्लीन प्रोफेशनल लाइफ आपकी.
3: हाँ, एंड ना ही मुझे ऐसा कुछ शौक है कि मैं 3 महीने के शो के लिए एक अलग पर्सनैलिटी लेकर जाऊं और फिर झूठ बोलूं वहां पे. इट्स नॉट द पर्सन हु आई एम. So I wouldn't even want to do that. Yeah.
5: अभी आजकल एक्टर्स के पास थोड़ी काम तो ज्यादा हो गया है, लेकिन थोड़ा सा एक ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं. You can do micro drama, you can do series, you can do TV show, of course, reality shows. So do you think now it's like a it's easy, but you are getting competition from these so-called influencers as well.
3: Yeah, yeah.
5: So it's a very cash-22 situation. So
3: absolutely, absolutely. And I think, but I'd say micro drama has definitely gotten better, and the quality now is improving so much. Earlier, whatever billionaire or jo bhi ho raha tha, now the content is getting better, the quality is getting better. Besides that, the actors are getting more opportunity. Like for an example, if I do a character, a 3-day role, I'm getting an opportunity to touch a character which I'm not in personal life, you know, the character which is probably opportunist, which is probably having a dark character. So it is honestly a fun thing for an actor that, you know, you get into touch and you get into portray a character for 3 days and then just, you know, get out of it also. You're not getting bored also. Zyada lamba play karna hai. So it's a win-win game for actors now, especially with micro stepping in.
5: Lastly, you are from Gujarat and Gujarati cinema bhi bahut evolve hua hai. Kafi achhi filmein bani hai Gujarat mein. What about attempting a Gujarati film? Have you tried it and what do you feel?
3: I have not tried, but I definitely want to because I loved Hilaro. I loved Vash.
17: Tumne trane ne pata vina ne le jao.
3: And so yeah, Gujarati cinema is always Gujarati cinema has always been like that, you know. It's just that beech mein thoda because of the budget issue and whatever ho gaya tha, but if you want to touch the tradition, none other than Gujarati movies, you know, the kind of music that they bring in, the kind of roots that they touch. It's very earthy. Like I'm bolta na, jaisa Malayalam cinema hoti hai, it's very earthy. Very earthy. Ladke hai, wo mitti mein khel rahe hai and all of it. Because wo originality laate hai. So, yeah.
5: बस लास्टली सम फूड रिकमेंडेशंस. यू आर फ्रॉम भावनगर, तो भावनगर जाए तो कहाँ कहाँ है आपके अड्डे, कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है?
3: ओह माय गॉड, ये तो मेरे मम्मी पापा ही बता सकते हैं क्योंकि इट्स बीन
5: बचपन में
3: 2020 के बाद में गई नहीं हूँ भावनगर. बट हाँ, मुझे याद है मेरे पापा ना एक कुछ वो एक चटनी होती है, चटनी सैंडविच विच इज वेरी फेमस, लच्छू की सैंडविच विच इज गॉट अ स्वीट बटर, व्हाइट बटर एंड देन दिस गॉट ग्रीन चटनी. दैट चटनी सैंडविच एंड द jam sandwich is so famous. So I think people who come from abroad, they, you know, parcel it back. The gathiya also, gathiya chutney, are something which is very famous. Matlab bolte ki aise aise kahawat hai ki Bhavnagar mein 3 cheeze bahut famous hai, gai, gathiya and gadda. So gadda is pagal, I don't know why it is that, and gai, matlab us time pe sadkon pe har jagah gai. गाय बहुत दिख जाती थी
5: जी।
3: तो वो बहुत पुराना सीन है, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और गांठिया तो वर्ल्ड फेमस है ही भावनगर का,
5: पर अहमदाबाद मुंबई में फूड इज मच बेटर।
3: Italian and more of a Thai kind of person. If I get that, I'm sorted.
5: So, first, lastly, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इतने सारे जो fans हैं, they'll be happy because you keep on surprising them with something nice.
3: Yes.
5: What you teach to the viewers, the fans who have loved you over ages.
3: Absolutely. I'm honestly very grateful to all my viewers for being so loyal to us, and you know, especially Nazar fans, because more than we are definitely excited, but we get so much love samne se.
5: But today.
3: Exactly. That, you know, looking at the picture that we just posted, usme millions of views already aa chuke hain. And so we're hoping that, you know, you give us the same love. And we're definitely trying to entertain you. And I just hope that hamari efforts hain wo fruitful ho aur aapko hamari efforts achhi lage. I just watch the show, Love to Hate You, only on All Right app. Tuesday, Thursday and Saturday at 8 p.m. Ye moha moha ke dhaage तेरी उंगलियों से जावर जी, कोई तो हटो हरा लागे तेरी
5: इस तरह के धागे उगर
3: जी है रो मरो माइक
5: बट यू लव वॉइस गाने की ट्रेनिंग के लिए आपने डांस बट
3: तू होगा बड़ा पागल तूने मुझको है चुना बस यही है
5: होगा बड़ा पागल तुमने हमको मिलते रहेंगे हम
3: यहाँ थैंक यू
13: आपने फाइनली बनवाया अपना फेवरेट टैटू सालों के इंतजार के बाद ओ माय गॉड दिस इज रॉकिंग लेकिन जैसे ही नीडल ने छुआ आपकी स्किन को आपका हुआ जोरों से दर्द और हो गया शॉकिंग कुछ ऐसी ही रॉकिंग कुछ ऐसी ही शॉकिंग है हमारे पास ये सारी खबरें जिन्हें ले आए हैं हम एक साथ आपके लिए इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में जो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज
18: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें रॉकिंग खबर आ गई है कौन बनेगा करोड़पति से भाई जिस शो का इंतजार देश की हर जनता करती है वो शो 10 अगस्त से छोटे पर्दे पर टेलीकास्ट होगा
19: ये बेबसी है यहाँ सोचना पड़ेगा प्यारो सोचना भी पड़ेगा।

स्टारप्लस के सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं में रितिका किरदार निभाने वाले अमन गांधी ने शो से अलविदा कह दिया है और अब खबरें आ रही हैं कि रितिका किरदार निभाने के लिए होगी एंट्री शुभ करण की, जो इससे पहले प्यार की राहें सीरियल में नजर आ चुके हैं।

0: आप सभी की प्यारी आनंदी यानी कि अविका गौर को हो गया है डेंगू, जिसके चलते वो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में अविका के पति मिलिंद चंदवानी ने अपने फैंस के सामने आकर अविका की तबीयत का अपडेट दिया है और साथ ही बताया है कि कैसे अविका बीमार होते हुए भी अपने काम को पहले रखती है।
1: तो अविका कल रात से हॉस्पिटल में एडमिट है। 5 दिन से उसको 104, 103 डिग्री बुखार चल रहा है और आप गेस करो उसने पिछले 5 दिन में क्या किया होगा। पहले गई एक जो प्रोजेक्ट के 2 दिन का शूट बचा था उसमें इतना अच्छा परफॉर्म किया 104 डिग्री बुखार के साथ कि वो 1 दिन में रैपअप हो गया। फिर आई, 2 दिन ब्रेक मिला, सारा दिन बेड पे पड़ी रही, दवाइयां खाती रही, हिल भी नहीं पा रही थी, खाना नहीं खा पा रही थी, पर कमिटमेंट था तो दिल्ली गई सेम बुखार में, बट टेस्ट करा लिया उसके पहले कि भाई कुछ है तो नहीं, देख लेते हैं। दिल्ली गई, एड शूट किया सेम बुखार के साथ, वापस आई मुंबई कल रात को और रिपोर्ट में आता है डेंगू। मैंने इसे बहुत बार बोला कि प्रोड्यूसर्स विल अंडरस्टैंड, पोस्टपोन कर दे, टेल देम दैट यू कैन नॉट मेक इट। बोलती है कि अरे यार किसी का लॉस टाइम, किसी का टाइम जाएगा, किसी का पैसा जाएगा, आई डोंट वांट टू डू इट, मैं जितना कर पाऊंगी उतना कर लूंगी, जाती हूँ।
0: इसी के साथ बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती भी हॉस्पिटलाइज हैं, वो भी कोलकाता में, उनकी माइनर सर्जरी होने वाली है और उनकी हेल्थ अपडेट दी है वहाँ के चीफ मिनिस्टर सुवेंदु अधिकारी ने। रोमांटिक और एक्शन फिल्म बनाने वाले यशराज फिल्म्स अब लेकर आ रहे हैं हॉरर फिल्म। भाई हॉरर फिल्म जॉनर में इनकी पहली फिल्म होगी। खबरों की माने तो इस फिल्म में हीरो के तौर पर नजर आएंगे वरुण धवन और ये फिल्म डायरेक्ट करेंगे कोई और नहीं बल्कि अभय पन्नू, जिन्होंने फिल्म रॉकेट बॉयज डायरेक्ट की है। देख लीजिए जी टीवी के सीरियल लक्ष्मी निवास का ये प्रोमो, जहां पर निया और वीर का रिश्ता और भी अनमोल होता जा रहा है, यानी जल्द ही निया वीर को अपने पापा का खिताब दे ही देगी।
2: वीर चौहान, निया माय डॉटर।
3: इनको इतनी भी इंग्लिश नहीं आती।
4: भले इनको इंग्लिश नहीं आती पर उन्होंने मुझे सिखाया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए। वो मेरे पापा भी है और टीचर भी, मैं उनको बहुत प्यार करती।
5: बेटी आप तुमसे बातें करते हैं, आप बहुत फराटेदार अंग्रेजी बोलेंगे, आपको बहुत प्राउड फील करेंगे।
0: साउथ एक्टर नानी की आने वाली फिल्म द पैराडाइज का टीजर देख लीजिए जो हाल ही में रिलीज हुआ है। उसमें ना सिर्फ नानी अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं बल्कि राघव जुएल ने भी दमदार नेगेटिव किरदार निभाया है।
6: लोगों के लिए है हमारी तभी कुछ रिजार्ट को पलटवार करना होगा।
7: अब अगर टैटू बनवाने की बात करें तो देखिए अनलिमिटेड टैटू डिजाइन्स हैं, लिटरली अनलिमिटेड। आपको भी हो जाएगा कंफ्यूजन कि कौन सा बनवाओ और कौन सा ना बनाओ। कुछ ऐसा ही कंफ्यूजन है हमारी इस अगली कहानी में, क्योंकि कहानी का लेखक फिर से लेकर आया है इस कहानी में भी एक नया ड्रामा। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या है ये नया ड्रामा, तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आपको इसकी ओर।
8: रूठी है शब्दे रब्बा, रब्बा दिल भी है रूठा।
0: फिर स्वाति संग लेकिन दुल्हन के रूप में वृंदा।

0: कश्मकश में संजय, क्योंकि वृंदा संजय अजब गजब रिश्ता। चुप है रांझा, जा जा। जी टीवी के सीरियल तू ही रे दिल में स्वाति संजय संग पहुंच गई है सुंदर नगर, और तो और वो उसी मंदिर में है जहां पर संजय और वृंदा की शादी हुई थी। ऐसे में जैसे ही स्वाति को पता चलता है कि इस मंदिर में जिसकी शादी होती है उसका रिश्ता जन्मों जन्मांतर तक जुड़ जाता है, तो देखिए कैसे स्वाति भी अपनी गुजारिश संजय के सामने रखती है।
1: मैं तो कह रही हूँ अपनी शादी यहीं कर ले।
2: कैसे? सब लोग तो अहमदाबाद में, हमारे दोस्त रिलेटिव।

भाई स्वाति ने तो संजय का हाथ थाम लिया है और देखिए कैसे उस मंदिर के अग्नि कुंड के सामने पहुंच गई है और उसका हाथ थामे लगा रही है फेरे, क्योंकि वो जल्द से जल्द संजय की होना चाहती है। लेकिन संजय वो कश्मकश में है, क्योंकि इसी मंदिर में उसकी शादी वृंदा से हुई थी। ऐसे में उसके आगे स्वाति चल रही है, पर उसे नजर वृंदा आ रही है।

0: फिलहाल तो वृंदा संजय की यादों में है, लेकिन ये यादें जल्द ही साकार होगी, क्योंकि यहाँ पर स्वाति सिर्फ और सिर्फ वृंदा को ढूंढने ही तो आई है। ऐसे में जैसे ही स्वाति और संजय सुंदर नगर पहुँचते हैं, तो संजय की नजर अपने और वृंदा की शादी के पोस्टर पर पड़ जाती है और उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये सब स्वाति के सामने ना आ जाए। ऐसे में वो कोशिश कर रहा है कि न सिर्फ स्वाति को इस सच से दूर रखे, बल्कि खुद भी छिप रहा है, क्योंकि वहाँ पर गांव वाले घूम जो रहे हैं जो संजय को पहचान लेंगे। ऐसे में स्वाति भी संजय को ढूंढ रही है, तो वहीं छत से संजय उसे देख लेता है। आ जाता है स्वाति से मिलने। बस फिर क्या, स्वाति जिस तरह से संजय से नाराज होती है, संजय को लगने लगता है कि स्वाति को सब सच पता चल गया है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही स्वाति हंसती है, तो संजय को एहसास होता है कि स्वाति उसे मजाक कर रही है।
1: तो हम आए सुंदरपुर, वुमेन्स कैंप लगा है वही मंदिर में जहाँ पे मैं अम्मू से मिली थी। अम्मू सुंदरपुर की रहने वाली है, तो आई डिसाइडेड कि हम वहीं कैंप लगाते हैं ताकि मुझे अम्मू के बारे में कुछ डिटेल्स पता लगे, उसका पति कहाँ है, क्या सीन है। तो मैं संजू के साथ आई हूँ यहाँ पर, और हम वही मंदिर आए हैं जहाँ मैं उसकी मम्मा से पहली बार मिली थी, संजू की मम्मा से। सो इट्स वेरी स्पेशल टेम्पल, और संजू एकदम से गायब हो जाता है और पता नहीं ऊपर से कुछ छुप छुप के देख रहा होता है। तो मैं ऐसे प्रिटेंड करती हूँ एज इफ मैं बहुत गुस्सा हूँ उससे, कुछ पता लग गया मुझे, ऐसे ही मज़े ले रही होती हूँ, बट एक्चुअली मैं टेंस इसलिए होती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया होता है। या ब्लफ इसीलिए क्योंकि मैं देखती हूँ वो पूरा अंदर भी, डॉक्टर जब मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ कुछ भी, वो छुप छुप के देख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही नज़र रख रहा है कि अच्छे से कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बट एक्चुअली वो बच रहा है क्योंकि अंदर अम्मू की पूरी फैमिली है और वो संजय को जानती है, तो वो वहाँ से भी बच रहा है, मुझसे भी बच रहा है। तो
0: फिलहाल तो स्वाति वहाँ से चली जाती है और संजय के दिल को राहत मिलती है, और ऊपर वाले का वो शुक्रिया भी करता है कि अभी तक स्वाति को कुछ पता नहीं चला है। लेकिन देखना होगा कि आखिर कब तक स्वाति के सामने ये सच छिप पाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा और कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: नौनिका तो हमसे कह रही हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज है या और कोई हेल्थ इश्यूज है, टैटू बनवाने से पहले उन्हें अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप पहुंच गए स्टूडियो और टैटू आर्टिस्ट को बोला कि चलो मेरा टैटू कर दो। आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। लेकिन क्या है यहाँ पर हमारी नौनिका की प्रायोरिटी, चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं आप सबको सीधा सैराब के सेट पर।
0: ईशान संग हुआ हादसा। तड़पा नौनिका का दिल।
3: ब्रेकिंग न्यूज, सुपरस्टार सिंगर ईशान का मेजर एक्सीडेंट हुआ है। फेमस सिंगर ईशान को गंभीर हालत में हॉस्पिटल लाया गया है।
0: क्या रिश्ते में फिर आएगी कोई नई मुश्किल?

0: हॉपलेस के सीरियल सैराब में भले ही नोहिनिका ने अपनी बेटी टीनी से वादा कर दिया है कि वो ईशान से कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आज उसका दिल तड़प उठा है और वो देखिए कैसे पहुंच गई है ईशान से मिलने, वो भी होटल में। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पाती कि वो ईशान का दरवाजा खटखटा सके। ऐसे में वो पहुंच जाती है बिशु दादा से मिलने, लेकिन जैसे ही बिशु दादा उसे अपनी नजरों के सामने देखते हैं उनका गुस्सा खौल उठता है और वो नोहिनिका से नाराज होने लगते हैं। इतना ही नहीं, नोहिनिका को वो खरी खोटी भी सुनाते हैं क्योंकि नोहिनिका की वजह से ईशान का दिल जो टूटा है।
1: पहले नहीं सोचता था बेटा, लेकिन आज तो अपनी आंखों के सामने देख लिया है। कितने लोगों के बीच में आपने उसका अपमान किया है। उसने आज तक आपको उस दिन से लेकर आज तक हमेशा बेइज्जती से बचाया है और आपने कितने लोगों के बीच में उनकी बेइज्जती कर दी और ये साबित कर दिया कि आप उनके प्यार के लायक नहीं है।
2: आपका नाराज होना चाहिए सर, और आपको नाराज मुझसे होना भी चाहिए, लेकिन मैं बस एक बार ये जानना चाहती हूँ कि वो
1: आप यही जानना चाहती हैं कि ईशान बाबा ठीक हैं या नहीं, लेकिन क्या जरूरत है? अगर आपको पता है कि ईशान बाबा ठीक नहीं है तो क्या अपने परिवार के सामने खड़े होकर उनका साथ दे पाएंगी? नहीं ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है वो ठीक हो या ठीक ना हो। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप यहाँ से जाइए। अगर ईशान बाबा ने आपकी आवाज सुन ली तो अच्छा नहीं होगा। जाइए यहाँ से प्लीज।
3: She had to choose between Tinni and Ishan. So then she chose Tinni. और लेकिन आधी रात में बोलता है जब प्यार होता है, प्यार एकदम आता है, उभरता है, तो वो उस इंसान को कुछ नहीं दिखता, वो सिर्फ एक मोमेंट ऑफ एक पल का ही एक मैटर होता है, लेकिन मैटर ऑफ अ पल की आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और आपको कैसा फील हो रहा है। तो वो सीधे रात को 2 बजे ड्रेस चेंज करती है और आ जाती है ईशान के पास होटल में पूछने के लिए, लेकिन वो ईशान से बात नहीं करती, वो पूछती है बिशु दादा का रूम कौन सा है। I mean, वो बोलते ना कर्मा कम्स बैक। जब ईशान घर पर आया था तो पूरे परिवार वालों ने उसको बेइज्जती की थी, तो जैसे अब नोहिनिका वापस आई है तो बिशु दादा ने अच्छे से उनको नो रिटर्न दिया है।
0: भाई बिशु दादा के कड़वे बोल ने नोहिनिका का दिल दुखा दिया है और नोहिनिका वहाँ से चली जाती है, लेकिन ईशान उसे डाउट हो जाता है। इसलिए देखिए कैसे वो भी पहुँच जाता है बिशु दादा के कमरे में उनसे ये जानने के लिए कि आखिर कौन आया था। ऐसे में बिशु दादा बातें घुमाने लगते हैं।
4: खाने वाली लड़की, तो आप उसके सामने मेरा नाम क्यों ले रहे थे?
5: आपका नाम?
4: नहीं, मैंने नहीं लिया। बिशु दादा, मुझे सच सच बताइए ना, किससे बात कर रहे थे आप? कोई और था?
5: कोई नहीं था।
4: आप ऐसे गुस्से में चिल्ला चिल्ला के ऐसे किसी से ही बात कर रहे थे? मैंने देखा, मैंने सुना आपके कानों से, आप मुझे बताइए कौन था?
5: बेटा वो नैनका बेटी है। हलचल पूछने
4: इतनी रात को नोहिनिका कैसे आई, किसके साथ आई थी?
5: अकेली थी, टैक्सी से आई होगी बेटा।
4: नोहिनिका अकेली इस टाइम में? अरे कोई टाइम है क्या अकेले आने का? सेफ थोड़ी है बाहर।
3: बिशु दादा ने ये तो गुस्से में कह ही दिया कि हाँ वो ठीक है, तो वो वही सुनना चाहती थी। और दूसरा ये कि जिस तरीके का पहली बार उसके लाइफ में जहाँ से एक्सपेक्ट नहीं था वहाँ से ये इस तरीके का स्वभाव आया, तो वो उसको लेके थोड़ी सी अपसेट है।
0: भाई समय की नजाकत को देखते हुए ईशान तय करता है कि वो नोहिनिका के पास जाएगा। बिशु दादा तो उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ईशान उनकी बात नहीं मानता और वहाँ से निकल जाता है। और कहानी में आएगा ट्विस्ट क्योंकि नोहिनिका को ढूंढते हुए ईशान संग हो जाएगा हादसा, और जब ये बात नोहिनिका को पता चलेगी तो वो ट्विस्ट रिश्ते में लाएगा नया ट्विस्ट। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: मन्नत, देखिए आपकी कहानी में तो चला है ये याददाश्त जाने वाला ड्रामा, जहां विक्रांत बन गए हैं अभिमन्यु। लेकिन अगर आप करवा लेती ना विक्रांत के नाम का टैटू, तो मुझे लग रहा है शायद ऐसा नहीं होता। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको मन्नत के सेट पर और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है अब ये कहानी, क्योंकि मन्नत की जिंदगी में भी हैं ये सुपर विलन्स जो नहीं लेने देते हैं मन्नत को चैन की सांस। लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास।
0: घर में बच्चों ने किया विक्रांत का गृह प्रवेश।

0: शुरू हुआ मन्नत और विक्रांत का नकली ड्रामा।
1: अगर साथ में मुझे वो याद ना दिला पाए ना कि मैं विक्रांत नहीं, तो पूरा परिवार हमारा पीछा छोड़ देगा।
0: क्या अभिमन्यु के बहकावे में आएंगे धैर्य और सम्राज्ञी? कलर्स के सीरियल मन्नत में धैर्य को विश्वास दिलाने के लिए कि विक्रांत अभी भी अभिमन्यु है, मन्नत और विक्रांत धैर्य के साथ पहुंच जाते हैं जेल सम्राज्ञी से मिलने के लिए, जो इन दिनों सलाखों के पीछे है। ऐसे में अभिमन्यु को देखकर सम्राज्ञी बेचैन हो जाती है और अभिमन्यु को ये बताती है कि इन लोगों ने इस पर गलत इल्जाम लगाए हैं कि वो अभिमन्यु के लिए खतरा है। बस फिर क्या, अभिमन्यु अपना ड्रामा शुरू कर देता है ताकि सम्राज्ञी और धैर्य दोनों को यही लगे कि ये अभिमन्यु ही है।
1: अगर साथ में मुझे वो याद ना दिला पाए ना कि मैं विक्रांत नहीं, तो ये थे ना तो पूरा परिवार हमारा पीछा छोड़ देगा। बस दी मैं इन लोगों के नाल 7 दिन रहूंगा।
2: यार सम्राज्ञी को मैं बेसिकली कन्विंस कर रहा हूँ कि टेंशन ना लो, मैं आपकी साइड हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है, और तो ताकि ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, बार बार आए ये वो मचान क्रिएट, बिकॉज अभी बहुत ज़रूरी है धैर्य को ये बात बिलीव करना कि विक्रांत को याददाश्त वापस नहीं आएगा।
3: नहीं, ऑब्वियसली उसकी याददाश्त वापस आ गई तो वो खुद ही विलिंग है जाने के लिए, लेकिन वो अब हमारे साथ गेम खेल रहा है कि मैं पता करके बताता हूँ या सबके जो हमारे जितने भी सीक्रेट्स हैं उसको सबके सामने वो खुद लाना चाहता है कि आप लोग उगलिए कि आपने इन्हें गलत किया था। तो आई थिंक वो ये गेम खेल रहा है जो हमें पता नहीं, हम उसके ट्रैप में आ गए हैं, तो उसके ट्रैप में ना आए तो इसलिए मैंने कुछ अपने और प्लान्स बना रखे हैं, तो लेट्स सी क्या होता है।
0: भाई ये 7 दिन की बात सुनकर तो सम्राज्ञी हैरान रह गई, क्योंकि उसके अंदर अब भी डर है कि मन्नत विक्रांत को उसकी याददाश्त वापस लाने में कामयाब ना हो जाए, लेकिन अभिमन्यु ने सम्राज्ञी को विश्वास दिला दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
3: मेरी खुशियाँ तो या मेरे घर की खुशियाँ तभी वापस आएंगी जब अभिमन्यु घर वापस आएगा या मेरी बहन की शादी उससे होगी, तो मैंने सारी जितने पैतरे अपनाने थे वो अपना लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं कर सकती हूँ, तो बस वही प्लान कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ।
0: वहीं दूसरी ओर घर में बच्चे और बाकी घर वाले बेसब्री से विक्रांत का इंतजार कर रहे हैं, वो भी आरती की थाली लेकर, और देखिए जैसे ही विक्रांत आता है तो वो बच्चे विक्रांत का स्वागत करते हैं आरती कर, और तो और विक्रांत को गले भी लगा लेते हैं। एक पल के लिए विक्रांत का दिल पिघल जाता है, लेकिन धैर्य को विश्वास दिलाना है कि वो विक्रांत नहीं है तो उसका नाटक शुरू हो जाता है।
2: यार घर वाली फील का मौका ही नहीं मिला कि अपने घर में आया, वो थोड़ा रूम में जाके उसको बड़ा अजीब लग रहा था, बट बच्ची से मिलके उसे काफ़ी, बिकॉज ही इज मीटिंग हिज डॉटर एंड उसे एंड ही हैज टू जस्ट कीप अ डिस्टेंस बिकॉज धैर्य देख रहा है एंड ये वो, तो इट बिकम्स अ लिटिल हार्ड फॉर हिम बिकॉज शी इज सो स्वीट एंड क्यूट।
0: भाई विक्रांत के इस तरह जाने से सारे बच्चे मायूस हो जाते हैं, ऐसे में रॉनी उन बच्चों को समझाता है, लेकिन बच्चों ने निश्चय कर लिया है कि वो विक्रांत की याददाश्त वापस लाकर ही मानेंगे। ऐसे में धैर्य भी उनका साथ दे रहा है और मन्नत बखूबी समझ रही है कि माजरा क्या है।
4: तो हम सब साथ हैं।
5: हाँ, साथ
4: मिलकर
5: काम
6: करेंगे। है कि नहीं? Yes। मैं देखती हूँ उन्हें
4: कोई बात नहीं, है कि नहीं?
0: अब धैर्य कौन सी नई चाल चलेगा ये तो बात की बात है। फिलहाल तो मन्नत और विक्रांत दोनों को ही सिर्फ 7 दिन की मोहलत मिली है और इन 7 दिनों में इन्हें धैर्य को उकसाना होगा कि धैर्य खुद ही अपने जुर्म को कबूल कर ले। देखना होगा क्या उसमें वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: ईशा तो हमसे कह रही है कि टैटू कितने दिन लास्ट करता है ये कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे टैटू किस तरीके का है, टैटू की देखभाल कितने अच्छी तरह की गई है और जो टैटू की इंक है ना उसकी गुणवत्ता कितनी है। एक्चुअली बात तो सही कह रही हैं आप। वैसे हम तो चाहते हैं यहाँ पर आपके और सूरज के प्यार का टैटू हमेशा रहे परमानेंट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ एंटरटेनिंग हो रहा है इस कहानी में आज।
0: बदला दादा भाई का अंदाज, लौट आया ईशा का पुराना सूरज, ईशा के लिए सूरज का त्याग, दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में ईशा और सूरज के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सूरज यानी कि दादा भाई ने फैसला ले लिया है कि वो अपना हुलिया फिर से बदलेगा। ऐसे में सूरज का दोस्त बंटी आ जाता है और साथ मिलाता है सूरज की मंगाई हुई शर्ट। ऐसे में बंटी देखकर हैरान है और सूरज से सवाल पूछ रहा है। ऐसे में सूरज बंटी को बताता है कि वो ये सब सिर्फ और सिर्फ ईशा के लिए कर रहा है।
7: ईशा जी को ये कपड़े पसंद नहीं आ रहे इसलिए इन्हें बदल। तो अच्छे से जानता रहा मैं अपना काम नहीं बदल सकता इसलिए उनकी खुशी के लिए बस इतना बोल रहा।
8: तो तैयार हो जाइए अपने पुराने सूरज से मिलने के लिए। अब बिल्कुल आप सभी का चहेता सूरज जो हमेशा से था, शायद दादा भाई का गेटअप पसंद नहीं था लेकिन दादा भाई के अंदर आपका सूरज ही था, लेकिन ईशा जी को सूरज का जो हुलिया है वो पसंद नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं सूरज को बहुत ही यू नो ठेस पहुंचा था कि चाहे कुछ भी हो मैं अपना काम तो नहीं बदलूंगा, काम वही करूंगा गुंडागर्दी की। ठीक है ईशा जी को मेरा ये हुलिया नहीं पसंद तो पुराना वाला सूरज का हुलिया पकड़ूंगा जिससे ईशा जी प्यार भी करती थी। तो अब वो हुलिया इसने अपनाया है और जैसे कि आप सभी ने देखा कभी शर्ट पहना कभी बनियान पहना कभी कपड़े निकाला। तो बस बहुत जल्द आप सभी का सूरज आप सबके सामने आ रहा है पुराना सूरज।
0: अब जब दादा भाई ने ठान ली है कि वो ईशा के लिए कुछ भी करेंगे तो ऐसे में उन्होंने अपने माथे पे लगे हुए तिलक को मिटा दिया है।

اپنے کرتے کو اتار کر پہن لی ہے پرانی کالی ٹی شرٹ۔ Just come be.

0: और साथ ही ऊपर पहन ली है चेक वाली शर्ट जैसे कि सूरज हमेशा पहना करता था और ईशा को वही सूरज पसंद था।
1: दादा भाई के अंदर भी सूरज ही था, लेकिन अभी भी सूरज, ये जो पुराना सूरज बन रहा है वो बन रहा है, वही अंदाज रहेगा सूरज का, लेकिन जब भी दुनिया में, दुनिया के सामने बैठेगा सभा में, तब दादा भाई का ऑरा पकड़ के बैठेगा। सो दैट्स ऑल, यही है
0: भाई, कुछ भी कह लो, अन्याय के खिलाफ सूरज हमेशा लड़ेगा। और अब तो सूरज भले ही पुराने अंदाज में आ गया हो, लेकिन दादा भाई का अंदाज कहानी में और नए ट्विस्ट लाएगा, जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: वसुधा तो हमसे कह रही हैं कि अगर आपने नया नया टैटू बनवाया है तो उसे धूप से भी बचाना चाहिए, नहीं तो वो फीका पड़ सकता है। एक्चुअली वसुधा आप तो लेकर आई हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, तो चलिए अब लेकर चलते हैं आपको वसुधा के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है इनकी कहानी में। आज वसुधा और देवांश की एक कहानी भी लेकर आती है हमारे लिए एंटरटेनमेंट का टैटू, क्योंकि कहानी का लेखक लेकर आता है इस कहानी में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। लेट्स चेक इट आउट।
0: वसुधा के घर में मेहमान नवाजी,

0: मेहमानों के सामने होगा रिश्ते का खुलासा। सारिका चलेगी अपनी चाल।
1: व्यवहार हो रहा
2: पूरी दुनिया ने बता दीजिए कि दोनों सास बहू ने मिलकर आपके साथ के धोखा किया है।
0: जी टीवी के सीरियल वसुधा में जल्द ही बिजनेस अवार्ड होने वाला है। ऐसे में वसुधा और चंद्रिका दोनों का नाम नॉमिनेट हुआ है, इसीलिए आज चंद्रिका के घर अवार्ड से जुड़े कुछ लोग आने वाले हैं, ये देखने के लिए कि चंद्रिका और वसुधा दोनों का व्यवहार सभी घर वालों से कैसा है। इसी बात की तैयारी में जुट गई है चंद्रिका और सभी घर वालों को हिदायत दे रही है कि सभी घर वाले अच्छे से पेश आएं। ऐसे में अवार्ड से जुड़े लोग भी आ जाते हैं और देखिए कैसे उनका आरती कर स्वागत किया जाता है। ये देख तीनों के तीनों मेहमान बेहद खुश नजर आ रहे हैं।

0: वसुधा और चंद्रिका जी को अवार्ड मिलने वाला है और वो नॉमिनेट हुई है बिजनेस के लिए, तो बस अभी वही सीन हम कर रहे थे, तो वो पूछताछ के लिए आए हैं कि कैसा नेचर है उनका और मेरी फैक्ट्री में क्या क्या है, इंटरव्यू लेना है, इसीलिए वो आ जाए हैं और हम उनकी खातिरदारी कर रहे हैं।
1: खैर, उन अवार्ड्स वालों के सामने सभी घर वाले एकता दिखा रहे हैं, लेकिन सारिका उसने तो अपनी चाल चल दी है। ऐसे में जैसे ही चंद्रिका अपने घर वालों को उनसे मिलाती है तो देखिए कैसे सारिका बीच में टांग अड़ाती है।
0: अभी तक तो सारिका ने उनके दिमाग में डाल दिया है कि चंद्रिका जी का नेचर अच्छा नहीं है, वो घर वालों से अच्छे से बिहेव नहीं करती हैं, दादी सास से नहीं करती हैं, तो कुछ कुछ हिंट्स भी उनको मिल रहे हैं, जैसे कि दादी सा ने हमें उनके पास आने से मना किया है तो हम दादी सा के पास नहीं जाते हैं, उन्हें चाय नहीं देते हैं, तो उनको थोड़े हिंट मिल रहे हैं कि शायद सारिका जी सही कह रही थी कि इनकी बनती नहीं आपस में। बस यही चल रहा है, अब देखते हैं अवार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, बाकी एक इंटरव्यू बाकी है दोनों का, इंटरव्यू होने के बाद ये डिसाइड होगा कि अवार्ड मिलेगा या नहीं।
1: अब वसुधा ने आकर चीजें संभाल तो ली, लेकिन वसुधा का व्यवहार देखकर बाकी तीनों बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वसुधा तो सभी के लिए चाय और नाश्ता भी ले आई और तो और अपने हाथों से सभी को वो परोसकर देने भी लगी है। ऐसे में उन तीनों अवार्ड्स वालों की नजर सिर्फ और सिर्फ वसुधा और चंद्रिका पर ही है कि कहीं वो कुछ ऐसा बता दे कि जिससे उनका नाम खारिज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वैसे सारिका अपना खेल खेलेगी और ऐसा ट्विस्ट लाएगी कि उन तीनों के सामने वसुधा और चंद्रिका दोनों ही झूठी नजर आएंगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: अब देखिए, टैटू एक ऐसी चीज है जो लगती तो है बहुत ही खूबसूरत, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये होती है रॉकिंग, पर कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली होती है शॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के अलग अलग रंग इन फॉर्म ऑफ रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
1: सोनी सब के सीरियल गुम यादें में जल्द ही होने वाली है एंट्री उषा बचाने की, जो निभाएंगे किरदार आई साहिब का। देख लीजिए सीरियल का प्रोमो।

0: भगवान के सामने मुरझाए हुए फूल चढ़ाओगी तो भगवान आशीर्वाद भी वैसे ही देगा। बदलो इन्हें, जो भी काम करो व्यवस्थित।
1: सनी देओल, प्रीति जिंटा और करण देओल तीनों पहुंच गए हैं लखनऊ अपनी फिल्म बंटवारा 1947 को प्रमोट करने के लिए। और इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान उन्होंने न सिर्फ वहां के मॉल्स में विजिट किया है बल्कि फैंस से मुलाकात भी की है। इतना ही नहीं, वहां के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने मुलाकात की है, जिसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोज सामने आए हैं।

यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक का ट्रेलर रिलीज होगा बेंगलोर में। ऐसे में कियारा आडवाणी मुंबई से बेंगलोर के लिए रवाना हो चुकी हैं और वो एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई हैं। इसी के साथ नौरा फतेही भी एयरपोर्ट पर स्पॉट की गई है क्योंकि उन्होंने उस फिल्म में एक आइटम सॉन्ग किया है।

0: मनीषा रानी, दीपिका सिंह और भारती ने की है ढेर सारी मस्ती द इंडियन गेम शो के सेट पर।
1: तो कभी भी किसी गलत इंसान के साथ नहीं बैठना चाहिए।

0: कुछ लोग तो किसी के प्रति प्यार जाहिर करने के लिए टैटू बनवाते हैं। तो कैसा लगा आज आपको टैटू और एंटरटेनमेंट के आसपास हमारा ये मनोरंजन का सफर? क्या करें, अब तो घड़ी कर रही है इशारा कि वक्त आ गया है आपको बाय बाय कहने का। तो मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। और आप तो जानते ही हैं कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है। आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां। प्लीज रखें अपना अच्छे से ख्याल। नमस्कार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान, देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
7: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
8: नीरज चोपड़ा के बाद जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रचा इतिहास, U20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल, तीसरे राउंड में 74.9 मीटर किया थ्रो। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश की फुहार, आसमान में छाए काले बादल, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ की पवित्र यात्रा जारी, मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल, दिल्ली UP बॉर्डर पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी किया स्वागत। बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह, अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम, बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। IIT दिल्ली में 57वां दीक्षा समारोह, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को किया संबोधित, 3,000 से ज्यादा छात्रों को मिली डिग्री।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: सावन के पवित्र महीने में भोले शंकर के उद्घोष के साथ जारी कावड़ यात्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा के पास अप्सरा बॉर्डर से राजधानी में आ रहे कावड़ियों पर सीएम रेखा गुप्ता ने बरसाए फूल। ढोल नगाड़ों के बीच किया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कावड़ियों पर बरसे फूल। पुलिस ने पुष्प वर्षा कर शिवभक्तों का किया स्वागत। हर हर महादेव से गूंजा घंटा घर चौराहा। सहारनपुर में अनोखी गौरक्षा कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। तीन कावड़ों को जोड़कर बनाई गई है ये भव्य कावड़। कावड़ में सबसे आगे विराजमान है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा। हरिद्वार से करीब 280 किलोमीटर की यात्रा कर कालका की ओर बढ़ रही है 26 कावड़ियों के जत्थे वाली कावड़। सहारनपुर में कावड़ यात्रा के दौरान दिखा अनोखा शिव भक्त। कमर पर बांधी है 3 किलो की घंटी। खुद को कह रहा है दो पांव वाला भोले का नंदी। ब्रजलाल पिछले 10 साल से अपनी कमर पर करीब 2.5 से 3 किलो की पीतल की घंटी बांधकर कर रहे हैं कावड़ यात्रा। महज 10 साल की उम्र से अपने पिता के साथ शुरू की थी ये प्रथा। दरअसल बचपन में पिता के साथ कावड़ यात्रा करते समय खो जाने के डर से पिता ने बांधी थी ब्रजपाल की कमर में घंटी। तब से इसी तरह यात्रा कर रहे हैं ब्रजलाल। एटा में देखी कलियुग के श्रवण कुमार जैसी अनोखी कावड़। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चार बेटों ने कंधों पर उठाई अनोखी कावड़। कावड़ में एक तरफ अपने पिता को बैठाकर और दूसरी ओर करीब 155 किलो गंगाजल रखकर यात्रा शुरू की। यात्रा मार्ग पर सभी भक्त से नजारा देखकर ये हुए भावुक। सावन के महीने में शिव भक्ति से सभी सराबोर हैं। कावड़ यात्रा में हर उम्र के श्रद्धालु हुए शामिल। चित्रकूट में भी दिख रहा है कावड़ का अनूठा रंग। भगवान शिव की सुंदर पालकी के साथ बम बम भोले का उद्घोष। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी नजर आ रहा है कावड़ यात्रा का उत्साह। भगवान श्री राम की तपोस्थली से जल लाकर भगवान शिव को करेंगे अर्पित। बुलडोजर से की गई कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। फलाहार बांटते और रेवड़ियों की सेवा करते हुए लोग नजर आए। बांदा के बम्बेश्वर शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ 500 कावड़ियों का जत्था। बाबा भोले के अभिषेक के लिए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का ले रहे हैं जल। कावड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सभी स्कूल आज बंद। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने जारी किया आदेश। सहारनपुर में अनोखी हाईटेक डीजे नाइट बनी कावड़ियों का सबसे बड़ा आकर्षण। भोले के भजन पर झूमते नजर आए शिव भक्त। यात्रा की थकान भुलाने के लिए आयोजित की जा रही है अनोखी भक्तिपूर्ण नाइट, जहां डीजे पर बजाते हैं केवल शिव भजन, जिन पर पूरे उत्साह के साथ झूमते नजर आते हैं कावड़िये।
9: वो पूरी तरीके से भूल जाते हैं और उसके बाद
8: मुजफ्फरनगर में अलग अलग शिव भक्तों की टोलियों के बीच नजर आया आंखों पर पट्टी बांधकर कावड़ यात्रा करता ये भक्त। गौ माता की रक्षा का संदेश लिए यात्रा कर रहे हैं सुनील। सुनील ने 4 अगस्त की रात गंगा जल उठाने के साथ ही अपनी आंखों पर बांधी थी पट्टी, जिसे वे 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करने तक नहीं खोलेंगे। समस्तीपुर में सजा सावन का महोत्सव। महिलाओं ने गीत संगीत पर जमकर किया नृत्य। हर गंगे से हरे रंग से सजी महिलाओं ने मनाया सावन। मेहंदी झूले और गीतों से छाया उत्साह। सावन के गीतों पर झूमी सुहागिने। भोलेनाथ से खुशहाली की मांगी कामना। महिलाओं के डांस ने बांधा समा। लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र। छाता लेकर महिलाओं ने किया फैशन शो। सावन की थीम पर दिखी अनोखी प्रस्तुति, झूले और कजरी गीतों से गूंजा महोत्सव, सावन बना उमंग और उत्सव का पर्व। सावन महोत्सव में बांटी गई सुहाग की सामग्री, मेहंदी और हरियाली ने बढ़ाई सावन की रौनक, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई महिलाएं। श्रावण मास के दौरान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भारी संख्या में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, सरयू में लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। बारिश और खराब मौसम के बावजूद देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं श्रद्धालु, भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लगातार हो रही है देवगढ़ जाने वाले कांवड़ियों की भीड़, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद कांवड़िया बैद्यनाथ धाम की तरफ हो रहे हैं रवाना। पूरे रेलवे स्टेशन पर दिख रही है कांवड़ियों की भीड़, सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन सतर्क। स्टेशन पर कांवड़ियों की हर सुविधा का रखा जा रहा है ख्याल, रेलवे पुलिस के अतिरिक्त जवान भी तैनात। सहारनपुर में कांवड़ियों की थकान होगी छूमंतर, तमाम मेडिकल सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया डॉक्टर्स की टीम, तैनात वाला मेडिकल कैंप। इस शिविर में कांवड़ियों के लिए इलाज और प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं उपलब्ध, साथ ही थकान और पैरों के दर्द से राहत के लिए फुट मसाज और थाई मसाज मशीन्स भी लगाई गई। शिविर में दो मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए, एक समय में करीब 600 मोबाइल किए जा सकते हैं चार्ज। पिछले 20 सालों से लगाया जा रहा है कांवड़ियों के लिए मेडिकल कैंप। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर रजौरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भी सुरक्षा बल सतर्क, आने जाने वाले लोगों और वाहनों की जांच तेज। जम्मू से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के साथ अगले कुछ दिनों में भारी बारिश और अनुमान, और तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी के कारण लिया गया फैसला। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु में कांवड़ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा। अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में कर चुके हैं दर्शन, मॉनसून सीजन की अनेक चुनौतियों से पार पाते हुए धाम पहुंच रहे हैं भक्त। सोनप्रयाग में वाहनों से फुल हुई पार्किंग, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क। बद्रीनाथ धाम में भी लगी भक्तों की रौनक, सावन के महीने में बढ़ी भक्तों की संख्या, दिख रहा है सावन के महीने का उत्साह। भक्तों से भरा नजर आ रहा है धाम का मंदिर परिसर, बाजार और यात्रा मार्ग, मॉनसून के बावजूद यात्रा में मुख्य सीजन जैसी भीड़। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन और शयन आरती में भी हुए शामिल। पारंपरिक रूप से बाबा महाकाल का पूजन कर सीएम यादव ने लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों के कल्याण सुख और समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई लालबागचा राजा की प्रतिमा। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ 14 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का स्वागत, कोल्हापुर का राजा के दर्शन के लिए उमड़ रहे हजारों लोग। मंडल की ओर से भव्य तरीके से की गई बप्पा के आगमन के समारोह की तैयारी, पारंपरिक ढोल ताशों की गूंज, आकर्षक रोशनी और भक्तिमय माहौल में किया गया गणराज्य का स्वागत। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने के जन्मोत्सव पर दीयों की भव्य रोशनी से जगमगा उठा गोल्डन टेंपल, श्रद्धा और भक्ति का देखा अद्भुत नजारा। हरमंदिर साहिब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रोशनी और मिट्टी के दीयों ने बढ़ाई स्वर्ण मंदिर की रौनक। गुजरात के जामनगर में समरस विद्या सेतु अभियान का शुभारंभ, 500 से अधिक बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश। स्कूल ड्रॉप आउट, बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास, एक महीने तक चलेगा समरस विद्या सेतु अभियान। गुजरात के गिर सोमनाथ में सड़क पर आराम फरमाते दिखे चार शेर, बस में बैठे यात्रियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं। आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है, इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती, ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र, ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग, इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल, बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है, ये मेजन करी तेल, इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु, ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल, ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू, इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन, अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म, यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है, साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा, ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं, फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम

0: बसता है, जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
2: नीरज चोपड़ा के बाद जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रचा इतिहास, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल, तीसरे राउंड में 74.9 मीटर किया थ्रो। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश की फुहार, आसमान में छाए काले बादल, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ की पवित्र यात्रा जारी, मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी किया स्वागत। बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह, अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम, बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। आईआईटी दिल्ली में 57वां दीक्षांत समारोह, प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को किया संबोधित, 3,000 से ज्यादा छात्रों को मिली डिग्री।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सावन के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। ये एकादशी इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा पाई जा सकती है। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि देवशयनी एकादशी से श्री हरि योग निद्रा में जा चुके हैं, लेकिन कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान से करने पर आपको हरिहर की संयुक्त कृपा मिलती है। और माना जाता है कि कामिका एकादशी के दिन श्री हरि के ध्यान, भजन और कीर्तन से सबका कल्याण होता है।

पुण्यकारी और मोक्षदायिनी है सावन की कामिका एकादशी। हरि संग हर की कृपा दिलाने वाला है ये परम कल्याणकारी व्रत। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाली है कामिका एकादशी। सावन में कीजिए भोलेनाथ की भक्ति, हर एक कृपा से मिलेगी कष्टों से मुक्ति। शिव के प्रिय सावन में महादेव के साथ श्री हरि की कृपा

0: पाने के लिए सबसे फलदायी है कामिका एकादशी का व्रत। एक ऐसा व्रत जो व्यक्ति के संस्कारों को शुद्ध कर देता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। ज्योतिष की जानकारों की माने तो कामिका एकादशी व्रत के पुण्य अपार हैं। कहते हैं कि इस व्रत के विधिवत पालन से साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
1: कामिका एकादशी पद्म पुराण और ब्रह्म वैतरण पुराण में कामिका एकादशी की महिमा का प्रसंग है और उसमें प्रसंग मिलता भी है। यह व्रत भगवान विष्णु के लिए समर्पित है और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है।

0: श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। श्रावण मास में श्रीहरि की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। इंसान के कर्मों को ध्यान में रखकर ही तो ऋषि मुनियों ने व्रत और उपवास के नियम बनाए थे। एकादशी व्रत का सीधा सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत विधि विधान से रखने पर प्राणी सभी दुखों से मुक्त होता है।
1: धार्मिक मान्यता है कि इस दिन अनेक यज्ञों के करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। सावन मास में यह कामिका एकादशी जो है वह शिव और विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त होता है। इस दिन व्रत दान और पूजा करने से सुख समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना की पूर्ति की जाती है।
0: ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर इंसान सही नियम से व्रत और उपवास रखे तो जीवन के तमाम कष्टों से मुक्त रहता है। चलिए अब आपको बताते हैं इस बार क्यों खास है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी पर भगवान शिव और श्री विष्णु दोनों की कृपा मिलेगी। एकादशी के व्रत से पापों का नाश होगा। इस बार रविवार होने के कारण सूर्य उपासना का योग बन रहा है। हर्षण योग, द्विपुष्कर पुष्कर योग और शिववास योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होगी। इस दिन स्नान दान और ध्यान का अनंत गुना फल प्राप्त होगा। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और एकादशी की तिथि श्री हरि विष्णु को प्रिय है। रविवार के दिन पड़ने से ये सूर्यदेव के तेज और ऊर्जा से भी जुड़ जाता है। रविवार और एकादशी के इस पावन संयोग पर सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ दें, इसके बाद भगवान विष्णु के साथ साथ शिवलिंग का जलाभिषेक या पूजन करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है।

0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कामिका एकादशी की तिथि पर मिथुन राशि में मंगल और चंद्रमा के होने पर महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है, जो कई भक्तों की धन की समस्या दूर कर सकता है। हर व्रत और उपवास का अपना महत्व है, लेकिन एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से भी नारायण को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर किसी कारण आप एकादशी का व्रत न कर पाए तो आपको एकादशी के व्रत का पुण्य मिल सकता है, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है।
1: अगर एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए उचित उपवास संभव न हो पाए तो श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का स्मरण खाली कर लें और सात्विक भोजन करें, तुलसी की पूजा करें, विष्णु मंत्रों का जप करें, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो दान पुण्य हो सके वह करें। उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं और यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
0: इस दिन अन्न और भारी भोजन खाने से परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं। सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करने पर आपको भी समृद्धि और सौभाग्य का वरदान मिल सकता है। जगत के पालनहार आपका भी कल्याण जरूर करेंगे, तो आप भी इस पवित्र एकादशी व्रत का लाभ उठाइए। कामिका एकादशी पर श्री हरि की भक्ति का आनंद उठाइए। इस एकादशी की पूजा विधि क्या होगी आगे हम आपको बताएंगे, तब तक देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को परम प्रिय है। एकादशी की तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना साधक की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत में किन बातों का ध्यान रखने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए कामिका एकादशी पर कौन से फूल और पत्तियां शिव जी को अर्पित किए जाएं।

मान्यता तो यहाँ तक है कि सुवर्त को करने मात्र से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। मान्यता है कि संपूर्ण विश्व श्री विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त हैं और ये एकादशी सौभाग्य और पुण्य प्रदान करने वाली है।

0: ज्योतिष के जानकारों की माने तो कामिका एकादशी पर पूजा उपासना के कुछ विशेष नियम हैं और सही विधान से पूजन करके आप भगवान को जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी पर कैसे करें उत्तम उपासना।
1: प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके और स्वच्छ और सात्विक वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु की प्रतिमा तथा शिव की प्रतिमा स्थापित करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, फल अर्पित करें। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम और गीता का पाठ करें। तब एकादशी का पाठ भी किया जाता है, वह भी करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास करें, व्रत रखें तथा एकादशी तिथि में विधि पूर्वक पारण करें। इस प्रकार इसका व्रत किया जाता है।

प्रातः भगवान कृष्ण की आराधना करें, पीले फूल, पंचामृत तथा तुलसी दल अर्पित करें, फल भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जप करें, शिव जी को जल अर्पित करें। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना भी उत्तम होगा। पूर्ण रूप से जलीय आहार लें या फलाहार लें। अगर भोजन ग्रहण करना ही है तो सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मन को ईश्वर में लगाएं, क्रोध न करें।

0: अगर आप उपवास नहीं कर सकते तो केवल उपासना से ही आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि सच्चे मन से ईश्वर की उपासना करने से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। तो जो शक्ति हर ओर व्याप्त है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम भी हैं।
1: उसमें किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना है, एकदम निषेध है। एकादशी के दिन जिस दिन आप व्रत कर रहे हैं उस दिन क्रोध नहीं करना है, असत्य भाषण नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है और नकारात्मक विचार से बचें और संयम रखना चाहिए। उस दिन तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, अतः जो भी भगवान विष्णु को भोग लगावें उसमें तुलसी पत्ता तुलसी दल जरूर छोड़ना चाहिए, तभी वह प्रसाद भगवान विष्णु ग्रहण करते हैं।

0: ये व्रत दो प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जलीय व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए, सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हरि कृपा का यह दिन बड़ा ही दिव्य है। माना जाता है कि विधि विधान और सच्चे मन से कामिका एकादशी पर किए गए उपाय हर समस्या का समाधान कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस कामिका एकादशी पर कैसे करें विशेष प्रयोग।
1: भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, तुलसी दस दल अर्पित करना चाहिए। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। घी का दीपक जला करके विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। तुलसी के पौधे में तो उसकी 11 या 21 परिक्रमा करें। जो जरूरतमंद है उनको अन्न, फल, वस्त्र का दान करें। उसमें आस्था होनी चाहिए, तभी वह फल आपको प्राप्त हो सकता है।
0: इस दिन मध्य रात्रि में उपासना जरूर करें, या तो भगवत गीता का पाठ करें या यथाशक्ति शिव पुराण का पाठ करें। इसके बाद अपनी समस्याओं के निवारण की प्रार्थना करें, आपकी हर तरह की समस्या का निवारण होगा। जानकार बताते हैं कि परम कल्याणकारी और फलकारी है ये एकादशी, तो आप भी विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत और पूजन कीजिए। नारायण आपके दुखों को दूर करेंगे। इस दिन किए गए विशेष उपाय से आपको अच्छी सेहत के साथ साथ उत्तम सौभाग्य का वरदान भी मिल सकता है। आगे हम आपको बताएंगे कामिका एकादशी की तिथि पर किए जाने वाले कामना पूर्ति के कुछ महाप्रयोग।
2: हम सभी जानते हैं कि सावन में भोलेनाथ की असीम कृपा बरसती है और सावन की एकादशी तो भोलेनाथ और श्री हरि दोनों की कृपा पाने के लिए परम फलदायी है। चलिए अब आपको बताते हैं कामिका एकादशी की तिथि पर किए जाने वाले कामना पूर्ति के महा उपाय क्या हैं, जो आपको सभी संकटों से दूर करेंगे।

0: अक्षय होने वाली है कामिका एकादशी। पद्म पुराण कहता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी का पूजन भी साधक को वैभव दिला सकता है। चलिए अब आपको कामिका एकादशी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ कामना पूर्ति के महाप्रयोग बताते हैं, जिन्हें करके आप श्री हरि के कृपा के पात्र बन सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तुलसी को जल अर्पित करें और उसके परिक्रमा करें। शाम को तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं। ये दीपक सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। तुलसी के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान विष्णु को नैवेद्य अर्पित करते समय उसमें तुलसी दल डालें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि कामिका एकादशी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खास है। चलिए अब आपको इस तिथि पर दीपक के साथ किए जाने वाले एक प्रयोग बताते हैं, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है। कामिका एकादशी पर दीप दान करना चाहिए। किसी भी विष्णु मंदिर या कृष्ण मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाएं। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक अवश्य जलाएं। किसी पवित्र नदी या तालाब में आटे के दीपक बनाकर उन्हें प्रज्वलित कर प्रवाहित करें। ये पितरों को शांति प्रदान करता है और बाधाओं को दूर करता है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दीपदान करने से जीवन से दरिद्रता दूर होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि का मार्ग खुलता है। सनातनी आस्था कहती है कि ईश्वर की उपासना, व्रत और उपवास के बाद यदि आप किसी जरूरतमंद को अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ दान करते हैं, तो ये भी आपको ईश्वर की कृपा दिलवा सकता है। चलिए आपको बताते हैं इस तिथि पर किए जाने वाले दान का महत्व। कामिका एकादशी पर दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। गरीबों और जरूरतमंदों को गेहूं, चावल या दाल दान करें। विशेष रूप से पीली वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को पीले वस्त्रों का दान करें। मौसमी फलों का दान बच्चों को करें। इस तिथि पर पुस्तकों का दान भी शुभ माना जाता है। गाय को हरा चारा खिलाएं या गौशाला में दान करें। दान करते समय मन में श्रद्धा और परोपकार की भावना होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से किया गया दान अवश्य फलकारी होता है। ये एकादशी पितरों को भी शांति प्रदान करने वाली मानी जाती है, इसलिए इस दिन पितरों के निर्मित तर्पण और दान का भी विशेष महत्व है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस तिथि पर कुछ खास मंत्रों के जाप से भी आप श्रीहरि को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस तिथि पर किए जाने वाले मंत्रों के जाप से, जिससे आप नारायण की कृपा पा सकते हैं।
1: इस तिथि में ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जाप करें, ओम विष्णुवे नमः मंत्र का जाप करें, ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें, ओम और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और श्री विष्णु गायत्री मंत्र का जप किया जा सकता है। इससे मनुष्य की कामना पूर्ति होती है।
0: भगवान विष्णु की पूजा में मंत्र जाप का विशेष महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये श्रीहरि का द्वादशाक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जितना अधिक जाप करेंगे उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। इस तिथि पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कामनाओं की पूर्ति करवाता है। इसके पाठ से सभी संकटों के दूर होने की मान्यता है। इस तिथि पर विष्णु गायत्री मंत्र का जाप भी कल्याणकारी है। ओम नारायणाय विद्ये वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जाप करते समय रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना उत्तम होगा। तो देखा आपने, ज्योतिष में बताए गए ये महा उपाय निश्चित ही आपको कामनाओं की पूर्ति करवा सकते हैं। तो आप भी विधि विधान से कामिका एकादशी का व्रत कीजिए, जिससे शिव के साथ ही बरसेगी श्री हरि की कृपा और आपका होगा सर्व कल्याण।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हो स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत के नाम एक बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में आशीष यादव ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत के लिए नया एक मेडल का खाता खोल दिया है। आशीष को उनके तीसरे राउंड के 74.9 मीटर के थ्रो ने सिल्वर मेडल दिलाया। 19 साल के आशीष यादव दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के बाद इस इवेंट में मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 2016 में गोल्ड मेडल जीता था। उनके बाद आशीष वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए। इसके साथ ही आशीष को इस चैंपियनशिप में भारत को पहला मेडल भी दिलाने का गौरव हासिल हुआ है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
1: नीरज चोपड़ा के बाद जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रचा इतिहास। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। तीसरे राउंड में 74.9 मीटर किया थ्रो। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश की फुहार, आसमान में छाए काले बादल, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मम्मा भोले के जयकारों के साथ कावड़ की पवित्र यात्रा जारी, मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी किया स्वागत। बदलते मौसम के बीच भी केदारनाथ यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह, अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु पहुंच चुके हैं धाम, बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। हॉट एयर बलून से सजा ब्रिस्टल का आसमान, ब्रिटेन के इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का शानदार नजारा, हर साल धूमधाम से होता है आयोजन।

0: आप लोगों ने, अगर आप उज्जैन के वासी हैं, इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के वासी, तो आप लोगों ने अक्सर इनको देखा होगा। जाने माने हास्य कलात्मक और सांस्कृतिक कलाकारों की पूरी टोली है। शैलेंद्र यानी स्वामी मुस्कुराके जो इनका नाम है, इस मंडली के मार्गदर्शक भी है और मुख्य कलाकार भी, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे आज। शैलेंद्र व्यास वैसे पेशे से सम्मानित शिक्षक भी है, जिन्हें 2004 में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के सर्वोच्च शिक्षक से भी, शिक्षक सम्मान से भी नवाजा था। तो आज 39 साल से ये टोली इसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मुस्कुरा के टोली का, भस्म रमैया भक्त मंडल।
1: बजाओ ढोल।

0: परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के, खिलखिला के, क्या संदेश है इसके पीछे, आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ अच्छा, ये बताइए संदेश क्या देते, आइडिया कहाँ से आया? और 39 साल से लगातार शिव बारात में आपकी पूरी टोली चलती है इसी तरीके से।
1: देखिए, हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है वो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना वैभव लिए। हर प्रदेश में अपनी अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार के राजा महाराजा हुए हैं। तो वर्ष 80 के दशक में हमारे बचपन के मित्र और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शताब्दी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव जी, हम साथ में महाकाल की सवारी देखने गए थे। और जब महाकाल की सवारी को प्रथम बार देखा तो ऐसा लगा कि कहीं से घंटिया बजी के हमको भी इस सवारी का पार्ट बनना चाहिए। तब से उधार की पगड़ी, उधार की धोती, उधार का कुर्ता, उधार की चप्पल लेके पहली बार सवारी में निकले। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे राजसी स्वरूप बढ़ता गया और स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के, स्वामी गुदगुदा के, पप्पू तलवार, ये सब जुड़ते गए और हमारी सनातन संस्कृति के प्रचार का आनंद आने लगा। और ये जो हमारी युवा तरुणाई है ना, फटी जींस पहनने वाली, उल्टी टोपी लगाने वाली या सिर पे गमला पहनने वाली, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि गमला संस्कृति में पलने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा वैभव, साफा पगड़ी, हमारा धोती कुर्ता, ये हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा है। तो आप पाश्चात्य संस्कृति को धारण करें लेकिन हमारी परंपरा की पगड़ी को जरूर पहने। जय महाकाल।

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए,
0: हाँ,
1: एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।
0: अच्छा,
1: और जितने आए हैं स्वामी महामंडलेश्वर प्रवचनकार,
0: हाँ,
1: ये मुस्कुराने के दाम लेते हैं।
0: ओ,
1: तो हमें लगा कि हम मुस्कुराहट को क्यों ना 100% डिस्काउंट पे मुस्कुराएं।
0: बहुत अच्छा किया,
1: ये मुस्कुराहट का रूप निकला है। नहीं सीखी हमने दास्ता आंसू बहाने की, नहीं सीखी है दास्ता हमने आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की, और तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की।
0: अच्छा एक चीज और, फिर उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कीजिएगा। शिव की नगरी में हम हैं, आप तो अक्सर हर सोमवार, क्योंकि सावन के सोमवार को सवारी निकलती है बाबा की, तो आप लोग साथ साथ होते हैं, आज क्या परफॉर्म करके दिखाने वाले हैं?
1: देखिए शिव की नगरी शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। भस्म रमैया कहा जाता है भोलेनाथ, महादेव बाबा महाकाल हमारे साथ, भस्म रमैया भक्त मंडल श्री प्रवीण माधुस्कर का वो मंडल है जिसने देश विदेश में बाबा के डमरू झांझ ढोलक से उज्जैन महाकाल की सांस्कृतिक पहचान बनाई है। तो हम हमारी सांस्कृतिक वेशभूषाओं में हम बार बार, क्योंकि पुराने समय में पुराना इतिहास यदि आप देखेंगे तो राजा भोज के समय बाबा महाकाल की सवारी पूरे लाव लश्कर लवाजमे के साथ स्वयं राजा भोज आगे निकलते थे। उसके बाद सिंधिया काल में राणोजी सिंधिया जिन्होंने इस सवारी को एक नया कलात्मक रूप दिया, और वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी जिन्होंने इस सवारी में आदिवासी नृत्य, विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं संस्कृति के, केरल के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, हमारे मध्य माननीय सांसद जी विराजित हैं, यहाँ पर दो दो सांसद विराजित हैं, मैं चाहूंगा दो दो का जोरदार तालियों से स्वागत करें, श्री अनिल फिरोजा जी और दिल्ली के सांसद जो कि एक अच्छे गायक भी हैं, हम उनका भी वंदन करते हैं।
0: मनोज तिवारी जी,
1: मनोज तिवारी जी, आप पे वारी जाऊं तिवारी जी।
0: अच्छा अब ये बताइए आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं?
1: देखिए अब ये अलग अलग धुन है, मालवा की धुने हैं,
0: हाँ।
1: रजवाड़ी है, मटकी है, भेरू जी है, कश्मीरी है, ये सब मंडली यहाँ पर मुस्कुराएगी, और एक और भजन मंडली शयन भक्त आरती मंडल इसके बाद वो भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देगी
0: जी, जी,
1: मुस्कुरा के
0: जी जी, जी।

0: जेन जी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, जेन जी धर्म के साथ जुड़ी है, जेन जी नहीं जुड़ी, जेन जी को एजुकेट करने की जरूरत है, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपके साथ तो पूरी मुझे काफी हद तक जेन जी नजर आ ही रही है, तो कैसे जेल होता है?
1: देखिए, ये जो हमारे साथ मंडली है ये जेन जी नहीं है, ये सब शिवजी वाले हैं।
0: अच्छा, ये जेन जी नहीं है, शिवजी वाले हैं।
1: आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की मोड़ रही है, आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की ओर मोड़ रही है। उन्होंने तो धनुष तोड़ा था, ये ट्यूबलाइट, फर्नीचर और शासकीय संपत्ति तोड़ रही है।
0: उसी को तो रोकना है।
1: तो ठीक है, जैन जी ने अपना प्रयास किया, इन युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत है, इन युवाओं को स्नेह की जरूरत है, इनकी इनकी बातों को प्यार से सुनने की जरूरत है, और इनको रोजगार की जरूरत
0: है और एक मुस्कुराहट की जरूरत है।
1: मुस्कुराहट तो तभी आएगी जब रोजगार मिलेगा।

0: बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। फूल सी कोमल होती है बेटियां, फूल सी कोमल होती है बेटियां, और स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा करेगा केवल एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की मुस्कुराहट होती है बेटियां। तो आपका बस मनवैया भक्त मंडल, शयन आरती मंडल और मुस्कुरा के मंडली द्वारा भैया जब तक ताली नहीं बजाएंगे मुस्कुराएंगे नहीं।
1: महाकाल
0: महाराज की, बस मनवैया भक्त मंडल की, आज के आनंद की।
1: अरे

0: LOC पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा। 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा? पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: धर्म और शास्त्रों को जानने के लिए कहा जाता है कि केवल किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप आसपास हर किसी चीज से सीखते हैं। लेकिन दो चीजें आती हैं, धर्म को जानना और उसको मानना। हम सभी मानते हैं अपने धर्म को, हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन क्या वाकई हम उसे जानते हैं? जब उसे जानने की बात आती है तो हमें प्रैक्टिकलिटीज पे जाना पड़ता है, और उसके लिए मैं इस वक्त मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को, जो खुद एक पेंटर हैं, पोएट हैं, कथावाचक भी हैं, और धर्म को मानने से ज्यादा उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संगीतकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राष्ट्रभक्त हैं। धर्म के जरिए कैसे राष्ट्रभक्ति को दिखाया जा रहा है और कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चरित्रार्थ करेंगे आज अपनी पेंटिंग्स के जरिए। भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक भी हैं और अपनी कला, कविताओं और भारत माता की आरती के माध्यम से पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राष्ट्र जागरण का कार्य ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इनका जन्म हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ललित कला में स्वर्ण पदक प्राप्त इन्होंने किया। इसके अलावा चित्रकला के अलावा व्यंगात्मक गायन, मंच संचालन में सदस्य हैं, और प्रमुख कार्य और उपलब्धियों की अगर हम इनकी बात करें तो अनेकों अनेक किताबें, 25 किताबें जो मेरे पास इस वक्त लिस्ट आई है, प्रकाशित हो चुकी हैं, राष्ट्र और संस्कृति पर आधारित हैं। और अभी तक इन्होंने आंकड़ा गलत हो सकता है, आप सर करेक्ट कर सकते हैं, 1500 से ज्यादा शायद प्रस्तुतियां दी, और मेरे ख्याल से अनगिनत समय आप अमेरिका जा चुके हैं और सनातन का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। एक बार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सत्यनारायण मौर्य जी।
2: मूलतः जिसको हम धर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ शब्दों में कन्फ्यूजन है। जब भी बात करते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, तो वास्तव में धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन शब्दों का रिलीजन वो होता है जिसको कोई एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन भारत में हम जिसको कहते हैं सनातन धर्म, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। और इसमें जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़े, योग दर्शन पढ़े, अथा तो योग जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां अथा तो है, अथा स्टार्ट तो है लेकिन एंडिंग नहीं है। जब भी परमात्मा के बारे में कहा जाता है हम कहते हैं नेति नेति नेति, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। कुरान के हिसाब से अंत है, बाइबल के हिसाब से अंत है, किसी पंथ के हिसाब से अंत है, लेकिन हिंदुत्व के हिसाब से परमात्मा को जानने की चीज का अंत नहीं है। और कहा गया जानो, जैसे कोई बाप संपत्ति कमाता है और उसके बाद बेटे से यह नहीं कहता कि इतनी संपत्ति में संतोष करना है, बाप कहता मेरे से ज्यादा कमाना मुझे संतोष होगा। हमारे भारत के जितने ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं मैंने यहां तक कमाया है, तुम इसके आगे जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो। मानने के बाद तो बात खत्म हो जाती है, जो पंथ मान लेते हैं वे सड़ जाते हैं। इसी बात को मैं संगीत की भाषा में कहता हूं, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, केवल हम ही सच है।

0: अभी मैं चाहता हूँ जो कहा गया था भगवान शंकर शरीर पर भस्म लगाते हैं और यहाँ पर भस्म आरती होती है, हमने तो सुना था मुर्दे की भस्म होती है, कोई मुर्दे की भस्म नहीं है। शंकर भगवान शरीर पर भस्म क्यों लगाए ये कॉलेज के बच्चे पूछेंगे। शंकर जी भस्म लगाते हैं पागल है क्या? और अगर वो भस्म लगाते हैं तो तुम भस्म लगाकर क्यों नहीं घूमते? भगवान गणेश हैं, इतने बड़े गणेश, मोटे पेट के गणेश। गणेश तो मोटे पेट के पसंद है, पर खुद का पेट मोटा हो जाता बाबा रामदेव की शरण में जाते हैं। इन सबका अर्थ समझे, मैं चाहता हूँ भस्म से बात शुरू कर दूं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: शिव के तन की भस्मी से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम भारत के लोग, हम सनातनी लोग, शंकर जी डमरू बजाते कि नहीं बजाते हैं? बोलो ना। हाँ, पार्वती जी वीणा, सरस्वती माता वीणा बजाती कि नहीं बजाती है? नारद जी भी कुछ ना कुछ बजाते हैं, हनुमान जी को और कुछ ना मिले तो सोटा उठा के राक्षसों को बजा

भगवान शंकर का परिवार, भगवान शंकर सन्यासी, भगवान शंकर सन्यासी और उनकी पत्नी राजकुमारी, आजकल जितने परिवार टूट रहे हैं इसी बात पे टूट रहे हैं, तेरे मेरे विचार नहीं मिलते। कहां से विचार मिलेंगे, एक बिल्कुल धनी घर की लड़की, एक सन्यासी, उनके दो बच्चे, पहले गणेश, पहले कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और गणेश का वाहन क्या है? जोर से बोलो। और शंकर जी के गले में क्या है? तो जरा सोच कर देखो,

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम

0: क्या है रुद्राभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक के क्या हैं विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: बम बम भोले के जयकारों के साथ कावड़ की पवित्र यात्रा जारी। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सीएम रेखा गुप्ता ने भी किया स्वागत। देशभर में दिख रहे हैं पवित्र कावड़ यात्रा के अनोखे रंग। बिजनौर की कावड़ में दिखे देशभक्ति के रंग। हरिद्वार में डाक कावड़ का शुभारंभ। नीरज चोपड़ा के बाद जैवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रचा इतिहास। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। तीसरे राउंड में 74.9 मीटर किया थ्रो। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हल्की बारिश की फुहार। आसमान में छाए काले बादल। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हॉट एयर बलून से सजा ब्रिस्टल का आसमान। ब्रिटेन के इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का शानदार नजारा। हर साल धूमधाम से होता है आयोजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सावन के पवित्र महीने में भोले शंकर के उद्घोष के साथ जारी कावड़ यात्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। दिल्ली यूपी सीमा के पास अप्सरा बॉर्डर से राजधानी में आ रहे कावड़ियों पर सीएम रेखा गुप्ता ने बरसाए फूल। ढोल नगाड़ों के बीच किया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कावड़ियों पर बरसे फूल। पुलिस ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का किया स्वागत। हर हर महादेव से गूंजा घंटा घर चौराहा। सहारनपुर में अनोखी गौरक्षा कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। तीन कावड़ों को जोड़कर बनाई गई ये भव्य कावड़। कावड़ में सबसे आगे विराजमान है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा। हरिद्वार से करीब 280 किलोमीटर की यात्रा कर कालका की ओर बढ़ रही है 26 कावड़ियों के जत्थे वाली कावड़। सहारनपुर में कावड़ यात्रा के दौरान दिखा अनोखा शिव भक्त। कमर पर बांधी है 3 किलो की घंटी। खुद को कह रहे हैं दो पांव वाला भोले का नंदी। ब्रिजलाल पिछले 10 साल से अपनी कमर पर करीब 2.5 से 3 किलो की पीतल की घंटी बजाकर कर रहे हैं कावड़ यात्रा। महज 10 साल की उम्र से अपने पिता के साथ शुरू की थी प्रथा। दरअसल बचपन में पिता के साथ कावड़ यात्रा करते समय खो जाने के डर से पिता ने बांधी थी ब्रिजलाल की कमर में घंटी। तब से इसी तरह यात्रा कर रहे हैं ब्रिजलाल। एटा में देखिए कलियुग के श्रवण कुमार जैसी अनोखी कावड़। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए चार बेटों ने कंधों पर उठाई अनोखी कावड़। कावड़ में एक तरफ अपने पिता को बिठाया और दूसरी ओर करीब 155 किलो गंगा जल रखकर यात्रा की शुरू। यात्रा मार्ग पर सभी भक्त नजारा देखकर हुए भावुक। सावन के महीने में शिव भक्ति से सभी सराबोर। कावड़ यात्रा में हर उम्र के श्रद्धालु हुए शामिल। चित्रकूट में भी दिख रहे हैं कावड़ यात्रा के अनूठे रंग। भगवान शिव की सुंदर पालकी के साथ बम बम भोले का उद्घोष। उत्तर प्रदेश के बांदा में भी नजर आ रहा है कावड़ यात्रा का उत्साह। भगवान श्री राम की तपोस्थली से जल लाकर भगवान शिव को करेंगे अर्पित। बुलडोजर से की गई है कावड़ियों पर पुष्प वर्षा। फलाहार बांटते और कावड़ियों की सेवा करते लोग आए नजर। बांदा के बम्बेश्वर शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ 500 कावड़ियों का जत्था। बाबा भोले के अभिषेक के लिए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का ले रहे हैं जल। कावड़ यात्रा के चलते यूपी के बिजनौर में सभी स्कूल आज बंद। जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने जारी किया आदेश। सहारनपुर में अनोखी हाईटेक डीजे नाइट बनी है कावड़ियों का सबसे बड़ा आकर्षण। भोले के

0: ਜਨ ਪਰ ਝੂਮਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ। यात्रा की थकान भुलाने के लिए आयोजित की जा रही है अनोखी भक्तिपूर्ण नाइट, जहां डीजे पर बजाए जाते हैं केवल शिव भजन, जिन पर पूरे उत्साह के साथ झूमते नजर आते हैं कांवड़िए। मुजफ्फरनगर में अलग अलग शिव भक्तों की टोलियों के बीच नजर आया आंखों पर पट्टी बांधकर कांवड़ यात्रा करता भक्त, गौ माता की रक्षा का संदेश लिए यात्रा कर रहे हैं सुनील। सुनील ने 4 अगस्त की रात गंगा जल उठाने के साथ ही अपनी आंखों पर बांध ली थी पट्टी, जिसे वे 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करने तक नहीं खोलेंगे। समस्तीपुर में सजा सावन महोत्सव, महिलाओं ने गीत संगीत पर जमकर किया नृत्य, हरे रंग में सजी महिलाओं ने मनाया सावन। मेहंदी झूले और गीतों से छाया उत्साह, सावन के गीतों पर झूमी सुहागिने, भोलेनाथ से खुशहाली की मांगी कामना। महिलाओं के डांस ने बांधा समा, लोकगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम रहे आकर्षण का केंद्र, छाता लेकर महिलाओं ने किया फैशन शो। सावन की थीम पर दिखी अनोखी प्रस्तुति, झूले और कजरी गीतों से गूंजा महोत्सव, सावन बना उमंग और उत्सव का पर्व। सावन महोत्सव में बांटी गई सुहाग की सामग्री, मेहंदी और हरियाली ने बढ़ाई सावन की रौनक, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई महिलाएं। श्रावण मास के दौरान अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भारी संख्या में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, सरयू में लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। बारिश और खराब मौसम के बावजूद देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं श्रद्धालु, भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लगातार हो रही है देवघर जाने वाले कांवड़ियों की भीड़, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद कांवड़िए बैद्यनाथ धाम की तरफ हो रहे हैं रवाना। पूरे रेलवे स्टेशन पर दिख रही है कांवड़ियों की भीड़, सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन सतर्क। स्टेशन पर कांवड़ियों की हर सुविधा का रखा जा रहा है खास ख्याल, रेलवे पुलिस के अतिरिक्त जवान भी तैनात। सहारनपुर में कांवड़ियों की थकान होगी छूमंतर, तमाम मेडिकल सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया डॉक्टर्स की टीम तैनात वाला मेडिकल कैंप। इस शिविर में कांवड़ियों के लिए इलाज और प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं उपलब्ध, साथ ही थकान और पैरों के दर्द से राहत के लिए फुट मसाज और थाई मसाज मशीन्स भी लगाई गई। शिविर में 2 मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित, एक समय में करीब 600 मोबाइल किए जा सकते हैं चार्ज। पिछले 20 सालों से लगाया जा रहा है कांवड़ियों के लिए मेडिकल कैंप। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भी सुरक्षा बल सतर्क, आने आने वाले लोगों के लिए वाहनों की जांच तेज। जम्मू से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के साथ अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के अनुमान और तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी के कारण लिया गया फैसला। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु, कांवड़ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में कर चुके हैं दर्शन, मानसून सीजन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए पहुंच रहे हैं धाम। सोनप्रयाग में वाहनों से फुल हुई पार्किंग, श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क। बद्रीनाथ धाम में भी लगी भक्तों की रौनक, सावन के महीने में बढ़ी भक्तों की संख्या, दिख रहा है सावन के महीने का उत्साह। भक्तों से भरा नजर आ रहा है धाम का मंदिर परिसर, बाजार और यात्रा मार्ग, मानसून के बावजूद यात्रा में मुख्य सीजन जैसी भीड़। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए और शयन आरती में भी हुए शामिल। पारंपरिक रूप से बाबा महाकाल का पूजन कर सीएम यादव ने किया लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों के कल्याण सुख और समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई लालबागचा राजा की प्रतिमा। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ 14 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का स्वागत, कोल्हापुर का राजा के दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग। मंडल की ओर से भव्य तरीके से की गई है बप्पा के आगमन समारोह की तैयारी, पारंपरिक ढोल ताशों की गूंज, आकर्षक रोशनी और भक्ति में माहौल में किया गया गणराय का स्वागत। गुरु हरिकृष्ण साहिब जी के जन्मोत्सव पर दियो की भव्य रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेंपल, श्रद्धा और भक्ति का देखा अद्भुत नजारा। हरमिंदर साहिब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, रोशनी और मिट्टी के दीयों ने बढ़ाई स्वर्ण मंदिर की रौनक। गुजरात के जामनगर में समरस विद्या सेतु अभियान का शुभारंभ, 500 से अधिक बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास, एक महीने तक चलेगा समरस विद्या सेतु अभियान। गुजरात के गीर सोमनाथ में सड़क पर आराम फरमाते दिखे चार शेर, बस में बैठे यात्रियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पीएम मोदी का हुआ स्वागत और हुए शामिल। समारोह में 3000 से ज्यादा छात्रों को सौंपी डिग्री, जिनमें 587 पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल। समारोह में जेएनजी से पीएम मोदी का सीधा संवाद, मेधावी छात्रों को प्रदान किए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, डायरेक्ट गोल्ड मेडल और परफेक्ट 10 गोल्ड मेडल। देश को दी बड़ी तकनीकी सौगात, सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई से संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परमप्रज्ञा का किया वर्चुअल उद्घाटन। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत स्थित एक्सटेंशन कैंपस में स्थापित किया गया है अल्ट्रा मॉडर्न और स्पेशल फीचर से युक्त सुपर कंप्यूटर, भारत में एआई और डेटा साइंस रिसर्च को नई ऊंचाई पर ले जाना इसका मकसद। गृहमंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय दौरा तमिलनाडु में, आज तमिलनाडु और कल पुडुचेरी का करेंगे दौरा। दिल्ली एनसीआर में आईएमडी का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी, भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम की स्थिति। मध्यम से भारी बारिश की जताई जा रही है उम्मीद, पूरा वीकेंड आसमान में छाए रहेंगे बादल। बगहा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, गांव में घुसा बाढ़ का पानी, कमर से ऊपर पानी पार करने को मजबूर लोग, एसएसबी और वन विभाग कर रही है मदद। असम के बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए आगे आई ओलंपियन लवलीना बोरगोहेन, शिवसागर में प्रभावित परिवारों को बांटी राहत सामग्री। पश्चिम बंगाल के हुगली में रूपनारायण नदी का बड़ा जलस्तर, खानाकुल के बंदर इलाके में बांस और लकड़ी का बना स्थायी पुल बहा। आवारापन 2 के गाना तेरा मेरा रिश्ता 2.0 ने मचाई धूम, 19 साल बाद इस गाने को किया गया रिक्रिएट, फिर से सईद कादरी ने लिखे हैं लिरिक्स, मिथुन ने रिक्रिएट किया है म्यूजिक। बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता के बाद ओटीटी स्ट्रीमिंग पर भी दुनिया भर में बड़ी हिट साबित हुई है धुरंधर, इस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली नॉन इंग्लिश फिल्म बनी धुरंधर। सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल मार्केट में 50,000 स्क्रीन्स पर रिलीज करेगा रामायण, फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर भी जारी। सुपरस्टार नानी की फिल्म द पैराडाइज का आया हिंदी टीजर, 24 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। अनिल कपूर फिर मचाएंगे टीवी पर धमाल, इंडिया के टॉप 1% नाम के टीवी गेम शो को करेंगे होस्ट। वनडे क्रिकेट में छुपा ऐतिहासिक मुकाम, स्कॉटलैंड बनाम कनाडा का मैच बना 5000वां ओडीआई। कनाडा को 9 रन से हराकर स्कॉटलैंड ने जीता ऐतिहासिक 5000 वनडे, फैमिली मैकार्थी ने लगा शतक। भारत श्रीलंका टेस्ट मैच से पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का फैसला, मैच में दर्शकों को फ्री एंट्री, 15 अगस्त से गोल में खेला जाएगा पहला मुकाबला। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे को जल्द मिलेगा बड़ा सम्मान, यूपी पुलिस उन्हें प्रमोट कर डीएसपी बनाने की कर रही है तैयारी। कश्मीर के पुलवामा जिले के ओवेस याकूब नेकी आदेश का नाम रोशन करेंगे, बुल्गारिया में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ब्रेव ऑफ 107 प्रतियोगिता में शानदार जीत दर्ज की। मध्य चीन के हैनान प्रांत में दिख रहा है प्रकृति का बेहद खूबसूरत नजारा, पूरी तरह खिले नजर आए सुंदर सूरजमुखी के फूलों के खेत। जहां तक नजर जाए वहां तक सीधे खड़े नजर आते हैं सुंदर सूरजमुखी, सूरज की रोशनी में चमकती नजर आती है फूलों की पंखुड़ियां। अगस्त की शुरुआत में ही खेतों में दिखता है नेचर का यह सुंदर रूप, हर साल लाखों की संख्या में पर्यटकों को यहां आने के लिए करता है अपनी ओर आकर्षित। इन लंबे सीधे खड़े सूरजमुखी फूलों के बीच लोगों में फोटो खिंचवाने की होड़, प्रकृति में खोए नजर आते हैं देश विदेश के टूरिस्ट। शान देहाती दृश्यों का आनंद लेने आते हैं कई शहरवासी, शहरी जीवन के हलचल से बचकर खेतों से गुलजार गुजरते हैं और बिताते हैं यादगार पल। अब आप अपने पेट से कर पाएंगे अपनी ही जुबान में बात। चीन के वुहू इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पार्क में बनाए जा रहे हैं खास लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाले स्मार्ट पेट स्कॉलर। चीन के कंप्यूट क्यू प्लेटफॉर्म पर यह स्थिति धीरे धीरे हकीकत बन रही है, जहां अगर स्मार्ट पेट स्कॉलर पहने आपका डॉग भूख से भौंकता है तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आएगा कि मुझे भूख लगी है। इस ऐप के जरिए आपकी भाषा पेट्स के सिग्नल में बदल जाएगी, साथ ही पेट्स के सिग्नल भी आप अपनी भाषा में समझ पाएंगे। यानी अगर आप जल्दी घर आओ कमांड टाइप करें तो सिस्टम इसे एक ऐसे सिग्नल में बदल देता है जिसे डॉग पहचान सके। इस मॉडल में पालतू जानवरों के व्यवहार से जुड़े 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड डाले गए हैं ताकि इंसानों और जानवरों के बीच एक पुल बनाया जा सके और उनकी भावनाओं व जरूरतों को समझा जा सके। फिलहाल ये स्मार्ट पेट स्कॉलर अलग अलग स्तर पर टेस्ट किए जा रहे हैं, जल्द ही इसे बाजारों में उतारा जाएगा। चीन के डालियान बीच पर उमड़ी भीड़, भीषण गर्मी से राहत के लिए हजारों लोग समुद्र तट पहुंचे। गर्मी से बचने को पर्यटकों के बीच के लिए रुख किया। नॉर्थ ईस्ट चीन में 37 डिग्री तापमान में बीच बना राहत का ठिकाना। डालियान आए पर्यटक भीषण गर्मी से हैरान, समुद्र किनारे गर्मी से राहत की तलाश। डालियान बीच बना लोगों का सहारा, धूप से बचने के लिए खास इंतजाम किए गए, लोग जैकेट मास्क और टोपी पहनकर निकले। डालियान में गर्मी ने बदला मौसम का मिजाज, पर्यटकों की भीड़ ने समुद्र तटों पर बढ़ाई रौनक। पेरिस में सीन नदी पर ई फाइल सर्फिंग का क्रेज, इलेक्ट्रिक बोट पर हवा में उड़ने जैसा रोमांच। सीन नदी में बनाए गए वाटर स्पोर्ट्स का हॉटस्पॉट बन गया, स्थानीय लोगों के साथ सैलानी भी उठा रहे हैं लुत्फ। ई फाइल सर्फिंग ने युवाओं को किया आकर्षित, पानी के ऊपर तैरता बोट बना सबसे बड़ा आकर्षण। 2025 में शुरू हुआ फाइनल इन पेरिस, अब सुपरहिट हीट वेव के बीच सीन नदी में बड़ी लोगों की भीड़। पेरिस में एडवेंचर स्पोर्ट्स का नया ट्रेंड बना ई फाइल, सीन नदी में रोमांच और पर्यटन का नया संगम। चीन के यूनान में टॉर्च फेस्टिवल की धूम, पारंपरिक नृत्य और लोक संस्कृति का दिखा अद्भुत रंग। अलाव के चारों ओर थिरके लोग, ताइवानी सैलानी भी हुए शामिल, वी समुदाय ने मनाया टॉर्च फेस्टिवल। आग की पूजा और टॉर्च फेस्टिवल बने आकर्षण का केंद्र, अच्छी फसल और खुशहाली की कामना की। चीन के सिचुआन में धूमधाम से मना टॉर्च फेस्टिवल, हजारों लोगों ने एक साथ मशाले जलाकर मनाया पारंपरिक उत्सव। संगीत और लोक नृत्य के रंग में रंगा टॉर्च फेस्टिवल, पारंपरिक मशाल जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। 12 अगस्त को दुनिया देखेगी 2024 का पूर्ण सूर्य ग्रहण, स्पेन, ग्रीनलैंड और आइसलैंड समेत कई देशों में दिखेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कुछ मिनटों के लिए दिन में छा जाएगा अंधेरा, दिखेगा सूर्य का कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का रोमांच, कई देशों में खास तैयारियां, सूर्य की बाहरी परत कोरोना होगी साफ दिखाई। पाथ ऑफ टोटेलिटी में दिखेगा सूर्य ग्रहण का अद्भुत दृश्य, चंद्रमा पूरी तरह ढकेगा सूर्य, बनेगा दुर्लभ नजारा। आसमान में दिखेगा रिंग ऑफ लाइट जैसा अद्भुत नजारा, दुर्लभ पूर्ण सूर्य ग्रहण को लेकर वैज्ञानिकों में उत्साह।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: एलओसी पर बढ़ा पाकिस्तानी तोपों का जमावड़ा, 250 हवेजर की तैनाती के पीछे क्या है मंसूबा, पाकिस्तानी पैतरे पर भारत का गेम प्लान। देखिए रण क्षेत्र शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: अगले महीने शुरू होने वाले गणेश उत्सव को लेकर भी जगह जगह तैयारियां देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के पाली में एक दंपति बप्पा की प्रतिमाओं को आकार देने में जुटा है। पति पत्नी मिलकर यहां गोबर से इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाते हैं, जिनकी मांग विदेशों तक है।

0: गणेश उत्सव को लेकर मूर्तियों को आकार देने वाले कलाकार अपने काम में जुटे हुए हैं। राजस्थान के पाली में एक दंपति भी गणपति प्रतिमाओं को आकार देने में जुटा है। खास बात यह है कि पति पत्नी मिलकर इको फ्रेंडली प्रतिमाएं तैयार करते हैं। ये गाय के गोबर से इन्हें बनाते हैं। इसके लिए 7 महीने पहले से ये गौशाले से गोबर लाकर उसे सुखाने लगते हैं, फिर उसका पाउडर बनाते हैं और उसके बाद पेस्ट बनाकर अलग अलग आकार के डाई में उस पेस्ट को डालकर प्रतिमा तैयार करते हैं।
1: हम लोग गोबर लाते हैं, जो गीला गोबर होता है, ताजा गोबर मतलब, फिर हम लोग उनको सुखाते हैं गोबर को। फिर सुखाने के बाद में जैसे ही वो प्रॉपर ढंग से पूरा सूख जाता है, उसके बाद में हम उसको मतलब पाउडर फॉर्म में करते हैं, पीसते हैं, मतलब कम से कम 100 GM मतलब ऐसा बारीक करते हैं ताकि मूर्ति में वो रेसे नजर नहीं आए। फिर सुखाने के बाद में, पाउडर बनने के बाद में, हम लोग उसमें प्राकृतिक कुछ चीजें हैं जो बाउंडिंग का काम करती है वो हम डालते हैं, जैसे प्रीमिक्स हो गया मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म, वो डालते हैं। फिर उसके बाद में हम उसका मिश्रण करते हैं।
0: गोबर को गूंथकर डाई से प्रतिमा को आकार देने के बाद उसे बाहर निकालकर धूप में सुखाया जाता है। फिर मनोहर लाल और उनकी पत्नी दीपिका उसे इको फ्रेंडली रंग से सजाते हैं। बहुत ही बारीकी से मुकुट, सिंहासन से लेकर आंख, दांत और जनेऊ सब उकेरते हैं। गोबर से प्रतिमाओं को बनाने के पीछे इस दंपत्ति का अहम मकसद पर्यावरण की रक्षा है। इन इको फ्रेंडली गणपति प्रतिमाओं की डिमांड भी खूब है, यहाँ तक कि ये प्रतिमाएं विदेश तक जाती हैं।
1: पर इस मूर्ति में पर्यावरण में जीव जंतु को किसी को कोई नुकसान नहीं है, और एक आप मूर्ति लेके जाओ घर पे बिठाओ, 9 दिन इनकी पूजा करो और उसके बाद में आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। उसको आप हाथ से मेल्ट कर दो थोड़ा सा और उसको आप अपने गमलों में पौधों में डाल दो तो वो फर्टिलाइजर का भी काम करेगी।
2: तो मैंने इको फ्रेंडली गणपति जी बनाए, तो ये गणपति जी अपने प्रदूषण के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छे हैं। ये मूर्तियां बाहर भी जाती है और पिछले साल भी मैंने पाली में बहुत अच्छी की तरह से, मैंने एक दो तरह दुकानें लगाई थी तो मेरे बहुत अच्छी तरह से सेल हुई है।
0: मनोहर लाल और उनकी पत्नी पूरे भक्तिभाव से गणेश की प्रतिमा बनाते हैं। भजन बजाते हुए अपने मन में गणपति की स्थापना कर ये प्रतिमा तैयार करते हैं, यानी भक्ति के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं सोशल मीडिया पर उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
4: मोबाइल से दूर खेल के मैदान में बच्चों का अनोखा बैलेंस टेस्ट, सिर के बीच गेंद रखकर फिनिश लाइन पार करनी है, जहां संतुलन, धैर्य और टीम वर्क तीनों की परीक्षा हो रही है। किसी की गेंद गिर गई तो किसी ने आसानी से लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन खास बात ये रही कि हार मानने के बजाय हर बच्चे ने दोबारा कोशिश की। खेल खेल में ये बच्चे एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं कि जीत से ज्यादा जरूरी है लगातार प्रयास करते रहना।

हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है।

0: एक लाइन, लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल। एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है, वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छुपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि नन्हे बच्चों का कमाल का हुनर है। तीनों बच्चे जिस शानदार संतुलन के साथ खड़े हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी छोटी उम्र में इतना बेहतरीन बैलेंस, मानो लंबे अभ्यास का नतीजा हो। वीडियो देखने वाले भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे। बच्चों ने साबित कर दिया कि लगन, अभ्यास और आत्मविश्वास हो तो छोटी उम्र भी बड़े हुनर की पहचान बन सकती है। खेल के साथ साथ योग भी, और वो भी पूरे उत्साह के साथ। स्कूल में बच्चे बिना किसी दबाव के गोली में बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। खेल खेल में किया गया योग उनके शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलन सुधारता है और मन को एकाग्र रखने में मदद करता है। यही वजह है कि छोटी उम्र से ही योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुस्कुराते चेहरों के साथ योग करते ये बच्चे स्वस्थ और अनुशासित भविष्य की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव। श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: रुद्राभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक के क्या हैं विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: बम बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ की पवित्र यात्रा जारी। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों पर बरसाए फूल। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर सीएम रेखा गुप्ता ने किया भव्य स्वागत। देश भर में दिख रहे पवित्र कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग, बिजनौर की कांवड़ में दिखे देशभक्ति के रंग, हरिद्वार में डाक कांवड़ का शुभारंभ। नीरज चोपड़ा के बाद जेवलिन थ्रो में आशीष यादव ने रचा इतिहास, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल, तीसरे राउंड में 74.9 मीटर किया थ्रो। दिल्ली NCR के कई इलाकों में हल्की बारिश की फुहार, आसमान में छाए काले बादल, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। हॉट एयर बलून से सजा ब्रिस्टल का आसमान, ब्रिटेन के इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का शानदार नजारा, हर साल धूमधाम से होता है आयोजन।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्ज़र तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्ज़र उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्ज़र की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्ज़र तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्ज़र को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए वो मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रहित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्ज़र लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई, उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्ज़र को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्ज़र को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्ज़र तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पिट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक्सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्ज़र भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए, आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है, इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र-1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे ही SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पे जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें, बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइट वेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वही SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपे भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकेंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स भी ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है। इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल
4: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: इंडियन आर्टिलरी का एक ताकतवर हथियार है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसके एक्सटेंडेड रेंज का यूजर ट्रायल यानी सेना में शामिल होने से पहले का अंतिम ट्रायल भी पूरा हो चुका है, यानी इसे जल्द ही अब सेना में शामिल किया जाएगा। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। अब पिनाका ईआर की रेंज में दो गुनी बढ़ोतरी हुई है। सेना में पहले से तैनात पारंपरिक पिनाका बैटरीज की मारक सीमा 37 किलोमीटर थी, लेकिन अब एक्सटेंडेड रेंज के साथ ये 75 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है।
1: अगर दुश्मन 40 किलोमीटर से दूर है तो आर्मी के पास दुश्मन के ऊपर प्रहार करने का एक ही तरीका था, वो था कि एयरफोर्स को बुलाया जाए। लेकिन अब क्योंकि पिनाका रॉकेट जो है 75 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर पाएगा, तो 75 किलोमीटर की दूरी तक जो दुश्मन के टारगेट होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए आर्मी को एयरफोर्स को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, एयरफोर्स जो है वो दूसरी तरह के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है, डेप्थ में है, उनको एंगेज करने के लिए फ्री हो जाएगी।
0: नया पिनाका सिर्फ रेंज में नहीं बल्कि सटीकता और शक्ति में भी बेहतर हुआ है। भारतीय सेना के आर्टिलरी में शामिल पिनाका की बात करें तो पिनाका रॉकेट फ्री फ्लाइट है, यानी बस उसे लॉन्च किया गया तो वो अपनी रेंज 37 किलोमीटर के हिसाब से जाकर गिरेगा। लेकिन उसकी सटीकता

0: कि सटीकता इतनी नहीं थी कि ठीक निशाने पर हिट करे, ये एक एरिया वेपन के तौर पर है। एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका की बात करें तो ये गाइडेड रॉकेट जीपीएस नेविगेशन से लेस है। इस रॉकेट में लॉन्च से पहले ट्रेजेक्टरी और टारगेट प्रोग्राम किए जाते हैं। अगर किसी कारण से ये रास्ते से भटक जाए तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और जीपीएस मिलकर इसे सही रास्ते पर ला देते हैं। इसके अलावा इसमें आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, जो जीपीएस जाम होने या रुकने पर भी रॉकेट को टारगेट तक पहुंचाता है। इसकी सटीक मारक क्षमता की बात करें तो ये टारगेट के 25 मीटर के आसपास हिट कर सकता है, जो कि एक बेहतर रेंज है।
1: पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो ये उन्नत वर्जन है, इसमें जीपीएस गाइडेंस लगा है और जीपीएस गाइडेंस की मदद से यह शत्रु के टारगेट के ऊपर महज प्लस माइनस 25 मीटर की एक्यूरेसी से गिर सकता है। और भी अच्छी बात यह है कि अगर दुश्मन जीपीएस गाइडेंस सिस्टम को, जीपीएस के सिग्नल्स को जैम कर दे तो इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि जीपीएस सिग्नल के फेल होने पर यह इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पिनाका को बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर ले जाकर प्रहार कर सकती है।
0: नया गाइडेड पिनाका आने से इसकी विनाशकारी शक्ति और बढ़ जाएगी। लॉन्च होने के बाद लॉन्चर अपनी जगह बदल लेते हैं और फिर से तैयार हो जाते हैं, जिससे दुश्मन का जवाबी हमला मुश्किल हो जाता है। अभी जो पिनाका सेना में शामिल है उसके क्षमता की बात करें तो एक पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 12 ट्यूब्स हैं, यानी कुल 72 रॉकेट, और ये सभी 44 सेकंड में दागे जा सकते हैं। अगर ये एक साथ चल जाएं तो दुश्मन के 1000x800 मीटर के इलाके को तबाह कर सकते हैं।
1: जब ये पिनाका लॉन्चर सिस्टम्स इंडियन आर्मी के आर्टिलरी यूनिट्स में पहुंच जाएंगे तो एक एक बैटरी में 6-6 लॉन्चर दिए जाएंगे। जाहिर बात है एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होती है, तो जरूरत पड़ने पर जो बैटरी कमांडर है वो 12 गुणा में 6 यानी 72 पिनाका एडवांस मिसाइल सिस्टम दुश्मन पर फायर कर सकता है। यह फायर महज 44 सेकेंड के अंदर लॉन्च की जा सकती है।
0: कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर रणभूमि में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम शत्रु संहारक बनकर उतरा। पिनाका सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का हथियार ही नहीं बल्कि भरोसा भी है, और ये भरोसा और दमदार होता जा रहा है।
2: सेना के सूत्रों के मुताबिक अब तक भारतीय सेना के पास पिनाका की 4 रेजिमेंट थी, जिन्हें बढ़ाकर 10 रेजिमेंट किया जा रहा है। इसके लिए मौजूदा 120 mm मोर्टार लाइट रेजिमेंट को ही अपग्रेड कर पिनाका रेजिमेंट में बदला जा रहा है। अब तक 2 रेजिमेंट बदले जा चुके हैं और अगले 2 साल में ये तादाद 10 हो जाएगी।
0: लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके में आर्टिलरी की काफी जरूरत होती है, वहाँ टैंक सफल नहीं हो पाते हैं, तोप ज्यादा कारगर मानी जाती है। हालांकि यहाँ तोप के साथ ये चैलेंज होता है कि एक गोला दागने के बाद दूसरा गोला दागने में करीब 20 सेकंड का समय लग जाता है। अगर दुश्मन ने रॉकेट से रैपिड फायर कर दिया तो परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में ताबड़तोड़ हमले के लिए तोपों के साथ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती की भी जरूरत होती है, जिसमें पिनाका के प्रहार का कोई जवाब नहीं।
1: किसी भी जमीनी युद्ध में सबसे पहले कमांडर की पसंदीदा वेपन होती है टैंक, लेकिन टैंक की एक लिमिटेशन है कि वह मात्र 3, 4 या 5 किलोमीटर तक अपनी मेन गन से एनिमी के टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसी तरह से कमांडर अगर चाहे तो आर्टिलरी यानी तोपखाने का इस्तेमाल करके दुश्मन पर प्रहार कर सकता है, लेकिन आर्टिलरी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो वॉरहेड होते हैं वो छोटे होते हैं, और दूसरी बात है आर्टिलरी को टो करके दुश्मन के पास ले जाना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। लेकिन पिनाका जो MBRL सिस्टम है वह ऑलरेडी एक टोइंग ट्रक के ऊपर स्थापित है, यानी ये महज कुछ मिनट के नोटिस पर ही शत्रु की तरफ वो जो इसका जो लॉन्चर है, जो ट्रेलर है, जो व्हीकल है, वो शत्रु की तरफ महज कुछ मिनटों में ही

0: 10, 20, 30, 40 किलोमीटर अग्रसर होकर फिर पिनाका मिसाइल फायर कर सकता है, जो कि और 75 किलोमीटर जाकर दुश्मन पर प्रहार कर सकता है।
1: पिनाका लंबी दूरी का आर्टिलरी सिस्टम है। इसे नजदीक से युद्ध होने से पहले दुश्मन को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसे छोटी रेंज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियारबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी स्पीड मैक 4.7 यानी करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है।
0: पिनाका मिसाइल लॉन्च होने के बाद ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना 5 गुना स्पीड से टारगेट पर जाकर प्रहार करते हैं। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का कोई भी सर्विलेंस रेडार, फायर लोकेटिंग रेडार या जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है या एंटी एयरक्राफ्ट फायर करने का जो रेडार है, वो इस पर ट्रैक नहीं कर सकता, लॉक ऑन नहीं कर सकता। इसके पहले कि दुश्मन के रेडार को पता लगे कि पिनाका मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है, उसके पहले ही पिनाका जाकर दुश्मन के सर के ऊपर जाकर फट जाता है।
1: स्वदेशी हथियार पिनाका हिंदुस्तान के रक्षा कवच का वो अचूक रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जो बॉर्डर पार किए बगैर ही दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखता है। सेना की ताकत बढ़ाने के लिए DRDO 3 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इनमें से 2 प्रोजेक्ट पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम से जुड़े हैं। पिनाका MK1 एरिया डिनाइल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम, दूसरा है पिनाका MK2 गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन, और तीसरा है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड। पिनाका MK1 और पिनाका MK2 बरसों से हिंदुस्तान की सेना के सबसे भरोसेमंद हथियार रहे हैं। इनसे दागे जाने वाले रॉकेट पर क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी लगाए जा सकते हैं।
2: भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। DRDO में बना पिनाका MK1 एरिया डिनाइल एम्यूशन युद्ध क्षेत्र कई तरह से सेना के काम आ सकता है।
1: पिनाका एक्सटेंडेड रेंज भारत के लिए सिर्फ एक नया हथियार नहीं, बल्कि रणनीतिक बढ़त और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। इसकी तैनाती से भारत की सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मन पर विध्वंसक स्ट्राइक करने की क्षमता में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको बता दें कि पिनाका के कई संस्करण तैयार हो चुके हैं, जिसमें Mark 1 से लेकर Mark 3 शामिल है। रक्षा जानकारों के अनुसार पिनाका की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितनी तेजी से ये प्रहार करता है, उतनी ही तेजी के साथ अपना लोकेशन भी बदल लेता है, जिससे दुश्मन के रेडार पर आने का खतरा कम हो जाता है। इस रणनीति को शूट एंड स्कूट की रणनीति कहते हैं। लिहाजा लॉन्चर व्हीकल की मैनुवरबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिनाका इस पैमाने पर खरा उतरता है।
0: युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे ही आपने दुश्मन के ऊपर फायर किया, तो दुश्मन के ऊपर फायर गिरते ही दुश्मन अपने फायर डिटेक्टिंग रेडार्स को ऑन कर लेता है। दुश्मन के जो ये फायर लोकेटिंग रेडार है, यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कंप्यूटर की मदद से यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पिनाका सिस्टम ने कहां से अपने रॉकेट्स को लॉन्च किया था, और तुरंत दुश्मन का जो काउंटर बम्बार्टमेंट यूनिट है वो काउंटर अटैक करता है हमारे पिनाका मिसाइल का जो लॉन्चर है, उसका जो प्राइम मूवर है, गाड़ी है, उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कमांडर क्या करता है कि जैसे ही उसने पिनाका मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया, उसके बाद वह तुरंत उस फायर बेस से दाएं बाएं 200 मीटर 400 मीटर आधा किलोमीटर हो जाता है।
1: पिनाका को बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी मोबिलिटी इसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बना देती है। यानी साफ है, चाहे बॉर्डर पर चीन की चालबाजी हो या फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, हिंद के शक्तिशाली महायोद्धा पिनाका से कोई बच नहीं सकता। साल 1999 के कारगिल युद्ध में पहली बार जब पिनाका ने पाकिस्तानी पोस्ट पर प्रहार किया था, तब पूरी दुनिया ने भारत की रक्षा तकनीक को एक नए नजरिए से देखा था।
2: 1986 में डीआरडीओ ने इसे रूस के BM-21 ग्रैड सिस्टम के विकल्प के रूप में तैयार किया था। आज ये सिर्फ भारतीय सेना की रीढ़ नहीं बल्कि दुनिया में भारत की टेक्नोलॉजी का दम है। और इतना ही नहीं, आज भारत इसका निर्यात भी कर रहा है। साल 2023 में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लिया था और अब फ्रांस भी इसे खरीदने की तैयारी में है।
1: भारत ने बड़े लगन से अपने आप को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने स्वदेशी उपकरणों और हथियारों को विकसित किया है।
2: भारतीय सेना के हथियारों को मॉडर्न बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए अब ऐसे रॉकेट गोला बारूद बनाए जाएंगे जो देश भर में तैनात किए गए लॉन्चर्स से दागा जा सकता है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में मौजूद 122 mm ग्रैड BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए रॉकेट गोला बारूद खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है।
1: ये भी साफ किया है कि नया गोला बारूद मौजूदा लॉन्चर के साथ आसानी के साथ फिट होना चाहिए ताकि पूरे सिस्टम में कोई बदलाव न करना पड़े। ग्रेड BM-21 रूसी तकनीक पर बना रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना में कई साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी खासियत है कि ये बेहद तेजी से एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है जिससे दुश्मन के ठिकानों पर भारी हमला किया जा सकता है।
2: सेना चाहती है कि नया गोला बारूद देश के किसी भी हिस्से में अच्छी तरह काम करे, चाहे वो मैदान, अर्ध रेगिस्तान, रेगिस्तान या फिर ऊंचे पहाड़ हो। इसके अलावा इसे छोटी और लंबी दोनों दूरी तक मार करने में सक्षम होना चाहिए ताकि इसे अलग अलग सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जा सके।
1: सेना ने यह भी कहा कि रॉकेट कम से कम 10 साल तक उपयोग करने लायक होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी मरम्मत या कुछ हिस्सों को बदलकर उसकी उम्र और बढ़ाई जा सके। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 ग्रैड महज 60 सेकंड और 40 अटैक की क्षमता इसे बेजोड़ बनाती है। 20 किलोमीटर तक जो भी दुश्मन इसके रडार में आएगा उसका सर्वनाश तय है।
2: सोवियत संघ के समय में बने ग्रैड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल अभी भी करीब 100 देशों में हो रहा है। ये बेहद भरोसेमंद और भयानक तबाही मचाने वाला हथियार माने जाते हैं। पूरी दुनिया में BM-21 ग्रैड के करीब 1,00,000 यूनिट बनाए गए हैं। 1 दर्जन देशों ने इसके अपने वेरिएंट यानी कि वर्जन भी बना लिए हैं।
1: BM-21 ग्रैड रॉकेट्स को ट्रक के ऊपर लगे लॉन्चर्स से दागा जाता है जो 1 मिनट में 40 रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। BM-21 ग्रैड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में 40 बैरल होते हैं और इन 40 बैरल से 40 राउंड फायर करने में ये 20 सेकंड लेता है। इन रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 20 किलोमीटर है जो 690 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने की ताकत रखते हैं।
3: BM-21 ग्रेड सिस्टम एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके अंदर 40 के करीब ट्यूब होती हैं जो कि इमीडिएटली इकट्ठा फायर कर सकती हैं और ये इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर के करीब होती है और ये एक प्रकार से जो टारगेट है एरिया टारगेट को कवर करता है ना कि पिन पॉइंट।
1: 70 के दशक में भारत ने इस ताकतवर हथियार को रूस से खरीदा था BM-21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर मिनटों में दुश्मन की चौकी या फिर बंकर को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। आज भारतीय सेना के पास आर्टिलरी ब्रिगेड में ऐसे ऐसे योद्धा शामिल हैं जो दुश्मन के किसी भी रणनीति या दांव को चुटकियों में ध्वस्त कर सकते हैं। यानी पाकिस्तानी रणनीति का काउंटर प्लान रेडी है।
2: इसी के साथ रण क्षेत्र में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: क्या है रुद्राभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक के क्या हैं विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पावन महीने में कावड़ यात्रा मार्ग पर हर कदम पर बोलबम का जय घोष है। भगवान भोले शंकर के भक्तों की भक्ति है और हर ओर आस्था के बिखरे अनेक रंग हैं। कंधों पर पवित्र गंगा जल की कावड़ लिए शिव भक्त शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। पवित्र कावड़ यात्रा से जुड़ी हम आपको ये तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल भी शामिल रहे। इससे पहले सीएम ने हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्ग का सर्वेक्षण किया और मार्ग से गुजर रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा के दौरान पूरा कावड़ मार्ग हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। तो वहीं बागपत में जिला प्रशासन ने शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। तो वहीं बिजनौर में चल रही सावन माह की कावड़ यात्रा में कुछ खास कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें लखनऊ में बनने वाले ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल कावड़ और इसी के साथ 100 मीटर लंबी तिरंगा कावड़ भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये दोनों कावड़ शिवभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का संदेश

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: सावन के पवित्र महीने में बाबा भोले के जयकारों से गूंजा चारों ओर जय घोष सुनाई दे रहा है। आस्था श्रद्धा भक्ति और विश्वास की ऐसी बयार बह रही है मानो धरती का कण कण जीवंत हो नाच रहा हो। भगवान शिव के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ देश दुनिया के करोड़ों मंदिर और शिवालय में भोले के भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट।

0: सावन के पावन महीने में हर कोई शिव भक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। शिवालयों में बम भोले की जयकार हो या फिर पवित्र नदियों के तट पर कांवड़ियों का मेला और फिर चाहे कांवड़ मार्ग पर शिव भक्तों का रेला हो, भोले की भक्ति में झूमते नाचते गाते इन कांवड़ियों के लिए सारा जग ही शिवमय हो गया है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही भोलेनाथ की भक्ति के लिए समर्पित है, लेकिन सावन के सोमवार की महिमा निराली है। सावन के दूसरे सोमवार की पूजा के लिए शिव भक्त जोर शोर से तैयारी में जुट गए हैं। इस बार सावन के दूसरे सोमवार को बेहद शुभ संयोग बन रहे हैं। 10 अगस्त को सावन सोमवार के साथ सोम प्रदोष व्रत भी होगा। प्रदोष का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। वैसे तो हर महीने में दो बार प्रदोष काल पड़ता है, लेकिन जब प्रदोष व्रत सोमवार के दिन पड़ता है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार ये योग अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष काल के विधि विधान से व्रत और पूजन करने वालों पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और मनचाहा फल देते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहती है, साथ ही चंद्र दोष भी दूर होता है। सावन महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 10 अगस्त यानी सोमवार सुबह 8 बजे से हो रहा है। वहीं कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का समापन 11 अगस्त यानी मंगलवार सुबह 4:54 पर होगा। बात प्रदोष व्रत के पूजन में शुभ मुहूर्त की करें तो पूरा दिन ही भोलेनाथ की पूजा के लिए शुभ है, लेकिन प्रदोष व्रत पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 7:09 से रात्रि 9:23 के बीच पूजन करने पर इसे अत्यंत फलदायी बताया जा रहा है। भोले के भक्त ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर बाबा की विशेष कृपा पा सकते हैं। बात प्रदोष व्रत में पूजन की विधि की करें तो सुबह स्नान के बाद सफेद, लाल, हरा या केसरी रंग का स्वच्छ कपड़ा पहने मंदिर या भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। भक्ति भाव से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। शिवलिंग पर गंगा जल, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और चीनी चढ़ाएं। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते, अक्षत और आंकड़े के फूल अर्पित करें। शिवलिंग के सामने दिया जलाएं और भगवान शिव की स्तुति करें। प्रदोष काल में शाम के वक्त भी स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन करें। सावन के सोमवार के साथ ही भगवान भोले के भक्तों को सावन की शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र दिनों में से एक है। इस बार सावन की शिवरात्रि 11 अगस्त यानी मंगलवार को मनाई जाएगी। सावन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त सुबह 4:53 पर शुरू हो रही है। चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त की रात 1:51 तक रहेगी। इसका मतलब है कि सावन के शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। शिवरात्रि का पर्व शिव और शक्ति के मिलन को समर्पित है। बड़ी संख्या में कांवड़िये इस पावन अवसर पर पवित्र नदियों के जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और अपनी कांवड़ यात्रा संपन्न करते हैं। सावन की शिवरात्रि के मौके पर शिवालयों में आस्था का समंदर उमड़ने वाला है। मंगलवार का दिन होने के चलते इस दिन मंगला गौरी व्रत का भी संयोग है, जो माता पार्वती और शिव जी की आराधना के लिए अत्यंत उत्तम बताया गया है।
1: सावन महीने में यहाँ पे प्रत्येक दिन लाखों लाख की भीड़ लगती है। कमरिया के रूप में भगवान शिव के दरबार में लोग कमरिया बन के आते हैं और बाबा सबों की मनोकामना पूरी करते हैं।
0: शिवरात्रि के पावन अवसर पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और रात्रि के 4 पहर की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शिवरात्रि का व्रत रखने से और शिवलिंग के अभिषेक से भक्तों की हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के दूसरे सोमवार के साथ ही मंगलवार को पड़ने वाली शिवरात्रि को लेकर इस बार इसे विशेष बताया जा रहा है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव। श्वेता झा के साथ शाम 6:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
8: देशभर में दिख रहे हैं पवित्र कावड़ यात्रा के अनोखे रंग, बिजनौर की कावड़ में दिखे देशभक्ति के रंग, हरिद्वार में डाक कावड़ का शुभारंभ। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। जेंजी के लिए योगी सरकार की नई पहल, अब छात्रों को IAS IPS अफसर देंगे करियर टिप, जिला स्तर पर बनेगा पूरा स्केड्यूल। दिल्ली NCR के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। हॉट एयर बलून से सजा ब्रिस्टल का आसमान, ब्रिटेन के इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का शानदार नजारा, हर साल धूमधाम से होता है आयोजन।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़।
9: नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से। जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो, भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा सहज समाधि सिखावे। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सद्गुरु है। कबीर के पद का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याण स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरऊं एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरी। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष और औढ़दानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मिक या अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र, सृजन, पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनिन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणामूर्ति का। दक्षिणामूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित है। दक्षिणामूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्तवत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात। लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदि योगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदि योगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए अब नजर डाल लेते हैं सोशल मीडिया पर उन वायरल वीडियोस पर जिन्हें बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
2: मोबाइल से दूर खेल के मैदान में बच्चों का अनोखा बैलेंस टेस्ट, सिर के बीच गेंद रखकर फिनिश लाइन पार करनी है, जहां संतुलन, धैर्य और टीम वर्क तीनों की परीक्षा हो रही है। किसी की गेंद गिर गई तो किसी ने आसानी से लक्ष्य पूरा कर लिया, लेकिन खास बात ये रही कि हार मानने के बजाय हर बच्चे ने दोबारा कोशिश की। खेल खेल में ये बच्चे एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं कि जीत से ज्यादा जरूरी है लगातार प्रयास करते रहना।

हंसी मस्ती और स्वाद का मजेदार संगम, पैरों में बंधी रस्सी, उसी रस्सी में लटका बिस्किट और बिना हाथ लगाए उसे मुंह तक पहुंचाने की चुनौती। जितना पैर उठेगा बिस्किट उतना करीब आएगा। हर बच्चा पूरी लगन से कोशिश कर रहा है, कोई जल्दी सफल हो रहा है तो कोई बार बार प्रयास कर रहा है। इस मजेदार खेल ने बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है और बता दिया कि सीखने का सबसे आसान तरीका खेल ही होता है।

0: एक लाइन, लंबी कतार और बच्चों का शानदार तालमेल। एक एक कर सभी बच्चे ट्रेन की बोगियों की तरह एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे कतार बढ़ती है, वैसे वैसे खेल और भी रोमांचक होता जाता है। हर बच्चा पूरे उत्साह के साथ इसमें हिस्सा ले रहा है। इस खेल में सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि सहयोग, अनुशासन और टीम वर्क का भी संदेश छुपा है। यही वजह है कि बच्चे इस खेल का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि नन्हे बच्चों का कमाल का हुनर है। तीनों बच्चे जिस शानदार संतुलन के साथ खड़े हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इतनी छोटी उम्र में इतना बेहतरीन बैलेंस, मानो लंबे अभ्यास का नतीजा हो। वीडियो देखने वाले भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे। बच्चों ने साबित कर दिया कि लगन, अभ्यास और आत्मविश्वास हो तो छोटी उम्र भी बड़े हुनर की पहचान बन सकती है। खेल के साथ साथ योग भी, और वो भी पूरे उत्साह के साथ। स्कूल में बच्चे बिना किसी दबाव के गोले में बैठकर योगाभ्यास कर रहे हैं। खेल खेल में किया गया योग उनके शरीर को मजबूत बनाता है, संतुलन सुधारता है और मन को एकाग्र रखने में मदद करता है। यही वजह है कि छोटी उम्र से ही योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाया जा रहा है। मुस्कुराते चेहरों के साथ योग करते ये बच्चे स्वस्थ और अनुशासित भविष्य की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहे हैं।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: देखिए दर्शन, दोनों रूट पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। देशभर में दिख रही पवित्र कावड़ यात्रा के अनोखे रंग, बिजनौर की कावड़ में दिखे देशभक्ति के रंग। हरिद्वार में डाक कावड़ का शुभारंभ। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन। भीड़, रूट, पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। जेंजी के लिए योगी सरकार की नई पहल, अब छात्रों को आईएएस आईपीएस अफसर देंगे करियर टिप, जिला स्तर पर बनेगा पूरा स्केड्यूल।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: मेरठ में सीएम योगी की अनोखी शिव भक्ति, मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर कावड़ियों का किया भव्य स्वागत। सीएम ने कावड़ियों को उनकी सफल यात्रा के लिए भी दी शुभकामनाएं, हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। कल और सावन शिवरात्रि के दिन कावड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, हेलीकॉप्टर से कावड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। कावड़ियों के सम्मान में मेरठ के मोदीपुरम में विशेष कार्यक्रम आयोजित, भोलेनाथ की भव्य झांकियों ने खींचा भक्तों का ध्यान। शिव के अलग अलग स्वरूपों ने मोहा श्रद्धालुओं का मन, अद्भुत और अलौकिक दृश्य को देखने भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। सावन के पवित्र महीने में भोले शंकर के उद्घोष के साथ जारी है कावड़ यात्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कावड़ियों पर की पुष्प वर्षा। दिल्ली यूपी सीमा के पास अप्सरा बॉर्डर से राजधानी में आ रहे कावड़ियों पर सीएम ने बरसाए फूल, ढोल नगाड़ों के बीच किया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कावड़ियों पर बरसे फूल, पुलिस ने पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का किया स्वागत। हर हर महादेव से गूंजा घंटा घर चौराहा। सहारनपुर में अनोखी गौरक्षा कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र, तीन कावड़ों को जोड़कर बनाई गई है भव्य कावड़। कावड़ में सबसे आगे विराजमान है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा। हरिद्वार से करीब 280 किलोमीटर की यात्रा कर कालका की ओर बढ़ रही है 26 कावड़ियों के जत्थे वाली कावड़। सहारनपुर में कावड़ यात्रा के दौरान दिखा अनोखा शिव भक्त, कमर पर बांधी है 3 किलो की घंटी, खुद को कह रहे हैं दो पांव वाला भोले का नंदी। ब्रजलाल पिछले 10 साल से अपनी कमर पर करीब 2.5 से 3 किलो की पीतल की घंटी बांधकर कर रहे हैं कावड़ यात्रा। महज 10 साल की उम्र से अपने पिता के साथ शुरू की थी प्रथा। दरअसल बचपन में पिता के साथ कावड़ यात्रा करते समय खो जाने के डर से पिता ने बांधी थी ब्रजलाल की कमर में घंटी, तब से इसी तरह यात्रा कर रहे हैं ब्रजलाल। एटा में देखी कलयुग के श्रवण कुमार जैसी अनोखी कावड़, पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 4 बेटों ने कंधों पर उठाई अनोखी कावड़। कावड़ में एक तरफ अपने पिता को बिठाकर और दूसरी तरफ करीब 155 किलो गंगा जल रखकर यात्रा की अनोखी शुरुआत की गई। यात्रा मार्ग पर सभी भक्त ये नजारा देखकर हुए भावुक। बिजनौर में अनोखी कावड़ दिखा देशभक्ति का रंग, ब्रह्मोस मिसाइल और 100 मीटर तिरंगा कावड़ बनी आकर्षण का केंद्र। 400 से ज्यादा शिव भक्त ब्रह्मोस कावड़ लेकर निकले, ब्रह्मोस मिसाइल कावड़ के साथ तिरंगा भी लहराया। 100 मीटर लंबी तिरंगा कावड़, 25 से ज्यादा शिव भक्त लेकर चल रहे हैं तिरंगा कावड़। कावड़ यात्रा में मोदी योगी के कटआउट्स। देशभक्ति और भक्ति के रंग में रंगी कावड़ यात्रा, हरिद्वार से संभल के लिए लेकर निकले शिव भक्त, बोल बम की गूंज चारों ओर। गाजियाबाद में बहू का अनोखा संकल्प, हरिद्वार से दिल्ली

0: मृतक बुजुर्ग सास को कावड़ में लेकर चल रही है बहू काजल। हरिद्वार में डाक कावड़ का सैलाब, अब तक करीब 3.25 करोड़ शिवभक्त गंगाजल भरकर चले शिवधाम। हरिद्वार के बैरागी कैंप में डाक कावड़ आनी शुरू, देशभर से रोजाना हजारों की संख्या में पहुंच रहे कावड़िए। हरियाणा यूपी समेत कई राज्यों में पहुंचे डाक कावड़िए, दौड़ते हुए पहुंचेगा गंगाजल, बैरागी कैंप में डाक कावड़ियों का जोश हाय। 200-200 मीटर की स्प्रिंट लगाकर जल आगे बढ़ाएंगे कावड़िए, 50 कावड़ियों की टीम तैयार। तय समय में शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे कावड़िए, डीजे पर झूम रहे कावड़िए, हर हर महादेव के जयकारे से गूंजा हरिद्वार। सावन के महीने में शिव भक्ति से सभी सराबोर नजर आए, कावड़ यात्रा में हर उम्र के श्रद्धालु हैं शामिल। चित्रकूट में भी दिख रहा है कावड़ यात्रा का अनूठा रंग, भगवान शिव की सुंदर पालकी के साथ बम्बोले का उद्घोष। यूपी के बांदा में भी नजर आ रहा है कावड़ यात्रा का उत्साह, भगवान श्री राम की तपोस्थली से जल लाकर भगवान शिव को करेंगे अर्पित। बुलडोजर से की गई कावड़ियों पर पुष्प वर्षा, फलाहार बांटते और कावड़ियों की सेवा करते लोग आए नजर। बांदा के बम्बेश्वर शिव मंदिर के लिए रवाना हुआ 500 कावड़ियों का जत्था, बाबा भोले के अभिषेक के लिए चित्रकूट की मंदाकिनी नदी का ले जा रहे हैं जल। कावड़ यात्रा के चलते यूपी के बिजनौर में सभी स्कूल रहेंगे बंद, जिलाधिकारी के निर्देश पर बीएसए ने जारी किया आदेश। सहारनपुर में अनोखी हाईटेक डीजे नाइट बनी कावड़ियों का सबसे बड़ा आकर्षण, भोले के भजन पर झूमते नजर आए शिव भक्त।
1: थोड़ी देर बाद
0: यात्रा की थकान भुलाने के लिए आयोजित की जा रही है अनोखी भक्ति पूर्ण नाइट, जहां डीजे पर बजाए जाते हैं केवल शिव भजन, जिन पर पूरे उत्साह के साथ झूमते नाचते नजर आते हैं कावड़िए। मुजफ्फरनगर में अलग अलग शिव भक्तों की टोलियों के बीच नजर आया आंखों पर पट्टी बांधकर कावड़ यात्रा करता भक्त, गौर माता की रक्षा का संदेश लिए यात्रा कर रहे हैं सुनील। सुनील ने 4 अगस्त की रात गंगा जल उठाने के साथ ही अपनी आंखों पर बांध ली थी पट्टी, जिसे वे 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक करने तक नहीं खोलेंगे। श्रावण मास के दौरान अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में भारी संख्या में उमड़ रही है भक्तों की भीड़, सरयू में लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। बारिश और खराब मौसम के बावजूद देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं श्रद्धालु, भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लगातार हो रही है देवघर जाने वाले कावड़ियों की भीड़, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद कावड़िया बैद्यनाथ धाम की तरफ हो रहे हैं रवाना। पूरे रेलवे स्टेशन पर दिख रही है कावड़ियों की भीड़, सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन सतर्क। स्टेशन पर कावड़ियों की हर सुविधा का रखा जा रहा है ख्याल, रेलवे पुलिस के अतिरिक्त जवान भी तैनात। सहारनपुर में कावड़ियों की थकान होगी छूमंतर, तमाम मेडिकल सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया डॉक्टर्स की टीम तैनात वाला मेडिकल कैंप। इस शिविर में कावड़ियों के लिए इलाज और प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं उपलब्ध, साथ ही थकान और पैरों के दर्द से राहत के लिए फुट मसाज और थाई मसाज मशीन भी लगाई गई। शिविर में 2 मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए, एक समय में करीब 600 मोबाइल किए जा सकते हैं चार्ज। पिछले 20 सालों से लगा जा रहा है कावड़ियों के लिए मेडिकल कैंप। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भी सुरक्षा बल सतर्क, आने जाने वाले लोगों को और वाहनों की जांच तेज। जम्मू से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के साथ अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के अनुमान और तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी के कारण लिया फैसला। दिल्ली के कालिंदी कुंज बॉर्डर पर ट्रैफिक डायवर्ट, कावड़ियों की सुरक्षा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, दिल्ली नोएडा रोड किया गया वन वे। कावड़ियों को रोड पार करा रहे हैं सुरक्षा कर्मी, अगले सोमवार मंगलवार तक रहेगा डायवर्जन, कालिंदी कुंज पर कावड़ शिविर तैयार। सीतामढ़ी पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, मां जानकी की प्राकट्य स्थली पर किया पूजा, नए मंडप में मां सीता राम लक्ष्मण की प्रतिमाएं स्थापित। पुराने मंदिर से नूतन मंडप में हुआ विग्रह स्थानांतरण, 31 दिसंबर 2028 तक भव्य मंदिर पूरा करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने 77 करोड़ की कई परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ। नए मिल्क प्लांट का किया लोकार्पण। मत्स्य ब्रूड ब्रांड की भी शुरुआत। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं में कांवड़ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा। अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में कर चुके हैं दर्शन। मानसून सीजन की अनेक चुनौतियां पार पाते हुए धाम पहुंच रहे हैं भक्त। सोनप्रयाग में वाहनों से फुल हुई पार्किंग। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क। बद्रीधाम में भी लगी भक्तों की रौनक। सावन के महीने में बड़ी भक्तों की संख्या। दिख रहा है सावन के महीने का उत्साह। भक्तों से भरा नजर आ रहा है धाम का मंदिर परिसर, बाजार और यात्रा मार्ग। मानसून के बावजूद यात्रा में मुख्य सीजन जैसी भीड़। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन किए और शयन आरती में भी हुए शामिल। पारंपरिक रूप से बाबा महाकाल का पूजन कर सीएम यादव ने लिया आशीर्वाद। प्रदेशवासियों के कल्याण, सुख और समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन। ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाए गए लालबागचा राजा की प्रतिमा। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ 14 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का स्वागत। कोल्हापुर का राजा के दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग। मंडल की ओर से भव्य तरीके से की गई बप्पा के आगमन समारोह की तैयारी। पारंपरिक ढोल ताशों की गूंज, आकर्षक रोशनी और भक्तिमय माहौल में किया गया गणराज्य का स्वागत। गुरु हरे कृष्ण साहिब जी के जन्मोत्सव पर दियो की भव्य रोशनी से जगमगाया गोल्डन टेंपल। श्रद्धा और भक्ति का देखा अद्भुत नजारा। हरमिंदर साहिब में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। रोशनी और मिट्टी के दियो ने बढ़ाई स्वर्ण मंदिर की रौनक। गुजरात के जामनगर में समरस विद्या सेतु अभियान का शुभारंभ। 500 से अधिक बच्चों को दोबारा स्कूल में प्रवेश। स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास। एक महीने तक चलेगा समरस विद्या सेतु अभियान। गुजरात के गीर सोमनाथ में सड़क पर आराम फरमाते दिखे चार शेर। बस में बैठे यात्रियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। आईआईटी दिल्ली के 97वें दीक्षा समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल। समारोह में 3,000 से ज्यादा छात्रों को सौंपी डिग्री, जिनमें 587 पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल। समारोह में जेएनसी से प्रधानमंत्री मोदी का सीधा संवाद। मेधावी छात्रों को प्रदान किए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल। देश को दी बड़ी तकनीकी सौगात। सोनीपत कैंपस में स्थापित एआई से संचालित सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का किया वर्चुअल उद्घाटन। आईआईटी दिल्ली के सोनीपत स्थित एक्सटेंशन कैंपस में स्थापित किया गया ये अल्ट्रा मॉडर्न और स्पेशल फीचर से युक्त सुपर कंप्यूटर। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली जूडो खिलाड़ी अस्मिता डे को जल्द मिलेगा बड़ा सम्मान। अवारापन 2 के गाना तेरा मेरा रिश्ता 2.0 ने मचाई धूम। 19 साल बाद इस गाने को किया गया रिक्रिएट। बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता के बाद ओटीटी स्ट्रीमिंग पर भी दुनिया भर में बड़ी हिट साबित हुई है धुरंधर। सोनी पिक्चर्स इंटरनेशनल मार्केट में 50,000 स्क्रीन्स पर रिलीज करेगा रामायण। फिल्म का इंग्लिश ट्रेलर भी जारी। सुपरस्टार नानी की फिल्म द पैरालाइज का आया हिंदी टीजर। 24 सितंबर को रिलीज होगी फिल्म। अनिल कपूर फिर मचाएंगे टीवी पर धमाल। इंडिया के टॉप 1% नाम के टीवी गेम शो को करेंगे होस्ट। इंग्लैंड के ब्रिस्टल के आसमान में रंगों का कार्निवल। सैकड़ों फीट ऊपर नजर आए खूबसूरत हॉट एयर बलून। आसमान में दिखी अनोखी उड़ान। पायलट ने रंग बिरंगे बलून के साथ भरी उड़ान। ब्रिस्टल फ्रिएस्टा बना फोटो स्पॉट। बलून फुलाने का शानदार नजारा लोगों ने देखा। ब्रिस्टल में आसमान में 100 से ज्यादा बलून। दिखा अद्भुत नजारा। हवा में तैरते दिखे रंग बिरंगे गुब्बारे। ब्रिस्टल की पहाड़ियों के ऊपर देखा खूबसूरत दृश्य। 45 साल पुरानी परंपरा का शानदार नजारा। चीन में एआई खिलौनों का जलवा। ग्वांगडोंग प्रांत एनिमेशन एक्सपो में एआई प्लस टॉयज ने खींचा ध्यान। दुनिया भर के 2200 से ज्यादा मशहूर ब्रांड्स इसमें शामिल, चीन के एआई टॉयज की विदेशों में बड़ी मांग। मास्कलेट मेगा फीचर्स और बड़े आईपी इंस्टॉलेशन बने आकर्षण, चीन के खिलौना उद्योग को मिलेगा इसे ग्लोबल बाजार। यूरोप अमेरिका समेत कई देशों में हुआ निर्यात, विदेशी खरीदारों को पसंद आए अनोखे चीनी डिजाइंस। एआई से खिलौनों की दुनिया हुई स्मार्ट, नई टेक्निक और क्रिएटिव डिजाइन का एक्सपो में देखा शानदार मेल। सियोल में गर्मी से राहत का अनोखा तरीका, भीषण गर्मी के बीच साइलेंट पूल पार्टी में उमड़ी भीड़। वायरलेस हेडफोन लगाकर पूल में झूमे लोग, सैकड़ों लोगों ने साइलेंट डिस्को का मजा लिया। साइलेंट पूल पार्टी में 450 टिकट फुल, कार्यक्रम में पहले ही बिके सभी एडवांस टिकट्स। हीटवेव के बीच पूल पार्टी ने लोगों को दी राहत, समर बीच कार्यक्रम से सियोल घूमने वालों को मिला इससे नया अनुभव। शहर के बीचों बीच लोगों को मिल रही है ठंडक, गर्मी में मस्ती और ठंडक का अनोखा कॉम्बिनेशन। मध्य चीन के हेनान प्रांत में दिख रहा है प्रकृति का बेहद खूबसूरत नजारा, पूरी तरह खिले नजर आए सुंदर सूरजमुखी के फूल। जहां तक नजर जाए वहां तक सीधे खड़े नजर आते हैं सूरजमुखी के फूल, सूरज की रोशनी में चमकती नजर आती है फूलों की पंखुड़ियां। अगस्त की शुरुआत में खेतों में दिखता है नेचर का ये सुंदर रूप, हर साल लाखों की संख्या में पर्यटकों को यहां आने के लिए करता है आकर्षित। इस लंबे सीधे खड़े सूरजमुखी फूलों के बीच लोगों ने फोटो खिंचवाने की होड़ मची, प्रकृति में खोए नजर आए दूर देश से आए टूरिस्ट। शांत देहाती दृश्यों का आनंद लेने आते हैं यहाँ कई शहरवासी, शहरी जीवन की हलचल से बचकर खेतों में गुजारते हैं यादगार पल। अब आप अपने पेट से कर पाएंगे अपनी ही जुबान में बात, चीन के वुहू इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पार्क में बनाए जा रहे हैं खास लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाले स्मार्ट पेट स्कॉलर। चीन के कंप्यूट क्यू प्लेटफॉर्म पर यह स्थिति धीरे धीरे हकीकत बन रही है, जहां अगर स्मार्ट पेट स्कॉलर पहने आपका डॉग भूख से भौंकता है तो आपको फोन पर नोटिफिकेशन आएगा। इस ऐप के जरिए आपकी भाषा पेट्स के सिग्नल में बदल जाएगी, साथ ही पेट्स के सिग्नल भी आप अपनी भाषा में समझ पाएंगे। इस मॉडल में पालतू जानवरों के व्यवहार से जुड़े 5,00,000 से ज्यादा रिकॉर्ड्स डाले गए हैं, ताकि इंसानों और जानवरों के बीच एक पुल बनाया जा सके और उनकी भावनाओं और जरूरतों को समझा जा सके। फिलहाल ये स्मार्ट पेट्स कॉलर अलग अलग स्तर पर टेस्ट किए जा रहे हैं, जल्द ही इसे बाजार में उतारा जाएगा।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन के पावन महीने में कावड़ यात्रा मार्ग पर हर कदम पर बोलबम का जय घोष है। भगवान भोले शंकर के भक्तों की भक्ति है और हर ओर आस्था के बिखरे अनेक रंग हैं। कंधों पर पवित्र गंगा जल की कावड़ लिए शिव भक्त शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे भी लगा रहे हैं। हरिद्वार में डाक कावड़ लेने पहुंचे श्रद्धालुओं से हर की पैड़ी गुलजार नजर आ रही है। आलम ऐसा है कि मानो हरिद्वार पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। बड़ी संख्या में कावड़िए गंगा जल भरने के लिए हर की पैड़ी पहुंचे हैं और वहां से गंगा जल लेकर पवित्र शिवालय में जाकर जलाभिषेक करेंगे। हरिद्वार में इस वक्त हर तरफ कावड़िए ही कावड़िए नजर आ रहे हैं, साथ में दिख रहा है और उनके वाहन भी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आसमान उस वक्त रंगों से भर गया जब सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर एक के बाद एक हॉट एयर बलून उड़ान भरते नजर आए। मौका था ब्रिस्टल इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का, जहां रंग बिरंगे गुब्बारों ने शहर के आसमान को किसी खूबसूरत कैनवस में तब्दील कर दिया। देखिए शानदार नजारा, कहीं लाल कहीं पीला तो कहीं नीले और नारंगी रंग के हॉट एयर बलून। एक एक करके बलून जमीन से आसमान की ओर रवाना होते रहे। नीचे खड़े लोगों के लिए यह सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि आसमान में रंगों का एक चलता फिरता उत्सव था। आसमान में उड़ते बलून और नीचे से उन्हें निहारते लोगों की भीड़, ब्रिस्टल का पूरा माहौल किसी फिल्मी नजारे जैसा लग रहा था। ब्रिस्टल इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल हर साल 3 दिन के लिए आयोजित होता है, जिसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बलून आसमान की शोभा बढ़ाते हैं।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: क्या है रुद्राभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक के क्या हैं विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
3: खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। दिल्ली NCR के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार। देशभर में दिख रहे हैं पवित्र कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग, बिजनौर की कांवड़ में दिखे देशभक्ति के रंग, हरिद्वार में डाक कांवड़ का शुभारंभ। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला आप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। जेंजी के लिए योगी सरकार की नई पहल, अब छात्रों को IAS IPS अफसर देंगे करियर टिप, जिला स्तर पर बनेगा पूरा स्केड्यूल।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: बेल पत्र के साथ महादेव महाकाल का आशीर्वाद पहले ही मनोज जी प्राप्त कर चुके हैं, दर्शन आप करके आए हैं अभी वहां।
5: जी जी, मैंने पहले प्रेम से बोलिए जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं दर्शन करके आ रहा हूं और मैंने जल भी, हमारे जल भी चढ़ गए महाकाल पे, और चलते समय मुझे एक महाराज जी आए, वो भस्म लेके आए, उन्होंने मेरे माथे पे भस्म लगाया, हमारी पत्नी हमारे साथ है उनके माथे पे भी भस्म लगा, और वहीं से मुझे हमारे सांसद अनिल फिरोजिया जी, इन्होंने मुझे ये बेलपत्र दिलवाया जो हाथ से छूटी नहीं रहा है, तो इसको लेके जाएंगे दिल्ली।
4: अद्भुत अलौकिक है महाकाल यहाँ।
5: मैं तो एक बार आया था पहले यहाँ पे श्वेता जी, और दूसरी बार आया हूं, और दूसरी बार की जो शोभा है वो तो अपरंपार है, और सौभाग्य है कि यहाँ संत चरण भी बैठे हैं, हमारे जगत गुरु जी बैठे हैं, शैलेश जी महाराज जी बैठे हैं, आदरणीय हमारे गुरु जी बैठे हैं, सभी लोग उनके साथ साथ, जो हमने ये शोभा देखी अभी तक तो फोटो में देखते थे, पिक्चर में देखते थे, नरेंद्र मोदी जी ने इधर कहीं शुभारंभ किया था वो भी देखे थे, आज उसको महाकाल कॉरिडोर का, और यही हमारी भारत की संस्कृति है, हम महाकाल में हैं ये सोच के आनंद आ रहा है। देख रहे मेरा पूरा पैजामा वजामा सब लाल लाल हो गया, देश में रह के देश के प्रति भक्ति, अपने महादेव के प्रति भक्ति, सनातन के प्रति भक्ति, तो उसको मैं बहुत बड़ा मानता हूं, और इसी को महादेव की कृपा भी मानता हूं। मैं आजकल इस पे बहुत काम कर रहा हूं, अभी मैंने 2 गीत हमने दिए हैं जो इसी थॉट पे है।
4: अच्छा।
5: एक हमारा थॉट है कि सत्य सनातन की धारा को और बढ़ाना होगा,

0: हो जगदम्बा दुर्गा काली रणचंडी बनया ना होगा, अपने अपने अंदर का हनुमान जगाना होगा। तो मैं तो इस सारे देश के घर घर में,
1: यहाँ अपने अंदर के हनुमान से आपका अभिप्राय क्या है?
0: हमारे अंदर के हनुमान की अपनी शक्ति समझो, हम अपने हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज में।
1: मतलब जैसे जामवंत ने जगाया हनुमान जी को, अपनी शक्ति का एहसास दिलाया, वो हनुमान
0: की बात कर रहा हूँ। सबके अंदर अपना अपने अंदर का हनुमान मतलब आपकी सब शक्ति, आपके अंदर की क्षमता, अगर वो ऐसी रह जाए ना जगे समय पे जागना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने अभी 3 हफ्ता पहले मैंने इसको रिलीज भी किया है, हनुमान जगाना होगा। और इसमें बहुत सारी बातें हैं कि परम सत्य है इस सृष्टि का जिसका नाम सनातन है, श्री राम की मर्यादा है, कृष्ण ज्ञान का आंगन है, राधा भक्ति सीता शक्ति चिंतन बहुत पुरातन है, परशुराम के न्याय का फरसा फिर से उठाना होगा अपने अपने अंदर का। मैं तो जितने लोग हमको सुनते हैं या अभी चैनल पे सुन रहे हैं, और शक्ति तो वही है जो सकारात्मक हो, नकारात्मक अगर शक्ति लग रही हो तो फिर तो राक्षसों ने भी अपनी शक्ति लगाई है।
1: ये किसी पर आपका प्रहार है? ये
0: ना ना ना, किसी पे नहीं, सार्वभौम बात है, ये बहुत सबके लिए है। देखिए जब भी आपकी शक्ति का, अब परमाणु का तो 2 प्रयोग हो सकता है ना, एक ऊर्जा बढ़ाने के लिए हो सकता है, बिजली बनाने के लिए हो सकता है, और कुछ लोग परमाणु का उपयोग गलत भी करके दिखा चुके हैं। तो सारी शक्तियों का शक्ति के साथ भक्ति होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए महाकाल, हम तो भस्म वाले स्थान पे बैठे हैं, ये भस्म वाले मंदिर का प्रांगण है। तो मुझे लगता है कि शक्ति के साथ सकारात्मक जुड़ना बहुत जरूरी है।
1: आप भगवान परशुराम का नाम ले रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण है वो आपकी पार्टी से बहुत नाराज चल रहे हैं।
0: अरे आप नाराज चल रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री तीसरी बार बने नरेंद्र मोदी।
1: 2024 और 26 में बहुत फर्क,
0: 29 में भी बनेंगे, 2029 में भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई किसी को शंका नहीं होना। ऐसा झुकने वाला प्रधानमंत्री कहां किसने देखा? छात्रों की बात आती है, 4 कदम आगे बढ़ के झुक रहे हैं, किसानों की बात आती है, 4 कदम आगे बढ़ के झुक रहे हैं।
1: ये झुकना अच्छी बात है बुरी बात है?
0: ये अच्छी बात है, ये झुकना, इसको झुकना नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं उनके साथ संवाद करना, उनके हित के लिए काम करना। और वो काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, महिलाओं के हक के लिए वो झुक रहे हैं। अभी महिला आरक्षण बिल पास होगा, बहुत जल्दी पास होगा भाई,
1: इसी सेशन में या स्पेशल सेशन में?
0: नहीं, उसके लिए हो सकता है कि अलग से भी सेशन बुलाना पड़े, लेकिन हे मेरी भारत की महिलाओं, मेरी बहनों बेटियों, आपको भी अगर सांसद 100 हैं तो 33 महिला होने का अधिकार होना चाहिए। अगर हमारे 100 सांसद हैं तो उसमें 33 महिलाओं को होना चाहिए कि नहीं? भाई बहन आप लोग बताओ, कौन कहेगा नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए भी, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, झुकने में हमारे नरेंद्र मोदी जी की जरा भी उसमें कोई संकोच नहीं।
1: हमने महाकुंभ में भी देखा बहुत बड़ी संख्या में युवा निकल कर आए थे वहां पर, यानी कि देश का युवा सनातन से दूर नहीं है, इनफैक्ट उसका उल्टा ही ऐसा लगा था, शायद नई पीढ़ी में ज्यादा उत्साह है,
0: ज्यादा पहले से भी ज्यादा। हमारी आज की पीढ़ी सनातनी है, पहले से ज्यादा। आप महाकाल में अभी दर्शन करने लोग जा रहे हैं, यहाँ जो बैठे हैं सबको देख लीजिए, वो सब जैन जी की परिभाषा में जो आते हैं वही दिखाई देंगे आपको। आज युवा जिस तरह से आप, जब हम आजकल जब भी हम इंस्टाग्राम खोलते हैं, हर तीसरा इंस्टाग्राम मेरे माता के भजनों का होता है।
1: पर ये भक्ति संगीत की भाषा कुछ बदली पुरानी पीढ़ी के लिए और आज की पीढ़ी के लिए?
0: हाँ, वो समय का चक्र है, जैसे थोड़ा सा फास्ट म्यूजिक अच्छा लगता है। हाँ। थोड़ा आधुनिक जो वाद्य यंत्र है, साउंड बदला है। अब जैसे अभी हमने एक शिव जी का भजन गाया है। हाँ। वो आया है तो उसका आप देखिएगा कि हमारा जो साउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा सा उसका कंपोजिशन भी डिफरेंट है, क्योंकि नए लड़के ने, जैन जी ने बनाया है। अरे दुनिया पूछे सौ सवाल, जोगी तेरा क्या है हाल, मुस्कुरा के बस कह दूं मैं,

0: बम बम बम। अब ये एक जेंजी, एक लड़का, एक जो जेंजी की परिभाषा है उस म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया, एकदम अलग साउंड कर रहा है।
1: मनोज जी, आज सावन का समय है, हम यहाँ महाकाल की नगरी में हैं, इसीलिए अब मैं सांसद मनोज तिवारी नहीं बल्कि उस गायक मनोज तिवारी की
0: मैं
1: तरफ,
0: महाकाल भक्त मनोज तिवारी बोल रहा हूं।
1: उनकी ओर आती हूँ और उनसे पूछती हूँ, क्योंकि आप आज से नहीं, कितने साल पहले आपने पहला अपना शिव भजन गाया था?
0: हमने सबसे पहले शिव जी का भजन गाया था 1997 में। आप पैदा हो गए थे पता नहीं।
1: उसके बाद पैदा होंगी तो जेन जी बन के आपसे सवाल करूंगी।
0: 1997 में हमने गाया था और तब हमने गाया था ज्योतिर्लिंग के बारे में। हमने शुरुआत किया था वैद्यनाथ धाम से और वो गाया था कि काशी से कैलाश बीच है,

0: हे भैया भोला के दरबार। इसका तो वीडियो भी नहीं बन पाया। आज मैं सुरभि से बोल रहा था कि चलो इसका वीडियो बनाते हैं हम लोग इसको लेके, और हमने 1997 से लेके आज तक कभी भी मेरा सावन और नवरात्रि खाली नहीं जाता है जब मैं माँ का या बाबा का गीत न गाऊं।
1: हर बार आप एक नया गीत कम से कम लेकर आते
0: हैं। हर साल गाता हूँ। और एक गाना तो मेरा बहुत आध्यात्मिक रूप से अभी चल रहा है, हर डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में, डमरुआ वाला जोग में, महाकाल वाला जोग में, हो डमरुआ।

0: यात्रा चल रही है हमारी। एक बार प्रेम से बोलिए जय महाकाल, दोनों हाथ उठा के बोलिए हारा हारा। ये सब हमारी यात्रा के पड़ाव। और देखो श्वेता जी एक बात बताएं, जो महाकाल को हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये जो बाबा बैठे हैं ना, महाकाल को भय से मुक्त करने वाला बोलते हैं, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूं महाराज जी लोग बैठे, मोह से और भय से। अगर आप महाकाल की पूजा कर रहे हैं तो न तो आपका मोह सताएगा आपको और न तो बापू भी आ गए हमारे बड़े बहुत प्रसिद्ध कथावाचक हैं और हमारे बड़े प्रिय, इनका भी स्नेह बहुत मिलता है हमें। महाकाल को जो याद करेगा, जो ध्यान करेगा, जो पूजा करेगा, उसको न मोह सताएगा न भय सताएगा। लेकिन पाएगा क्या, ये तो हो गया, जाएगा क्या, जाएगा भय, जाएगा क्या, जाएगा मोह, जाएगा आएगा क्या, अगर महाकाल की कृपा हुई, महाकाल में भक्ति हुई, तो फिर आप समय पर विजय पाना सीख जाएंगे। समय जो भी चल रहा हो, आजकल कई लोग इस समय का गलत परिभाषा देने में लगे हुए हैं, मुझे उससे थोड़ी आपत्ति है। जैसे मैंने कहा ना, कुछ लोग जेनजी को बदनाम करने में लगे हैं, ये जेनजी महाकाल की भक्त है, और जो भी दूसरे वाले लोग उसकी गलत परिभाषा करेंगे, समय आने पे उनको जेनजी जवाब देगी।
1: 97 से आप शिव भजन गा रहे हैं, हाँ। और गा तो शायद उससे पहले से रहे, उसके बाद से उसे सार्वजनिक रूप से जनता के बीच रिलीज कर रहे हैं। आपका सबसे जो पसंदीदा शिव भजन है, हाँ। जो या तो आपने गाया है या किसी और का है, नहीं, सावन आते आपके होठों पे आता है।
0: देखो हमने, वैसे तो मेरा सबसे जो प्रिय भजन था वो मैंने आपको थोड़ा सा सुनाया कि डूब जो रे मनवा डमरुआ वाला जोग में। लेकिन अब आप किसी पिता से पूछो कि तुम्हारे कौन कौन बच्चे से तुमको ज्यादा प्रेम है, तो ये तो बहुत ही हमने अभी तक 5201 गाना 5201 बना चुका हूं, और उसमें हमें जो इस समय चलते चलते गुनगुनाने का मन करता है, अभी अनिल भाई के साथ हम कह रहे थे कि क्या यहां भी हर हर महादेव कहते हैं, बोले हाँ भैया हर हर महादेव भी कहते हैं, जय महाकाल भी कहते हैं, और मेरा एक गाना है जो मैं चाहूंगा कि हम सब मिलकर के गाएं एक बार, सब सब बोलेंगे कि हर

0: जय महाकाल। हो महाकाल की इस नगरी से देना देना संदेश सदैव, हर हर हर महादेव, हर हर। मेरी बहनें भी गा रही हैं, हर हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से।
1: सुरभि जी के साथ मिलके भी गाए हैं क्या आप शिव भजन?
0: सुरभि जी के साथ अभी गाए नहीं है, उनके साथ कभी मिलके गाएंगे।
1: महाकाल की धरती पर ही सोच लीजिए, महाकाल की नगरी पर, धरती तो पूरी की पूरी है।
0: हाँ अभी सोच रहे हैं, वो बहुत अच्छा गा रही है आजकल हमसे ना, इसलिए मैं थोड़ा डर रहा हूँ।
1: नहीं सच में ये कोई व्यंग नहीं, कोई मजाक नहीं है, सचमुच में बहुत अच्छा गाती है। और इसीलिए जिस तरीके से वो मुस्कुरा रही थी इस बात पे कि आप शब्द बदल दे रहे हैं अपने से, मुझे लगा कि इतने बार कार्यक्रम में देख चुकी हूं कि कैसे हर गीत आप ऑन द स्पॉट बदल देते हैं।
0: नहीं, जब हम महादेव के बारे में गाते हैं तो महादेव जिनकी अर्चना करते हैं वो उनके बारे में गाने, राम जी के बारे में गाने लगते हैं। हाँ, अभी उन्होंने कुछ गाया कि राम देखे सिया को, सिया राम को, चार अखियां लड़ी तो लड़ी रह गई।
1: तो थोड़ा साथ में आप भूखे पेट हैं पता है दर्शन के लिए, थोड़ा सा साथ में।
2: जय श्री महाकाल, जय जय श्री राम। राम को देख कर

0: जय श्री राम।
1: बहुत अच्छा गाती है और महाकाल के दरबार में उनका स्वर आपने ले लिया। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है, फिर भी वो महाकाल में जा रहे हैं, ये इसको ना नहीं करी और यहाँ पे उपस्थित है।
2: नहीं, इसीलिए कहते हैं ना, ऐसे भी तो भोले बाबा के लिए कहते यही हैं कि वो अगर कोई नियम कुछ रीति कुछ नहीं भी मालूम है, बस सच्चे दिल से प्रार्थना कर लें तो भगवान खुश।
1: नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे भोले बाबा तो अक्सर हम लोग एक गीत गाते हैं,

0: कई बातों के कई अर्थ है और हम लोग इस महाकाल के दरबार से आज तक के मार्फत आज पूरे देश दुनिया से बात कर रहे हैं। सबको महाकाल की कृपा, सबके ऊपर महाकाल कृपा करें, यही हमारी प्रार्थना।
1: कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपके हो चुके हैं अब तक?
0: मैं वैद्यनाथ जी तो पैदल जाता हूँ, 110 किलोमीटर पैदल
1: कांवड़
0: लेके।
1: हाँ, अच्छा,
0: कई साल गए हैं, पिछले साल भी गए थे।
1: हाँ, बाकी जगह का डाक कांवड़ अलग है, वहाँ का डाक बम जो 105 किलोमीटर आप 24 घंटे के अंदर आपको करना है एक अकेले व्यक्ति।
0: बहुत अद्भुत है, वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में महाकाल की महिमा तो अद्भुत अपरंपार है, मगर वैद्यनाथ धाम की भी कृपा बाबा ने, महादेव ने बहुत बताई है। तो वहां डाक बम जो जाते हैं वो एक बार उठाते हैं तो रुकते नहीं है, और हम भी 52-53 घंटे में पहुंच जाते हैं, हालांकि हम आराम करते हुए जाते हैं, लेकिन 4-5 महीने तक पैर एकदम फट जाता है हमारा, क्योंकि मैं बचपन में जब मैं 12 साल का था तब मैं पहली बार गया था और 7 साल गए, बाकी महादेव ने बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। लेकिन बाबा धाम हम कई बार गए, महाकाल हम पहले भी आए हैं, आज फिर आ गए, दर्शन किया, और इनके अलावे
1: काशी विश्वनाथ
0: जी में तो पैदा ही हुए, काशी विश्वनाथ में तो मेरा जन्म ही हुआ है, और इसके अलावे कहाँ गए हैं?
1: रामेश्वरम गए हैं, रामेश्वरम, त्रयंबकेश्वर।
0: नहीं, अभी रामेश्वरम नहीं जा पाए हैं।
1: तो आजकल जितना
0: अभी मैं महाकाल, काशी विश्वनाथ और बाबा वैद्यनाथ,
1: जिसको धार्मिक अर्थव्यवस्था कह रहे हैं,
0: वहाँ गए पशुपतिनाथ जी गए हैं, वहाँ भी गए, और बाकी तो देखिए, कहते हैं कि ओ हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो ये भी एक भाव होता है।

0: काल संगे,
1: हम ये भी जोड़ रहे हैं,
0: बाबा हमारे सर पे आ रहे हैं और बाबा महाकाल के दरबार में बैठ के हम बाबा विश्वनाथ को और वैद्यनाथ जी को भी याद कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा सुख है श्वेता जी, इसलिए मैं चाहता हूं बाबा सबको कृपा करें, सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन ज्यादा कृपा उन्हीं पे करें जो उनका भक्त हो, जो महाकाल का भक्त।
2: बहुत
0: हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: क्या है रुद्राभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक के क्या हैं विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आप तीनों का यहाँ पर इस मंच पर आने के लिए आज तक धर्म संसद में। और मेरे ख्याल से आप तीनों से बेहतर कोई नहीं है जो सिंहस्थ कुंभ के बारे में बता सके, समझा सके, क्योंकि भक्तों की उम्मीदें, करोड़ों करोड़ लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा इसको लेकर रहती है, लेकिन अखाड़ों की अपनी तैयारी होती है और आप लोगों की अपनी आप खुद भी तैयारियां करते हैं। तो चलिए शुरुआत करती हूँ सबसे पहले आप ही से। सुमनानंद महाराज जी, आप कैसे इस कुंभ को देखते हैं, कितनी तैयारी आप लोगों की होती है, कब से करते हैं? सरकार तो देखिए एक बार अनाउंसमेंट हो जाए, पहला कुंभ खत्म हुआ तो उसके तुरंत बाद से तैयारियां शुरू कर देती है, उज्जैन में इस बार कुंभ।
1: देखिए ऐसा है, कुंभ की परंपरा कहां से प्रारंभ हुई ये बहुत विचारणीय बात है। हमारे यहां देवताओं ने और दानवों ने एक सम्मिलित प्रयास किया और अमृत को पाने का प्रयास किया, और जब अमृत निकला तब सब उस अमृत के पीछे दौड़ने लगे। गरुड़ जी लेकर भागे और चार स्थान पर उस कलश को रखा, वहां वहां कुंभ की परंपरा प्रारंभ हुई। हमारी जो ऋषि परंपरा है, हमारी जो देव परंपरा है, हमारी जो संत परंपरा है, वो हमें ये कहती थी कि हमें हर समय हर क्षण अमृत को खोजना है, अमृत की तलाश करना है। आज दिक्कत यह हुई कि हम अमृत को तो भूल गए और कुंभ की व्यवस्थाओं पर अटक गए।
0: बहुत अहम बात है, बहुत अहम।
1: एक महत्वपूर्ण बात आपको और कहना चाहता हूं। हम केवल स्नान पर आ गए, हमें तो मृत्योर मां अमृतम गमय वाला सिद्धांत जो है हमें दिया गया था कि मृत्यु से हम अमृतत्व की ओर जाएं, हमने अमृत छोड़ दिया और हम जल तक सीमित हो गए। दूसरी बात, ये परंपरा जो चली कुंभ की, ये परंपरा क्यों चली? संत आने लगे, चार तीर्थों में वास करते थे, कल्पवास होता था, और ये कुंभ जो था, सिंहस्थ जो था, ये संतों का ही था, आम व्यक्ति का नहीं था। संत एकत्र होते थे, प्रति 12 वर्ष में यहां आते थे और 12 वर्ष तक ये साधना करते थे। अमृत का दूसरा स्वरूप मैं आपको कहना चाहता हूं, ये जब साधना करते थे उस साधना से जो इनके अनुभव में उतरता था, जो अनुभूति इन्हें होती थी, उस अनुभूति को इकट्ठा करके ये 12 वर्ष में फिर यहां आ जाते थे। यहां राजा लोग, सेठ साहूकार, श्रीमंत लोग इनके लिए कुटियाएं बना देते थे, क्षिप्रा के तट पर रहते थे, कल्पवास करते थे, इनके भोजन की व्यवस्था होती थी, अन्न क्षेत्र बन जाता था, साधु आता था, भोजन करता था, चला जाता था, और ये पूरा संत समाज, ये मेरे राष्ट्र की मनीषा, ये बैठकर शास्त्रार्थ करती थी। जो सूत्र इन्हें मिले हैं उन सूत्रों पर चर्चा करते थे, कौन से सूत्र समाज के लिए उपयोगी होंगे, कौन से लाभदायक होंगे। वो सूत्र ही अमृत तुल्य सूत्र थे, वो ही अमृत था जो इनकी साधना से निकलता था, और उस अमृत को ये यहां समाज में स्थापित करने के लिए पुजारी, पुरोहित, पंडित, आचार्य इन्हें सौंप देते थे, और वो धर्म का मुलम्मा उस पर चढ़ाकर समाज में उन सूत्रों को स्थापित करते थे। समाज उसका अनुसरण करता था, समाज को उससे लाभ मिलता था। ये था कुंभ। फिर 12 वर्ष के बाद हरिद्वार जाते थे, फिर नासिक जाते थे, फिर प्रयागराज जाते थे, वहां फिर वो अपनी अपनी साधना से जो उन्हें मिला है वो सब अमृत समाज में वितरित होता था और समाज को उसका लाभ होता था। आज का कुंभ थोड़ा अलग हो गया बहन जी।
0: आपने आपने यहाँ मेरे मन की बात छीन ली, क्योंकि पिछले कुंभ की अगर मैं बात करूं, स्वयं मैंने, मैं खुद भी वहां गई, हमने देखा, हमने चर्चाएं की, 2 महीने तक इस पे कार्यक्रम हुआ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी देखा होगा। और अक्सर इस बात को लेकर चर्चा होती थी महाराज जी, जिसका जिक्र आपने किया है कि कुंभ बदल गया है। किसने कुंभ को बदला, क्यों कुंभ बदला, ये चिंता आज की तारीख में सिर्फ कुंभ तक सीमित नहीं है, ये चिंता आगे बढ़ती है क्योंकि ये सवाल हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे सनातन पर आता है। महाराज जी आपसे इसका जवाब चाहूंगे।
2: देखिए बिल्कुल स्पष्ट है आपकी बात से, आप तो क्या प्रत्येक बौद्धिक व्यक्ति, प्रत्येक साधु संत सहमत होगा। हमारे यहाँ पे

0: पर्यटन नाम के बड़ी कुटिल सी एक शब्दावली कर दी, जिससे जो हमारे धार्मिक नगर है, धार्मिक केंद्र है, वो पर्यटन के नाम पर अव्यवस्थित हो गए।
1: तीर्थाटन से ज्यादा पर्यटन ज्यादा होने लग गया।
0: सीधी बात है, वो मनोरंजन के केंद्र नहीं है, एक्सकर्शन के, एकेडमिक एक्सकर्शन के क्षेत्र हो सकते हैं, वो तीर्थाटन के क्षेत्र हो सकते हैं, वो टूरिज्म के केंद्र नहीं है। उज्जैनी तीर्थाटन का केंद्र है, पर्यटन का केंद्र नहीं है, इस बात को हमें समझना होगा। और ये जमीन से हम बात कर रहे हैं, जिस जगह से बात कर रहे हैं, वो अमृत केंद्र है। अमृत कहाँ होता है? नाभि पे। वो नाभि कहाँ है? नाभिकीय। वो नाभिकीय क्या है? उज्जैन का महाकालेश्वर नाभिकीय शिवलिंग है। इसके न्यूक्लियस के आसपास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सभी घूमते हैं और सभी शुद्ध होकर के वापस से फ्यूजन होकर के सही मार्ग की ओर जाते हैं। तो यहां से वो निकलने वाला है सत्य, और मुझे पूरी अपेक्षा है कि सीएस 2028 के अंदर ये मानस मंथन एक बहुत बड़ा अमृत निकालने वाला है, जो कि इस राष्ट्र को बहुत बड़ी भूमिका देने वाला है, जो विश्व गुरु की उपाधि के अंदर शायद शिरोधार्य होगा।
1: बहुत बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर ये कही, क्योंकि कुंभ में केवल मैं उसका जिक्र, उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि जब हम जाते हैं वहां पर देखते हैं कि लोगों को एक धर्म नगरी, एक उसको किस तरीके से पर्यटन नगरी बना दिया जाता है। देखिए, अगर आपको याद हो महाराज जी, तो चर्चा इसको लेकर बहुत हुई थी कि रील्स नहीं बननी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसको लेकर कुछ रूल, इनफैक्ट संत समाज ने भी इसको लेकर रूल रेगुलेशन बनाए, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जाता है। मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि आपके अखाड़ों में भी आपने जेन जी, जेन अल्फा की बात की, वो होंगे, किस तरीके से वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते, आगे आऊंगी। लेकिन विशाल महाराज जी, आपके पास आते हुए, आपके लिए सिंहस्थ कुंभ क्या है? संतों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये कुंभ?
2: जी बिल्कुल, जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताए कि ये संतों का समागम है, बुद्धि विवेक का समागम है, सनातन धर्म के जानने का समागम है। पहले भी आचार्य हमारे सत्यनारायण बाबा जी ने एक बात कही थी कि पहले जानो, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा है कि जानो। क्यों जानो? कि जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। हम धर्म की बात करते हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम भक्ति की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, और प्रेम की स्थापना तभी होगी जब आपस में विचारों का मंथन होगा, और मंथन से एक सुंदर सा अमृत निकलेगा, और अमृत का ओरा जब चारों तरफ फैलेगा तो जैन जी, बालक, वृद्ध और नौजवान सभी के मन में एक शांति प्रस्फुटित होगी, और शांति की स्थापना का ही प्रतीक एक कुंभ है। और ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को, जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताए हैं, कि मंथन की आवश्यकता है, और हमारे देश में इस धर्म नगरी को, हमारे इस कुंभ नगरी को कहीं ना कहीं पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन जरूरी जरूर हो सकता है, एक माध्यम हो सकता है, लेकिन साध्य नहीं हो सकता है, साधन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारे सनातन धर्म को जानना पहले, क्योंकि आज हमारे तमाम नौजवानों के दिल दिमाग में जिस प्रकार से एक मन जो है समुद्र की भांति लहर ले रहा है, अपना प्रश्न करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा है, अपने माता पिता, गुरुजन, भाई बंधु, दोस्त मित्र सबसे सवाल करता है, और लेकिन उसके सवालों का जवाब नहीं मिल पाता है, और जवाब नहीं मिलने के कारण उल्टे सीधे मार्ग अपनाता है, जो कोई स्वामी जी ने लिखा है कि मार्ग सोई जो जय जस बाबा, जिसको जो अच्छा लगता है वो मार्ग अपना लेता है। इसलिए कुंभ जो है मंथन का विषय है, ये हमारा शरीर, हमारी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो ये जिससे 24 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, ये कहीं ना कहीं ये समुद्र का स्वरूप है। जब इसको मंथन होगा तो इसी में सारा अमृत भी भरा हुआ है, विष भी भरा हुआ है, ज्यादा तो नहीं कुछ कहेंगे, 14 जो रत्न निकले थे समुद्र मंथन से, वो और कहीं नहीं हमारे अंदर ही भरा हुआ है। वो जिस प्रकार से कहा भी गया है महाराज जी कि धनुष धेनु धर्वंतरी ऐरावत शशिबाज, श्री रंभा विश्वारुणी अमी शंख गजराज, ये 14 रत्न ये कहीं और नहीं, इसी अंदर है, इस अंतरात्मा में ही निवास करता है, परंतु इसको मंथन की आवश्यकता है, और जब तक इसका मंथन नहीं होगा तब तक ये अमृत बाहर नहीं निकलेगा। इसी मंथन का एक जीता जागता स्वरूप 12 वर्ष में जब आता है वो है कुंभ महापर्व, सिंहस्थ महापर्व। सिंहस्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार 12 वर्ष में आता है। मेष राशि गते सूर्य, सिंह राशौ बृहस्पतौ, उज्जैन्याम भवेत कुंभ। मेष राशि का सूर्य होता है, सिंह राशि का बृहस्पति होता है, तो सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। यही योग कुछ अंतर से नासिक में भी लगता है,

0: तो इसलिए उसको भी कहीं ना कहीं सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है।
1: सुब्रनंद महाराज जी, आपने इसी चर्चा की क्योंकि शुरुआत भी की है, संतों का कुंभ है, संतों के लिए संत संदेश देते विचार विमर्श करते हैं, और महाराज जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। ये भी क्या पहली बात, पहला सवाल यही कि क्या हमारी युवा पीढ़ी के सवालों का जवाब संत दे पाएंगे? दे पाएंगे तो कैसे? दूसरा बहुत अहम सवाल, अगर ये संतों का महाकुंभ है, यहाँ पर संत आएंगे, तो कैसे हम अपनी नौजवान पीढ़ी को जोड़ेंगे? देखिए, दोनों चीजें हो जाती है। आप कहेंगे कि विरोधाभासी है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन जब तक युवा पीढ़ी वहां नहीं पहुंचेगी, अब उसका अंदाज अपना हो सकता है, जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगी वो किस तरीके से उसको समझेगी, जानेगी, कैसे एक बीच का रास्ता निकाला जाए कि धर्म की मर्यादा भी रह जाए और हम अपने जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी मिल जाए और जिस मकसद से कुंभ का आयोजन हो रहा है वो मकसद भी सफल हो जाए।
2: देखिए, ऐसा है, आपने दो प्रश्न किए हैं लेकिन मेरी दृष्टि में वो एक ही है। हम यूथ को कैसे जोड़ें? ये धर्म सत्ता का, धर्म की गादी का दायित्व है। सनातन से यदि आज हमें यूथ को जोड़ना है तो हमें सनातन धर्म के उन सूत्रों को, जिन सूत्रों में पूरा विज्ञान समाया है, हमारा सनातन धर्म ऐसा नहीं है कि कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया गया है या कहीं से पढ़ के बोल दिया गया है। ये जो धर्म है ये अनुभव का विषय है, इसीलिए इस धर्म का इतना विस्तार हुआ है। यहां मेरे से पूर्व स्वामी शैलेशानंद जी ने लिख दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है, मैंने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं उससे करने लगता हूं तो मेरे अनुभव में कुछ और आता है, मैं देखता हूं कि नहीं ऐसा ही नहीं होता, ऐसा भी होता है। प्रैक्टिकल की जो सुविधा है वो सनातन में है, वरना तो और धर्म ग्रंथों में, कुरान में जो लिख दिया है वो आखिरी किताब है, बाइबल में जो लिख दिया है उसमें आप कुछ जोड़ नहीं सकते। लेकिन यही धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हम, आप, वो जो भी करेंगे और उनकी जो अनुभूति होगी उस अनुभूति को वो लिख सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा ही नहीं होता, ऐसा भी होता है, और उसे हम स्वीकार करते हैं कि हाँ इनके साथ ऐसा हुआ होगा, इसलिए इस धर्म का विस्तार हुआ। दूसरी बात, जो हमारा विज्ञान सम्मत धर्म है वो आज आप जब तक इन युवाओं तक नहीं पहुंचाओगे तब तक बात बनेगी नहीं। आप कहें कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, जिसके शीश से गंगा प्रवाहित हो रही है, जिसने पूरे लोक की समस्याओं का हरण कर लिया है, उस महादेव के ऊपर आप कारपोरेशन के जल से एक लोटा भर के आप चढ़ा दोगे तो कौन सी समस्या का हल? लोटा कौन सा, जल कौन सा, भांग कौन सी, धतूरा कौन सा, आखा कौन सा, बिल्वपत्र कौन सा? ये जितनी वस्तुओं के नाम मैं ले रहा हूं, शिव पुराण के अनुसार ये सारी वनस्पति, सारी धातुएं, सारे रत्न भगवान शिव के तेज से ही प्रकट हुए। इसमें आपने बिल्वपत्र तोड़ा, बाहर से शिव के ऊपर चढ़ा दिया, आपके अपने पास से क्या गया? ये विचार करिए। धर्म इतना सस्ता नहीं है साहब जितना सस्ता हमने बना दिया। आप बताइए इस पूजा पद्धति में कितना पैसा खर्चा होता है? 100 रुपए, 200 रुपए? आपका धर्म 200 रुपए में हो जाता है? इतना सस्ता मेरा धर्म तो नहीं है, तपस्या है। और आपको ये विचार करना पड़ेगा कि जल कौन सा हो, नारियल कौन सा हो, भांग कौन सी हो। शिव, जिस शिव ने, आप विचार करो एक बार, जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए कालकूट हलाहल विष का पान कर लिया था, उन्हें तुम्हारी भांग क्या नशा देगी? हमने अपने स्वार्थ में शिव को गंजेड़ी बना दिया, भंगेड़ी बना दिया। आप विचार तो करो कि हम क्या थे और क्या हो गए। इसलिए मेरा कहना है कि संत समाज, गादीपति, धर्म की गादी पर जो लोग बैठे हैं वो लोग, विज्ञान के उन सूत्रों को जो हमारे धर्म के आवरण में लिपटे हुए हैं, उस धर्म के आवरण को खोलकर वो विज्ञान के सूत्र इस युवा पीढ़ी को दें, तो ये युवा पीढ़ी सनातन की ओर अपने आप बढ़ जाएगी, अपने आप आ जाएगी।
1: यही इस बार कुंभ का संदेश होगा। हालांकि इस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन वापस कुंभ पर ही आऊंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल सरे से आ रहे हैं। सरकार से क्या उम्मीदें करता है संत समाज कुंभ की जब हम बात करते हैं?
3: सरकारों से हमारी अपेक्षा ये है कि वास्तविक धर्मावलंबियों को वो जानती है, वो समझती है। धर्म का उद्भव होता है चार वेद, 18 पुराण, 108 प्रमुख उपनिषद, स्मृतियां, और चारों लक्षण तब परिपूर्ण होते हैं जब जाकर के हम उसको धर्म को धर्म कह पाते हैं। मनुस्मृति में लिखा है, वेद स्मृति सदाचार स्वच्छ से प्रियात्मन एतत् चतुर्विधं प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। वेदों में हम सबकी रुचि पैदा करनी होगी, स्मृतियों के ऊपर। जैसे कहा महाराज जी ने, साइनाइड खाने से हम मर जाते हैं, आफ्टर अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट हैव प्रूवन इट। हम चखते हैं क्या साइनाइड? कभी नहीं चखते, क्योंकि सैकड़ों ऋषि मुनियों ने स्मृतियां लिख दी, वो स्मृति सिद्धांत बन गए। उन सिद्धांतों पे आप भरोसा करिए, सत्ताओं को और जनता को हमेशा भरोसा करना होगा।
1: महाराज जी ने बहुत अच्छे से, आपने भी एक्सप्लेन किया कि सिंहस्थ क्या है, उसकी परिभाषा आपने बताई। कुंभ यदि संतों के लिए है तो आम जन इसको किस नजरिए से देखे, कैसे इसको ले, ताकि मर्यादा भी खंडित ना हो?
0: बिल्कुल, आज आम जन के लिए यही संदेश है। जिस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूंगा कि एक यूनिवर्सिटी में कई विषयों पर अध्ययन शोध होता है। उस यूनिवर्सिटी में कई विषयों के अलग अलग प्रोफेसर्स होते हैं, और एक एक बैच में, एक एक क्लास में, एक एक विषय के 50-50, 60-60, 100-100 बच्चों का एक एक बैच होता है, और प्रत्येक बच्चा पढ़ते हुए यूनिवर्सिटी में जाकर के एक मानद उपाधि लेता है, जिसको हम आज के आधुनिक भाषा में दर्शन पर लेते हैं तो उसको PhD कहते हैं, दर्शन शास्त्र। और दर्शन का अभिप्राय ही इतना है, जैसे कि पूज्य स्वामी जी भी डॉक्टरेट किए हुए हैं। तो जब आप थ्योरी लिखते हैं और उस पर लेक्चर भी देते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का थीसिस, प्रत्येक बच्चा का जो शोध होता है अपने प्रोफेसर के मार्गदर्शन में, वो बिल्कुल अलग अलग होता है। उदाहरण के तौर पर केवल संस्कृत में अगर शोध कोई व्यक्ति कर रहा है और 100 बच्चे शोध कर रहे हैं, तो सबकी थीसिस अलग अलग होती है। इस विषय में प्राचीन काल में हमारे संतों ने यह बात कही है कि श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नैको मुनयस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः स्वपंथा। हम आम जनमानस को यही कहना चाहेंगे कि रास्ता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति के स्थिति ऐसी है कि श्रुतिर विभिन्ना, श्रुतिर ग्रंथ कहते हैं वेदों को, वेदों के जो विचार हैं वो भिन्न भिन्न है। यजुर्वेद में, साम वेद में, अथर्व वेद की विचारधाराओं में भिन्नता है। पुराण 18 हैं, इन 18 पुराणों में भिन्नताएं हैं। प्रत्येक पुराण अपने अपने विषयों का प्रतिपादन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे गुरुजन, जो प्रोफेसर्स हैं, गुरुजन हैं, ये अलग अलग विषयों का प्रतिपादन करते हैं। जो श्रुतिर भिन्नता की बात करते हैं, वेदों में भिन्नता है, पुराणों की बातों में, व्याख्यानों में भिन्नता है। हमारे ऋषि मुनि के कहे हुए वचनों का कोई एक प्रमाण नहीं है। सब अपने अपने विषय के शोध करता है, अपने अपने विषय के प्रतिपादन करने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जो नासमझ हैं, जो कम बुद्धि वाले हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में विचार करते हैं, कहते हैं कि शिव महापुराण की तो अलग कथा है, विष्णु पुराण में अलग कुछ कहा है, इनके आपस में ही मतभेद हैं। शिव जी की अलग प्रथा है, राम की अलग प्रथा है, कृष्ण की अलग प्रथा है। तमाम मतपंथ संप्रदायों में हम नित्य बटते जा रहे हैं और मतपंथ संप्रदाय अलग अलग बातें करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो कमजोर विचार के व्यक्ति हैं, वो किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, अर्थात क्या करें क्या न करें, उहापोह में फंस जाते हैं। व्यक्ति को करना क्या है? तो शास्त्र कहता है धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम, जो धर्म का तत्व है गुफाओं तक निहित हो गया है। तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए, पंथाह किम, रास्ता क्या है? तो ये एक बात आती है, एक ही वाक्य में उन्होंने सारे समस्याओं का हल कर दिया कि महाजनो ये न गतः स्वपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। सबको एक होने का और एकीकृत करने का यह समागम कुंभ महापर्व है। ऐसे सिंहस्थ महाकुंभ में हम सभी मिलजुल करके अपना पार्टिसिपेट करें, अपना भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ चढ़ कर करें। धन्यवाद और साधुवाद है आपको जो आपने धर्म पर चर्चा करके, धर्म संसद बना करके और हमारे अवंतिकापुरी को मानस भारत नहीं अपितु विश्व में एक नया स्थान दिए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। क्यों? क्योंकि यही कहूंगा कि हमारा अवंतिका तीर्थ, हमारा महाकाल की नगरी कल्याण की नगरी है और यहाँ आने के बाद अगर कल्याण नहीं हुआ, अर्थात हमारे जीवन में आत्म शांति आत्मानुभूति नहीं हुई, तो समझिए कि अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी।
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज यहाँ पर आज तक धर्म संसद में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8:00 गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या है रुद्राभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक के क्या हैं विधान, और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
4: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
5: गुजरात के सापुतारा में मेघ मल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5,00,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली NCR के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पे और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी और सच्ची खबर। अच्छी खबर और सच्ची खबर में आज बात सावन और कावड़ यात्रा की करेंगे। सावन के पावन महीने जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उमंग जोर पकड़ने लगी है। हरिद्वार की राह पर कावड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, लाखों की संख्या अब तक करोड़ों तक जा पहुंची है। नए नए अंदाज में, नए तौर तरीकों के साथ शिव भक्त कावड़िए लिए गंगा घाट जा रहे हैं और वहां से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कावड़ियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, उनके हर सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कावड़ियों का स्वागत किया और उन पर पुष्प वर्षा की, जबकि सहारनपुर में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। बागपत में भी कावड़ियों पर जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। दिल्ली में CM रेखा गुप्ता ने कावड़ियों की आरती उतारी और उनका फूल से स्वागत किया। कावड़ यात्रा में भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। किसी ने भगवान शिव का रूप धरा है तो कोई अपने नंदी अपने आप को बता रहा है, तो कोई गौरक्षा का संदेश लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। चूंकि शिवरात्रि पास है इसलिए डाक कावड़ यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से जारी है। डाक कावड़िए हरिद्वार पहुंच गए हैं, बस इंतजार उस घड़ी का है जब वो गंगा जल लेकर निकलेंगे और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। अम्बाला के जलाल पिछले 10 साल से कावड़ यात्रा पर निकलते हैं और अपने साथ 3 किलो का घंटा लेकर चलते हैं। इसी घंटी की आवाज के चलते लोग उन्हें भोले के नंदी कहकर बुलाते हैं। ब्रजलाल का कहना है कि ये घंटी अब उनकी पहचान बन चुकी है। कुछ शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपनी टोली के साथ बागपत जिले के शाहपुर बड़ौली गांव के लिए रवाना हुए हैं। करीब 180 किलोमीटर के सफर के दौरान कुछ कावड़िए अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर चल रहे हैं, जिसे वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद ही खोलेंगे। सहारनपुर में भी ऐसी एक कावड़िए की टोली दिखाई दी जिन्होंने कावड़ों को जोड़कर गौरक्षा कावड़ का भव्य स्वरूप बनाया है। हरियाणा के पंचकुला से आए इन कावड़ियों का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मंशा का संदेश देना है। कावड़ यात्रा मार्ग पर आस्था, संकल्प और सेवा की अनूठी मिसालें देखने को मिल रही हैं। काजल चौधरी दिल्ली के शाहदरा में रहती है। ये अपनी 90 साल की सास को लेकर हरिद्वार से शाहदरा तक पैदल यात्रा पर निकली है। काजल अपनी सास को वृंदावन की 84 कोस परिक्रमा भी करा चुकी है। इसके बाद अब उन्होंने हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा तक पैदल यात्रा का संकल्प लिया है। हापुड़ के आसोड़ा गांव के शिव भक्तों की टोली के करतब देख लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे। थीम है कावड़ लेकर चल रहे इन कावड़ियों की भगवान भोलेनाथ की बारात, अघोरियों का तांडव, शिव गणों की झांकी और आग उगलते कलाकारों की प्रस्तुति देख लोग हैरान हो रहे हैं। सहारनपुर में कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए हर साल कई विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस बार हाईटेक शिविर बनाई गई है जिसकी डीजे नाइट श्रद्धालुओं के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। यहाँ हाई प्रोफाइल साउंड सिस्टम, आकर्षक लाइटिंग और भगवान शिव के भजन की मधुर धुनों के बीच कावड़िए अपनी कई 100 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थकान भूल जा रहे हैं। जैसे ही शाम ढलती है पूरा शिविर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है और भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। सहारनपुर में भी उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें 21 मसाज मशीन्स के साथ 6 डॉक्टर्स की टीम तैनात है। यात्रा के दौरान इलाज से लेकर समाज और मसाज तक की सुविधा कांवड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही है। सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बांदा और आसपास के इलाकों से श्रद्धालु कांवड़िए चित्रकूट से जल लेकर अपने क्षेत्रों में भोले बाबा को अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। वहीं बहुत से कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए भी रवाना हो रहे हैं। इस दरमियान सावन में कांवड़ यात्रा के कई खास रंग देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए खास रिपोर्ट।
6: सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह शिव भक्तों में देखते ही बनता है। सनातन के रंग में रंगीन कांवड़ियों में बच्चे भी हैं और युवा भी। कोई धनुष की शक्ल वाली कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई आदि योगी भगवान शिव की झांकी के साथ आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा की हैं। शिव भक्ति में सराबोर सैकड़ों की संख्या में कांवड़े यहां से नाचते झूमते चित्रकूट जा रहे हैं। शहर में जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए। घोड़े पर सवार नारी शक्ति कांवड़ियों के इस कारवां की अगुवाई करती नजर आई। शहर के कई चौराहों पर शिव भक्तों का जोरदार स्वागत हुआ। जिन बुलडोजर का इस्तेमाल तोड़फोड़ और विध्वंस में होता है उनसे यहाँ पर शहर से गुजर रहे कांवड़ियों के जुलूस पर फूल बरसाए गए। भगवान श्री राम के तपोस्थली चित्रकूट से मंदाकिनी नदी का जल लेकर लौटने के बाद कांवड़िए बांदा में केन नदी के किनारे बाम्बेश्वर पर्वत की एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान वामदेव शिव मंदिर में जल अर्पित करेंगे।
7: कहाँ जा रहे हो कांवड़ लेके? क्या करोगे वहाँ से?
6: उत्तर प्रदेश के बांदा और आसपास के इलाकों में लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए मंदाकिनी नदी का जल लेने धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच रहे हैं। अलग अलग समूहों में कांवड़िए पवित्र जल लेकर भगवान कामनाथ के दर्शन करते हुए अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
8: लगभग 80 किलोमीटर की दूरी को यह कांवड़िया तय करेंगे, जो अपने ग्रुप में लगभग ये 500 लोग है जो एक साथ होकर के यहाँ से यह चित्रकूट पहुंचे हैं और यहां से जल लेकर के बांदा के लिए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांवड़ियां हैं वह अपने कंधों पर कांवड़ लेकर के जल लेकर के पैदल जा रहे हैं और इनके घुंघरू भी पैरों पर बंधे हुए हैं, एक साथ बोल बम के नारे लगाते हुए बांदा के लिए निकल चुके हैं। और
6: यहाँ पर कांवड़ यात्रा में भगवान शिव की सुंदर पालकी भी साथ चल रही है। भगवान शिव के जयकारे और बोल बम के नारे लगाते हुए बिना थके आगे बढ़ते कांवड़िए भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, तपस्या, आत्मसंयम और समर्पण की अनूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं।
9: हम लोग फिलहाल जो हमारे ग्रुप है 9 सालों से बराबर करता चला आ रहा है।
10: तो क्या आस्था है, क्या मनोकामना है आप लोगों की?
9: जो है मनोकामना बच जाइए, साल में एक बार सावन आता है इसीलिए हम लोग उत्सव मनाते हैं।
11: हम लोग मौदा से आए हुए चित्रकूट धाम आने हैं, और आलोक धाम से पानी भरा हुआ है। अब हम जाएंगे मौदा के लिए।
12: यस
11: बांदा में अपना स्थान है, अभी बांदा की कमेटी है और हम लोग मौदा गए, पूरी कमेटी हमारी मौदा जाएगी।
13: कहाँ जल करेंगे अर्पिता? उसको
11: जल करेंगे हम मौदा में, हमीरपुर जिले में, और हमारा बड़ी देवी मंदिर है, माना हुआ मंदिर है मौदा में, उसमें आप सम्मिलित करेंगे।
6: जहाँ एक और सावन में लाखों शिव भक्त भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, वहीं इस दरमियान श्रद्धा, सेवा और संस्कार की शानदार तस्वीर एटा में भी देखने को मिली। चार युवकों ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अनोखी कांवड़ यात्रा शुरू की है। बेटों ने कांवड़ में एक और पिता को बैठाया और दूसरी ओर करीब 155 लीटर गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू की। ये यात्रा सोरों से गंगा जल भरने के बाद शुरू हुई और अब श्रद्धा, सेवा और समर्पण का संदेश देती हुई आगे बढ़ रही है। लोग पिता की सेवा और परिवार के प्रति समर्पण की मिसाल के रूप में इनकी सराहना कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा दिखाई दे रहा है। यहां से ट्रेन पकड़कर शिव भक्त कांवड़िये देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। ऐसे में पूरा माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। बहुत से कांवड़ियों ने पहले वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया और इसके बाद अब बाबा वैद्यनाथ धाम को जल अर्पित करने जा रहे हैं।
14: पूरी तरह से यहां पर जैसे ही ट्रेन आती है पूरा माहौल भगवामय हो जाता है और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग बस एक ही मन में उद्देश्य और उल्लास लिए हुए बाबा धाम की तरफ कूच करते हैं, देवघर जाते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ है जो ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हो रही है। ब्रह्मपुत्र मेल से ये तमाम कांवड़िये जो है वो सुल्तानगंज जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, और वहां से जल लेकर के पैदल यात्रा करेंगे देवघर तक की।
6: सावन का पावन महीना चल रहा है तो हर तरफ श्रद्धा और भक्ति की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सावन के आखिरी सोमवार और उसके बाद रक्षाबंधन के अवसर पर सावन के समापन तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहने वाला है। चंदौली से उदय गुप्ता, एटा से दिवेश पाल सिंह, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर और बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुन्नूर टुडे।
5: समस्तीपुर में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में महिलाओं ने भक्ति, उमंग और उल्लास के रंग बिखेरे। हरे परिधानों में सजी महिलाओं ने कजरी और सावन के लोकगीतों पर नृत्य किया। मेहंदी, झूले और रंग बिरंगे छातों के साथ फैशन शो भी आकर्षण का केंद्र रहा। भोले की भक्ति, गीत संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन को भक्तिमय बना दिया।

0: सावन की हवा जब फिजाओं में घुलती है तो माहौल अपने आप भक्तिमय हो जाता है। हर तरफ हरियाली, चेहरे पर मुस्कान और दिल में भोलेनाथ की भक्ति। समस्तीपुर में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां सावन की मस्ती में महिलाएं इस कदर रंगी नजर आई कि पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। किसी के कदम गीतों की धुन पर थिरक रहे थे तो कोई अपने हाव भाव से प्रस्तुति में रंग भर रहा था। सजी धजी महिलाओं की खूबसूरत पोशाक, हाथों में मेहंदी और चेहरे के मुस्कान सावन की खुशियों को बयां कर रही थी। दरअसल सावन के पावन महीने में मारवाड़ी समाज के साथ दूसरी महिलाओं की टीम ने शहर के एक हॉल में सावन महोत्सव का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम में पहुंचने वाली महिलाओं का मुख्य द्वार पर सुहाग सामग्री देकर स्वागत किया गया, जिसके बाद शुरू हुआ गीत संगीत और मनोरंजन का सिलसिला। कहीं पारंपरिक कजरी की मिठास सुनाई दी तो कहीं सावन के लोकगीतों पर सामूहिक नृत्य ने समा बांध दिया।
1: वन साल पूरा माहौल बन जाए, हरियाली चारों तरफ हो जाए, वो मौसम है सावन का, ऋतु है सावन की, जिसमें चारों तरफ हरियाली में मोर नाच उठते हैं, वैसे ही सावन उठते हम सखीरी नाच उठते हैं। सावन जैसा कोई मौसम नहीं, इसमें तो माँ पार्वती भी अपने शिव के संग नाच उठती है। जिस तरह सारी दुनिया सावन का उत्सव मनाती है, उसी तरह हम भी सावन का उत्सव मनाने यहाँ कैफे कनेक्शन में इकट्ठा हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ही तरह सबको ही सावन उत्सव मनाए और अपने सखियों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करे और उल्लास के साथ रहे। और हम भोले बाबा से ये आशीर्वाद की भी कामना करते हैं, जिस तरह से माँ गौड़ा पार्वती को शिव का साथ मिला, उस तरह हमारे हस्बैंड का हमेशा मेरे साथ साथ बना दें।
0: रंग की साड़ियाँ और आकर्षक परिधानों में सजी महिलाएं मानो सावन की हरियाली को अपने साथ लेकर आई हों। हाथों में रंग बिरंगे छाते लिए फैशन शो में भी जलवा दिखाया गया। सुरों में सावन की कहानी थी तो कदमों में उमंग। खास गानों पर महिलाओं ने एक्सप्रेशंस के साथ ऐसी प्रस्तुति दी कि मौजूद लोगों की नजरें थम गई। उत्सव में सिर्फ मंचीय कार्यक्रम ही नहीं, मेहंदी, झूले और गीतों का भी इंतजाम किया गया था। सखियों के साथ झूले की पेंग बढ़ी, हथेलियों पर मेहंदी सजी और हंसी ठिठोली के बीच खुशियां बांटी गई।
2: समस्तीपुर कैफे कनेक्शन में हम सभी महिलाएं इकट्ठे हुए हैं सावन उत्सव मनाने के लिए। ये सावन जो है, ये सावन अति पावन शंकर भगवान का दिन है। इसी ऋतु को मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ताकि जैसे सावन में शिव पार्वती भगवान रहते हैं, उसी प्रकार हम भी उसी उल्लास से यहाँ मनाने आए हैं। क्योंकि सावन जो है सिर्फ ऋतु ही नहीं, बल्कि हरियाली, उमंग, उत्सव और नई उम्मीदों का उत्सव है। ये इसी को मनाने के लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाहेंगे कि हर वर्ष हम लोग इसी तरह, इसी उल्लास के साथ हम लोग यहाँ पे समस्तीपुर में सावन उत्सव मनाते रहें, और भोले बाबा शंकर भगवान की कृपा हम सब पे इसी तरह बरसते रहे, हम लोग इसी तरह हंसी खुशी सब लोग रहे।
0: इस आयोजन के पीछे सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सावन की परंपरा और प्रकृति के प्रति आस्था भी जुड़ी रही। महिलाओं ने भोलेनाथ से हर परिवार में सुख, शांति और जीवन भर हरियाली बने रहने की प्रार्थना की। सावन भगवान शंकर की आराधना में लीन होने का पावन समय है। इसी भावना को महसूस करने के लिए महिलाएं एक साथ जुटी, क्योंकि सावन का मौसम केवल ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि उमंग, उल्लास और नई उम्मीदों का संदेश लेकर आता है। वहीं महिलाओं ने अपनी मधुर प्रस्तुति से महफिल में भक्ति का रंग घोल दिया। उनके गीतों में सखियों की बातचीत थी, सावन की सुंदरता थी और शिव के प्रति समर्पण का भाव भी। सातों श्रृंगारों से सजी महिलाएं हरे परिधान की छटा, झूले की पेंग, मेहंदी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और महादेव का नाम, इन सभी रंगों ने मिलकर समस्तीपुर के इस आयोजन को यादगार बना दिया। समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां के एकमात्र हिल स्टेशन सापूतारा में मॉनसून फेस्टिवल का शुभारंभ हो गया है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां हर साल इस उत्सव का आयोजन होता है। पर्यटक भी इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस उत्सव में देश के करीब 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकार भाग ले रहे हैं और आज से ही इस उत्सव का रंग देखने को मिलने लगा है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकियां आकर्षण का केंद्र बन रही हैं। आपको बता दें कि 2009 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सापूतारा में मॉनसून फेस्टिवल की शुरुआत की थी। आज भी ये फेस्टिवल उतने ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। बारिश के सुहाने मौसम में प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज आदिवासी संस्कृति और परंपरागत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चलते सापूतारा का मॉनसून फेस्टिवल पर्यटकों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। और चलिए अब खबर देख लेते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम की तीर्थ यात्रा पर भी सावन का रंग चढ़ चुका है। वैसे तो सावन में बहुत से श्रद्धालु गंगा जल लाने गंगोत्री जाते हैं और भोले बाबा के भक्त कांवड़ लेकर केदारनाथ धाम भी जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। आपको दिखाते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पावन सावन के रंग।

0: सावन के पावन महीने में बाबा केदारनाथ के धाम पर रौनक देखते ही बनती है। पूरी केदारनाथ घाटी में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और कांवड़ यात्रियों की मौजूदगी से बाबा केदारनाथ की नगरी में इन दिन अभूतपूर्व आध्यात्मिक माहौल है। समय समय पर हो रही बारिश के कारण मुश्किलें भी आती हैं। बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई है, परंतु कठिन परिस्थितियों के बीच भी भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा पर निकल रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के बावजूद लगातार आम श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: आजकल मॉनसून के कारण कई जगह कई बार मलबा और पत्थर आने की भी स्थिति बन रही है, जहां पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम्स हैं और जो SDRF है वो लगातार कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ JCB और अन्य उपकरण भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार मलबे और पत्थर को हटाया जा रहा है और ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कराई जा सके।
0: अब तक 14,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं इन दिनों कांवड़ यात्रा के कारण यहां श्रद्धालुओं की तादाद और बढ़ गई है। यात्रा मार्ग से लेकर सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम तक खास चहल पहल दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या का असर सोनप्रयाग की पार्किंग पर भी साफ नजर आ रहा है। पार्किंग कांवड़ यात्रियों की गाड़ियों से लगभग पूरी तरह भरी नजर आ रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है।
1: देखिए, सावन के महीने में और कांवड़ के दृष्टिगत श्री केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसमें हमारे द्वारा लगातार वहां पर पुलिस बल मौजूद है, जो यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कार्यबद्ध है और वहां पर कार्य कर रहा है।
0: सावन के रंग बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर हर तरफ मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक कोना कोना श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा है। वैसे तो बीते वर्षों में भी कांवड़िए सावन में बद्रीनाथ धाम पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार यहां इनकी संख्या में जबरदस्त इजाफे से नया ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बरसात के इस मौसम में बद्रीनाथ धाम में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार खास तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी चार धाम यात्रा का पीक सीजन चल रहा है। मौसम और भारी लोगों की आस्था को देखते हुए आने वाले दिनों में भी यहां पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ रिपोर्ट कोनिस्टरे।
2: और अब बात गणपति उत्सव की। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव अगले महीने मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करीब सवा महीने पहले ही गणपति पधार चुके हैं और लोगों में उत्साह उल्लास नजर आने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कोल्हापुर की है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से ढोल ताशे बजाकर बेहद शानदार भक्तिमय माहौल में गणपति की अगवानी की जा रही है। गाजे बाजे के साथ गजानन भगवान गणेश को कोल्हापुर शहर में लाया जा रहा है। वैसे तो इस बार गणपति उत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में तभी बाप्पा का आगमन होगा, लेकिन कोल्हापुर में विघ्नहर्ता परंपरा से हटकर एक महीने पहले ही पधारे तो क्या आम और क्या खास, तमाम लोग उनके दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों की उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: कोल्हापुर में भी मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के ही समान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा से श्रद्धालु मुंबई जाने के बजाय यहीं पर बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। 14 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण लालबाग के वर्कशॉप में शिल्पकार संतोष रत्नाकर कामले ने किया है। लालबाग से शुक्रवार की शाम को यहां प्रतिमा कोल्हापुर लाई गई, तो पुणे बेंगलोर हाईवे पर ही चौक पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ स्वागत किया। कोल्हापुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अब यहां गणपति पधार चुके हैं तो उन्हें विधि विधान से पंडाल में विराजित भी किया जाएगा और इस साल भी लोग एक बार फिर से विनायक की आराधना में डूब जाएंगे। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुजरात के गीर और उसके आसपास के इलाकों में शेरों का दिखाई देना अब आम बात बन चुकी है। शेरों का परिवार सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है। गुजरात के गीर सोमनाथ के बीच सड़क पर चार शेरों ने रास्ता रोक लिया, अपना कब्जा जमा लिया। तभी एक बस वहां से गुजर रही थी, बस ड्राइवर ने बस रोक दी और इस रोमांचक पल को बस यात्रियों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शेर और दो शेरनियां दिन के उजाले में सड़क पर आ गए हैं। शेरों को देखकर राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोक दी और पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वन विभाग को खबर मिली तो टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात रोक दिया गया। शेरों को सुरक्षित के बीच सड़क पर चार शेरों ने रास्ता रोक लिया, अपना कब्जा जमा लिया। तभी एक बस वहां से गुजर रही थी, बस ड्राइवर ने बस रोक दी और इस रोमांचक पल को बस यात्रियों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शेर और दो शेरनियां दिन के उजाले में सड़क पर आ गए हैं। शेरों को देखकर राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोक दी और पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वन विभाग को खबर मिली तो टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात रोक दिया गया। शेरों को सुरक्षित सड़क पार कराई गई। और तीसरी तस्वीर जूनागढ़ की एक गांव की है, जहां रात के अंधेरे में दो शेर ऐसे घूम रहे हैं मानो किसी अनजान नहीं बल्कि जानी पहचानी जगह में घूम रहे हों। शेरों को देखते ही आसपास मौजूद डॉगीज ने भी भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों की आवाज सुनकर दोनों शेर वापस जंगल की ओर चले गए। वन विभाग का कहना है कि यदि शेरों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए और उन्हें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दिया जाए तो वे आमतौर पर खुद ही अपने रास्ते जंगल की ओर चले जाते हैं। शेरों का पीछा करने या परेशान करने से ही हालात गंभीर हो जाते हैं। बंदूक की राह छोड़कर अब हुनर और आत्मविश्वास के साथ नई पहचान बना रही हैं महिलाएं। जी हां, कभी नक्सलवाद से जुड़ी रही 9 महिलाओं ने रायपुर में पहली बार रैंप वॉक किया। मौका था राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इन महिलाओं ने बस्तर की पारंपरिक हथकरघा पोशाक पहनकर फैशन शो में हिस्सा लिया। फेमिना मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 अनुष्का सेन के साथ जैसे ही महिलाएं रैंप पर उतरी, पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। करीब एक महीने पहले तक जिन महिलाओं में झिझक नजर आ रही थी, आज उनके कदमों में गजब का आत्मविश्वास दिखा। हथकरघा, हस्तशिल्प और मिट्टी कला से जुड़कर ये महिलाएं आत्मनिर्भरता की नई राह पर आगे बढ़ रही हैं। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त,

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे रुद्राभिषेक की। रुद्राभिषेक क्या होता है, इसको करने के नियम क्या हैं और इससे लाभ किस तरह के होते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 11

शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, जैसा कि गीतिका ने कहा कि सावन के महीने में बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और सामान्य जीवन में भी आवश्यकता के अनुसार रुद्राभिषेक करवाते रहते हैं। आखिर ये रुद्राभिषेक होता क्या है? रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र शिव का प्रचंड स्वरूप है। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रह बाधाओं का, समस्त समस्याओं का नाश किया जा सकता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जब मंत्रों के साथ अलग अलग वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं तो इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। इसमें शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन में अगर कोई कष्ट आए या ग्रहों की बाधा आए, ग्रहों की पीड़ा आए, तो उसको दूर करने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। जीवन में रक्षा के लिए और कष्ट को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक अमोघ माना जाता है। मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यात्रा की स्थिति बन रही है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। धन की प्राप्ति होगी। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। पारिवारिक उलझने परेशान करेंगी। शांति और धैर्य बनाए रखें। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, दुनिया भर में अलग अलग तरह के शिवलिंगों की पूजा की जाती है।

प्रकार के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए? मंदिर के शिवलिंग पर जो प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित किया गया है उस पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी के तट पर और नदी के तट से ज्यादा पर्वतों पर रुद्राभिषेक फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। रुद्राभिषेक बहुत सारे पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से अभिषेक करने के फल अलग अलग होते हैं। जैसे घी की धारा से अगर अभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है। इक्षुरस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कुंडली के और जीवन के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर पुरानी से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और गाय के दूध से अभिषेक करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। शक्कर मिले हुए जल से अभिषेक करने पर संतान प्राप्ति सरल हो जाती है और भस्म से अभिषेक करने पर व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सरसों के तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है। सामान्य स्थितियों में मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परिवार में शुभ कार्य होगा। धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, अतिथि का आगमन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं। गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, रुद्राभिषेक का एक नियम है, अलग अलग तिथियों में शिव जी की अलग अलग उपस्थिति होती है, तो रुद्राभिषेक के लिए
शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, नहीं तो इसके परिणाम उल्टे हो सकते हैं, काफी खराब हो सकते हैं। एक बात जरूर समझिए कि शिव जी का निवास देखना तभी आवश्यक है जब मनोकामना पूर्ति के लिए आप अभिषेक कर रहे हों। केवल भक्ति के लिए, केवल शिव जी की कृपा पाने के लिए बिना कामना के अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उसमें शिव जी का निवास देखना आवश्यक नहीं है। देखिए, शिव जी का निवास जब मंगलकारी होता है तब आप मनोकामना के साथ सकाम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कब मंगलकारी होता है? प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन शिव जी माँ गौरी के साथ होते हैं। ये उनका निवास मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी पर शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है और जब उनका निवास मंगलकारी होता है तब आप कामना के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, करियर की समस्या हल होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखें। अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर शिव जी का निवास अनिष्टकारी है तो उन तिथियों में आप सकाम यानी मनोकामना का रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कब अनिष्टकारी होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव
श्मशान में समाधि में रहते हैं, ये समय अच्छा नहीं होता। कृष्ण पक्ष की द्वितीया नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं, ये स्थिति भी कल्याणकारी नहीं होती। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी में भगवान शिव यानी नटराज क्रीड़ा में रहते हैं, क्रीड़ा रत रहते हैं, ये निवास भी मंगलकारी नहीं है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव भोजन करते हैं, ये तिथि भी अनुकूल नहीं है। इन तिथियों में सकाम रुद्राभिषेक, मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता। देखिए, शिवलिंग पर आप कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं वो अभिषेक नहीं होता। शिवलिंग पर जब मंत्रों के साथ वस्तुएं अर्पित की जाती हैं तब उसको अभिषेक कहते हैं। आप अगर मंत्रों के साथ जल अर्पित करेंगे तो उसको जलाभिषेक कहा जाएगा, बिना मंत्रों के वस्तुएं अर्पित करने को अभिषेक नहीं कहते। अगर आपकी संतान बीमार रहती हो, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो तो क्या करेंगे? महीने में प्रदोष का व्रत अवश्य रखें। रोज सुबह और शाम अपनी संतान के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने संतान के नाम से, बच्चे के नाम से सार्वजनिक स्थान पर 1, 2, 3, 4 जितना भी कर सकें बरगद के वृक्ष लगवा दें। ऐसा करने से संतान के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
1: सावन के पावन महीने में कावड़ यात्रा मार्ग पर हर कदम पर बोलबम का जय घोष है। भगवान भोले शंकर के भक्तों की भक्ति है और हर ओर आस्था के बिखरे अनेक रंग हैं। कंधों पर पवित्र गंगा जल की कावड़ लिए शिव भक्त शिवालय की ओर बढ़ रहे हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। पवित्र कावड़ यात्रा से जुड़ी हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में कावड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री के साथ मंच पर मेरठ के सांसद अरुण गोविल भी शामिल रहे। इससे पहले सीएम ने हेलीकॉप्टर से कावड़ मार्ग का सर्वेक्षण किया और मार्ग से गुजर रहे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। पुष्प वर्षा के दौरान पूरा कावड़ मार्ग हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। तो वहीं बागपत में जिला प्रशासन ने शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। तो वहीं बिजनौर में चल रही सावन माह की कावड़ यात्रा में कुछ खास कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जिसमें लखनऊ में बनने वाले ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल कावड़ और इसी के साथ 100 मीटर लंबी तिरंगा कावड़ भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये दोनों कावड़ शिवभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का संदेश भी दे रही है।

0: इंग्लैंड के ब्रिस्टल में आसमान उस वक्त रंगों से भर गया जब सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर एक के बाद एक हॉट एयर बलून उड़ान भरते नजर आए। मौका था ब्रिस्टल इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का, जहां रंग बिरंगे गुब्बारों ने शहर के आसमान को किसी खूबसूरत कैनवस में तब्दील कर दिया। देखिए शानदार नजारा, कहीं लाल कहीं पीला तो कहीं नीले और नारंगी रंग के हॉट एयर बलून। एक एक करके बलून जमीन से आसमान की ओर रवाना होते रहे। नीचे खड़े लोगों के लिए यह सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि आसमान में रंगों का एक चलता फिरता उत्सव था। आसमान में उड़ते बलून और नीचे से उन्हें निहारते लोगों की भीड़, ब्रिस्टल का पूरा माहौल किसी फिल्मी नजारे जैसा लग रहा था। ब्रिस्टल इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल हर साल 3 दिन के लिए आयोजित होता है, जिसमें 100 से ज्यादा हॉट एयर बलून आसमान की शोभा बढ़ाते हैं।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
0: गुजरात के सापुतारा में मेघ मल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों ने लिया रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने हर की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला आप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली NCR के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्ज़र तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्ज़र को भारत की सीमाओं के पास डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई, ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका। और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं, भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती हुई इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे, पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्जर लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर यह है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्जर को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्जर को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्जर तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्जर भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए, आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी कि फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेजी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155 mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155 mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे SH-15 का बम निकलता है स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइट वेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वहीं SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है, जिसकी वजह से ये भारत की आर्टरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी 5 राउंड तक 30 से 60 सेकंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर्स से भी ज़्यादा तेज है, और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती
4: है। क्या है शिव जी के अभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक करने के क्या है नियम, रुद्राभिषेक का क्या है विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: इंडियन आर्टिलरी का एक ताकतवर हथियार है पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इसके एक्सटेंडेड रेंज का यूजर ट्रायल यानी सेना में शामिल होने से पहले का अंतिम ट्रायल भी पूरा हो चुका है, यानी इसे जल्द ही अब सेना में शामिल किया जाएगा। स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका के एक्सटेंडेड रेंज की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। अब पिनाका ईआर की रेंज में दो गुनी बढ़ोतरी हुई है। सेना में पहले से तैनात पारंपरिक पिनाका बैटरीज की मारक सीमा 37 किलोमीटर थी, लेकिन अब एक्सटेंडेड रेंज के साथ ये 75 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है।
1: अगर दुश्मन 40 किलोमीटर से दूर है तो आर्मी के पास दुश्मन के ऊपर प्रहार करने का एक ही तरीका था, वो था कि एयरफोर्स को बुलाया जाए। लेकिन अब क्योंकि पिनाका रॉकेट जो है 75 किलोमीटर की दूरी तक फायर कर पाएगा, तो 75 किलोमीटर की दूरी तक जो दुश्मन के टारगेट होंगे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए आर्मी को एयरफोर्स को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, एयरफोर्स जो है वो दूसरी तरह के जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट है, डेप्थ में है, उनको एंगेज करने के लिए फ्री हो जाएगी।
0: नया पिनाका सिर्फ रेंज में नहीं बल्कि सटीकता और शक्ति में भी बेहतर हुआ है। भारतीय सेना के आर्टिलरी में शामिल पिनाका की बात करें तो पिनाका रॉकेट फ्री फ्लाइट है, यानी बस उसे लॉन्च किया गया तो वो अपनी रेंज 37 किलोमीटर के हिसाब से जाकर गिरेगा। लेकिन उसकी सटीकता इतनी नहीं थी कि ठीक निशाने पर हिट करे, ये एक एरिया वेपन के तौर पर है। एक्सटेंडेड रेंज गाइडेड पिनाका की बात करें तो ये गाइडेड रॉकेट जीपीएस नेविगेशन से लेस है। इस रॉकेट में लॉन्च से पहले ट्रेजेक्टरी और टारगेट प्रोग्राम किए जाते हैं। अगर किसी कारण से ये रास्ते से भटक जाए तो ऑनबोर्ड कंप्यूटर और जीपीएस मिलकर इसे सही रास्ते पर ला देते हैं। इसके अलावा इसमें आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम भी है, जो जीपीएस जाम होने या रुकने पर भी रॉकेट को टारगेट तक पहुंचाता है। इसकी सटीक मारक क्षमता की बात करें तो ये टारगेट के 25 मीटर के आसपास हिट कर सकता है, जो कि एक बेहतर रेंज है।
1: पिनाका रॉकेट सिस्टम का जो ये उन्नत वर्जन है, इसमें जीपीएस गाइडेंस लगा है और जीपीएस गाइडेंस की मदद से यह शत्रु के टारगेट के ऊपर महज प्लस माइनस 25 मीटर की एक्यूरेसी से गिर सकता है। और भी अच्छी बात यह है कि अगर दुश्मन जीपीएस गाइडेंस सिस्टम को, जीपीएस के सिग्नल्स को जैम कर दे तो इसके अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है, जो कि जीपीएस सिग्नल के फेल होने पर यह इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पिनाका को बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर ले जाकर प्रहार कर सकती है।
0: नया गाइडेड पिनाका आने से इसकी विनाशकारी शक्ति और बढ़ जाएगी। लॉन्च होने के बाद लॉन्चर अपनी जगह बदल लेते हैं और फिर से तैयार हो जाते हैं, जिससे दुश्मन का जवाबी हमला मुश्किल हो जाता है। अभी जो पिनाका सेना में शामिल है उसकी क्षमता की बात करें तो एक पिनाका बैटरी में 6 लॉन्चर होते हैं। हर लॉन्चर में 12 ट्यूब्स हैं, यानी कुल 72 रॉकेट, और ये सभी 44 सेकंड में दागे जा सकते हैं। अगर ये एक साथ चल जाएं तो दुश्मन के 1000x800 मीटर के इलाके को तबाह कर सकते हैं।
1: जब ये पिनाका लॉन्चर सिस्टम्स इंडियन आर्मी के आर्टिलरी यूनिट्स में पहुंच जाएंगे तो एक एक बैटरी में 6-6 लॉन्चर दिए जाएंगे। जाहिर बात है एक लॉन्चर में 12 ट्यूब होती है, तो जरूरत पड़ने पर जो बैटरी कमांडर है वो 12 गुणा में 6 यानी 72 पिनाका एडवांस मिसाइल सिस्टम दुश्मन पर फायर कर सकता है। यह फायर महज 44 सेकेंड के अंदर लॉन्च की जा सकती है।
0: कारगिल से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हर रणभूमि में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम शत्रु संहारक बनकर उतरा। पिनाका सिर्फ आत्मनिर्भर भारत का हथियार ही नहीं बल्कि भरोसा भी है, और ये भरोसा और दमदार होता जा रहा है। के सूत्रों के मुताबिक अब तक भारतीय सेना के पास पिनाका की 4 रेजिमेंट थी, जिन्हें बढ़ाकर 10 रेजिमेंट किया जा रहा है। इसके लिए मौजूदा 120 एमएम मोर्टार लाइट रेजिमेंट को ही अपग्रेड कर पिनाका रेजिमेंट में बदला जा रहा है। अब तक 2 रेजिमेंट बदले जा चुके हैं और अगले 2 साल में ये तादाद 10 हो जाएगी। लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाके में आर्टिलरी की काफी जरूरत होती है, वहाँ टैंक सफल नहीं हो पाते हैं, तोप ज्यादा कारगर मानी जाती है। हालांकि यहाँ तोप के साथ ये चैलेंज होता है कि एक गोला दागने के बाद दूसरा गोला दागने में करीब 20 सेकंड का समय लग जाता है। अगर दुश्मन ने रॉकेट से रैपिड फायर कर दिया तो परेशानी बढ़ सकती है। ऐसे में ताबड़तोड़ हमले के लिए तोपों के साथ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती की भी जरूरत होती है, जिसमें पिनाका के प्रहार का कोई जवाब नहीं।
1: किसी भी जमीनी युद्ध में सबसे पहले कमांडर की पसंदीदा वेपन होती है टैंक, लेकिन टैंक की एक लिमिटेशन है कि वह मात्र 3, 4 या 5 किलोमीटर तक अपनी मेन गन से एनिमी के टारगेट को एंगेज कर सकता है। इसी तरह से कमांडर अगर चाहे तो आर्टिलरी यानी तोपखाने का इस्तेमाल करके दुश्मन पर प्रहार कर सकता है, लेकिन आर्टिलरी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि जो वॉरहेड होते हैं वो छोटे होते हैं, और दूसरी बात है आर्टिलरी को टो करके दुश्मन के पास ले जाना पड़ता है, इसलिए समय लगता है। लेकिन पिनाका जो MBRL सिस्टम है वह ऑलरेडी एक टोइंग ट्रक के ऊपर स्थापित है, यानी ये महज कुछ मिनट के नोटिस पर ही शत्रु की तरफ वो जो इसका जो लॉन्चर है, जो ट्रेलर है, जो व्हीकल है, वो शत्रु की तरफ महज कुछ मिनटों में ही 10, 20, 30, 40 किलोमीटर अग्रसर होकर फिर पिनाका मिसाइल फायर कर सकता है, जो कि और 75 किलोमीटर जाकर दुश्मन पर प्रहार कर सकता है।
0: पिनाका लंबी दूरी का आर्टिलरी सिस्टम है, इसे नजदीक से युद्ध होने से पहले दुश्मन को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसे छोटी रेंज की आर्टिलरी, इन्फेंट्री और हथियारबंद वाहनों को निशाना बनाया जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसकी स्पीड Mach 4.7 यानी करीब 5800 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए इसे इंटरसेप्ट करना काफी मुश्किल है।
1: पिनाका मिसाइल लॉन्च होने के बाद ध्वनि की रफ्तार से 4 गुना 5 गुना स्पीड से टारगेट पर जाकर प्रहार करते हैं। इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि दुश्मन का कोई भी सर्विलेंस रेडार, फायर लोकेटिंग रेडार या जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है या एंटी एयरक्राफ्ट फायर करने का जो रेडार है वो इस पर ट्रैक नहीं कर सकता, लॉक ऑन नहीं कर सकता। इसके पहले कि दुश्मन के रडार को पता लगे कि पिनाका मिसाइल उसकी तरफ आ रहा है, उसके पहले ही पिनाका जाकर दुश्मन के सर के ऊपर जाकर फट जाता है।

0: पिनाका MK-1 एरिया डिनाइल म्यूनिशन रॉकेट सिस्टम, दूसरा है पिनाका MK-2 गाइडेड एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट एम्यूनिशन और तीसरा है इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांड। पिनाका MK-1 और पिनाका MK-2 बरसों से हिंदुस्तान की सेना के सबसे भरोसेमंद हथियार रहे हैं। इनसे दागे जाने वाले रॉकेट पर क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार भी लगाए जा सकते हैं।
1: भगवान शिव के धनुष पिनाका के नाम पर डेवलप किए गए इस मिसाइल सिस्टम को भारत और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर तैनात करने के मकसद से बनाया गया है। DRDO में बना पिनाका MK-1 एरिया डिनाइल एम्यूशन युद्ध क्षेत्र कई तरह से सेना के काम आ सकता है।
0: पिनाका एक्सटेंडेड रेंज भारत के लिए सिर्फ एक नया हथियार नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त और तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। इसकी तैनाती से भारत की सीमाओं की सुरक्षा और दुश्मन पर विध्वंसक स्ट्राइक करने की क्षमता में बड़ा बदलाव आने वाला है। आपको बता दें कि पिनाका के कई संस्करण तैयार हो चुके हैं जिसमें Mark 1 से लेकर Mark 3 शामिल हैं। रक्षा जानकारों के अनुसार पिनाका की स्पीड इसे बेहद खतरनाक बनाती है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जितनी तेजी से ये प्रहार करता है उतनी ही तेजी के साथ अपना लोकेशन भी बदल लेता है जिससे दुश्मन के रेडार पर आने का खतरा कम हो जाता है। इस रणनीति को शूट एंड स्कूट की रणनीति कहते हैं। लिहाजा लॉन्चर व्हीकल की मैनुवरबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। पिनाका इस पैमाने पर खरा उतरता है।
2: युद्ध क्षेत्र में क्या होता है कि जैसे ही आपने दुश्मन के ऊपर फायर किया तो दुश्मन के ऊपर फायर गिरते ही और दुश्मन अपने फायर डिटेक्टिंग रेडार्स को ऑन कर लेता है। दुश्मन के जो ये फायर लोकेटिंग रेडार है यह पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कंप्यूटर की मदद से यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पिनाका सिस्टम ने कहां से अपने रॉकेट्स को लॉन्च किया था और तुरंत दुश्मन का जो काउंटर बम्बार्टमेंट यूनिट है वो काउंटर अटैक करता है। हमारे पिनाका मिसाइल का जो लॉन्चर है उसका जो प्राइम मूवर है गाड़ी है उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कमांडर क्या करता है कि जैसे ही उसने पिनाका मिसाइल सिस्टम को लॉन्च किया उसके बाद वह तुरंत उस फायर बेस से दाएं बाएं 200 मीटर 400 मीटर आधा किलोमीटर हो जाता है।
0: पिनाका को बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसकी मोबिलिटी इसे दुश्मनों के लिए बेहद खतरनाक बना देती है। यानी साफ है चाहे बॉर्डर पर चीन की चालबाजी हो या फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, हिंद के शक्तिशाली महायोद्धा पिनाका से कोई बच नहीं सकता। साल 1999 के कारगिल युद्ध में पहली बार जब पिनाका ने पाकिस्तानी पोस्ट पर प्रहार किया था तब पूरी दुनिया ने भारत की रक्षा तकनीक को एक नए नजरिए से देखा था।
1: 1986 में DRDO ने इसे रूस के BM-21 ग्राथ सिस्टम के विकल्प के रूप में तैयार किया था। आज ये सिर्फ भारतीय सेना की रीढ़ नहीं बल्कि दुनिया में भारत की टेक्नोलॉजी का दम है। और इतना ही नहीं आज भारत इसका निर्यात भी कर रहा है। साल 2023 में आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लिया था और अब फ्रांस भी इसे खरीदने की तैयारी में।
0: भारत ने बड़े लगन से अपने आप को आधुनिक युद्ध के लिए तैयार किया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने स्वदेशी उपकरणों और हथियारों को विकसित किया है।
1: भारतीय सेना के हथियारों को मॉडर्न बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने एक और बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए अब ऐसे रॉकेट गोला बारूद बनाए जाएंगे जो देश भर में तैनात किए गए लॉन्चर्स से दागा जा सकता है। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में मौजूद 122 mm ग्राड BM-21 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए रॉकेट गोला बारूद खरीदने की योजना बना रहा है। इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया है।
0: ये भी साफ किया है कि नया गोला बारूद मौजूदा लॉन्चर के साथ आसानी के साथ फिट होना

0: चाहिए ताकि पूरे सिस्टम में कोई बदलाव न करना पड़े। ग्रेड बीएम 21 रूसी तकनीक पर बना रॉकेट लॉन्चर है जो भारतीय सेना में कई साल से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी खासियत है कि ये बेहद तेजी से एक साथ कई रॉकेट दाग सकता है जिससे दुश्मन के ठिकानों पर भारी हमला किया जा सकता है।
1: सेना चाहती है कि नया गोला बारूद देश के किसी भी हिस्से में अच्छी तरह काम करे, चाहे वो मैदान, अर्ध रेगिस्तान, रेगिस्तान या फिर ऊंचे पहाड़ हो। इसके अलावा इसे छोटी और लंबी दोनों दूरी तक मार करने में सक्षम होना चाहिए ताकि इसे अलग अलग सैन्य अभियानों में इस्तेमाल किया जा सके।
0: सेना ने यह भी कहा कि रॉकेट कम से कम 10 साल तक उपयोग करने लायक होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ी तो उसकी मरम्मत या कुछ हिस्सों को बदलकर उसकी उम्र और बढ़ाई जा सके। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बीएम 21 ग्रेड महज 60 सेकंड और 40 अटैक की क्षमता इसे बेजोड़ बनाती है। 20 किलोमीटर तक जो भी दुश्मन इसके रडार में आएगा उसका सर्वनाश तय है।
1: सोवियत संघ के समय में बने ग्राड रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल अभी भी करीब 100 देशों में हो रहा है। ये बेहद भरोसेमंद और भयानक तबाही मचाने वाला हथियार माने जाते हैं। पूरी दुनिया में बीएम 21 ग्राड के करीब 1,00,000 यूनिट बनाए गए हैं। 1 दर्जन देशों ने इसके अपने वेरिएंट यानी कि वर्जन भी बना लिए हैं।
0: BM-21 ग्रेड रॉकेट्स को ट्रक के ऊपर लगे लॉन्चर से दागा जाता है जो 1 मिनट में 40 रॉकेट दागकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। BM-21 ग्रेड मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर में 40 बैरल होते हैं और इन 40 बैरल से 40 राउंड फायर करने में ये 20 सेकंड लेता है। इन रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता 20 किलोमीटर है जो 690 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हमला करने की ताकत रखते हैं।
2: B-21 ग्रेड सिस्टम एक मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसके अंदर 40 के करीब ट्यूब होती हैं जो कि इमीडिएटली इकट्ठा फायर कर सकती हैं और ये इसकी जो रेंज है वो 20 किलोमीटर के करीब होती है और ये एक प्रकार से जो टारगेट है एरिया टारगेट को कवर करता है ना कि पिन पॉइंट।
0: 70 के दशक में भारत ने इस ताकतवर हथियार को रूस से खरीदा था। बीएम 21 ग्रेड रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल कर मिनटों में दुश्मन की चौकी या फिर बंकर को आसानी से ध्वस्त किया जा सकता है। आज भारतीय सेना के पास आर्टिलरी ब्रिगेड भी ऐसे योद्धा शामिल हैं जो दुश्मन के किसी भी रणनीति या दांव को चुटकियों में ध्वस्त कर सकते हैं। यानी पाकिस्तानी रणनीति का काउंटर प्लान रेडी है।
1: इसी के साथ रण क्षेत्र में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
9: सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बांदा और आसपास के इलाकों से श्रद्धालु कांवड़िए चित्रकूट से जल लेकर अपने क्षेत्रों में भोले बाबा को अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। वहीं बहुत से कांवड़िए बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए भी रवाना हो रहे हैं। इस दरमियान सावन में कांवड़ यात्रा के कई खास रंग देखने को मिल रहे हैं, आप भी देखिए खास रिपोर्ट।
10: सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह शिव भक्तों में देखते ही बनता है। सनातन के रंग में रंगीन कांवड़ियों में बच्चे भी हैं और युवा भी। कोई धनुष की शक्ल वाली कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई आदि योगी भगवान शिव की झांकी के साथ आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा की हैं। शिव भक्ति में सराबोर सैकड़ों की संख्या में कांवड़े यहां से नाचते झूमते चित्रकूट जा रहे हैं। शहर में जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए। घोड़े पर सवार नारी शक्ति कांवड़ियों के इस कारवां की अगुवाई करती नजर आई। शहर के कई चौराहों पर शिव भक्तों का जोरदार स्वागत हुआ। जिन बुलडोजर का इस्तेमाल तोड़फोड़ और विध्वंस में होता है, उनसे यहाँ पर शहर से गुजर रहे कांवड़ियों के जुलूस पर फूल बरसाए गए। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट से मंदाकिनी नदी का जल लेकर लौटने के बाद कांवड़िए बांदा में केन नदी के किनारे बाम्बेश्वर पर्वत की एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान वामदेव शिव मंदिर में जल अर्पित करेंगे।
11: कहाँ जा रहे हो कांवड़िए? क्या करोगे वहाँ से?
10: उत्तर प्रदेश के बांदा और आसपास के इलाकों में लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िए मंदाकिनी नदी का जल लेने धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच रहे हैं। अलग अलग समूहों में कांवड़िए पवित्र जल लेकर भगवान कामनाथ के दर्शन करते हुए अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
12: लगभग 80 किलोमीटर की दूरी को यह कांवड़िया तय करेंगे, जो अपने ग्रुप में लगभग ये 500 लोग है जो एक साथ होकर के यहाँ से यह चित्रकूट पहुंचे हैं और यहां से जल लेकर के बांदा के लिए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांवड़ियां हैं वह अपने कंधों पर कांवड़ लेकर के जल लेकर के पैदल जा रहे हैं और इनके घुंघरू भी पैरों पर बंधे हुए हैं, एक साथ बोल बम के नारे लगाते हुए बांदा के लिए निकल चुके हैं। और
10: यहाँ पर कांवड़ यात्रा में भगवान शिव की सुंदर पालकी भी साथ चल रही है। भगवान शिव के जयकारे और बोल बम के नारे लगाते हुए बिना थके आगे बढ़ते कांवड़िए भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, तपस्या, आत्मसंयम और समर्पण की अनूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं।
13: हम लोग फिलहाल जो हमारे ग्रुप है 9 सालों से बराबर करता चला आ रहा है।
14: तो क्या आस्था है, क्या मनोकामना है हम लोग? क्या
13: जो है मनोकामना बच गई है, साल में एक बार सावन आता है, इसीलिए हम लोग उसका उत्सव बनाते हैं।
15: हम लोग मौदा से आए हुए चित्रकूट धाम आने हैं और आलोक धाम से पानी भरा हुआ है, अब हम जाएंगे मौदा के लिए।
14: अच्छा,
15: बांदा में अपना स्थान है, अभी बांदा की कमेटी है और हम लोग मौदा के, पूरी कमेटी हमारी मौदा जाएगी।
14: कहाँ जल करेंगे अर्पित आप उसको?
15: जल करेंगे हम मौदा में, हमीरपुर जिले में, और हमारा बड़ी देवी मंदिर है, माना हुआ मंदिर है मैदान, उसमें आप सम्मिलित करेंगे।
10: जहाँ एक और सावन में लाखों शिव भक्त भोले बाबा को पसंद करने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, वहीं इस दरमियान श्रद्धा, सेवा और संस्कार की शानदार तस्वीर एटा में भी देखने को मिली। चार युवकों ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अनोखी कांवड़ यात्रा शुरू की है। बेटों ने कांवड़ में एक और पिता को बैठाया और दूसरी ओर करीब 155 लीटर गंगाजल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू की। ये यात्रा सोरों से गंगाजल भरने के बाद शुरू हुई और अब श्रद्धा, सेवा और समर्पण का संदेश देती हुई आगे बढ़ रही है। लोग पिता की सेवा और परिवार के प्रति समर्पण की मिसाल के रूप में इनकी सराहना कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा दिखाई दे रहा है। यहां से ट्रेन पकड़कर शिव भक्त कांवड़िए देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। ऐसे में पूरा माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। बहुत से कांवड़ियों ने पहले वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया और इसके बाद अब बाबा बैद्यनाथ धाम को जल अर्पित करने जा रहे हैं।
16: पूरी तरह से यहां पर जैसे ही ट्रेन आती है पूरा माहौल भगवामय हो जाता है और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग बस एक ही मन में उद्देश्य और उल्लास लिए हुए बाबा धाम की तरफ कूच करते हैं, देवघर जाते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ है जो ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हो रही है। ब्रह्मपुत्र मेल से ये तमाम कांवड़िए जो हैं वो सुल्तानगंज जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से और वहाँ से जल लेकर के पैदल यात्रा करेंगे देवघर तक की।
10: सावन का पावन महीना चल रहा है तो हर तरफ श्रद्धा और भक्ति की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सावन के आखिरी सोमवार और उसके बाद रक्षाबंधन के अवसर पर सावन के समापन तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहने वाला है। चंदौली से उदय गुप्ता, एटा से देवेश पाल सिंह, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर और बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर
17: है। शिव जी के अभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक करने के क्या है नियम, रुद्राभिषेक का क्या है विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
18: खबरें
1: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: गुजरात के सापुतारा में मेघ मल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों ने लिया रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने हर की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला आप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली NCR के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।

नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम, और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। इस बार बंदे में है दम की पेशकश थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार किसी दमदार बंदे पर नहीं, बल्कि बात उस पर होगी जिनके हम सब बंदे हैं, जिनकी बाहों में एक साथ झूलता है सृजन, पालन और संहार।

आप समझ ही गए होंगे कि इस बार की हमारी खास पेशकश किसी बंदे पर नहीं बल्कि अनंत अनादि अविनाशी शिव पर है। जी हाँ, ये महीना सावन का है और सावन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव इस संसार के आदि देव हैं, अनादिकाल से ही सृष्टि के सृजन पालन और संहार के साक्षी। शिव की भक्ति के बिना मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है, क्योंकि जब तक महादेव की कृपा नहीं होगी हमारे भीतर विवेक जागृत नहीं होगा और विवेक के बिना चेतना का संचार संभव नहीं। और यही वजह है कि सनातन के ग्रंथों में शिव को हर सिद्धि का हेतु माना गया है।

0: शिव का शाब्दिक अर्थ है कल्याण। सारे जगत का बिना किसी भेदभाव के निरपेक्ष भाव से कल्याण करना ही शिव के अस्तित्व की शपथ है। शिव कल्याण स्वरूप है अनादिकाल से, जब से सृष्टि का अस्तित्व है, जब से जगत की अभिव्यक्ति है, शिव कल्याणकारी के रूप में विद्यमान है साक्षी भाव से। जिस तरह दूध में मक्खन और घृत अव्यक्त रूप से विद्यमान है, उसी तरह शिव जगत में उद्धारक के रूप में विद्यमान है। पर जिस तरह दूध में अव्यक्त रूप से मौजूद मक्खन और घृत को निकालने की एक विधि है, वैसे ही संसार में अव्यक्त रूप से सतत विद्यमान शिव तत्व को प्रकट करने या प्राप्त करने की एक विधि है। भक्ति मार्ग के अप्रतिम ग्रंथ रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती की वंदना करते हुए अवतारी कवि गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम। रामचरितमानस के मंगलाचरण के इस श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास शिव और पार्वती का वंदन करते हुए भवानी को श्रद्धा और शिव को विश्वास का अधिष्ठाता बताते हैं और आगे कहते हैं कि श्रद्धा रूपी पार्वती और विश्वास रूपी शिव की कृपा के बिना सिद्ध ऋषि मुनि भी अपने भीतर स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाते हैं।
1: जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं है वो कभी प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, आत्मबोध को प्राप्त नहीं हो सकता। दोनों बातें, जहाँ पर कृपा न करें पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी, जिस पर त्रिलोचन भगवान चंद्रमौलेश्वर शिव जी की कृपा नहीं हो भगवत प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर आत्मबोध के लिए तो स्वयं शंकरम शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए।
0: तात्विक रूप से देखें तो कल्याण स्वरूप शिव की ये व्याख्या अत्यंत गूढ़ है, जिसे समझने के लिए मन का स्थिर और चित्त का एकाग्र होना आवश्यक है। दरअसल रामचरितमानस के मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास ये निरूपित करने की कोशिश करते हैं कि अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की शरणागति आवश्यक है। अगर कोई साधक या भक्त परमार्थ मार्ग का पथिक बनना चाहता है तो उसके लिए गुरु का आश्रय आवश्यक है और भगवान शिव इस जगत के विश्व गुरु के रूप में अखंड रूप से विद्यमान हैं। रामचरितमानस के मंगलाचरण में भगवान शिव की स्तुति करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें गुरु का रूप बताया है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंदयते। गोस्वामी जी कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप और शाश्वत गुरु की मैं वंदना करता हूँ जो शंकर के रूप में विद्यमान हैं और जिनका आश्रय पाकर टेढ़े चंद्रमा भी वंदनीय हो जाते हैं। इसका सीधा सहज अर्थ ये है कि शिव इस चराचर जगत के शाश्वत गुरु हैं।
1: वही संपूर्ण चराचर जगत के गुरु हैं। जब जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही आचार्य रूप धारण करके पहले पिपासा जागृत करते हैं, फिर इष्ट रूप से उस पिपासा को शांत करते हैं। सारा खेल शिव का ही है। वही सर्वोपरि परम तत्व विविध रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। एक ही तत्व है, तत्व दो नहीं है, एक ही परम तत्व है। हाँ, रस का रसास्वादन कराने के लिए जैसे एक ही दूध के बहुत प्रकार के मिष्ठान बनते हैं, उनका स्वाद अलग अलग रस विशेष हो जाता है, ऐसे एक ही परमात्म तत्व भगवान शिव अपने रसास्वादन का रसास्वाद कराने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं।
0: सनातन धर्म में गुरु की अपार महिमा बताई गई है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ ही पर ब्रह्म परमेश्वर भी बताया गया है। 15वीं शताब्दी के महान संत कबीरदास ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए अद्भुत बात बताई है। भाई रे सो गुरु सत्य कहावे, कोई नैनन अलख लखावे सो गुरु सत्य कहावे, डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश दृढ़ावे, जप तप जोग क्रियाते न्यारा सहज समाधि सिखावे। इस पद में कबीरदास कहते हैं कि सद्गुरु वही है जो अलख यानी परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने उपदेश से मन में ऐसी लगन पैदा कर दे कि चलते हुए या बोलते हुए भी परमात्मा का स्मरण खंडित न हो। जब तब जोग और कर्म के बिना ही समाधि की युक्ति सिखा दे, वही सद्गुरु है। कबीर के पद का सार यही है कि सच्चा गुरु सहज ही अपने शिष्य को परम तत्व की प्राप्ति करा देता है। परम तत्व की प्राप्ति ही जीव का परम कल्याण है। कल्याण स्वरूप शिव अनादिकाल से ही गुरु रूप में जीव का कल्याण कर रहे हैं। सनातन धर्म में भगवान राम को उसी परम तत्व अनादि अखंड अचिंत्य अरूप अलक्ष्य अभेद परमात्मा का अवतार माना गया है। वही भगवान राम शिव के बारे में जो कहते हैं उससे इस बात की प्रामाणिक पुष्टि हो जाती है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने राम के मुख से कहलाया है, औरऊं एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। भगवान राम हाथ जोड़कर सबको अपने हृदय की एक गुप्त बात बताते हैं कि शंकर के भजन के बिना कोई भी मनुष्य मेरी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। साफ है कि भगवान शिव इस अर्थ में साधक के लिए साधन और साध्य दोनों हैं।
1: अयोध्या में भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न मुद्रा में अपने नगरवासियों को बैठाते हैं और कहते हैं, औरों एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोरे। हे अवधवासियों, सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, मैं एक अपना गुप्त बात हृदय की बताता हूँ, यदि कोई भगवान शंकर की आराधना न करे तो मेरी प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और एक गुपुत मत सबहि कहौं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे।
0: दरअसल अखिल ब्रह्मांड के नायक पर ब्रह्म परमेश्वर का बोध मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है। जिस ब्रह्मांड नायक के संकल्प मात्र से अनंत सूर्य, अनंत तारे, अनंत धरती, अनंत चंद्रमा, अनंत ग्रह नक्षत्रों का अस्तित्व खड़ा हो जाता है, उसको माना तो जा सकता है, जाना नहीं जा सकता। अगर कोई जिज्ञासु भक्त उस परम तत्व की अनुभूति करना चाहता है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, भगवान शिव की शरणागति। क्योंकि जिस तरह भगवान शिव ने स्वर्ग से धरती पर उतरी गंगा के प्रबल वेग को कम करने के लिए उसकी धारा को अपनी जटा में धारण कर लिया, उसी तरह परम तत्व के प्रबल असह्य तेज को भी उन्होंने स्वयं में धारण किया हुआ है। भगवान शिव की कृपा प्रसाद से ही मनुष्य उस परम तेजस्वी परमात्मा का दर्शन करने की स्थिति में आता है। सोचिए कि गोस्वामी तुलसीदास के समान अनन्य राम भक्त दूसरा कोई नहीं माना जाता, लेकिन स्वयं गोस्वामी जी राम भक्ति का वरदान पाने के लिए भगवान शिव से हाथ जोड़कर विनती करते हैं। नातो नाते राम के राम स्नेह स्नेहु, तुलसी मांगत जोरी कर जन्म जन्म शिव देहु। गोस्वामी तुलसीदास हाथ जोड़कर देवाधिदेव से कहते हैं कि हे शिव जी, मुझे हर जन्म में यही वरदान दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो और श्री राम से प्रेम के कारण ही किसी से प्रेम हो। इस अर्थ में कह सकते हैं कि भगवान शिव इस चराचर जगत के जीवों के लिए मुक्ति के द्वार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले और परम उदार हैं। इसीलिए उन्हें आशुतोष और औधरदानी भी कहा जाता है। यही वजह है कि जब से इस सृष्टि का अस्तित्व है, भगवान शिव किसी न किसी रूप में पूजे जाते हैं। भगवान शिव अकेले ऐसे देव हैं जिनकी उपासना किसी भी युग में खंडित नहीं हुई है।
2: भगवान शिव के बारे में एक अनोखा सत्य ये है कि उनकी उत्पत्ति, जन्म या फिर अवतार की कोई कथा किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। शिव को स्वयंभू माना गया है। स्वयंभू यानी जिसने अपनी उत्पत्ति स्वयं की हो। शिव अवतार नहीं लेते बल्कि अनादिकाल से ही अलग अलग रूपों में विद्यमान है। शिव के अलग अलग स्वरूपों में जीवन का संपूर्ण दर्शन और ज्ञान समाहित है। अपने हर रूप और स्वरूप में शिव जगत को, संसार को, अपने भक्तों को कुछ ना कुछ पावन संदेश देते हैं, जगत के कल्याण का रास्ता बताते हैं।

0: सनातन धर्म के आत्मिक या अलौकिक पक्ष की बुनियाद एको अहम द्वितीयो नास्ति या सर्वम खलविदम ब्रह्म के वैदिक सिद्धांत हैं, जिसका अर्थ है इस संपूर्ण चराचर जगत में एक ही ब्रह्म शाश्वत रूप से विद्यमान है। दूसरा जो कुछ भी दिखता है वो उसी सच्चिदानंद परमात्मा की परछाई है। पर सनातन धर्म के सांस्कृतिक और लौकिक पक्ष की बुनियाद त्रिदेव है। त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो सर्जन, पालन और संहार के प्रतिनिधि हैं, कारक हैं। ब्रह्मा चतुर्मुख हैं, यानी उनके चार मुख हैं, लेकिन सदैव एक रूप हैं। ब्रह्मा के रूप और स्वरूप में आदिकाल से ही कोई परिवर्तन दृष्टिगत नहीं हुआ है। विष्णु अलग अलग युग में परिस्थिति जन्य कारणों से 9 अलग अलग रूपों में अवतरित हुए, पर महेश यानी शिव अनादिकाल से ही 9 अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं। विष्णु के 9 रूप काल सापेक्ष हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप काल निरपेक्ष हैं। विष्णु के 9 रूप कार्य और कारण विशेष से प्रेरित हैं, जबकि शिव के ये 9 रूप सृष्टि के शाश्वत सत्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि शिव के उन 9 अलग अलग रूपों का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पक्ष क्या है। भगवान शिव का पहला रूप है नटराज। शिव का नटराज स्वरूप ब्रह्मांड के कई रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है। अपने इस रूप में भगवान शिव अज्ञान और अहंकार के प्रतीक अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर अपना दाहिना पैर रखकर नृत्य करते हैं और उनके चारों ओर आग की लपटें दिखाई देती हैं। नटराज के एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में ज्वाला है। नटराज का तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है, जबकि चौथा हाथ नृत्य के लिए उठे पैर की ओर इंगित करता दिखाई देता है। भगवान शिव के नटराज के गुण स्वरूप में सृष्टि का काल चक्र, सृजन, पालन और संहार पूर्णता में प्रतिष्ठित है। इसमें डमरू सर्जन का, अग्नि संहार का और अभय मुद्रा पालन का प्रतीक है। अपस्मार नामक बौने राक्षस की पीठ पर पड़ा दाहिना पैर जीवन मरण के बंधन का प्रतीक है, जबकि नृत्य की मुद्रा में उठा हुआ पैर मुक्ति का। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि नटराज के इस रूप का मॉडर्न साइंस से गहरा संबंध स्थापित हो चुका है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लेबोरेटरी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सर्न की इमारत संख्या 39 और 40 के बीच नटराज की 2 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। नटराज की प्रतिमा के नीचे पट्टिका पर ऑस्ट्रियन मूल के अमेरिकन भौतिकी वैज्ञानिक और दार्शनिक फ्रिट्ज़ कैपरा का जो कोट अनकोट है वो आंखें खोलने वाला है। हजारों साल पहले भारतीय कलाकारों ने नाचते हुए शिव की प्रतिमाएं बनाई। कांसे की बनी डांसिंग शिव की ये मूर्तियां एक सीरीज में हैं। हमारे समय के भौतिक वैज्ञानिकों ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से कॉस्मिक डांस यानी ब्रह्मांड के नृत्य को चित्रित करने की कोशिश की है। कॉस्मिक डांस का रूपक प्राचीन पौराणिक कथाओं, धार्मिक कलाकारी और मॉडर्न फिजिक्स को एकाकार कर देता है। भगवान शिव का दूसरा रूप है अर्धनारीश्वर। शरीर का दाहिना हिस्सा पुरुष और बायां हिस्सा स्त्री का। इस अद्भुत स्वरूप में एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों समाहित हैं। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में ये माना जाता है कि एक ही शरीर में उमा और महेश दोनों का वास है। दरअसल शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप पुरुष और प्रकृति के बीच के शाश्वत संतुलन का संदेश है। ये बताता है कि हर जीव के अंदर एक ही साथ मैस्कुलीन और फेमिनीन दोनों एनर्जी मौजूद हैं, शिव और शक्ति के रूप में। शिव और शक्ति का यही सह अस्तित्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधारभूत कारण है। भगवान शिव का तीसरा रूप है दक्षिणामूर्ति का। दक्षिणामूर्ति का शाब्दिक अर्थ है वो मूर्ति जिसका मुखारविंद दक्षिण दिशा की तरफ हो। ये भगवान शिव का वो दिव्य और अलौकिक स्वरूप है जिसमें वे ब्रह्मांड के शाश्वत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। अपने इस रूप में भगवान शिव वट वृक्ष के नीचे चबूतरे पर विराजमान दिखते हैं और नीचे शिष्यों के रूप में ऋषि मुनियों की मंडली है जो एकाग्रचित होकर गुरु ज्ञान हासिल करते दिखाई देते हैं। इसमें इनका एक पैर जमीन पर टिका है जो स्थिरता यानी चिरंतन सत्य को दर्शाता है, जबकि दूसरा पैर ध्यान की मुद्रा में स्थित हैं। दक्षिणा मूर्ति शिव चतुर्भुज हैं, जिनके एक हाथ में सर्प है जो काल का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ की तर्जनी अंगूठे को स्पर्श करती है जो कि ध्यान की मुद्रा मानी जाती है। तीसरे हाथ में डमरू है जबकि चौथे हाथ में ज्वाला। भैरव भगवान शिव का चौथा रूप है। भैरव भगवान शिव के सबसे विकराल रूप में पूज्य हैं। अपने इस रूप में शिव क्रोधाग्नि से दग्ध दिखते हैं। भैरव के एक हाथ में तलवार है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में फंदा है और चौथे में डमरू। भैरव रूप में शिव नरमुंड की माला पहने नजर आते हैं। भगवान शिव का भैरव रूप आसुरी या अनिष्ट शक्तियों का संहारक है, इसीलिए भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव का सबसे भक्त वत्सल और जनप्रिय स्वरूप है। शिवलिंग हमेशा दो भागों में दिखाई देता है। इसका वर्टिकल पार्ट शिव के शाश्वत चिरंतन चेतना का प्रतीक है, जबकि आधार गतिमान शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। अपने संपूर्ण आकार में शिवलिंग प्रकृति और पुरुष की शाश्वत एकता को दर्शाता है, जो ब्रह्मांड के सृजन का हेतु है। गौरतलब है कि शिवलिंग ईश्वर के साकार और निराकार दोनों स्वरूपों का भी प्रतीक है। सनातन के सदग्रंथों में ब्रह्मा को चतुर्मुखी माना जाता है, तो शिव को पंचमुखी यानी पंचानन माना गया है। शिव के इस स्वरूप में पांच मुख हैं, जो सभी अलग अलग दिशाओं की ओर उद्भाषित हैं। पहला मुख ईशान की ओर उन्मुख है, जो अलौकिक ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा तत्पुरुष यानी पूर्व की ओर उन्मुख है, जो आशा और उत्साह का संचार करता है। पंचानन का तीसरा मुख वामदेव यानी पश्चिम की ओर उन्मुख है, जो विश्राम यानी शांति का प्रतीक है। पंचमुखी शिव का चौथा मुख अघोर यानी दक्षिण दिशा की ओर उन्मुख है। दक्षिण दिशा का संबंध अग्नि से माना जाता है। अग्नि शुद्धि के साथ ही ऊर्जा का भी प्रतीक है। पंचानन का पांचवा मुख सद्योजात यानी उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। सद्योजात का अर्थ होता है नवजात। लिहाजा उत्तर दिशा में उन्मुख शिव का ये मुख इस बात का पावन संदेश है कि संहार के बाद सृजन शाश्वत सत्य है। वीरभद्र शिव के योद्धा और न्यायाधीश स्वरूप को दर्शाता है। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए, तब शिव के दुख और क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। शिव का ये रूप अहंकार और अज्ञान का विनाश कर अखिल ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा करने की शक्ति का प्रतीक है। वीरभद्र रूप में शिव ढाल के साथ खड़ग, धनुष्वाण, त्रिशूल जैसे संहारक शस्त्रों से लैस दिखाई देते हैं। त्रिपुरांतक स्वरूप में भगवान शिव मनुष्य के अंदर मौजूद आसुरी वृत्तियों के नाश का भरोसा देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव ने असुरों के सोने, चांदी और लोहे से बने तीन पुरों यानी नगरों का नाश किया था। मनुष्य के अंदर ये तीन पुर तीन प्रबल विकार यानी लोभ, अहंकार और वासना के रूप में मौजूद हैं। लोभ, अहंकार और वासना के रहते मनुष्य का आध्यात्मिक उत्थान संभव नहीं है। शिव के त्रिपुरांतक स्वरूप की आराधना और भक्ति से ये सहज संभव है। आदियोगी भगवान शिव का नौवां स्वरूप है। योगियों के लिए शिव आदियोगी और आदि गुरु हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव हर तरह के योग में परम सिद्ध हैं। ऐसा माना जाता है कि योग का जो ज्ञान सिद्ध जनों को मिला वो आदि योगी के माध्यम से ही मिला है, क्योंकि योगी ज्ञान के वो आदि अधिष्ठाता हैं। मान्यता है कि सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान आदि योगी ने ही दिया था। साफ है कि भगवान शिव के इन नौ स्वरूपों में ब्रह्मांड के सारे रहस्यों के साथ ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, संगीत, साहित्य, कला और संस्कृति सब कुछ समाहित है।
1: भगवान शिव पर आधारित इस खास पेशकश में आज आपने महादेव के गूढ़ और अलौकिक स्वरूप के बारे में जाना और समझा। अगले हफ्ते हाजिर होंगे ऐसे ही एक और दमदार पेशकश के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: है शिव जी के अभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक करने के क्या हैं नियम, रुद्राभिषेक का क्या है विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
9: और चलिए अब खबर देख लेते हैं चारधाम यात्रा की। चारधाम की तीर्थ यात्रा पर भी सावन का रंग चढ़ चुका है। वैसे तो सावन में बहुत से श्रद्धालु गंगा जल लाने गंगोत्री जाते हैं और भोले बाबा के भक्त कांवड़ लेकर केदारनाथ धाम भी जरूर जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार बद्रीनाथ धाम में भी कांवड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। आपको दिखाते हैं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पावन सावन के रंग।

0: पावन महीने में बाबा केदारनाथ के धाम पर रौनक देखते ही बनती है। पूरी केदारनाथ घाटी में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ और कांवड़ यात्रियों की मौजूदगी से बाबा केदारनाथ की नगरी में इन दिन अभूतपूर्व आध्यात्मिक माहौल है। समय समय पर हो रही बारिश के कारण मुश्किलें भी आती हैं। बारिश के दौरान पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं यात्रियों के लिए चुनौती बनी हुई है, परंतु कठिन परिस्थितियों के बीच भी भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा पर निकल रहे हैं। दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के बावजूद लगातार आम श्रद्धालुओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री भी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी तीर्थयात्रियों की सहायता के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
1: आजकल मौसम के कारण कई जगह कई बार मलबा और पत्थर आने की भी स्थिति बन रही है, जहां पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम्स हैं और जो SDRF है वो लगातार कार्यरत हैं। इसी के साथ साथ JCB और अन्य उपकरण भी मौजूद हैं, जिनसे लगातार मलबे और पत्थर को हटाया जा रहा है और ताकि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित तरीके से श्री केदारनाथ धाम की यात्रा कराई जा सके।
0: अब तक 14,40,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं इन दिनों कांवड़ यात्रा के कारण यहां श्रद्धालुओं की तादाद और बढ़ गई है। यात्रा मार्ग से लेकर सोनप्रयाग और केदारनाथ धाम तक खास चहल पहल दिखाई दे रही है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क है। कांवड़ यात्रियों की बढ़ती संख्या का असर सोनप्रयाग की पार्किंग पर भी साफ नजर आ रहा है। पार्किंग कांवड़ यात्रियों की गाड़ियों से लगभग पूरी तरह भरी नजर आ रही है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया गया है।
1: देखिए, सावन के महीने में और कांवड़ के दृष्टिगत श्री केदारनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसमें हमारे द्वारा लगातार वहाँ पर पुलिस बल मौजूद है, जो यात्रा के सुचारू संचालन के लिए कार्यबद्ध है और वहाँ पर कार्य कर रहा है।
0: सावन के रंग बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिल रहे हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बद्रीनाथ धाम पहुँच रहे हैं। यात्रा मार्ग से लेकर हर तरफ मंदिर परिसर से लेकर बाजार तक कोना कोना श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा नजर आ रहा है। वैसे तो बीते वर्षों में भी कांवड़िए सावन में बद्रीनाथ धाम पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार यहां इनकी संख्या में जबरदस्त इजाफे से नया ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बरसात के इस मौसम में बद्रीनाथ धाम में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ इस बार खास तौर पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो अभी चार धाम यात्रा का पीक सीजन चल रहा है। मौसम और भारी लोगों की आस्था को देखते हुए आने वाले दिनों में भी यहां पर श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की संख्या और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोड़ी और केदारनाथ धाम से प्रवीण सेमवाल के साथ रिपोर्ट कुनिस।
2: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
3: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
6: गुजरात के साबूदारा में मेघमल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों ने लिया रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। शिव भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सरयू घाट से लेकर रामपद तक कांवड़ियों की कतार, चारों तरफ हर हर महादेव और बोलबम की गूंज। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने हर की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। वाराणसी में बदला गया संध्या आरती का स्थान, गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फैसला, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बरती जा रही है सावधानी। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत।
2: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: मेरठ में सीएम योगी की अनोखी शिव भक्ति, मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का किया भव्य स्वागत। सीएम ने कांवड़ियों को उनकी सफल यात्रा के लिए भी दी शुभकामनाएं, हेलीकॉप्टर से भी शिव भक्तों पर बरसाए गए फूल। कल और सावन शिवरात्रि के दिन कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाएगी, हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। कांवड़ियों के सम्मान में मेरठ के मोदीपुरम में विशेष कार्यक्रम आयोजित, भोलेनाथ की भव्य झांकियों ने खींचा भक्तों का ध्यान। शिव के अलग अलग स्वरूपों ने मोहा श्रद्धालुओं का मन, अद्भुत और अलौकिक दृश्य को देखने भारी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। बागपत में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, जिला प्रशासन ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर बरसाई गुलाब की पंखुड़ियां। सहारनपुर में आसमान से बरसे फूल, हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर हुई पुष्प वर्षा, कांवड़ मार्ग पर दिखा भक्तिमय नजारा। टिहरी गढ़वाल में कांवड़ियों में जबरदस्त उत्साह, बम बम भोले के जयकारों से गूंजा यात्रा मार्ग। कांवड़ियों के बीच पहुंची एसएसपी श्वेता चौबे, टिहरी गढ़वाल में कांवड़ मार्गों का किया निरीक्षण, कांवड़ियों के लिए रूट किया फ्री। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे करें बाबा गरीबनाथ के लाइव दर्शन, ऐप से भीड़ से लेकर पार्किंग तक की मिलेगी जानकारी। सावन के पवित्र महीने में भोले शंकर के उद्घोष के साथ जारी है कांवड़ यात्रा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। सीमा के पास अप्सरा बॉर्डर से राजधानी में आ रहे कांवड़ियों पर सीएम ने बरसाए फूल, ढोल नगाड़ों के बीच किया भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांवड़ियों पर बरसे फूल, पुलिस ने पुष्प वर्षा कर शिवभक्तों का किया स्वागत। सहारनपुर में अनोखी गौरक्षा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र, 3 कांवड़ों को जोड़कर बनाई गई भव्य कांवड़। कांवड़ में सबसे आगे विराजमान है भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा, हरिद्वार से करीब 280 किलोमीटर की यात्रा कर कालका की ओर बढ़ रही है 26 कांवड़ियों के जत्थे वाली कांवड़। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान दिखा अनोखा शिव भक्त, कमर पर बांधे हैं 3 किलो की घंटी, खुद को कह रहे हैं 2 पांव वाला भोले का नंदी। ब्रजलाल पिछले 10 साल से अपनी कमर पर करीब 2.5 से 3 किलो की पीतल की घंटी बांधकर कर रहे हैं कांवड़ यात्रा। महज 10 साल की उम्र से अपने पिता के साथ शुरू की थी प्रथा। दरअसल बचपन में पिता के साथ कांवड़ यात्रा करते समय खो जाने के डर से पिता ने बांधी थी ब्रजलाल की कमर में घंटी। तब से इसी तरह यात्रा कर रहे हैं ब्रजलाल। एटा में देखी कलियुग के श्रवण कुमार जैसी अनोखी कांवड़। पिता की इच्छा पूरी करने के लिए 4 बेटों ने कंधों पर उठाई अनोखी कांवड़। कांवड़ में एक तरफ अपने पिता को बैठाकर और दूसरी ओर करीब 155 किलो गंगा जल रखकर यात्रा शुरू की गई। यात्रा मार्ग पर सभी भक्त देखकर हुए मंत्रमुग्ध। बिजनौर में अनोखी कांवड़ दिखा देशभक्ति का रंग। ब्रह्मोस मिसाइल और 100 मीटर तिरंगा कांवड़।

देशभक्ति और भक्ति के रंग में रंगी कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर संभल के लिए निकली। बोलबम की गूंज के साथ शिव भक्त भी दिखाई दिए। गाजियाबाद में बहू का अनोखा संकल्प, हरिद्वार से दिल्ली तक बुजुर्ग सास को कांवड़ में लेकर चल रही है बहू काजल। भगवा रंग में रंगा धर्मनगरी हरिद्वार, हर की पैड़ी पर कांवड़ियों का सैलाब, गंगा जल लेने के लिए उमड़ी भारी भीड़। हर तरफ नजर आ रहे कांवड़ी और डाक कांवड़ के वाहन, हरिद्वार की सड़कों पर कांवड़ियों का रेला। ड्रोन तस्वीरों में देखा कांवड़ मेले का भव्य और दिव्य नजारा, बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है हरिद्वार। डीजे पर भोले के भजन पर झूमे कांवड़िए, बैरागी कैंप से चमगादड़ टापू तक दिखा अद्भुत नजारा। नाश्ते गाते शिव भक्तों से गुलजार हुआ हरिद्वार, गंगा जल लेकर तेजी से रवाना हो रहे हैं डाक कांवड़। हरिद्वार में डाक कांवड़ का सैलाब, अब तक करीब 3.25 करोड़ शिव भक्त गंगा जल भरकर चले शिव धाम। हरिद्वार के बैरागी कैंप में डाक कांवड़ आनी शुरू, देशभर से रोजाना हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िए। हरियाणा यूपी समेत कई राज्यों में पहुंचे डाक कांवड़िए, दौड़ते हुए पहुंचेगा गंगा जल। बैरागी कैंप में डाक कांवड़ियों का जोश दिखा हाई, 200-200 मीटर की स्प्रिंट लगाकर जल आगे बढ़ाएंगे कांवड़िए, 50 कांवड़ियों की टीम तैयार। तय समय में शिवालय पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे कांवड़िए, डीजे पर झूम रहे हैं कांवड़िए, हर हर महादेव के जयकारे से गूंजा हरिद्वार। हरिद्वार में कांवड़ियों के लिए देवदूत बनी एसडीआरएफ, गंगा के तेज बहाव में फंसे सभी शिव भक्तों का किया सफल रेस्क्यू। हरिद्वार में एसडीआरएफ की मुस्तैदी से टली बड़ी अनहोनी, अलग अलग घाटों से 18 श्रद्धालुओं को बचाया। कांवड़ यात्रा में एसडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट, हरिद्वार और ऋषिकेश के संवेदनशील घाटों पर एसडीआरएफ जवानों की तैनाती। 74 की उम्र में आस्था में कोई कमी नहीं, दोनों घुटनों की परेशानी के बावजूद देवघर रवाना हुए शिव भक्त कृष्णा बम। कृष्णा बम लगातार करती आ रही है जलाभिषेक, 42 साल से जारी है बाबा बैद्यनाथ की भक्ति। श्रावण मास के दौरान अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भारी संख्या में उमड़ रही भक्तों की भीड़, सरयू में लगा रहे हैं पवित्र डुबकी। बारिश और खराब मौसम के बावजूद देश के अलग अलग कोनों से आ रहे श्रद्धालु, भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन की पूरी तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर लगातार हो रही है देवघर जाने वाले कांवड़ियों की भीड़, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद कांवड़िए बैद्यनाथ धाम की तरफ हो रहे हैं रवाना। पूरे रेलवे स्टेशन पर दिख रही है कांवड़ियों की भीड़, सुरक्षा और सुविधा को लेकर प्रशासन सतर्क। स्टेशन पर कांवड़ियों की हर सुविधा का रखा जा रहा है ख्याल, रेलवे पुलिस के अतिरिक्त जवान भी हैं तैनात। सहारनपुर में कांवड़ियों की थकान होगी छूमंतर, तमाम मेडिकल सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया डॉक्टर्स की टीम तैनात वाला मेडिकल कैंप। इस शिविर में कांवड़ियों के लिए इलाज और प्राथमिक उपचार की तमाम सुविधाएं हैं उपलब्ध, साथ ही थकान और पैरों के दर्द से राहत के लिए फुट मसाज और थाई मसाज मशीन भी लगाई गई। शिविर में 2 मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित, एक समय में करीब 600 मोबाइल किए जा सकते हैं चार्ज। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर राजौरी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत, स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर भी सुरक्षा बल सतर्क। जम्मू से रोकी गई अमरनाथ यात्रा, खराब मौसम के साथ अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के अनुमान और तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी के कारण लिया गया फैसला। दिल्ली के गालिंदी कुंज बॉर्डर पर ट्रैफिक डायवर्ट, कांवड़ियों की सुविधा के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, दिल्ली नोएडा रोड किया गया वन वे। कांवड़ियों को रोड पार करा रहे हैं सुरक्षाकर्मी, अगले सोमवार से मंगलवार तक रहेगा डायवर्जन। सीतामढ़ी पहुंचे सीएम सम्राट चौधरी, मां जानकी की प्राकट्य स्थली पर किया पूजन। पुराने मंदिर से नूतन मंडप में हुआ विग्रह स्थानांतरण, 31 दिसंबर 2028 तक भव्य मंदिर पूरा करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री ने 77 करोड़ की नई परियोजनाओं का भी किया शुभारंभ, नए मिल्क प्लांट का किया लोकार्पण। केदारनाथ धाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं में कांवड़ यात्रियों की संख्या में भी इजाफा, अब तक करीब 14,40,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम में कर चुके हैं दर्शन। सोनप्रयाग में वाहनों से

0: फुल हुई पार्किंग, श्रद्धालुओं की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए प्रशासन और पुलिस भी सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर सतर्क। बद्रीनाथ धाम में लगी भक्तों की रौनक, सावन के महीने में बढ़ी भक्तों की संख्या, दिख रहा है सावन के महीने का उत्साह। भक्तों से भरा नजर आ रहा है धाम का मंदिर परिसर, बाजार और यात्रा मार्ग। मानसून के बावजूद यात्रा में मुख्य सीजन जैसी भीड़। उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन, पूजन और शयन आरती में भी हुए शामिल। पारंपरिक रूप से बाबा महाकाल का पूजन कर सीएम यादव ने लिया आशीर्वाद, प्रदेशवासियों के कल्याण, सुख और समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गणेशोत्सव के एक महीने पहले ही बप्पा का हुआ आगमन, ढोल नगाड़ों के साथ धूमधाम से लाई गई लालबाग चिराजा की प्रतिमा। पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ 14 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा का स्वागत, कोल्हापुर का राजा के दर्शन को उमड़े हजारों लोग। मंडल की ओर से भव्य तरीके से की गई बप्पा के आगमन के समारोह की तैयारी, पारंपरिक ढोल ताशों की गूंज, आकर्षक रोशनी और भक्तिमय माहौल में किया गया गणराज का स्वागत। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित की गई, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत, बीआरओ की टीम कर रही है मरम्मत और रखरखाव। चमोली में मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर सैलाब को पार कर रहे हैं ग्रामीण। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली के संगम विहार में भारी बारिश से वाटर लॉगिंग, 3 से 4 फीट तक भरा पानी। लगातार बारिश से दिल्ली में बढ़ा यमुना का जलस्तर, ओखला बैराज पर यमुना का जलस्तर 202 मीटर पहुंचा। दिल्ली में बारिश का दौर जारी, यूपी सदन के बाहर झमाझम बारिश की तस्वीरें आई सामने। गुरुग्राम में भारी बारिश से जलजमाव, सोना रोड पर वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक हुआ प्रभावित। सीएम हिमंत बिस्वा ने दरांग में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। शिवपुरी में तेज बारिश से महुआ नदी उफान पर, घरों स्कूलों मंदिरों और खेतों में घुसा पानी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल के आसमान में रंगों का कार्निवल, सैकड़ों फीट ऊपर नजर आए खूबसूरत हॉट एयर बलून। आसमान में देखी अनोखी उड़ान, पायलट ने रंग बिरंगे बलून के साथ भरी उड़ान। ब्रिस्टल फिएस्टा बना फोटो स्पॉट, बलून फुलाने का शानदार नजारा लोगों ने देखा। ब्रिस्टल में आसमान में 100 से ज्यादा बलून दिखा, अद्भुत नजारा, हवा में तैरते दिखे रंग बिरंगे गुब्बारे। ब्रिस्टल की पहाड़ियों के ऊपर दिखा खूबसूरत दृश्य, 45 साल पुरानी परंपरा का शानदार नजारा। चीन में एआई खिलौनों का जलवा, ग्वांगडोंग प्रांत एनिमेशन एक्सपो में एआई फ्लश टॉयज ने खींचा ध्यान। दुनिया भर के 2200 से ज्यादा मशहूर ब्रांड शामिल, चीन के एआई टॉयज की विदेशों में भी बड़ी मांग। मैस्कर्ट मैचर फिगर्स और बड़े आईपी इंस्टॉलेशन बने आकर्षण, चीन के खिलौना उद्योग को मिला इसे ग्लोबल बाजार। यूरोप अमेरिका समेत कई देशों में हो रहा निर्यात, विदेशी खरीदारों को पसंद आए अनोखे चीनी डिजाइन। एआई से खिलौनों की दुनिया हुई स्मार्ट, नई टेक्निक और क्रिएटिव डिजाइन का एक्सपो में देखा शानदार मेल। सियोल में गर्मी से राहत का अनोखा तरीका, भीषण गर्मी के बीच साइलेंट पूल पार्टी में उमड़ी भीड़। वायरलेस हेडफोन लगाकर पूल में झूमे लोग, सैकड़ों लोगों ने साइलेंट डिस्को का लिया मजा। साइलेंट पूल पार्टी में 450 टिकट फुल, कार्यक्रम से पहले ही बिके सभी एडवांस टिकट। हीट वेव के बीच पूल पार्टी ने लोगों को दी राहत, समर बीच कार्यक्रम से सियोल घूमने वालों को मिला नया अनुभव। शहर के बीचों बीच लोगों को मिल रही है इसे ठंडा, गर्मी में मस्ती और ठंडा का अनोखा कॉम्बिनेशन। मध्य चीन के हेनान प्रांत में दिख रहा प्रकृति का बेहद खूबसूरत नजारा, पूरी तरह खिले नजर आए सूरजमुखी के फूल। जहां तक नजर जाए वहां तक सीधे खड़े नजर आते हैं सूरजमुखी के फूल, सूरज की रोशनी में चमकती नजर आती है फूलों की पंखुड़ियां। अगस्त की शुरुआत में ही खेतों में दिखता है नेचर का ये सुंदर रूप, हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहां इन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं। इन लंबे सीधे खड़े सूरजमुखी के फूलों के बीच लोगों ने फोटो भी खिंचवाए। प्रकृति में खोए नजर आते हैं देश विदेश के टूरिस्ट। शान देहाती दृश्यों का आनंद लेने आते हैं यहाँ कई शहरवासी। शहरी जीवन के अलचल से बचकर खेतों में गुजारते हैं यादगार पल। अब आप अपने पेट से कर पाएंगे अपनी ही जुबान में बात। चीन के वुहू इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पार्क ने बनाए खास लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाले स्मार्ट पेट कॉलर। चीन के कंप्यूट क्यू प्लेटफॉर्म पर यह स्थिति धीरे धीरे हकीकत बन रही है, जहां अगर स्मार्ट पेट कॉलर पहनेगा आपका डॉग भूख से भौंकता है तो आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस ऐप के जरिए आपकी भाषा पेट्स के सिग्नल में बदल जाएगी, साथ ही पेट्स के सिग्नल भी आप अपनी भाषा में समझ पाएंगे। इस मॉडल में पालतू जानवरों के व्यवहार से जुड़े 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स डाले गए हैं, ताकि इंसानों और जानवरों के बीच एक पुल बनाया जा सके। फिलहाल ये स्मार्ट पेट कॉलर अलग अलग स्तर पर टेस्ट किए जा रहे हैं, जल्द ही इसे बाजार में उतारा जाएगा।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: क्या है शिव जी के अभिषेक की महिमा, रुद्राभिषेक करने के क्या है नियम, रुद्राभिषेक का क्या है विधान और रुद्राभिषेक से मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: और अब बात गणपति उत्सव की। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव अगले महीने मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करीब 1.25 महीने पहले ही गणपति पधार चुके हैं और लोगों में उत्साह उल्लास नजर आने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कोल्हापुर की है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से ढोल ताशे बजाकर बेहद शानदार भक्तिमय माहौल में गणपति की अगवानी की जा रही है। गाजे बाजे के साथ गजानन भगवान गणेश को कोल्हापुर शहर में लाया जा रहा है। वैसे तो इस बार गणपति उत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में तभी बाप्पा का आगमन होगा, लेकिन कोल्हापुर में विघ्नहर्ता परंपरा से हटकर एक महीने पहले ही पधारे तो क्या आम और क्या खास, तमाम लोग उनके दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों की उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: कोल्हापुर में भी मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के ही समान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा से श्रद्धालु मुंबई जाने के बजाय यहीं पर बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। 14 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण लालबाग के वर्कशॉप में शिल्पकार संतोष रत्नाकर कामले ने किया है। लालबाग से शुक्रवार की शाम को यहां प्रतिमा कोल्हापुर लाई गई, तो पुणे बेंगलोर हाईवे पर ही चौक पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ स्वागत किया। कोल्हापुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अब यहां गणपति पधार चुके हैं तो उन्हें विधि विधान से पंडाल में विराजित भी किया जाएगा और इस साल भी लोग एक बार फिर से विनायक की आराधना में डूब जाएंगे। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुजरात के गीर और उसके आसपास के इलाकों में शेरों का दिखाई देना अब आम बात बन चुकी है। शेरों का परिवार सड़कों पर घूमता नजर आ रहा है। गुजरात के गीर सोमनाथ के बीच सड़क पर चार शेरों ने रास्ता रोक लिया, अपना कब्जा जमा लिया। तभी एक बस वहां से गुजर रही थी, बस ड्राइवर ने बस रोक दी और इस रोमांचक पल को बस यात्रियों ने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक शेर और दो शेरनियां दिन के उजाले में सड़क पर आ गए हैं। शेरों को देखकर राहगीरों ने अपनी गाड़ियां रोक दी और पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वन विभाग को खबर मिली तो टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यातायात रोक दिया गया। शेरों को सुरक्षित सड़क पार कराई गई। और तीसरी तस्वीर जूनागढ़ की एक गांव की है, जहां रात के अंधेरे में दो शेर ऐसे घूम रहे हैं मानो किसी अनजान नहीं बल्कि जानी पहचानी जगह में घूम रहे हों। शेरों को देखते ही आसपास मौजूद डॉगीज ने भी भौंकना शुरू कर दिया। कुत्तों की आवाज सुनकर दोनों शेर वापस जंगल की ओर चले गए। वन विभाग का कहना है कि यदि शेरों को सुरक्षित रास्ता दिया जाए और उन्हें शांतिपूर्वक आगे बढ़ने दिया जाए तो वे आमतौर पर खुद ही अपने रास्ते जंगल की ओर चले जाते हैं। शेरों का पीछा करने या परेशान करने से ही हालात गंभीर हो जाते हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: गुजरात के साबूतारा में मेघ मल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों ने लिया रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। भक्ति के रंग में रंगी रामनगरी अयोध्या, सरयू घाट से लेकर रामपद तक कांवड़ियों की कतार, चारों तरफ हर हर महादेव और बोलबम की गूंज। हरिद्वार में डाक कांवड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने हर की पैड़ी पहुंचे डाक कांवड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। वाराणसी में बदला गया संध्या आरती का स्थान, गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फैसला, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बरती जा रही है सावधानी। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रुद्राभिषेक की। जी हाँ, सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में अक्सर लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं, तो इसका महत्व क्या होता है और कौन से माह में हमें रुद्राभिषेक करवाना चाहिए, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।
1: देखिए, शिवलिंग पर आप कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं वो अभिषेक नहीं होता। शिवलिंग पर जब मंत्रों के साथ वस्तुएं अर्पित की जाती हैं तब उसको अभिषेक कहते हैं। आप अगर मंत्रों के साथ जल अर्पित करेंगे तो उसको जलाभिषेक कहा जाएगा, बिना मंत्रों के वस्तुएं अर्पित करने को अभिषेक नहीं कहते।
0: और चलिए अब देख लेते हैं 9 अगस्त 2026 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 11:04 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, दोपहर 2:43 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि ये रुद्राभिषेक होता क्या है और क्या है इसकी महिमा।
1: जी देखिए, जैसा कि गीतिका ने कहा कि सावन के महीने में बहुत सारे लोग रुद्राभिषेक करवाते हैं और सामान्य जीवन में भी आवश्यकता के अनुसार रुद्राभिषेक करवाते रहते हैं। आखिर ये रुद्राभिषेक होता क्या है? रुद्र और शिव पर्यायवाची शब्द हैं। शिव को ही रुद्र कहा जाता है। रुद्र शिव का प्रचंड स्वरूप है। भगवान शिव की कृपा से समस्त ग्रह बाधाओं का, समस्त समस्याओं का नाश किया जा सकता है। और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। जब मंत्रों के साथ अलग अलग वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित की जाती हैं तो इस पद्धति को रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करना और भी शुभ होता है। इसमें शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इसके अलावा जीवन में अगर कोई कष्ट आए या ग्रहों की बाधा आए, ग्रहों की पीड़ा आए, तो उसको दूर करने के लिए भी रुद्राभिषेक किया जाता है। जीवन में रक्षा के लिए और कष्ट को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक अमोघ माना जाता है।
0: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
1: मेष राशि, धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं, यात्रा की स्थिति बन रही है, संतान पक्ष की उन्नति होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, काम की अधिकता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए अब जान लेते हैं कि किस प्रकार के शिवलिंग पर हमें रुद्राभिषेक करना चाहिए।
1: देखिए, दुनिया भर में अलग अलग तरह के शिवलिंगों की पूजा की जाती है। किस प्रकार के शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना चाहिए? मंदिर के शिवलिंग पर जो प्राण प्रतिष्ठित होकर स्थापित किया गया है उस पर रुद्राभिषेक करना काफी उत्तम होता है। इसके अलावा घर में पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। घर से ज्यादा मंदिर में, मंदिर से ज्यादा नदी के तट पर और नदी के तट से ज्यादा पर्वतों पर रुद्राभिषेक फलदायी होता है। शिवलिंग के अभाव में अंगूठे को भी शिवलिंग मानकर उसका अभिषेक और पूजा की जा सकती है। अलग अलग तरह से रुद्राभिषेक किया जाता है। अलग अलग तरह के शिवलिंगों पर अलग अलग तरीके से पदार्थ के रुद्राभिषेक होता है और उसके अलग अलग फल जीवन में प्राप्त होते हैं।
0: और चलिए अब जान लेते हैं किस पदार्थ से अभिषेक करने से हमें किस प्रकार का फल प्राप्त होता है।
1: रुद्राभिषेक बहुत सारे पदार्थों से किया जाता है और हर पदार्थ से अभिषेक करने के फल अलग अलग होते हैं। जैसे घी की धारा से अगर अभिषेक किया जाए तो वंश का विस्तार होता है। इक्षुरस यानी गन्ने के रस से अभिषेक करने पर मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कुंडली के और जीवन के दुर्योग नष्ट हो जाते हैं। शक्कर मिले हुए दूध से अभिषेक करने से व्यक्ति विद्वान हो जाता है, व्यक्ति को अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। शहद से अभिषेक करने पर पुरानी से पुरानी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं और गाय के दूध से अभिषेक करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। शक्कर मिले हुए जल से अभिषेक करने पर संतान प्राप्ति सरल हो जाती है और भस्म से अभिषेक करने पर व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सरसों के तेल से भी शिव जी का अभिषेक होता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है। सामान्य स्थितियों में मारण प्रयोग नहीं करना चाहिए।
0: और आइए अब जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का क्या है राशिफल।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है, पारिवारिक उलझने परेशान करेंगी, शांति और धैर्य बनाए रखें, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, परिवार में शुभ कार्य होगा, धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, नौकरी में सुधार होगा, अतिथि का आगमन होगा, यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और अब वक्त हो गया है सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न निर्मला जी ने हमें लिखा है और निर्मला जी हमें ऋषिकेश से मेल लिखती हैं। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 13 मई 2002, जन्म का समय सुबह के 11:05, जन्म स्थान है ऋषिकेश। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र गवर्नमेंट जॉब में सरकारी नौकरी में जाना चाहता है और उसके लिए तैयारी कर रहा है, क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिलेगी? निर्मला जी, आपके बेटे की कुंडली में प्रशासनिक सेवा में प्रशासन में जाने के योग दिखाई देते हैं, तो अगर आपका बेटा यूपीएससी की तैयारी करे या उत्तराखंड के स्टेट पीसीएस की तैयारी करे तो उसमें आपके बेटे का सिलेक्शन हो सकता है। बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में जाने के योग इनके लिए बनते हैं। इनकी एकाग्रता बेहतर हो, मन लगाकर पढ़ाई कर सकें, इसके लिए इनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिएगा। 8-9 रत्ती का पन्ना चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को इनको एक पन्ना पहनाएं और सुबह शाम इनको कहें कि हनुमान चालीसा का पाठ करें तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा।
0: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से पूछना, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए, अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का, तो जानते हैं पंडित जी से ही आज का दूसरा सवाल वो किसका लेंगे।
1: जी अगला

0: प्रश्न गरिमा वत्स ने हमें लिखा है और गरिमा हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अक्टूबर 1985। जन्म का समय दोपहर में 3:55। जन्म का स्थान है देवरिया। मेल लिखती हैं लखनऊ से। गरिमा कह रही हैं कि मेरे पति का देहांत कोरोना काल में हो गया था और मैं फिलहाल लखनऊ में रहती हूं। मेरा एक बेटा भी है, नौकरी कर रही हूं मैं। क्या आगे मेरा दूसरा विवाह हो सकता है? क्या मेरे दूसरे विवाह की संभावना बनती है? गरिमा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह की संभावना जरूर बनती है। साल 2027 के अप्रैल के बाद आपका दूसरा विवाह होगा आपकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ, और दूसरा विवाह कुल मिला जुला के आपका सफल रहेगा। एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि कब रुद्राभिषेक करना उत्तम और अनुकूल होता है।
0: देखिए, रुद्राभिषेक का एक नियम है, अलग अलग तिथियों में शिव जी की अलग अलग उपस्थिति होती है। तो रुद्राभिषेक के लिए शिव जी की उपस्थिति देखना अत्यंत आवश्यक है। बिना शिव जी का निवास देखे हुए कभी भी रुद्राभिषेक ना करें, नहीं तो इसके परिणाम उल्टे हो सकते हैं, काफी खराब हो सकते हैं। एक बात जरूर समझिए कि शिव जी का निवास देखना तभी आवश्यक है जब मनोकामना पूर्ति के लिए आप अभिषेक कर रहे हों। केवल भक्ति के लिए, केवल शिव जी की कृपा पाने के लिए बिना कामना के अगर रुद्राभिषेक कर रहे हैं तो उसमें शिव जी का निवास देखना आवश्यक नहीं है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, चिंताएं दूर होंगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, महत्वपूर्ण काम अभी रुक सकते हैं, वाहन सावधानी से चलाएं, गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे, करियर की समस्या हल होगी, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए अब जान लेते हैं कि कब शिवजी का निवास मंगलकारी होता है।
0: देखिए, शिवजी का निवास जब मंगलकारी होता है तब आप मनोकामना के साथ सकाम रुद्राभिषेक कर सकते हैं। कब मंगलकारी होता है? प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और नवमी, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और अमावस्या के दिन शिव जी मां गौरी के साथ होते हैं। ये उनका निवास मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी और एकादशी को, शुक्ल पक्ष की पंचमी और द्वादशी को महादेव कैलाश पर रहते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी को शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी पर शिव जी नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व का भ्रमण करते हैं। ये निवास भी मंगलकारी है। इन तिथियों में महादेव का निवास मंगलकारी होता है और जब उनका निवास मंगलकारी होता है तब आप कामना के साथ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक कर सकते हैं।
1: और चलिए अब जानते हैं कि कब शिवजी का निवास अनिष्टकारी होता है।
0: अगर शिवजी का निवास अनिष्टकारी है तो उन तिथियों में आप सकाम यानी मनोकामना का रुद्राभिषेक नहीं कर सकते। कब अनिष्टकारी होता है? कृष्ण पक्ष की सप्तमी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी और पूर्णिमा में भगवान शिव स्मशान में समाधि में रहते हैं। ये समय अच्छा नहीं होता। कृष्ण पक्ष की द्वितीया नवमी, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। ये स्थिति भी कल्याणकारी नहीं होती। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और एकादशी में भगवान शिव यानी नटराज क्रीड़ा में रहते हैं, क्रीड़ा रत रहते हैं। ये निवास भी मंगलकारी नहीं है। कृष्ण पक्ष की षष्ठी त्रयोदशी और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में भगवान शिव भोजन करते हैं। ये तिथि भी अनुकूल नहीं है। इन तिथियों में सकाम रुद्राभिषेक मनोकामना पूर्ण करने के लिए रुद्राभिषेक नहीं किया जा सकता।
1: और आइए अब जानते हैं कि कब तिथियों का विचार नहीं किया जाता।
0: रुद्राभिषेक में तिथियों का विचार करना अगर कामना वाला रुद्राभिषेक है तो जरूरी है, लेकिन कब तिथियों का विचार ना करें? शिवरात्रि, प्रदोष और सावन के सोमवार को सिद्ध पीठ में या ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में शिव जी के निवास का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये स्थान और ये समय हमेशा मंगलकारी होता है। सामान्यतः अगर आप भक्ति के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, अगर आप बिना किसी मनोकामना के केवल भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करना चाहते हैं, निष्काम अभिषेक करना चाहते हैं, तो उसमें भी तिथियों का विचार नहीं किया जाता।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज के अंतिम राशि के राशिफल के बारे में, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशि के राशिफल के बारे में।
0: मकर राशि, रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ हो सकता है, मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रहे हैं, मानसिक समस्याएं समाप्त होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, बदलाव के निर्णयों में सावधानी रखें, अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और आइए अब जान लेते हैं आज का तीसरा प्रश्न, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न शशिबाला जी ने हमें लिखा है और शशिबाला जी वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमें मेल लिखती हैं। 13 जनवरी 1980 का जन्म है, जन्म का समय है सुबह के 3:15 अर्ली मॉर्निंग, जन्म स्थान है रामनगर वाराणसी उत्तर प्रदेश। शशिबाला जी कह रही हैं कि पिछले कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य लगातार खराब रहता है और लगातार समस्याओं की वजह से मुझे दिक्कतें हो रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। शशिबाला जी, आपके डाइजेशन में पेट से संबंधित समस्या की संभावना बनती है और आपकी दिक्कत भी पेट से जुड़ी हुई है, तो आपको अपने खान पान को ठीक रखना होगा और बेवजह की चिंता करने से बचना होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें, 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने, रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करें या सुने, निरंतर ऐसा करें, आप 1.25 महीने में बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
1: और चलिए अब जान लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न, पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है और पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न किसका लेने वाले हैं।
0: जी, अगला प्रश्न कैलाश अग्रवाल जी ने हमें लिखा है और ये लखनऊ से हमें मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1965, जन्म का समय रात में 11:30, जन्म स्थान है बस्ती उत्तर प्रदेश, में लिखते हैं लखनऊ से। कैलाश जी कह रहे हैं कि मैं व्यापार करता हूं और फिलहाल मेरा बेटा भी मेरे व्यापार में शामिल हो गया है, लेकिन मेरे और मेरे बेटे का तालमेल नहीं बन पाता, जिस वजह से व्यापार में दिक्कतें आ रही हैं, क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले बता दूं कैलाश जी कि आपको अपने बेटे के साथ मिलकर के व्यापार नहीं करना चाहिए, आप अपने बेटे को अलग से कोई बिजनेस करवा दीजिए, क्योंकि साथ में अगर व्यापार करेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी, आपके पुत्र को भी दिक्कत होगी, और अगर थोड़ा दूर दूर रहकर अलग अलग व्यापार करें तो दोनों अपने अपने क्षेत्रों में तरक्की कर पाएंगे। आपके व्यापार के हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी बेहतर होंगे, चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनिएगा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और उसके बाद 108 बार ओम आदित्याय नमः का जप करिए, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
1: पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रुद्राभिषेक के बारे में। तो जब हम घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं तो शिवलिंग पे हम क्या वस्तु है वो रखते वक्त कौन से मंत्र है जिनका उच्चारण करें? अगर हमें वो मंत्र नहीं आते तो हमें क्या करना चाहिए?
0: जी देखिए, रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र इतने आसान नहीं है कि कोई भी आदमी रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र पढ़ के रुद्राभिषेक कर सके, जरा कठिन काम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शिव जी का अभिषेक नहीं कर सकते। भगवान शिव तो सबसे सरलता से प्रसन्न होते हैं और शास्त्र कहता है कि सिर्फ जल से ही शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको जो भी अर्पित करना है, जल है, शहद है, दूध है, दही है, पंचामृत है, आप जो भी अर्पित करना चाहें उस समय निरंतर अपने मन में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कहते जाएं और वस्तु एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आप शिवलिंग पर कोई वस्तु अर्पित करें और उसका पूरा लाभ आपके पूरे परिवार को मिले, तब आप शिवलिंग पर वस्तु अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय निरंतर कहते जाएं और वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अगर आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय निरंतर जप करने के साथ शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करेंगे तो निसंदेह आपको रुद्राभिषेक का शुभ फल प्राप्त होगा।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 9 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में चोट चपेट का ध्यान रखिएगा, धन और संपत्ति की बाधाएं दूर होंगी, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, हो सकता है साल के अंत में कोई वाहन खरीदें। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या जो ग्रह कुंडली में खराब है उससे संबंधित वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए? देखिए, जो ग्रह कुंडली में खराब है सामान्यतः उसकी वस्तुओं की तरफ आदमी का आकर्षण वैसे भी नहीं होता है, फिर भी अगर खराब ग्रह की वस्तुओं का ज्यादा प्रयोग किया जाए तो नुकसान हो सकता है। संतुलित मात्रा में और सोच समझकर कोई भी चीज आप सावधानी से खा सकते हैं।
1: और अब वक्त हो गया है 9 अगस्त 2026 यानी कि रविवार के शुभ पहर को जानने का।
0: दिनांक 9 अगस्त 2026 दिन रविवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान

0: रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और अब वक्त हो गया आज की गुडलक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं आज की गुडलक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग किस ग्रह का मंत्र जपें ताकि उनको लाभ हो। आज की गुडलक राशि है मीन। इनको नियमित रूप से बुध के मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन की तमाम बाधाएं दूर होंगी।
1: और गुडलक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही, पंडित जी आज का महा उपाय क्या है।
0: जी अगर आपकी संतान बीमार रहती हो, संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहती हो, तो क्या करेंगे, महीने में प्रदोष का व्रत अवश्य रखें। रोज सुबह और शाम अपनी संतान के लिए ओम नमः शिवाय का जप करें और अपने संतान के नाम से, बच्चे के नाम से सार्वजनिक स्थान पर 1, 2, 3, 4 जितना भी कर सकें बरगद के वृक्ष लगवा दें। ऐसा करने से संतान के स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: सावन के पावन महीने जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हरिद्वार की राह पर कांवड़ियों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या अब तक करोड़ों में पहुंच चुकी है। नए नए अंदाज में, नई तौर तरीके के साथ शिव भक्त कांवड़ लिए गंगा घाट जा रहे हैं। किसी ने भगवान शिव का रूप धरा हुआ है तो कोई अपने साथ उनकी सवारी यानी नंदी लेकर आ रहा है। भीड़ बहुत है, इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंत्री से लेकर अफसर तक मोर्चे पर डटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट।
3: कंधे पर कांवड़, उसमें गंगा जल, जुबा पर औघड़ दानी का जयकारा और मन में भोले भंडारी के दर्शन की इच्छा, यही विश्वास भक्तों को सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने की शक्ति देता है, प्रेरित करता है। धूप हो या बारिश, रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, लेकिन शिव भक्तों के कदम नहीं रुकते। पैरों में छाले पड़ जाते हैं, शरीर थक जाता है, फिर भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। हर तरफ सिर्फ एक ही जयकारा सुनाई दे रहा है, हर हर महादेव और बोल बम। हरिद्वार से लेकर दिल्ली NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रास्ते गेरुआ रंग में रंग चुके हैं। हर ओर कांवड़ियों की भीड़ चहलकदमी करती दिखाई दे रही है। हर कोई अपनी धुन में मगन, बस भोले का नाम जपते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे और पुष्प वर्षा कर शिव भक्तों का स्वागत किया। चूंकि 12 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है, ऐसे में कांवड़ यात्रा में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है। व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं। मेरठ में कांवड़ियों

0: लिए अलग समर्पित मार्ग की व्यवस्था की गई है। डाक कांवड़ और छोटे वाहनों की आवाजाही भी निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है। प्रशासन लगातार सभी शिव भक्तों से शांतिपूर्वक यात्रा करने और जिला प्रशासन और पुलिस का सहयोग करने की अपील कर रहा है, ताकि सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सकुशल यात्रा सुनिश्चित हो सके। चूंकि शिवरात्रि में अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में कांवड़ का समय अपने अंतिम और सबसे खास चरण में है, यानी डाक कांवड़ का दौर शुरू हो चुका है। हरिद्वार में हजारों की संख्या में डाक कांवड़ के वाहन हरिद्वार पहुंच चुके हैं और अभी तक करीब 3 करोड़ कांवड़िए गंगा जल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं, जबकि डाक कांवड़ के लिए कांवड़िए तैयारी कर रहे हैं। कोई 200 किलोमीटर तो कोई 250 और कोई 300 किलोमीटर दूर से कांवड़ लेने आया है। कांवड़ियों का कहना है कि उनकी टीम में 20 से 30 कांवड़िए हैं, जो हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर बारी बारी से अपने शिवालयों की ओर बिना रुके दौड़ते हुए जाते हैं। और लक्ष्य ये है कि आने वाली शिवरात्रि को भगवान भोले का गंगा जल से जलाभिषेक करें।
1: कल जल उठाएंगे 9 तारीख को और 11 अगस्त को लेके जाएंगे। 11 अगस्त को जल चढ़ाएंगे जी शिव मंदिर।
2: यहाँ से जल लेके जाओगे, कैसे जाओगे?
1: भागते हुए जाएंगे जी, दौड़ते हुए जाएंगे जी, मस्ती से जाएंगे जी, धूम से जाएंगे।
3: हम 10 बजे उठाएंगे 10 तारीख को और वो 12 बजे तक जल चढ़ाना है हमें। और वो 4 बाइक हमारे पास, हर एक बंदा 200 मीटर तक का सूट मारेगा। नहीं कोई परेशानी नहीं होता, बोला कि वो है मेरा।
4: करोड़ शंकर भगवान की जय।
5: 9 तारीख तो रात को 12 बजे खाएंगे और 11 तारीख तो 12 बजे चढ़ाएंगे। किस तरह से लेके जाओगे जल को? बादम फुटन फुट आगे मार।
6: हम यहाँ 10 तारीख को सुबह जल उठाएंगे और रात को 12 बजे से पहले वहाँ जल पहुँचना है हमें। 14 घंटे की हमारी कावड़ है। वैसे
5: इस तरह से लेके जाते हो डाक?
6: हमारे पास 4 बाइक है और 22 जने हम, 4 बाइकों पे 3 बंदे बैठेंगे, तो हम भाग के जाएंगे। कम से कम 200 मीटर का सूट निकाल लेंगे।
0: डाक कांवड़िया शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन कांवड़ यात्रा जारी है। इसमें भक्ति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। सहारनपुर से होकर गुजर रही कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की अलग अलग तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है। इसी बीच अम्बाला सिटी के रहने वाले 45 वर्षीय ब्रिजलाल भोले की 3 किलो की घंटी कांवड़ लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्रिजलाल पिछले 10 साल से अपनी कमर पर करीब 2.5 से 3 किलो की पीतल की घंटी बांध कर कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। घंटी की आवाज के कारण अब लोग उन्हें भोले का नंदी कहकर बुलाते हैं। ब्रिजलाल बताते हैं कि महज 10 साल की उम्र से अपने पिता के साथ कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। करीब 10 साल पहले उन्हें सूरदास जी ने घंटी कांवड़ की परंपरा के बारे में बताया था। ब्रिजलाल के मुताबिक वह सूरदास जी के साथ नीलकंठ से लौट रहे थे, तभी सूरदास जी ने कहा कि अगर रास्ते में तुम खो गए तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढ पाऊंगा। इसके बाद उन्होंने ब्रिजलाल की कमर में घंटी बांध दी। उनका कहना था कि जैसे नंदी के गले में घंटी होती है, उसी तरह ये घंटी भी उनकी पहचान बनेगी। ब्रिजलाल का कहना है कि ये घंटी अब उनकी पहचान बन चुकी है और घर वालों को भी इसकी आवाज से पता चल जाता है कि वो कहाँ हैं। कुछ शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने टोली के साथ बागपत जिले के शाहपुर बड़ौली गांव के लिए रवाना हुए हैं। करीब 180 किलोमीटर के सफर के दौरान कुछ कांवड़िए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, जिसे वो शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करने के बाद ही खोलेंगे। उनका कहना है कि आंखों पर पट्टी बांधने का उद्देश्य सिर्फ ये संदेश देना है कि समाज सनातन धर्म गौ माता पर हो रहे अत्याचारों को देख कर भी अनदेखा न करे।
7: ये मैंने आंख बांध के गौ के लिए कावड़ उठाई है, गौ के लिए जल चढ़ेगा अबकी बार। ये संदेश ये है कि हमारी गौ के साथ में गौ हत्या हो रही है, जो उसे रोकने के लिए और गौ माता को राष्ट्र दर्जा दिलाने के लिए हम अपनी गाय को साथ लेकर आए हैं।
0: सहारनपुर में भी ऐसी ही एक कांवड़ियों की टोली दिखी, जिन्होंने कांवड़ों को जोड़कर गौ रक्षा कांवड़ का भव्य स्वरूप बनाया है। हरियाणा के पंचकुला से आए इन कांवड़ियों का उद्देश्य गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने की मंशा का साफ संदेश देना है।
8: पंचकुला हरियाणा से है, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, कालका से आए हम। हमारा सफर है 270 किलोमीटर का और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने का यही कारण है कि जो गौ माता हमारी दर दर की ठोकरें खाती है, घरों के बाहर आती है, कूड़ा खा रही है, कूड़े में से पॉलोथीन है वगैरह सब कुछ, तो हम इतना नहीं कुछ कर सकते अभी। तो इसी को हमने एक स्लोगन दिया है कि कावड़ यात्रा पे एक स्लोगन गौ माता का चलाया जाए कि जिससे आम जनता हमारी जो है वो गौ माता की केयर कर सके।
0: कांवड़ यात्रा मार्ग पर आस्था, संकल्प और सेवा की अनूठी मिसालें देखने को मिल रही हैं। अब आप इनसे मिलिए। ये काजल चौधरी हैं, जो दिल्ली के शाहदरा में रहती हैं। ये अपनी 90 साल की सास को लेकर हरिद्वार से शाहदरा तक पैदल यात्रा पर निकली हैं। महिला कांवड़िया अपनी बुजुर्ग सास को साथ लेकर मोदी नगर मुरादनगर मार्ग से दिल्ली की ओर जा रही हैं। रास्ते में उन्हें देखकर लोग उनकी सराहना कर रहे हैं।
9: हमारी कोई मनोकामना नहीं है, हमारी तो खाली भक्ति भाव है, सेवा करना और कोई मन्नत नहीं हमारी। हम दिल्ली सादरा जाएंगे और हर की पैडी से लेकर आ रहे जन। मैं अपनी माता बहनों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि माता पिता से बढ़कर के कोई भी सेवा नहीं है और कोई भी पूजा नहीं है। उनकी जितनी सेवा हो जाए उतनी कम है।
0: काजल अपनी सास को वृंदावन की 84 कोसी परिक्रमा भी करा चुकी हैं। इसके बाद अब उन्होंने हरिद्वार से दिल्ली शाहदरा तक पैदल यात्रा का संकल्प लिया है। उम्र अधिक होने के बावजूद चंद्रो देवी का उत्साह बना हुआ है। हापुड़ के असोड़ा गांव के शिव भक्तों की टोली के करतब देख लोग तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे। थीम आधारित कांवड़ लेकर चल रहे इन कांवड़ियों की भगवान भोलेनाथ की बारात, अघोरियों का तांडव, शिवगणों की झांकी और आग उगलते कलाकारों की प्रस्तुति देख लोग हैरान भी हो रहे हैं, गुणगान भी कर रहे हैं। ये लोग जिधर से गुजर रहे हैं उधर भीड़ उमड़ पड़ रही है। विशेष कांवड़ में भगवान शिव के रौद्र और अघोर स्वरूप को जीवंत किया गया। झांकी में अघोरी, शिवगण, भूत प्रेत सभी दिखाई दिए। डमरू की गूंज, नरमुंडों की माला पहनकर शिव भक्तों का अघोरी तांडव, शंखनाद, विशेष लाइटिंग और कृत्रिम धुएं के बीच ऐसा माहौल बना कि पूरा माहौल हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से गूंज उठा। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के लिए हर साल कई विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस बार हाईटेक शिविर बनाई गई है, जिसकी डीजे नाइट श्रद्धालुओं के आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। यहाँ हाई प्रोफाइल साउंड सिस्टम, आकर्षक लाइटिंग और भगवान शिव के भजनों की मधुर धुनों के बीच कांवड़िये अपनी कई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा की थकान भूल जा रहे हैं। जैसे ही शाम ढलती है पूरा शिविर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है और भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो जाता है। इस हाईटेक शिविर में कांवड़ियों के लिए भोजन, विश्राम और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। सहारनपुर में उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें 21 मसाज मशीनों के साथ 6 डॉक्टरों की टीम तैनात है। यात्रा के दौरान इलाज से लेकर मसाज तक की सुविधा कांवड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही है।
10: मैं आपको ये बताना चाहूंगा, यह जो शिविर है ये पिछले 19 वर्ष से लगातार कांवड़ियों की सेवा में है। ये हमारा 20वां वर्ष है। हमारे अध्यक्ष श्री विवेक मनोचा जो कि महानगर अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में और साथियों के साथ की वजह से हमने लगभग 15x10 का शिविर स्टार्ट किया था आज से 20 साल पहले, और आज हम लगभग 100 फुट के कांवड़ शिविर के अंदर बैठे हुए हैं। पिछले साल हमने 6 मशीनें लगाई थी, इस साल हमारे पास 21 मशीनें कांवड़ियों की सेवार्थ है। ये मसाज मशीनें इस तरह से लगाई गई हैं क्योंकि हर शिविर के अंदर भोजन की व्यवस्था तो उत्तम से उत्तम है, पर कांवड़ियों की जो सबसे बड़ी आवश्यकता, इनकी थकान, इनकी परेशानी, इनकी पीड़ा, उसका हरण हाथ की मसाज से और मशीनों की मसाज से करने का प्रयास निरंतर हमारे द्वारा किया जा रहा है, ताकि इन कांवड़ियों की आगे की यात्रा सुगम और सफल हो।
0: सहारनपुर के इस खास पंडाल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 500 से 600 मोबाइल एक साथ चार्ज किया जा सकता है। चूंकि जमाना मोबाइल का है, इसलिए इसकी जरूरत सभी को पड़ रही है। मेरठ से उस्मान चौधरी, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल, सहारनपुर से राहुल कुमार, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और गाजियाबाद से मयंक गौड़, गुड न्यूज टुडे।
11: सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह तमाम इलाकों में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में बांदा और आसपास के इलाकों से श्रद्धालु कांवड़िये चित्रकूट से जल लेकर अपने क्षेत्रों में भोले बाबा को अर्पित करने के लिए जा रहे हैं। वहीं बहुत से कांवड़िये बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए भी रवाना हो रहे हैं। इस दरमियान सावन में कांवड़ यात्रा के कई खास रंग देखने को मिल रहे हैं। आप भी देखिए खास रिपोर्ट।
12: सावन सावन में कांवड़ यात्रा का उत्साह शिव भक्तों में देखते ही बनता है। सनातन के रंग में रंगीन कांवड़ियों में बच्चे भी हैं और युवा भी। कोई धनुष की शक्ल वाली कांवड़ लेकर चल रहा है तो कोई आदि योगी भगवान शिव की झांकी के साथ आस्था के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बांदा की हैं। शिव भक्ति में सराबोर सैकड़ों की संख्या में कांवड़े यहाँ से नाचते झूमते चित्रकूट जा रहे हैं। शहर में जगह जगह कांवड़ियों के स्वागत के लिए इंतजाम किए गए। घोड़े पर सवार नारी शक्ति कांवड़ियों के इस कारवा की अगुवाई करती नजर आई। शहर के कई चौराहों पर शिव भक्तों का जोरदार स्वागत हुआ। जिन बुलडोजर का इस्तेमाल तोड़फोड़ और विध्वंस में होता है उनसे यहाँ पर शहर से गुजर रहे कांवड़ियों के जुलूस पर फूल बरसाए गए। भगवान श्री राम के तपोस्थली चित्रकूट से मंदाकिनी नदी का जल लेकर लौटने के बाद कांवड़िये बांदा में केन नदी के किनारे बामबेश्वर पर्वत की एक प्राकृतिक गुफा में विराजमान बामदेव शिव मंदिर में जल अर्पित करेंगे।
13: कहाँ जा रहे हो कांवड़ लेके? क्या करोगे वहाँ से?
12: उत्तर प्रदेश के बांदा और आसपास के इलाकों में लगातार बड़ी संख्या में कांवड़िये मंदाकिनी नदी का जल लेने धर्मनगरी चित्रकूट पहुंच रहे हैं। अलग अलग समूहों में कांवड़िये पवित्र जल लेकर भगवान कामनाथ के दर्शन करते हुए अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।
14: लगभग 80 किलोमीटर की दूरी को यह कांवड़िया तय करेंगे, जो अपने ग्रुप में लगभग ये 500 लोग है जो एक साथ होकर के यहाँ से यह चित्रकूट पहुंचे हैं और यहां से जल लेकर के बांदा के लिए जा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कांवड़ियां हैं वह अपने कंधों पर कांवड़ लेकर के जल लेकर के पैदल जा रहे हैं और इनके घुंघरू भी पैरों पर बंधे हुए हैं, एक साथ बोल बम के नारे लगाते हुए बांदा के लिए निकल चुके हैं। और
12: यहाँ पर कांवड़ यात्रा में भगवान शिव की सुंदर पालकी भी साथ चल रही है। भगवान शिव के जयकारे और बोल बम के नारे लगाते हुए बिना थके आगे बढ़ते कांवड़िये भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा, तपस्या, आत्मसंयम और समर्पण की अनूठी तस्वीर पेश कर रहे हैं।
15: हम लोग फिलहाल जो हमारे ग्रुप है 9 सालों से बराबर करता चला आ रहा है।
16: तो क्या आस्था है, क्या मनोकामना है आप लोगों की?
15: जो है मनोकामना बस यही है, साल में एक बार सावन आता है इसीलिए हम लोग उसका उत्सव मनाते हैं।
17: हम लोग मौदा से आए हुए चित्रकूट धाम आने हैं और आलोक धाम से पानी भरा हुआ है, अब हम जाएंगे मौदा के लिए। बांदा में अपना स्थान है, अभी बांदा की कमेटी है और हम लोग मौदा गए, पूरी कमेटी हमारी मौदा जाएगी।
16: कहाँ जल करेंगे अर्पित आप उसको?
17: जल करेंगे हम मौदा में हमीरपुर जिले में, और हमारा बड़ी देवी मंदिर है, माना हुआ मंदिर है मौदा में, उसमें आप सम्मिलित करेंगे।
12: जहाँ एक और सावन में लाखों शिव भक्त भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा कर रहे हैं, वहीं इस दरमियान श्रद्धा, सेवा और संस्कार की शानदार तस्वीर एटा में भी देखने को मिली। चार युवकों ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अनोखी कांवड़ यात्रा शुरू की है। बेटों ने कांवड़ में एक और पिता को बैठाया और दूसरी ओर करीब 155 लीटर गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा शुरू की। ये यात्रा सोरों से गंगा जल भरने के बाद शुरू हुई और अब श्रद्धा, सेवा और समर्पण का संदेश देती हुई आगे बढ़ रही है। लोग पिता की सेवा और परिवार के प्रति समर्पण की मिसाल के रूप में इनकी सराहना कर रहे हैं। वही उत्तर प्रदेश का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी इन दिनों कांवड़ियों से पटा दिखाई दे रहा है। यहां से ट्रेन पकड़कर शिव भक्त कांवड़िये देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम रवाना हो रहे हैं। ऐसे में पूरा माहौल भक्तिमय दिखाई दे रहा है। बहुत से कांवड़ियों ने पहले वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किया और इसके बाद अब बाबा बैद्यनाथ धाम को जल अर्पित करने जा रहे हैं।
18: पूरी तरह से यहां पर जैसे ही ट्रेन आती है पूरा माहौल भगवामय हो जाता है और क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग बस एक ही मन में उद्देश्य और उल्लास लिए हुए बाबा धाम की तरफ कूच करते हैं, देवघर जाते हैं। आप देख सकते हैं भीड़ है जो ब्रह्मपुत्र मेल में सवार हो रही है। ब्रह्मपुत्र मेल से ये तमाम कांवड़िये जो हैं वो सुल्तानगंज जाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से, और वहां से जल लेकर के पैदल यात्रा करेंगे देवघर तक की।
12: सावन का पावन महीना चल रहा है तो हर तरफ श्रद्धा और भक्ति की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। सावन के आखिरी सोमवार और उसके बाद रक्षाबंधन के अवसर पर सावन के समापन तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहने वाला है। चंदौली से उदय गुप्ता, एटा से दिवेश पाल सिंह, चित्रकूट से अखिलेश सोनकर और बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, कुन्नी चुड़े।
19: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
23: गुड न्यूज़ टुडे।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
7: गुजरात के सापुतारा में मेघमल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5,00,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्जर तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्ज़र को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई, ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका। और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं, भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्र हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे, पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्जर लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर यह है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्जर को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्जर को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्जर तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेज़ी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्जर भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए, आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी कि फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स है उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपे भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155 mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155 mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे SH-15 का बम निकलता है स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में। उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वहीं SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकेंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर्स से भी ज़्यादा तेज है और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती हैं।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अब बात गणपति उत्सव की। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव अगले महीने मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करीब 1.25 महीने पहले ही गणपति पधार चुके हैं और लोगों में उत्साह उल्लास नजर आने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कोल्हापुर की है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से ढोल ताशे बजाकर बेहद शानदार भक्तिमय माहौल में गणपति की अगवानी की जा रही है। गाजे बाजे के साथ गजानन भगवान गणेश को कोल्हापुर शहर में लाया जा रहा है। वैसे तो इस बार गणपति उत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में तभी बाप्पा का आगमन होगा, लेकिन कोल्हापुर में विघ्नहर्ता परंपरा से हटकर एक महीने पहले ही पधारे तो क्या आम और क्या खास, तमाम लोग उनके दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों की उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: कोल्हापुर में भी मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के ही समान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा से श्रद्धालु मुंबई जाने के बजाय यहीं पर बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। 14 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण लालबाग के वर्कशॉप में शिल्पकार संतोष रत्नाकर कामली ने किया है। लालबाग से शुक्रवार की शाम को यहां प्रतिमा कोल्हापुर लाई गई, तो पुणे बेंगलोर हाईवे पर ही चौक पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ स्वागत किया। कोल्हापुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अब यहां गणपति पधार चुके हैं तो उन्हें विधि विधान से पंडाल में विराजित भी किया जाएगा और इस साल भी लोग एक बार फिर से विनायक की आराधना में डूब जाएंगे। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम।
8: गुजरात के सापुतारा में मेघ मल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
3: आप लोगों ने, अगर आप उज्जैन के वासी हैं, इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के वासी, तो आप लोगों ने अक्सर इनको देखा होगा, जाने माने हास्य कलात्मक और सांस्कृतिक कलाकारों की पूरी टोली है। शैलेंद्र यानी स्वामी मुस्कुराके जो इनका नाम है, इस मंडली के मार्गदर्शक भी हैं और मुख्य कलाकार भी, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे आज। शैलेंद्र व्यास वैसे पेशे से सम्मानित शिक्षक भी हैं, जिन्हें 2004 में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के सर्वोच्च शिक्षक से भी, शिक्षक सम्मान से भी नवाजा था। तो आज 39 साल से ये टोली इसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मुस्कुरा के टोली का, भस्म रमैया भक्त मंडल,
9: बजाओ ढोल।

0: परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के खिलखिला के क्या संदेश है, इसके पीछे आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ?
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ अच्छा, ये बताइए संदेश क्या देते हैं, आइडिया कहाँ से आया? और 39 साल से लगातार शिव बारात में आपकी पूरी टोली चलती है इसी तरीके से।
1: देखिए, हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है वो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना वैभव लिए। हर प्रदेश में अपनी अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार के राजा महाराजा हुए हैं। तो वर्ष 80 के दशक में हमारे बचपन के मित्र और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शतावधानी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव जी, हम साथ में महाकाल की सवारी देखने गए थे। और जब महाकाल की सवारी को प्रथम बार देखा तो ऐसा लगा कि कहीं से घंटिया बजी के हमको भी इस सवारी का पार्ट बनना चाहिए। तब से उधार की पगड़ी, उधार की धोती, उधार का कुर्ता, उधार की चप्पल लेके पहली बार सवारी में निकले। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे राजसी स्वरूप बढ़ता गया और स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के, स्वामी गुदगुदा के, पप्पू तलवार, ये सब जुड़ते गए और हमारी सनातन संस्कृति के प्रचार का आनंद आने लगा। और ये जो हमारी युवा तरुणाई है ना, फटी जींस पहनने वाली, उल्टी टोपी लगाने वाली या सिर पे गमला पहनने वाली, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि गमला संस्कृति में पलने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा वैभव, साफा पगड़ी, हमारा धोती कुर्ता, ये हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा है। तो आप पाश्चात्य संस्कृति को धारण करें लेकिन हमारी परंपरा की पगड़ी को जरूर पहने। जय महाकाल।

0: महामंडलेश्वर प्रवचनकार
1: हाँ।
0: ये मुस्कुराने के दाम लेते हैं। तो हमें लगा कि हम मुस्कुराहट को क्यों ना 100% डिस्काउंट पे मुस्कुराएं।
1: बहुत अच्छा किया।
0: तो ये मुस्कुराहट का रूप निकला है। नहीं सीखी हमने दास्ता आंसू बहाने की, नहीं सीखी है दास्ता हमने आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की। और तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की।
1: अच्छा एक चीज और, फिर उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कीजिएगा। शिव की नगरी में हम हैं, आप तो अक्सर हर सोमवार, क्योंकि सावन के सोमवार को सवारी निकलती है बाबा की, तो आप लोग साथ साथ होते हैं। आज क्या परफॉर्म करके दिखाने वाले?
0: देखिए शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। भस्म रमैया कहा जाता है भोलेनाथ महादेव, बाबा महाकाल। हमारे साथ भस्म रमैया भक्त मंडल श्री प्रवीण माधुस्कर का वो मंडल है जिसने देश विदेश में बाबा के डमरू झांझ ढोलक से उज्जैन महाकाल की सांस्कृतिक पहचान बनाई है। तो हम हमारी सांस्कृतिक वेशभूषाओं में हम बार बार, क्योंकि पुराने समय में पुराना इतिहास यदि आप देखेंगे तो राजा भोज के समय बाबा महाकाल की सवारी पूरे लाव लश्कर लवाजमे के साथ स्वयं राजा भोज आगे निकलते थे। उसके बाद सिंधिया काल में राणोजी सिंधिया जिन्होंने इस सवारी को एक नया कलात्मक रूप दिया, और वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी जिन्होंने इस सवारी में आदिवासी नृत्य, विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं संस्कृति के, केरल के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, हमारे मध्य माननीय सांसद जी विराजित हैं, यहाँ पर दो दो सांसद विराजित हैं। मैं चाहूंगा दो दो का जोरदार तालियों से स्वागत करें, श्री अनिल फिरोजा जी और दिल्ली के सांसद जो कि एक अच्छे गायक भी हैं, हम उनका भी वंदन करते हैं।
1: मनोज तिवारी जी,
0: मनोज तिवारी जी, आप पे वारी जाऊं तिवारी जी।
1: अच्छा अब ये बताइए आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं?
0: देखिए अब ये अलग अलग धुन है, मालवा की धुने हैं,
1: हाँ।
0: रजवाड़ी है, मटकी है, भेरू जी है, कश्मीरी है, ये सब मंडली यहाँ पर मुस्कुराएगी। और एक और भजन मंडली शयन भक्त आरती मंडल, इसके बाद वो भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देगी
1: जी, जी,
0: मुस्कुरा के
1: जी जी।

0: जेन जी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, जेन जी धर्म के साथ जुड़ी है, जेन जी नहीं जुड़ी, जेन जी को एजुकेट करने की जरूरत है, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपके साथ तो पूरी मुझे काफी हद तक जेन जी नजर आ ही रही है, तो कैसे जेल होता है?
1: देखिए, ये जो हमारे साथ मंडली है ये जेन जी नहीं है, ये सब शिवजी वाले हैं।
0: अच्छा, ये जेन जी नहीं है, शिवजी वाले हैं।
1: आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की मोड़ रही है, आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की ओर मोड़ रही है। उन्होंने तो धनुष तोड़ा था, ये ट्यूबलाइट, फर्नीचर और शासकीय संपत्ति तोड़ रही है।
0: उसी को तो रोकना है।
1: तो ठीक है, जैन जी ने अपना प्रयास किया, इन युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत है, इन युवाओं को स्नेह की जरूरत है, इनकी इनकी बातों को प्यार से सुनने की जरूरत है और इनको रोजगार की जरूरत
0: और एक मुस्कुराहट की जरूरत है।
1: मुस्कुराहट तो तभी आएगी जब रोजगार मिलेगा।

हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। फूल सी कोमल होती है बेटियां, फूल सी कोमल होती है बेटियां, और स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा करेगा केवल एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की मुस्कुराहट होती है बेटियां। तो आपका भस्म मनवैया भक्त मंडल, शयन आरती मंडल और मुस्कुरा के मंडली द्वारा भैया जब तक ताली नहीं बजाएंगे मुस्कुराएंगे नहीं। महाराज की भस्म मनवैया भक्त मंडल की आज के आनंद की जय।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: धर्म और शास्त्रों को जानने के लिए कहा जाता है कि केवल किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप आसपास हर किसी चीज से सीखते हैं, लेकिन दो चीजें आती हैं, धर्म को जानना और उसको मानना। हम सभी मानते हैं अपने धर्म को, हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन क्या वाकई हम उसे जानते हैं? जब उसे जानने की बात आती है तो हमें प्रैक्टिकलिटीज पे जाना पड़ता है, और उसके लिए मैं इस वक्त मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को, जो खुद एक पेंटर हैं, पोएट हैं, कथा वाचक भी हैं, और धर्म को मानने से ज्यादा उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संगीतकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राष्ट्रभक्त हैं। धर्म के जरिए कैसे राष्ट्रभक्ति को दिखाया जा रहा है और कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चरित्रार्थ करेंगे आज अपनी पेंटिंग्स के जरिए। भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक भी हैं और अपनी कला, कविताओं और भारत माता की आरती के माध्यम से पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राष्ट्र जागरण का कार्य ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इनका जन्म हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ललित कला में स्वर्ण पदक प्राप्त इन्होंने किया। इसके अलावा चित्रकला के अलावा व्यंगात्मक गायन, मंच संचालन में सदस्य हैं, और प्रमुख कार्य और उपलब्धियों की अगर हम इनकी बात करें तो अनेकों अनेक किताबें, 25 किताबें जो मेरे पास इस वक्त लिस्ट आई है प्रकाशित हो चुकी हैं, राष्ट्र और संस्कृति पर आधारित हैं। और अभी तक इन्होंने आंकड़ा गलत हो सकता है, आप सर करेक्ट कर सकते हैं, 1500 से ज्यादा शायद प्रस्तुतियां दी, और मेरे ख्याल से अनगिनत समय आप अमेरिका जा चुके हैं और सनातन का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। एक बार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सत्यनारायण मौर्य जी।
1: मूलतः जिसको हम धर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ शब्दों में कन्फ्यूजन है। जब भी बात करते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, तो वास्तव में धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन शब्दों का रिलीजन वो होता है जिसको कोई एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन भारत में हम जिसको कहते हैं सनातन धर्म, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। और इसमें जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़े, योग दर्शन पढ़े, अथा तो योग जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां अथा तो है, अथा स्टार्ट तो है लेकिन एंडिंग नहीं है। जब भी परमात्मा के बारे में कहा जाता है हम कहते हैं नेति नेति नेति, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। कुरान के हिसाब से अंत है, बाइबल के हिसाब से अंत है, किसी पंथ के हिसाब से अंत है, लेकिन हिंदुत्व के हिसाब से परमात्मा को जानने की चीज का अंत नहीं है। और कहा गया जानो, जैसे कोई बाप संपत्ति कमाता है और उसके बाद बेटे से यह नहीं कहता कि इतनी संपत्ति में संतोष करना है, बाप कहता मेरे से ज्यादा कमाना मुझे संतोष होगा। हमारे भारत के जितने ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं मैंने यहां तक कमाया है, तुम इसके आगे जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो। मानने के बाद तो बात खत्म हो जाती है, जो पंथ मान लेते हैं वे सड़ जाते हैं। इसी बात को मैं संगीत की भाषा में कहता हूं, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, केवल हम ही सच है ऐसा दिया कभी ना नारा, सच को

0: अभी मैं चाहता हूँ जो कहा गया था भगवान शंकर शरीर पर भस्म लगाते हैं और यहाँ पर भस्म आरती होती है, हमने तो सुना था मुर्दे की भस्म होती है, कोई मुर्दे की भस्म नहीं है। शंकर भगवान शरीर पर भस्म क्यों लगाए ये कॉलेज के बच्चे पूछेंगे, शंकर जी भस्म लगाते हैं पागल है क्या? और अगर वो भस्म लगाते हैं तो तुम भस्म लगाकर क्यों नहीं घूमते? भगवान गणेश हैं, इतने बड़े गणेश, मोटे पेट के गणेश, गणेश तो मोटे पेट के पसंद है पर खुद का पेट मोटा हो जाता बाबा रामदेव की शरण में जाते हैं। इन सब का अर्थ समझे, मैं चाहता हूँ भस्म से बात शुरू कर दूं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: शिव के तन की भस्मी से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम भारत के लोग, हम सनातनी लोग, शंकर जी डमरू बजाते कि नहीं बजाते हैं? बोलो ना। हाँ, पार्वती जी बिना, सरस्वती माता बिना बजाती कि नहीं बजाती है? नारद जी भी कुछ ना कुछ बजाते हैं, हनुमान जी को और कुछ ना मिले तो सोटा उठा के राक्षसों को बजाते हैं।

भगवान शंकर का परिवार, भगवान शंकर सन्यासी, भगवान शंकर सन्यासी और उनकी पत्नी राजकुमारी, आजकल जितने परिवार टूट रहे हैं इसी बात पे टूट रहे हैं, तेरे मेरे विचार नहीं मिलते। कहां से विचार मिलेंगे, एक बिल्कुल धनी घर की लड़की, एक सन्यासी, उनके दो बच्चे, पहले गणेश, पहले कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और गणेश का वाहन क्या है? जोर से बोलो। और शंकर जी के गले में क्या है? तो जरा सोच कर देखो,

0: बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव। श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
0: गुजरात के सापुतारा में मेघ बल्हार उत्सव का शुभारंभ। 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5,00,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन। भीड़, रूट, पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्ज़र तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्ज़र को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई, ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका। और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं, भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्ज़र लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर ये है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्ज़र को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्ज़र को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्ज़र तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पिट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेज़ी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्ज़र भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155 mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155 mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे ही SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें, बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वहीं SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर्स से भी ज़्यादा तेज है, और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और अब बात गणपति उत्सव की। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव अगले महीने मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करीब सवा महीने पहले ही गणपति पधार चुके हैं और लोगों में उत्साह उल्लास नजर आने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कोल्हापुर की है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से ढोल ताशे बजाकर बेहद शानदार भक्तिमय माहौल में गणपति की अगवानी की जा रही है। गाजे बाजे के साथ गजानन भगवान गणेश को कोल्हापुर शहर में लाया जा रहा है। वैसे तो इस बार गणपति उत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में तभी बाप्पा का आगमन होगा, लेकिन कोल्हापुर में विघ्नहर्ता परंपरा से हटकर एक महीने पहले ही पधारे तो क्या आम और क्या खास, तमाम लोग उनके दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों के उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: कोल्हापुर में भी मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के ही समान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा से श्रद्धालु मुंबई जाने के बजाय यहीं पर बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। 14 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण लालबाग के वर्कशॉप में शिल्पकार संतोष रत्नाकर कामली ने किया है। लालबाग से शुक्रवार की शाम को यहां प्रतिमा कोल्हापुर लाई गई, तो पुणे बेंगलोर हाईवे पर ही चौक पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ स्वागत किया। कोल्हापुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अब यहां गणपति पधार चुके हैं तो उन्हें विधि विधान से पंडाल में विराजित भी किया जाएगा और इस साल भी लोग एक बार फिर से विनायक की आराधना में डूब जाएंगे। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
4: गुजरात के सापुतारा में मेघ बल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
6: अविश्वास में विश्वास बसता है
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: आप लोगों ने, अगर आप उज्जैन के वासी हैं, इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के वासी, तो आप लोगों ने अक्सर इनको देखा होगा। जाने माने हास्य कलात्मक और सांस्कृतिक कलाकारों की पूरी टोली है। शैलेंद्र यानी स्वामी मुस्कुराके जो इनका नाम है, इस मंडली के मार्गदर्शक भी हैं और मुख्य कलाकार भी, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे आज। शैलेंद्र व्यास वैसे पेशे से सम्मानित शिक्षक भी हैं, जिन्हें 2004 में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के सर्वोच्च शिक्षक से भी, शिक्षक सम्मान से भी नवाजा था। तो आज 39 साल से ये टोली इसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मुस्कुरा के टोली का, भस्म रमैया भक्त मंडल।
1: बजाओ ढोल।

0: परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के, खिलखिला के, क्या संदेश है इसके पीछे, आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ अच्छा, ये बताइए संदेश क्या देते, आइडिया कहाँ से आया? और 39 साल से लगातार शिव बारात में आपकी पूरी टोली चलती है इसी तरीके से।
1: देखिए, हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है वो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना वैभव लिए। हर प्रदेश में अपनी अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार के राजा महाराजा हुए हैं। तो वर्ष 80 के दशक में हमारे बचपन के मित्र और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शतावधानी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव जी, हम साथ में महाकाल की सवारी देखने गए थे। और जब महाकाल की सवारी को प्रथम बार देखा तो ऐसा लगा कि कहीं से घंटिया बजी के हमको भी इस सवारी का पार्ट बनना चाहिए। तब से उधार की पगड़ी, उधार की धोती, उधार का कुर्ता, उधार की चप्पल लेके पहली बार सवारी में निकले। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे राजसी स्वरूप बढ़ता गया और स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के, स्वामी गुदगुदा के, पप्पू तलवार, ये सब जुड़ते गए और हमारी सनातन संस्कृति के प्रचार का आनंद आने लगा। और ये जो हमारी युवा तरुणाई है ना, फटी जींस पहनने वाली, उल्टी टोपी लगाने वाली या सिर पे गमला पहनने वाली, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि गमला संस्कृति में पलने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा वैभव, साफा पगड़ी, हमारा धोती कुर्ता, ये हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा है। तो आप पाश्चात्य संस्कृति को धारण करें लेकिन हमारी परंपरा की पगड़ी को जरूर पहने। जय महाकाल।

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए,
0: हाँ,
1: एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।
0: अच्छा,
1: और जितने आए हैं स्वामी

0: ये मुस्कुराहट का रूप निकला है। नहीं सीखी हमने दास्ता आंसू बहाने की, नहीं सीखी है दास्ता हमने आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की। और तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की।
1: अच्छा एक चीज और, फिर उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कीजिएगा। शिव की नगरी में हम हैं, आप तो अक्सर हर सोमवार, क्योंकि सावन के सोमवार को सवारी निकलती है बाबा की, तो आप लोग साथ साथ होते हैं। आज क्या परफॉर्म करके दिखाने वाले?
0: देखिए शिव की नगरी शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। भस्म रमैया कहा जाता है भोलेनाथ महादेव, बाबा महाकाल हमारे साथ, भस्म रमैया भक्त मंडल श्री प्रवीण माधुस्कर का वो मंडल है जिसने देश विदेश में बाबा के डमरू झांझ ढोलक से उज्जैन महाकाल की सांस्कृतिक पहचान बनाई है। तो हम हमारी सांस्कृतिक वेशभूषाओं में हम बार बार, क्योंकि पुराने समय में पुराना इतिहास यदि आप देखेंगे तो राजा भोज के समय बाबा महाकाल की सवारी पूरे लाव लश्कर लवाजमे के साथ स्वयं राजा भोज आगे निकलते थे। उसके बाद सिंधिया काल में राणोजी सिंधिया जिन्होंने इस सवारी को एक नया कलात्मक रूप दिया, और वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी जिन्होंने इस सवारी में आदिवासी नृत्य, विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं संस्कृति के, केरल के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, हमारे मध्य माननीय सांसद जी विराजित हैं, यहाँ पर दो दो सांसद विराजित हैं। मैं चाहूंगा दो दो का जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री अनिल फिरोजा जी, और दिल्ली के सांसद जो कि एक अच्छे गायक भी हैं, हम उनका भी वंदन करते हैं।
1: मनोज तिवारी जी,
0: मनोज तिवारी जी, आप पे वारी जाऊं तिवारी जी।
1: अच्छा अब ये बताइए आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं?
0: देखिए अब ये अलग अलग धुन है, मालवा की धुने हैं, रजवाड़ी है, मटकी है, भेरू जी है, कश्मीरी है, ये सब मंडली यहाँ पर मुस्कुराएगी, और एक और भजन मंडली शयन भक्त आरती मंडल इसके बाद वो भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देगी मुस्कुरा के।
1: जी जी, जी।

0: जेनजी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, जेनजी धर्म के साथ जुड़ी है, जेनजी नहीं जुड़ी, जेनजी को एजुकेट करने की जरूरत है, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपके साथ तो पूरी मुझे काफी हद तक जेनजी नजर आ ही रही है, तो कैसे जेल होता है?
1: देखिए, ये जो हमारे साथ मंडली है ये जेनजी नहीं है, ये सब शिवजी वाले हैं।
0: अच्छा, ये जेनजी नहीं है, शिवजी वाले हैं।
1: आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की मोड़ रही है, आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की ओर मोड़ रही है। उन्होंने तो धनुष तोड़ा था, ये ट्यूबलाइट, फर्नीचर और शासकीय संपत्ति तोड़ रही है।
0: उसी को तो रोकना है।
1: तो ठीक है, जैन जी ने अपना प्रयास किया, इन युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत है, इन युवाओं को स्नेह की जरूरत है, इनकी इनकी बातों को प्यार से सुनने की जरूरत है और इनको रोजगार की जरूरत
0: और एक मुस्कुराहट की जरूरत है।
1: मुस्कुराहट तो तभी आएगी जब रोजगार मिलेगा।

0: हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। फूल सी कोमल होती है बेटियां, फूल सी कोमल होती है बेटियां, और स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा करेगा केवल एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की मुस्कुराहट होती है बेटियां। तो आपका बस मनवैया भक्त मंडल, शयन आरती मंडल और मुस्कुरा के मंडली द्वारा भैया जब तक ताली नहीं बजाएंगे मुस्कुराएंगे नहीं।
1: महाकाल
0: महाराज की, बस मनवैया भक्त मंडल की, आज के आनंद की।
1: अरे

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: धर्म और शास्त्रों को जानने के लिए कहा जाता है कि केवल किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप आसपास हर किसी चीज से सीखते हैं, लेकिन दो चीजें आती हैं, धर्म को जानना और उसको मानना। हम सभी मानते हैं अपने धर्म को, हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन क्या वाकई हम उसे जानते हैं? जब उसे जानने की बात आती है तो हमें प्रैक्टिकलिटीज पे जाना पड़ता है, और उसके लिए मैं इस वक्त मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को, जो खुद एक पेंटर हैं, पोएट हैं, कथावाचक भी हैं, और धर्म को मानने से ज्यादा उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संगीतकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राष्ट्रभक्त हैं। धर्म के जरिए कैसे राष्ट्रभक्ति को दिखाया जा रहा है और कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चरित्रार्थ करेंगे आज अपनी पेंटिंग्स के जरिए। भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक भी हैं और अपनी कला, कविताओं और भारत माता की आरती के माध्यम से पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राष्ट्र जागरण का कार्य ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इनका जन्म हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ललित कला में स्वर्ण पदक प्राप्त इन्होंने किया। इसके अलावा चित्रकला के अलावा व्यंगात्मक गायन, मंच संचालन में सदस्य हैं, और प्रमुख कार्य और उपलब्धियों की अगर हम इनकी बात करें तो अनेकों अनेक किताबें, 25 किताबें जो मेरे पास इस वक्त लिस्ट आई है, प्रकाशित हो चुकी हैं, राष्ट्र और संस्कृति पर आधारित हैं। और अभी तक इन्होंने आंकड़ा गलत हो सकता है, आप सर करेक्ट कर सकते हैं, 1500 से ज्यादा शायद प्रस्तुतियां दी, और मेरे ख्याल से अनगिनत समय आप अमेरिका जा चुके हैं और सनातन का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। एक बार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सत्यनारायण मौर्य जी।
1: मूलतः जिसको हम धर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ शब्दों में कन्फ्यूजन है। जब भी बात करते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, तो वास्तव में धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन शब्दों का रिलीजन वो होता है जिसको कोई एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन भारत में हम जिसको कहते हैं सनातन धर्म, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। और इसमें जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़े, योग दर्शन पढ़े, अथा तो योग जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां अथा तो है, अथा स्टार्ट तो है लेकिन एंडिंग नहीं है। जब भी परमात्मा के बारे में कहा जाता है हम कहते हैं नेति नेति नेति, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। कुरान के हिसाब से अंत है, बाइबल के हिसाब से अंत है, किसी पंथ के हिसाब से अंत है, लेकिन हिंदुत्व के हिसाब से परमात्मा को जानने की चीज का अंत नहीं है। और कहा गया जानो, जैसे कोई बाप संपत्ति कमाता है और उसके बाद बेटे से यह नहीं कहता कि इतनी संपत्ति में संतोष करना है, बाप कहता मेरे से ज्यादा कमाना मुझे संतोष होगा। हमारे भारत के जितने ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं मैंने यहां तक कमाया है, तुम इसके आगे जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो। मानने के बाद तो बात खत्म हो जाती है, जो पंथ मान लेते हैं वे सड़ जाते हैं। इसी बात को मैं संगीत की भाषा में कहता हूं, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, केवल हम ही सच है।

0: अभी मैं चाहता हूँ, जो कहा गया था भगवान शंकर शरीर पर भस्म लगाते हैं और यहाँ पर भस्म आरती होती है, हमने तो सुना था मुर्दे की भस्म होती है, कोई मुर्दे की भस्म नहीं है। शंकर भगवान शरीर पर भस्म क्यों लगाए, ये कॉलेज के बच्चे पूछेंगे। शंकर जी भस्म लगाते हैं, पागल है क्या? और अगर वो भस्म लगाते हैं तो तुम भस्म लगाकर क्यों नहीं घूमते? भगवान गणेश हैं, इतने बड़े गणेश, मोटे पेट के गणेश। गणेश तो मोटे पेट के पसंद है, पर खुद का पेट मोटा हो जाता बाबा रामदेव की शरण में जाते हैं। इन सबका अर्थ समझे, मैं चाहता हूँ भस्म से बात शुरू कर दूं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: शिव के तन की भस्मी से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम भारत के लोग, हम सनातनी लोग, शंकर जी डमरू बजाते कि नहीं बजाते हैं, बोलो ना। हाँ, पार्वती जी बिना, सरस्वती माता बिना बजाती कि नहीं बजाती है? नारद जी भी कुछ ना कुछ बजाते हैं, हनुमान जी को और कुछ ना मिले तो सोटा उठा के राक्षसों को बजाते।

भगवान शंकर का परिवार, भगवान शंकर सन्यासी, भगवान शंकर सन्यासी और उनकी पत्नी राजकुमारी, आजकल जितने परिवार टूट रहे हैं इसी बात पे टूट रहे हैं, तेरे मेरे विचार नहीं मिलते। कहां से विचार मिलेंगे, एक बिल्कुल धनी घर की लड़की, एक सन्यासी, उनके दो बच्चे, पहले गणेश, पहले कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और गणेश का वाहन क्या है? जोर से बोलो। और शंकर जी के गले में क्या है? तो जरा सोच कर देखो,

0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: गुजरात के सापुतारा में मेघ मल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5,00,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्जर तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्जर को भारत की सीमाओं के बाहर डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्जर तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्जर सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्जर की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्ज़र लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर यह है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्ज़र को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्ज़र को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्ज़र तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्ज़र भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी कि फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे ही SH-15 का बम निकलता है, स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा, रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा, कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें, बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm x 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वही SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 एक मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपे भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30 से 60 सेकेंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो है इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती हैं।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अब बात गणपति उत्सव की। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव अगले महीने मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करीब सवा महीने पहले ही गणपति पधार चुके हैं और लोगों में उत्साह उल्लास नजर आने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कोल्हापुर की है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से ढोल ताशे बजाकर बेहद शानदार भक्तिमय माहौल में गणपति की अगवानी की जा रही है। गाजे बाजे के साथ गजानन भगवान गणेश को कोल्हापुर शहर में लाया जा रहा है। वैसे तो इस बार गणपति उत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में तभी बाप्पा का आगमन होगा, लेकिन कोल्हापुर में विघ्नहर्ता परंपरा से हटकर एक महीने पहले ही पधारे तो क्या आम और क्या खास, तमाम लोग उनके दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों की उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: कोल्हापुर में भी मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के ही समान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा से श्रद्धालु मुंबई जाने के बजाय यहीं पर बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। 14 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण लालबाग के वर्कशॉप में शिल्पकार संतोष रत्नाकर कांबली ने किया है। लालबाग से शुक्रवार की शाम को यहां प्रतिमा कोल्हापुर लाई गई, तो पुणे बेंगलोर हाईवे पर ही चौक पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ स्वागत किया। कोल्हापुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अब यहां गणपति पधार चुके हैं तो उन्हें विधि विधान से पंडाल में विराजित भी किया जाएगा और इस साल भी लोग एक बार फिर से विनायक की आराधना में डूब जाएंगे। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
5: गुजरात के सापुतारा में मेघ बल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
6: आप लोगों ने, अगर आप उज्जैन के वासी हैं, इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के वासी, तो आप लोगों ने अक्सर इनको देखा होगा, जाने माने हास्य कलात्मक और सांस्कृतिक कलाकारों की पूरी टोली है। शैलेंद्र यानी स्वामी मुस्कुराके जो इनका नाम है, इस मंडली के मार्गदर्शक भी है और मुख्य कलाकार भी, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे आज। शैलेंद्र व्यास वैसे पेशे से सम्मानित शिक्षक भी है, जिन्हें 2004 में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के सर्वोच्च शिक्षक से भी, शिक्षक सम्मान से भी नवाजा था। तो आज 39 साल से ये टोली इसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मुस्कुरा के टोली का, भस्म रमैया भक्त मंडल
7: बजाओ ढोल।

0: परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के, खिलखिला के, क्या संदेश है इसके पीछे, आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की
0: जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ अच्छा, ये बताइए संदेश क्या देते हैं, आइडिया कहाँ से आया? और 39 साल से लगातार शिव बारात में आपकी पूरी टोली चलती है इसी तरीके से।
1: देखिए, हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है वो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना वैभव लिए। हर प्रदेश में अपनी अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार के राजा महाराजा हुए हैं। तो वर्ष 80 के दशक में हमारे बचपन के मित्र और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शतावधानी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव जी, हम साथ में महाकाल की सवारी देखने गए थे। और जब महाकाल की सवारी को प्रथम बार देखा तो ऐसा लगा कि कहीं से घंटिया बजी के हमको भी इस सवारी का पार्ट बनना चाहिए। तब से उधार की पगड़ी, उधार की धोती, उधार का कुर्ता, उधार की चप्पल लेके पहली बार सवारी में निकले। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे राजसी स्वरूप बढ़ता गया और स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के, स्वामी गुदगुदा के, पप्पू तलवार, ये सब जुड़ते गए और हमारी सनातन संस्कृति के प्रचार का आनंद आने लगा। और ये जो हमारी युवा तरुणाई है ना, फटी जींस पहनने वाली, उल्टी टोपी लगाने वाली या सिर पे गमला पहनने वाली, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि गमला संस्कृति में पलने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा वैभव, साफा पगड़ी, हमारा धोती कुर्ता, ये हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा है। तो आप पाश्चात्य संस्कृति को धारण करें लेकिन हमारी परंपरा की पगड़ी को जरूर पहने। जय महाकाल।
0: चलिए।

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए हैं,
0: हाँ।
1: एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।
0: अच्छा,
1: और जितने आए हैं स्वामी महामंडलेश्वर प्रवचनकार,
0: हाँ।
1: ये मुस्कुराने के दाम लेते हैं।
0: ओ।
1: तो हमें लगा कि हम मुस्कुराहट को क्यों ना 100% डिस्काउंट पे मुस्कुराएं।
0: बहुत अच्छा किया।
1: ये मुस्कुराहट का रूप निकला है। नहीं सीखी हमने दास्ता आंसू बहाने की, नहीं सीखी है दास्ता हमने आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की, और तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की।
0: अच्छा एक चीज और, फिर उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कीजिएगा। शिव की नगरी में हम हैं, आप तो अक्सर हर सोमवार, क्योंकि सावन के सोमवार को सवारी निकलती है बाबा की, तो आप लोग साथ साथ होते हैं, आज क्या परफॉर्म करके दिखाने वाले?
1: देखिए शिव की नगरी शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। भस्म रमैया कहा जाता है भोलेनाथ, महादेव बाबा महाकाल हमारे साथ, भस्म रमैया भक्त मंडल श्री प्रवीण माधुस्कर का वो मंडल है जिसने देश विदेश में बाबा के डमरू झांझ ढोलक से उज्जैन महाकाल की सांस्कृतिक पहचान बनाई है। तो हम हमारी सांस्कृतिक वेशभूषाओं में हम बार बार, क्योंकि पुराने समय में पुराना इतिहास यदि आप देखेंगे तो राजा भोज के समय बाबा महाकाल की सवारी पूरे लाव लश्कर लवाजमे के साथ स्वयं

0: यादव जी जिन्होंने इस सवारी में आदिवासी नृत्य विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं संस्कृति के केरल के आंध्र प्रदेश के कर्नाटक के हमारे मध्य माननीय सांसद जी विराजित हैं। यहाँ पर दो दो सांसद विराजित हैं। मैं चाहूंगा दो दो का जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री अनिल फिरोजा जी और दिल्ली के सांसद जो कि एक अच्छे गायक भी हैं, हम उनका भी वंदन करते हैं।
1: मनोज तिवारी जी,
0: मनोज तिवारी जी, आप पे वारी जाऊं तिवारी जी।
1: अच्छा, अब ये बताइए आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं?
0: देखिए, अब ये अलग अलग धुन है, मालवा की धुने हैं, रजवाड़ी है, मटकी है, भेरू जी है, कश्मीरी है, ये सब मंडली यहाँ पर मुस्कुराएगी। और एक और भजन मंडली शयन भक्त आरती मंडल, इसके बाद वो भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देगी मुस्कुरा के।
1: जी जी,

0: जेनजी को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही, जेनजी धर्म के साथ जुड़ी है, जेनजी नहीं जुड़ी, जेनजी को एजुकेट करने की जरूरत है, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। आपके साथ तो पूरी मुझे काफी हद तक जेनजी नजर आ ही रही है, तो कैसे जेल होता है?
1: देखिए, ये जो हमारे साथ मंडली है ये जेनजी नहीं है, ये सब शिवजी वाले हैं।
0: अच्छा, ये जेनजी नहीं है, शिवजी वाले हैं।
1: आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की मोड़ रही है, आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की ओर मोड़ रही है। उन्होंने तो धनुष तोड़ा था, ये ट्यूबलाइट, फर्नीचर और शासकीय संपत्ति तोड़ रही है।
0: उसी को तो रोकना है।
1: तो ठीक है, जैन जी ने अपना प्रयास किया, इन युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत है, इन युवाओं को स्नेह की जरूरत है, इनकी इनकी बातों को प्यार से सुनने की जरूरत है, और इनको रोजगार की जरूरत
0: और एक मुस्कुराहट की जरूरत है।
1: मुस्कुराहट तो तभी आएगी जब रोजगार मिलेगा।

0: हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। फूल सी कोमल होती है बेटियां, फूल सी कोमल होती है बेटियां, और स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा करेगा केवल एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की मुस्कुराहट होती है बेटियां। तो आपका बस मनवैया भक्त मंडल, शयन आरती मंडल और मुस्कुरा के मंडली द्वारा भैया जब तक ताली नहीं बजाएंगे मुस्कुराएंगे नहीं।
1: कुल
0: महाराज की, बस मनवैया भक्त मंडल की, आज के आनंद की जय।

0: संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: धर्म और शास्त्रों को जानने के लिए कहा जाता है कि केवल किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप आसपास हर किसी चीज से सीखते हैं। लेकिन दो चीजें आती हैं, धर्म को जानना और उसको मानना। हम सभी मानते हैं अपने धर्म को, हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन क्या वाकई हम उसे जानते हैं? जब उसे जानने की बात आती है तो हमें प्रैक्टिकलिटीज पे जाना पड़ता है, और उसके लिए मैं इस वक्त मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को, जो खुद एक पेंटर हैं, पोएट हैं, कथा वाचक भी हैं, और धर्म को मानने से ज्यादा उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संगीतकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राष्ट्रभक्त हैं। धर्म के जरिए कैसे राष्ट्रभक्ति को दिखाया जा रहा है और कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चरित्रार्थ करेंगे आज अपनी पेंटिंग्स के जरिए। भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक भी हैं और अपनी कला, कविताओं और भारत माता की आरती के माध्यम से पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राष्ट्र जागरण का कार्य ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इनका जन्म हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से ललित कला में स्वर्ण पदक प्राप्त इन्होंने किया। इसके अलावा चित्रकला के अलावा व्यंगात्मक गायन, मंच संचालन में सदस्य हैं, और प्रमुख कार्य और उपलब्धियों की अगर हम इनकी बात करें तो अनेकों अनेक किताबें, 25 किताबें जो मेरे पास इस वक्त लिस्ट आई है, प्रकाशित हो चुकी हैं, राष्ट्र और संस्कृति पर आधारित हैं। और अभी तक इन्होंने आंकड़ा गलत हो सकता है, आप सर करेक्ट कर सकते हैं, 1500 से ज्यादा शायद प्रस्तुतियां दी, और मेरे ख्याल से अनगिनत समय आप अमेरिका जा चुके हैं और सनातन का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। एक बार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सत्यनारायण मौर्य जी।
6: मूलतः जिसको हम धर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ शब्दों में कन्फ्यूजन है। जब भी बात करते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, तो वास्तव में धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन शब्दों का रिलीजन वो होता है जिसको कोई एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन भारत में हम जिसको कहते हैं सनातन धर्म, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। और इसमें जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़े, योग दर्शन पढ़े, अथा तो योग जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां अथा तो है, अथ स्टार्ट तो है लेकिन एंडिंग नहीं है। जब भी परमात्मा के बारे में कहा जाता है हम कहते हैं नेति नेति नेति, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। कुरान के हिसाब से अंत है, बाइबिल के हिसाब से अंत है, किसी पंथ के हिसाब से अंत है, लेकिन हिंदुत्व के हिसाब से परमात्मा को जानने की चीज का अंत नहीं है। और कहा गया जानो, जैसे कोई बाप संपत्ति कमाता है और उसके बाद बेटे से यह नहीं कहता कि इतनी संपत्ति में संतोष करना है, बाप कहता मेरे से ज्यादा कमाना मुझे संतोष होगा। हमारे भारत के जितने ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं मैंने यहां तक कमाया है, तुम इसके आगे जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो। मानने के बाद तो बात खत्म हो जाती है, जो पंथ मान लेते हैं वे सड़ जाते हैं। इसी बात को मैं संगीत की भाषा में कहता हूं, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, केवल हम ही सच है।

0: अभी मैं चाहता हूँ जो कहा गया था भगवान शंकर शरीर पर भस्म लगाते हैं और यहाँ पर भस्म आरती होती है, हमने तो सुना था मुर्दे की भस्म होती है, कोई मुर्दे की भस्म नहीं है। शंकर भगवान शरीर पर भस्म क्यों लगाए ये कॉलेज के बच्चे पूछेंगे। शंकर जी भस्म लगाते हैं पागल है क्या? और अगर वो भस्म लगाते हैं तो तुम भस्म लगाकर क्यों नहीं घूमते? भगवान गणेश हैं, इतने बड़े गणेश, मोटे पेट के गणेश, गणेश तो मोटे पेट के पसंद है पर खुद का पेट मोटा हो जाता बाबा रामदेव की शरण में जाते हैं। इन सबका अर्थ समझे मैं चाहता हूँ भस्म से बात शुरू कर दूं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: शिव के तन की भस्मी से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम भारत के लोग, हम सनातनी लोग, शंकर जी डमरू बजाते कि नहीं बजाते हैं? बोलो ना। हाँ, पार्वती जी वीणा, सरस्वती माता वीणा बजाती कि नहीं बजाती है? नारद जी भी कुछ ना कुछ बजाते हैं, हनुमान जी को और कुछ ना मिले तो सोटा उठा के राक्षसों को बजाते हैं।

भगवान शंकर का परिवार, भगवान शंकर सन्यासी, भगवान शंकर सन्यासी और उनकी पत्नी राजकुमारी, आजकल जितने परिवार टूट रहे हैं इसी बात पे टूट रहे हैं, तेरे मेरे विचार नहीं मिलते। कहां से विचार मिलेंगे, एक बिल्कुल धनी घर की लड़की, एक सन्यासी, उनके दो बच्चे, पहले गणेश, पहले कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और गणेश का वाहन क्या है? जोर से बोलो। और शंकर जी के गले में क्या है? तो जरा सोच कर देखो,

0: बहुत बहुत धन्यवाद। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: गुजरात के सापुतारा में मेघमल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती है।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्जर तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्जर को भारत की सीमाओं के बाद डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए वो मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रहित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्जर लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर यह है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्जर को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्जर को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्जर तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक्सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्जर भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेजी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155 mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155 mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र-1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, कि जैसे ही SH-15 का बम निकलता है स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पे जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है, जहाँ पर की गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है, इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड, यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइट वेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाई 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वही SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको हॉविट्सर, यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपे भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जा रहा है।
0: ATAGS की खासियत अगर देखा जाए तो हाई रेट ऑफ फायर है, लॉन्ग रेंज है, 48 किलोमीटर तक फायर करने में सक्षम है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, पूरा ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम है, फायर का कैलकुलेशन सब कुछ कंप्यूटराइज है, शूट एंड स्कूट है, यानी कि 6x6 इसके अंदर ड्राइव है जिसके द्वारा फटाफट फायर करके जगह बदली कर सकते हैं, बहुत हाई रेट ऑफ फायर है, यानी कि 5 राउंड तक 30-60 सेकेंड में निकल जाते हैं, जो कि बोफोर से भी ज़्यादा तेज है और देश में बना हुआ है, देश के अंदर निर्मित है। ये सब बातें जो हैं इसको भारत के लिए एक आर्टिलरी के लिए रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है।
1: अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स भी ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, इसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होविट्ज़र भी कहते हैं। होविट्ज़र यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है।
2: सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद तक के युद्ध में बड़ी और भारी तोपों का इस्तेमाल होता था। इन्हें लंबी दूरी तक ले जाने और ऊंचाई पर तैनात करने में काफी मुश्किलें होती थी। ऐसे में हल्की और छोटी तोप बनाई गई, जिन्हें होविट्ज़र कहा गया।
1: अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है, जिसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिलता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो।
2: भारत सिर्फ तोपों के भरोसे नहीं है, बल्कि मल्टी लेयर आर्टिलरी और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध प्रणाली पर काम कर रहा है। भारत के पास लंबी दूरी के प्रिसिजन स्ट्राइकर हथियार हैं, जो कि पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखते हैं। इनमें ब्रह्मोस, पिनाका, आर्टिलरी रॉकेट, आर्म ड्रोन शामिल हैं। ऐसे में इसलिए पाकिस्तान की SH-15 बैटरियां संघर्ष की स्थिति में भारतीय प्रिसिजन स्ट्राइक का टारगेट बन सकती है।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: और अब बात गणपति उत्सव की। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव अगले महीने मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करीब 1.25 महीने पहले ही गणपति पधार चुके हैं और लोगों में उत्साह उल्लास नजर आने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कोल्हापुर की है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से ढोल ताशे बजाकर बेहद शानदार भक्तिमय माहौल में गणपति की अगवानी की जा रही है। गाजे बाजे के साथ गजानन भगवान गणेश को कोल्हापुर शहर में लाया जा रहा है। वैसे तो इस बार गणपति उत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में तभी बाप्पा का आगमन होगा, लेकिन कोल्हापुर में विघ्नहर्ता परंपरा से हटकर एक महीने पहले ही पधारे तो क्या आम और क्या खास, तमाम लोग उनके दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों की उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: कोल्हापुर में भी मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के ही समान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा से श्रद्धालु मुंबई जाने के बजाय यहीं पर बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। 14 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण लालबाग के वर्कशॉप में शिल्पकार संतोष रत्नाकर कांबले ने किया है। लालबाग से शुक्रवार की शाम को यहां प्रतिमा कोल्हापुर लाई गई, तो पुणे बेंगलोर हाईवे पर ही चौक पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ स्वागत किया। कोल्हापुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अब यहां गणपति पधार चुके हैं तो उन्हें विधि विधान से पंडाल में विराजित भी किया जाएगा और इस साल भी लोग एक बार फिर से विनायक की आराधना में डूब जाएंगे। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: गुजरात के सापुतारा में मेघमल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, कई इलाकों में जलभराव से धीमी हुई ट्रैफिक की रफ्तार।
6: आप लोगों ने, अगर आप उज्जैन के वासी हैं, इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के वासी, तो आप लोगों ने अक्सर इनको देखा होगा, जाने माने हास्य कलात्मक और सांस्कृतिक कलाकारों की पूरी टोली है। शैलेंद्र यानी स्वामी मुस्कुराके जो इनका नाम है, इस मंडली के मार्गदर्शक भी है और मुख्य कलाकार भी, जिनसे हम बातचीत भी करेंगे आज। शैलेंद्र व्यास वैसे पेशे से सम्मानित शिक्षक भी है, जिन्हें 2004 में तब के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने देश के सर्वोच्च शिक्षक से भी, शिक्षक सम्मान से भी नवाजा था। तो आज 39 साल से ये टोली इसी तरीके से परफॉर्म कर रही है। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मुस्कुरा के टोली का भस्म रमैया भक्त मंडल
7: बजाओ ढोल।

0: परिचय कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मेरे पास जब ये लिस्ट आई, स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी दिल मिला के, स्वामी खिलखिला के एंड पप्पू तलवार जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी टोली का भी बहुत बहुत स्वागत है। ये मुस्कुरा के, खिलखिला के, क्या संदेश है इसके पीछे, आइडिया क्या है?
1: जब सब तरफ कहर है, जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है, और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो महाकाल का उज्जैन शहर है।
0: क्या बात है,
1: बोल महाकाल महाराज की जय।

0: स्वामी मुस्कुराके जी, ये आइडिया कहाँ से आया? और आप जब शिव बारात में निकलते हैं, क्या यही वेशभूषा होती है? आज तो आप महाराणा प्रताप बने हुए हैं, क्या यही वेशभूषा होती है या अलग अलग गेटअप्स में आप आ जाते हैं?
1: हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: क्या बात है।
1: इफ यू स्माइल अदर वन स्माइल, स्माइल गोज फॉर माइल्स। इफ यू वीप अलोन। तो हम बांटते हैं दुनिया को मुस्कुराहट के लच्छे।
0: हाँ।
1: और लोग कहते हैं हमको पागल, हम तो पागल ही अच्छे हैं।
0: ओ अच्छा, ये बताइए संदेश क्या देते, आइडिया कहाँ से आया? और 39 साल से लगातार शिव बारात में आपकी पूरी टोली चलती है इसी तरीके से।
1: देखिए, हमारे भारत की जो सनातन संस्कृति है वो अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना वैभव लिए। हर प्रदेश में अपनी अलग संस्कृति है, अलग पहचान है, अलग भाषा है, अलग अलग प्रकार के राजा महाराजा हुए हैं। तो वर्ष 80 के दशक में हमारे बचपन के मित्र और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, शताब्दी मुख्यमंत्री, विकास पुरुष डॉक्टर मोहन यादव जी, हम साथ में महाकाल की सवारी देखने गए थे। और जब महाकाल की सवारी को प्रथम बार देखा तो ऐसा लगा कि कहीं से घंटिया बजी के हमको भी इस सवारी का पार्ट बनना चाहिए। तब से उधार की पगड़ी, उधार की धोती, उधार का कुर्ता, उधार की चप्पल लेके पहली बार सवारी में निकले। और उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई कि धीरे धीरे राजसी स्वरूप बढ़ता गया और स्वामी मुस्कुरा के, स्वामी खिलखिला के, स्वामी गुदगुदा के, पप्पू तलवार, ये सब जुड़ते गए और हमारी सनातन संस्कृति के प्रचार का आनंद आने लगा। और ये जो हमारी युवा तरुणाई है ना, फटी जींस पहनने वाली, उल्टी टोपी लगाने वाली या सिर पे गमला पहनने वाली, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि गमला संस्कृति में पलने वाला देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमारा वैभव, साफा पगड़ी, हमारा धोती कुर्ता, ये हमारी सांस्कृतिक वेशभूषा है। तो आप पाश्चात्य संस्कृति को धारण करें लेकिन हमारी परंपरा की पगड़ी को जरूर पहने। जय महाकाल।
0: चलिए।

0: अच्छा ये बताइए स्वामी जी, ये मुस्कुरा के खिलखिला के आप लोगों ने खुद ही नाम रख लिए हैं।
1: देखिए वर्ल्ड में कई तरह के स्वामी आए,
0: हाँ,
1: एक भी मुस्कुरा के नहीं आया।
0: अच्छा,
1: और जितने आए हैं स्वामी महामंडलेश्वर प्रवचनकार,
0: हाँ,
1: ये मुस्कुराने के दाम लेते हैं।
0: ओ,
1: तो हमें लगा कि हम मुस्कुराहट को क्यों ना 100% डिस्काउंट पे मुस्कुराएं।
0: बहुत अच्छा किया,
1: ये मुस्कुराहट का रूप निकला है। नहीं सीखी हमने दास्ता आंसू बहाने की, नहीं सीखी है दास्ता हमने आंसू बहाने की, या अपनी हार पे तकदीर का शिकवा सुनाने की, और तकदीर का हर तीर बहका इसलिए हम पर, हमें हर चोट पर आदत रही है मुस्कुराने की।
0: अच्छा एक चीज और, फिर उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस शुरू कीजिएगा। शिव की नगरी में हम हैं, आप तो अक्सर हर सोमवार, क्योंकि सावन के सोमवार को सवारी निकलती है बाबा की, तो आप लोग साथ साथ होते हैं, आज क्या परफॉर्म करके दिखाने वाले?
1: देखिए शिव की नगरी शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके काम। भस्म रमैया कहा जाता है भोलेनाथ, महादेव बाबा महाकाल हमारे साथ, भस्म रमैया भक्त मंडल श्री प्रवीण माधुस्कर का वो मंडल है जिसने देश विदेश में बाबा के डमरू झांझ ढोलक से उज्जैन महाकाल की सांस्कृतिक पहचान बनाई है। तो हम हमारी सांस्कृतिक वेशभूषाओं में हम बार बार, क्योंकि पुराने समय में पुराना इतिहास यदि आप देखेंगे तो राजा भोज के समय बाबा महाकाल की सवारी पूरे लाव लश्कर लवाजमे के साथ स्वयं राजा भोज आगे निकलते थे। उसके बाद सिंधिया काल में राणोजी सिंधिया जिन्होंने इस सवारी को एक नया कलात्मक रूप दिया, और वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव जी जिन्होंने इस सवारी में आदिवासी नृत्य, विभिन्न विभिन्न सभ्यताओं संस्कृति के, केरल के, आंध्र प्रदेश के, कर्नाटक के, हमारे मध्य माननीय सांसद जी विराजित हैं, यहाँ पर दो दो सांसद विराजित हैं, मैं चाहूंगा दो दो का जोरदार तालियों से स्वागत करें, श्री अनिल फिरोजा जी और दिल्ली के सांसद जो कि एक अच्छे गायक भी हैं, हम उनका भी वंदन करते हैं।
0: मनोज तिवारी जी,
1: मनोज तिवारी जी, आप पे वारी जाऊं तिवारी जी।
0: अच्छा अब ये बताइए आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं?
1: देखिए अब ये अलग अलग धुन है, मालवा की धुने हैं,
0: हाँ।
1: रजवाड़ी है, मटकी है, भेरू जी है, कश्मीरी है, ये सब मंडली यहाँ पर मुस्कुराएगी, और एक और भजन मंडली शयन भक्त आरती मंडल इसके बाद वो भी यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देगी
0: जी, जी,
1: मुस्कुरा के
0: जी जी।

0: आज की युवा तरुणाई अपने आप को राम के आदर्शों की ओर मोड़ रही है। उन्होंने तो धनुष तोड़ा था, ये ट्यूबलाइट, फर्नीचर और शासकीय संपत्ति तोड़ रही है।
1: उसी को तो रोकना है।
0: तो ठीक है, जैन जी ने अपना प्रयास किया। इन युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत है, इन युवाओं को स्नेह की जरूरत है, इनकी इनकी बातों को प्यार से सुनने की जरूरत है और इनको रोजगार की जरूरत
1: है और एक मुस्कुराहट की जरूरत है।
0: मुस्कुराहट तो तभी आएगी जब रोजगार मिलेगा।

बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। फूल सी कोमल होती है बेटियां, फूल सी कोमल होती है बेटियां, और स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां। बेटा करेगा केवल एक ही कुल को रोशन, दो दो कुलों की मुस्कुराहट होती है बेटियां। तो आपका बस मनवैया भक्त मंडल, शयन आरती मंडल और मुस्कुरा के मंडली द्वारा भैया जब तक ताली नहीं बजाएंगे मुस्कुराएंगे नहीं। महाराज की, भस्म मैया भक्त मंडल की, आज के आनंद की।

0: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी
1: धर्म और शास्त्रों को जानने के लिए कहा जाता है कि केवल किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी कभी आप आसपास हर किसी चीज से सीखते हैं। लेकिन दो चीजें आती हैं, धर्म को जानना और उसको मानना। हम सभी मानते हैं अपने धर्म को, हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, लेकिन क्या वाकई हम उसे जानते हैं? जब उसे जानने की बात आती है तो हमें प्रैक्टिकलिटीज पे जाना पड़ता है, और उसके लिए मैं इस वक्त मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी बाबा सत्यनारायण मौर्य जी को, जो खुद एक पेंटर हैं, पोएट हैं, कथावाचक भी हैं, और धर्म को मानने से ज्यादा उसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा परिचय। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, संगीतकार भी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राष्ट्रभक्त हैं। धर्म के जरिए कैसे राष्ट्रभक्ति को दिखाया जा रहा है और कैसे हम राष्ट्र के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चरित्रार्थ करेंगे आज अपनी पेंटिंग्स के जरिए। भारत भक्ति संस्थान के संस्थापक भी हैं और अपनी कला, कविताओं और भारत माता की आरती के माध्यम से पूरी दुनिया में सांस्कृतिक राष्ट्र जागरण का कार्य ये कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में इनका जन्म हुआ। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से

0: कला में स्वर्ण पदक प्राप्त इन्होंने किया। इसके अलावा चित्रकला के अलावा व्यंगात्मक गायन मंच संचालन में सदस्य हैं और प्रमुख कार्य और उपलब्धियों की अगर हम इनकी बात करें तो अनेकों अनेक किताबें 25 किताबें जो मेरे पास इस वक्त लिस्ट आई है प्रकाशित हो चुकी हैं, राष्ट्र और संस्कृति पर आधारित हैं। और अभी तक इन्होंने आंकड़ा गलत हो सकता है आप सर करेक्ट कर सकते हैं 1500 से ज्यादा शायद प्रस्तुतियां दी और मेरे ख्याल से अनगिनत समय आप अमेरिका जा चुके हैं और सनातन का प्रचार प्रसार कर चुके हैं। बिल्कुल, तो चलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। एक बार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सत्यनारायण मौर्य जी।
1: मूलतः जिसको हम धर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, कुछ शब्दों में कन्फ्यूजन है। जब भी बात करते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, तो वास्तव में धर्म, मजहब, संप्रदाय, रिलीजन शब्दों का रिलीजन वो होता है जिसको कोई एक व्यक्ति चलाता है, लेकिन भारत में हम जिसको कहते हैं सनातन धर्म, ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं है। और इसमें जब भी हम कोई ग्रंथ पढ़े, योग दर्शन पढ़े, अथा तो योग जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां अथा तो है, अथ स्टार्ट तो है लेकिन एंडिंग नहीं है। जब भी परमात्मा के बारे में कहा जाता है हम कहते हैं नेति नेति नेति, ये अंत नहीं है, ये अंत नहीं है। कुरान के हिसाब से अंत है, बाइबल के हिसाब से अंत है, किसी पंथ के हिसाब से अंत है, लेकिन हिंदुत्व के हिसाब से परमात्मा को जानने की चीज का अंत नहीं है। और कहा गया जानो, जैसे कोई बाप संपत्ति कमाता है और उसके बाद बेटे से यह नहीं कहता कि इतनी संपत्ति में संतोष करना है, बाप कहता मेरे से ज्यादा कमाना मुझे संतोष होगा। हमारे भारत के जितने ऋषि मुनि हैं वो कहते हैं मैंने यहां तक कमाया है, तुम इसके आगे जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा को जानो। मानने के बाद तो बात खत्म हो जाती है, जो पंथ मान लेते हैं वे सड़ जाते हैं। इसी बात को मैं संगीत की भाषा में कहता हूं, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं हम ज्ञान की अविरल धारा, केवल हम ही सच है।

0: अभी मैं चाहता हूँ जो कहा गया था भगवान शंकर शरीर पर भस्म लगाते हैं और यहाँ पर भस्म आरती होती है, हमने तो सुना था मुर्दे की भस्म होती है, कोई मुर्दे की भस्म नहीं है। शंकर भगवान शरीर पर भस्म क्यों लगाए ये कॉलेज के बच्चे पूछेंगे, शंकर जी भस्म लगाते हैं पागल है क्या? और अगर वो भस्म लगाते हैं तो तुम भस्म लगाकर क्यों नहीं घूमते? भगवान गणेश हैं, इतने बड़े गणेश, मोटे पेट के गणेश, गणेश तो मोटे पेट के पसंद है पर खुद का पेट मोटा हो जाता बाबा रामदेव की शरण में जाते हैं, इन सबका अर्थ समझे। मैं चाहता हूँ भस्म से बात शुरू कर दूं।
1: जी जी बिल्कुल।
0: शिव के तन की भस्मी से अनुरोध करना चाहता हूँ, हम भारत के लोग, हम सनातनी लोग, शंकर जी डमरू बजाते कि नहीं बजाते हैं? बोलो ना। हाँ, पार्वती जी वीणा, सरस्वती माता वीणा बजाती कि नहीं बजाती है? नारद जी भी कुछ ना कुछ बजाते हैं, हनुमान जी को और कुछ ना मिले तो सोटा उठा के राक्षसों को बजाते।

भगवान शंकर का परिवार भगवान शंकर सन्यासी, भगवान शंकर सन्यासी और उनकी पत्नी राजकुमारी, आजकल जितने परिवार टूट रहे हैं इसी बात पे टूट रहे हैं, तेरे मेरे विचार नहीं मिलते। कहां से विचार मिलेंगे, एक बिल्कुल धनी घर की लड़की, एक सन्यासी, उनके दो बच्चे, पहले गणेश, पहले कार्तिकेय। कार्तिकेय का वाहन क्या है? मोर। और गणेश का वाहन क्या है? जोर से बोलो। और शंकर जी के गले में क्या है? तो जरा सोच कर देखो,

0: बहुत बहुत धन्यवाद। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज़ टुडे।

0: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
2: गुजरात के सापुतारा में मेघ मल्हार उत्सव का शुभारंभ, 12 राज्यों के 300 से अधिक कलाकारों ने बांधा समा, पर्यटकों के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आनंद। हरिद्वार में डाक कावड़ की तैयारी पूरी, पवित्र गंगा जल लेने अर्की पैड़ी पहुंचे डाक कावड़िए, शिवरात्रि पर करेंगे जलाभिषेक। खराब मौसम के चलते अगले आदेश तक पवित्र अमरनाथ यात्रा स्थगित, अब तक करीब 5,00,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, दोनों रूट्स पर हो रही है ट्रैक की मरम्मत। बिहार के मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला ऐप लॉन्च, घर बैठे बाबा गरीबनाथ के होंगे लाइव दर्शन, भीड़ रूट पार्किंग और भंडारे की मिलेगी जानकारी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को।

0: बॉर्डर पर बारूद का ढेर इकट्ठा हो रहा है। पहले चीन की साजिशों की तस्वीरें सामने आई और अब पाकिस्तान का खतरनाक प्लान डीकोड हो चुका है। सीमा पर अब सन्नाटा नहीं है बल्कि तोपों की गूंज सुनाई दे रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने 250 होविट्ज़र तोपों को एलओसी पर तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से ये एक बड़ी तोपबंदी है, यानी दुश्मन का एक और चक्रव्यूह। बॉर्डर पर सैन्य हलचल को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्या है पाकिस्तान की रणनीति और क्या है भारत का गेम प्लान।
1: पाकिस्तान ने करीब 250 SH-15 होविट्सर तोप को भारत के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमा पर व्यवस्थित रूप से तैनात करना शुरू कर दिया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये हाई मोबिलिटी होविट्सर उत्तर से दक्षिण तक रणनीतिक क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एलओसी पर 250 होविट्सर की तैनाती किसी बड़े सैन्य प्लान की तैयारी तो नहीं। आज रण क्षेत्र में पाकिस्तान की हर रणनीति और हर चुनौती का विश्लेषण होगा, साथ ही भारत की रणनीतिक तैयारी और सेना का गेम प्लान भी बताएंगे। कैसे भारत पाकिस्तान की चुनौती को आसानी से चकनाचूर करेगा।
0: 250 SH-15 होविट्जर तोप कई आर्टिलरी रेजिमेंट्स को पूरी तरह लैस करने के लिए काफी मानी जाती है, यानी पाकिस्तान किसी एक सेक्टर नहीं बल्कि पूरी भारत पाक सीमा पर अपनी फायर पावर बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन है या किसी बड़े सैन्य संदेश का हिस्सा।
2: पाकिस्तान बड़ी संख्या में SH-15 155 mm होविट्जर को भारत की सीमाओं के बाहर डिप्लॉय कर रहा है। ये सेल्फ प्रोपेल्ड गन है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। देखा जाए तो उद्देश्य क्या है, कई लोग कह रहे हैं कि क्यों ऐसा डिप्लॉय कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो देखा जाएगा कि ये एक आधुनिक गन है, चीन के साथ इन्होंने खरीदी है। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी आर्टिलरी की काफ़ी बेइज्जती हुई थी, काफ़ी उनको कमियां महसूस हुई। ये आधुनिकीकरण का हिस्सा है उनका, और जो अपनी जनता को बता रहे हैं कि चाहे हमारी जेब में पैसे नहीं हो लेकिन हम अभी भी अपनी सेनाओं को आधुनिक कर रहे हैं। भारत के लिए मैसेज दे रहे हैं कि हम तैयार हैं।
0: SH-15 को पाकिस्तान की लंबी दूरी की आर्टिलरी क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से खरीदा गया था और अब इसे एलओसी के संवेदनशील सेक्टर्स में तैनात किए जाने की खबरें हैं। होविट्ज़र तोपों की तैनाती की रिपोर्ट के बीच भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है।
3: अपने राष्ट्रीय हित में हमको जो भी चीज करना होगा वो हम करेंगे और उसके लिए हम हमेशा मुस्तैदी से तैनात रहते हैं।
1: मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की आर्टिलरी को बड़ा नुकसान पहुंचा था। पाकिस्तान अपनी इसी सैन्य कमजोरियों को दूर करने के लिए चीन की कंपनी नॉरिनको से 250 SH-15 होविट्ज़र सिस्टम हासिल किया है।
0: एलओसी पर SH-15 होविट्ज़र की तैनाती चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे होते रक्षा संबंधों और संयुक्त सैन्य अभ्यासों को दर्शाता है।
2: देखा जाए तो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते संबंध हैं इसको हमें काफ़ी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार देखा कि चीन पाकिस्तान को एक तरह से मेरे हिसाब से प्रॉक्सी के तौर पर खड़ा कर रहा है। कि भारत जब भी आज तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, बड़ी ताकत बन रहा है, थर्ड लार्जेस्ट GDP की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चीन सोच रहा है कि किस प्रकार से भारत को चीन की तरफ से ध्यान हटा के बाकी जगह में ध्यान लगा दे जाए। पाकिस्तान को खड़ा कर रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है और उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, पाकिस्तान को देश में बनाने में भी मदद कर रहा है।
0: SH-15 155 mm ट्रक माउंटेड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है। इसका मकसद सिर्फ गोलीबारी बढ़ाना नहीं है बल्कि भारत के फॉरवर्ड पोस्ट पर लंबी दूरी से दबाव बनाने की कोशिश है। भारतीय आर्टिलरी को लगातार काउंटर बैटरी में उलझाए रखना है और युद्ध के हालात में भारतीय रिजर्व और लॉजिस्टिक हब को भी खतरे में लाना है। पाकिस्तानी SH-15 अपनी घातक मारक क्षमता, हाई मोबिलिटी और शूट एंड स्कूट क्षमता से लेस है और LOC पर इसकी तैनाती के पीछे की रणनीति को भी समझना होगा। सबसे पहले कि SH-15 होविट्ज़र लंबी दूरी से भारतीय सैन्य ठिकानों पर दबाव बनाने की क्षमता बढ़ाना है। दूसरा ये कि किसी भी सीमा संघर्ष की स्थिति में तेजी के साथ आर्टिलरी सपोर्ट उपलब्ध कराना है। तीसरा, चीन से मिले आधुनिक हथियारों के जरिए पाकिस्तान अपनी पारंपरिक सैन्य क्षमता को मजबूत दिखाना चाहता है।
2: ऑपरेशन सिंदूर में जो उनकी पिटाई हुई, उसके बाद से इन्होंने ये डिप्लॉयमेंट किए कि अगर दोबारा ऑपरेशन सिंदूर टाइप होता है, जंग होती है, तो कहीं ना कहीं भारत का काफ़ी गहराई तक वो फायर करने में सक्षम हो, अपनी आर्टिलरी को मॉडर्न किया। लेकिन भारत के पास भी इससे लंबी रेंज है और भारत के पास से कई गुना ज़्यादा आर्टिलरी की क्षमता है।
0: सैन्य दृष्टि से देखें तो सिर्फ 250 SH-15 की तैनाती सबसे बड़ी खबर नहीं है। असली खबर यह है कि पाकिस्तान अपनी पूरी आर्टिलरी डॉक्ट्रिन बदल रहा है। पाकिस्तान ने SH-15 होविट्ज़र को लेकर इतना बड़ा दांव क्यों खेला है और क्या है उसके होविट्ज़र को लेकर किए जाने वाले दावे और हकीकत, इसे आंकड़ों के जरिए अब समझते हैं। SH-15 155 mm 52 कैलिबर वाला होविट्ज़र तोप है जो सामान्य गोला बारूद से 30 से 40 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। वहीं रॉकेट असिस्टेड VLAP गोलों का इस्तेमाल करने पर इसकी मारक क्षमता 53 से 72 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। ये तोप शूट एंड स्कूट तकनीक का इस्तेमाल करती है, यानी दुश्मन पर गोला दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने में माहिर है। इसमें ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम और हाइड्रोलिक स्पेट्स हैं। सेटअप जल्दी होता है जिससे ये प्रति मिनट 6 राउंड तक फायरिंग कर सकती है। पाकिस्तानी SH-15 तोप एक 6x6 बख्तरबंद शानक सी ट्रक चेसिस पर माउंटेड है जो इसे सड़कों पर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने की ताकत देती है।
2: SH-15 देखा जाए तो ये एक शूट एंड स्कूट की इसकी पॉलिसी, क्योंकि 6x6 ट्रांसपोर्ट के ऊपर ये माउंटेड है जिससे एक जगह फायर करके तुरंत ही जगह बदली कर सकते हैं। इसकी रेंज लंबी है, साथ साथ में ये प्रिसीजन गाइडेड और भारी मात्रा में बम दोनों तरह का मिशन फायर करने में सक्षम है और बहुत तेजी से फायर करता है और लंबी रेंज की वजह से ये भारत के लिए एक मुश्किल पैदा कर सकता है।
0: सिर्फ SH-15 की संख्या बढ़ने से शक्ति संतुलन पूरी तरह बदलता नहीं। आधुनिक युद्ध में सफलता सिर्फ तोपों की संख्या पर नहीं बल्कि आर्टिलरी की प्रभावशीलता इन पर निर्भर करती है। रियल टाइम ड्रोन निगरानी, लक्ष्य की सटीक जानकारी, सुरक्षित कमांड एवं कंट्रोल, पर्याप्त गोला बारूद, काउंटर बैटरी से बचाव और एयर डिफेंस, अगर इनमें से कोई भी कड़ी कमजोर है तो आधुनिक होविट्ज़र भी अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं पाती।
2: देखिए, आर्टिलरी के कुछ चीजें होती हैं, वो कितनी बड़ी संख्या में फायर कर सकता है, कितना इफेक्टिव और सही जगह में फायर कर सकता है और अपना बचाव भी कैसे कर सकता है। जो अभी ये गन पाकिस्तान ने ली है, इसमें ये तीनों ही बातें काफ़ी बेहतरीन हैं। ये शूट एंड स्कूट है, यानी फायर करके जगह बदली कर सकता है, बड़ी तेज़ी से फायर करने में सक्षम है, फायर कंट्रोल सिस्टम इसका बहुत आधुनिक है, प्रिसीजन फायर कर सकता है, भारी संख्या में फायर कर सकता है, इसकी रेंज बढ़ गई है, रॉकेट असिस्टेड तकरीबन 50 से 70 किलोमीटर तक फायर कर सकता है। तो ये जो है आर्टिलरी के जो काफ़ी पैमानों पर सही उतरता है, यही कारण है कि भारत ने इसको का संज्ञान लिया है और इसके जो काउंटर मेजर्स हैं उसके ऊपर पहले काम हो चुका है और आगे भी काम होता रहेगा।
1: साल 2019 के बाद और खास तौर से 2025 के भारत पाकिस्तान संघर्ष तथा ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने महसूस किया कि उसकी पुरानी M109 और M198 जैसी तोपें भारतीय 155 मिलीमीटर आर्टिलरी के मुकाबले पीछे पड़ रही है, इसलिए वो पूरी आर्टिलरी को 155 mm x 52 कैलिबर मानक पर लाने की कोशिश कर रहा है।
0: हालिया रिपोर्ट्स में 250 SH-15 की तैनाती इसी आधुनिकीकरण का हिस्सा बताई गई है। पाकिस्तान ने चीन से साल 2019 में 236 SH-15 155 mm होविट्ज़र खरीदने की डील की थी। इसमें से सभी यूनिट को पाकिस्तान को सौंपा जा चुका है। इनकी तैनाती मुख्य तौर पर गुजरावाला, सियालकोट और जलालपुर जट्टन में है।
1: पाकिस्तान की SH-15 तैनाती निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आर्टिलरी आधुनिकीकरण का संकेत है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन भारत के पास K9 वज्र, M777 धनुष, ATAGS, पिनाका, उन्नत निगरानी सिस्टम और काउंटर बैटरी क्षमताओं का व्यापक संयोजन है, इसलिए स्थिति सतर्कता और सैन्य संतुलन है, न कि किसी एक पक्ष की निर्णायक बढ़त की।
0: पाकिस्तान की ओर से पनप रहा खतरा SH-15 को लेकर भारत पहले से अलर्ट है और इससे निपटने का काउंटर प्लान भी तैयार है। SH-15 की सबसे बड़ी ताकत उसकी शूट एंड स्कूट यानी गोला दागकर भागने की क्षमता है। भारतीय सेना के पास इसका तोड़ पहले से मौजूद है। पाकिस्तानी SH-15 के पास 90 सेकंड में भागने की तकनीक है, जिसके लिए भारतीय सेना ने काउंटर प्लान के तहत आत्मघाती ड्रोन तैनात किया हुआ है, जो दुश्मन के भागने से पहले ही हवा में हमला कर देगा। LOC पर भारत ने स्वदेशी त्रिशूल, ALS-50 और नागास्त्र 1 जैसे लोइटरिंग म्यूनिशन तैनात किए हैं। लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन सीमा पार हवा में घंटों घूमते रहते हैं। जैसे ही कोई SH-15 तोप गोला दागने के लिए रुकेगी या बख्तरबंद ट्रक कैबिन से बाहर आएगी, ये ड्रोन काउंटर आर्टिलरी रेडार से सिग्नल मिलते ही सीधे उस तोप से टकराकर उसे ब्लास्ट कर देगी। इससे तोप को भागने का 90 सेकंड का समय भी नहीं मिलता। पाकिस्तानी SH-15 के पास भले ही 72 किलोमीटर की अधिकतम रेंज है, जिससे निपटने के लिए IAF की ओर से डीप स्ट्राइक बेहद आसान है, यानी सीमा पार किए बगैर हवाई हमला। पाकिस्तान ने सोचा था कि SH-15 की मदद से वो भारत के रडार को चकमा दे देगा, लेकिन भारत ने इसके जवाब में अपने स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार का अपग्रेड वेरिएंट LOC के ऊंचे पहाड़ों पर तैनात किया है। स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार हवा में आ रहे पाकिस्तानी तोप के गोले को उसकी शुरुआती उड़ान में ही पकड़ लेता है और कंप्यूटर की मदद से तुरंत कैलकुलेशन कर बता देता है कि गोला किस सटीक कोऑर्डिनेट से दागा गया है। स्वाति रडार ये डेटा सीधे भारत की फ्रंटलाइन तोपों को भेजेगा, जिससे SH-15 के दूसरा गोला दागने से पहले ही भारतीय तोपें उस पर बमबारी शुरू कर देंगी।

0: देखा जाए तो भारत का जो स्वाति रडार है वो SH-15 के लिए काल बन सकता है, क्योंकि जैसे SH-15 का बम निकलता है स्वाति रडार मल्टी एरे फेज एरे सिस्टम के द्वारा रडार के द्वारा तुरंत उसकी लोकेशन पता करती है 10 से 20 सेकंड में, उसका कैलकुलेशन के द्वारा कंप्यूटर कैलकुलेशन के द्वारा गन पोजीशन की पता चल जाता है, साथ साथ तुरंत ही ऑटोमेटेड तौर पर जो हमारा काउंटर बम्बार्डमेंट यूनिट है उसको मैसेज चला जाता है और वहाँ से काउंटर बम्बार्डमेंट हो जाता है। यानी कि इससे पहले कि उनका जो SH-15 की जो सेल्फ प्रोपेल्ड गन है जहाँ पर कि गन ट्रक के द्वारा जहाँ माउंटेड है, इससे पहले कि मूव करें बहुत तेजी से फायर ऊपर लाने में इस स्वाति रडार सक्षम है।
1: SH-15 तोप अपनी लंबी दूरी और हाई मोबिलिटी के कारण सीमा के नजदीकी ठिकानों के लिए एक नया रणनीतिक तनाव पैदा कर रही है। हालांकि इसके मुकाबले भारतीय सेना के पास अत्यधिक सुरक्षित और ट्रैक बेस्ड K9 वज्र जैसी शक्तिशाली स्वचालित तोपें और आधुनिक काउंटर बैटरी सिस्टम पहले से मौजूद हैं। K9 वज्र और SH-15 दोनों ही आधुनिक आर्टिलरी सिस्टम हैं, लेकिन दोनों की बनावट, तकनीक और युद्ध क्षेत्र में भूमिका काफी अलग है। युद्ध भूमि में किसकी क्या क्षमता है इस पर नजर डालते हैं। भारत की K9 वज्र तोप ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड है, यानी टैंक जैसे पहियों वाली, जबकि SH-15 व्हील ट्रक माउंटेड यानी पहियों वाले ट्रक पर माउंटेड लाइटवेट सिस्टम। कैलिबर और बैरल की बात करें तो दोनों ही तोपें 155 mm बाय 52 कैलिबर की हैं। विशेष गोलों के साथ K9 वज्र तोप की मारक क्षमता 38 से 50 किलोमीटर है, वही SH-15 लेजर गाइडेड के साथ 40 से 53 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। फायरिंग रेट की बात करें तो K9 वज्र बर्स्ट फायर मोड में 15 सेकंड के अंदर 3 राउंड फायर कर सकती है, वहीं पाकिस्तानी तोप SH-15 1 मिनट के अंदर 4 से 6 राउंड फायर करती है।
2: K9 वज्र लद्दाख के रेतीले मैदान, बर्फीले रास्ते, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ और बिना सड़क वाले नदी नालों को पार करने में सक्षम है। इसके फिसलने का खतरा नहीं होता। वहीं पाकिस्तान की SH-15 तोप एक 6x6 पहियों वाले ट्रक पर टिकी है, जिसे पहाड़ों के तीखे मोड़ और कीचड़ या फिर बर्फ से भरे रास्तों पर चलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
1: मूल रूप से रेगिस्तान के लिए बनी K9 वज्र तोप को भारतीय सेना ने कोल्ड वेदर मॉडिफिकेशन किट के साथ अपग्रेड किया है। इसमें इंजन के लिए विशेष हीटर, बैटरीज को जमने से बचाने की व्यवस्था और विशेष लुब्रिकेंट्स शामिल हैं, जिससे ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की ठंड में भी पहली बार में तुरंत स्टार्ट हो जाती है। भारतीय सेना इसका पूरा रेजिमेंट लद्दाख में तैनात कर चुकी है। SH-15 के बारे में कहा जाता है कि ये शून्य से नीचे तापमान में, खुले वातावरण में खड़े ट्रक इंजनों और इसके नाजुक हाइड्रोलिक सिस्टम जो तोप को ऊपर नीचे करते हैं, उसके चोक होने का खतरा ज्यादा रहता है।
2: भारत के पास ऊंचाई वाले इलाके से लेकर रेगिस्तानी इलाकों में खतरों से निपटने के लिए आर्टिलरी ब्रिगेड में एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। इनमें से एक का नाम है ATAGS, यानी कि एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसके खरीद की मंजूरी मिल चुकी है। ATAGS के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दी है। इनसे करीब 307 ATAGS खरीदे जाएंगे, जिन्हें पाकिस्तान और चीन से सटी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा।
1: हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में नया नाम है अटैक्स, यानी एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी की ताकतवर तोप को DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है।
2: एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसी गन है जिसको ट्रक से खींचा जा सकता है। इसको होविट्सर यानी कि छोटी तोप भी कहा जाता है। ये काफी हल्की होती है जिन्हें काफी ऊंचाई तक तैनात किया जा सकता है। बोफोर्स तोप की तरह ये तोपें भी गोला दागने के बाद कुछ दूरी तक खुद ही जा सकती है, इसलिए इनको स्वदेशी बोफोर्स भी कहा जा सकता है।
1: साल 2013 में डीआरडीओ ने अटैक्स को विकसित करना शुरू किया था, जिसके बाद पोखरण और सिक्किम में हर टेरेन पर इसका कई बार टेस्ट किया गया। इसे पहली बार 2017 में रिपब्लिक डे परेड के दौरान सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित भी किया गया था। अटैक्स होविट्ज़र रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने लायक है भारत की अटैक्स।
0: देखा जाए तो ATAGS के ऊपर भरोसा क्यों है? एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम, यानी कि ये शूट एंड स्कूट है, फायर करो, जगह बदली करो, तेज फायर होता है, लॉन्ग रेंज है, देश में बनता है, टोटल कंप्यूटराइज है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, बहुत तेजी से फायर करता है, हाई एंगल फायर करता है, लो एंगल फायर करता है, बहुत ही इसके अंदर खासियत है जिसकी वजह से ये भारत की आर्टिलरी की रीढ़ की हड्डी बन रहा है और दुश्मन को गहराई तक जाके फायर करने में सक्षम है और उनके काउंटर बॉम्बार्डमेंट से बचने की भी इसके अंदर क्षमता है।
1: अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत ये कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलता जुलता है, इसलिए इसे
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है। इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और अब बात गणपति उत्सव की। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव अगले महीने मनाया जाएगा, लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में करीब सवा महीने पहले ही गणपति पधार चुके हैं और लोगों में उत्साह उल्लास नजर आने लगा है। देखिए खास रिपोर्ट।

0: ये तस्वीरें महाराष्ट्र में कोल्हापुर की है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से ढोल ताशे बजाकर बेहद शानदार भक्तिमय माहौल में गणपति की अगवानी की जा रही है। गाजे बाजे के साथ गजानन भगवान गणेश को कोल्हापुर शहर में लाया जा रहा है। वैसे तो इस बार गणपति उत्सव 14 सितंबर से शुरू होने वाला है और महाराष्ट्र के कोने कोने में तभी बाप्पा का आगमन होगा, लेकिन कोल्हापुर में विघ्नहर्ता परंपरा से हटकर एक महीने पहले ही पधारे तो क्या आम और क्या खास, तमाम लोग उनके दर्शन और स्वागत के लिए उमड़ पड़े।
1: गणेश जयंती अगले महीने में है, लेकिन कोल्हापुर का राजा जो हमारा गणेश फेस्टिवल का गणपति है उसका आगमन आज होने जा रहा है और लाखों लोगों की उपस्थिति में उसका हम स्वागत कर रहे हैं।
0: कोल्हापुर में भी मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के ही समान गणपति की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा से श्रद्धालु मुंबई जाने के बजाय यहीं पर बाप्पा के दर्शन करने आते हैं। 14 फीट की इस प्रतिमा का निर्माण लालबाग के वर्कशॉप में शिल्पकार संतोष रत्नाकर कामले ने किया है। लालबाग से शुक्रवार की शाम को यहां प्रतिमा कोल्हापुर लाई गई, तो पुणे बेंगलोर हाईवे पर ही चौक पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ स्वागत किया। कोल्हापुर में गणेश उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। अब यहां गणपति पधार चुके हैं तो उन्हें विधि विधान से पंडाल में विराजित भी किया जाएगा और इस साल भी लोग एक बार फिर से विनायक की आराधना में डूब जाएंगे। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: नटराज के नृत्य का वैज्ञानिक रहस्य, अर्धनारीश्वर का दार्शनिक सच, शिवलिंग के आध्यात्मिक मायने, काल भैरव का न्यायिक पक्ष, सृष्टि के शाश्वत साक्षी शिव, श्वेता झा के साथ सुबह 9:34 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से